ओम शांति। हम सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं भगवान आकर हमें इतना ऊंचा उठाएगा और कहेगा कि बच्चे तुम विश्व का कल्याण करो। हम तो केवल अपने कल्याण की ही सोचते थे, वो भी नहीं कर पाते थे, लेकिन बाबा ने हमारा लेवल इतना ऊंचा उठा दिया। अपने भाग्य पर जरा गर्व करें। हमें उसने आकर याद दिलाया, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी के दुख हरने हैं, ये सारा संसार तुम्हारा परिवार है। हम अपने से पूछें, क्या हमने अपने अंदर ऐसी श्रेष्ठ भावना धारण की है? बाबा ने हमें स्पष्ट कर दिया, तुम्हें ही सबको दुखों से दूर करना है, तुम्हें ही सबका कल्याण करना है, तुम्हें ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देना है। तुम आधार मूर्त हो और उद्धार मूर्त हो। तो सोचें, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, क्या वो कभी व्यर्थ में रह सकते हैं? कदापि नहीं। दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी कंपनी का हेड, क्या वो छोटी बातों में अपना समय व्यतीत करेगा? क्या वो व्यर्थ सुनने में सदा बिजी रहेगा? क्या वो सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहेगा? क्या वो व्यर्थ की गपशप में अपने अनमोल समय को नष्ट करेगा? कदापि नहीं। हमारे ऊपर तो स्वयं भगवान ने जिम्मेदारी रखी है। तो जरा एकांत में स्थित होकर अपने से बातें करें, क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? हमें सारे संसार का कल्याण करना है। हम किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, बदले की भावना, किसी को दुख देने की इच्छा, किसी को गिराने की इच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि जिन्हें हम गिराएंगे, जिन्हें हम दुख देंगे, जिन्हें हम डिस्टर्ब करेंगे, उनका कल्याण पुनः हमें ही करना पड़ेगा। तो हम स्वयं को भरपूर करें, स्वयं को महान बनाएं, हम अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, सबके लिए कल्याण की भावना धारण करें। हम अपनी महानताओं को पहचानें, अपने हृदय को इतना शुद्ध करें कि किसी के लिए भी हमारे चित्त में अशुभ भावनाएं ना हो। निरंतर हमसे शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस सारे ही संसार को मिलते रहें। बस यही हमसे बाबा चाहता है और यही हमें निशी दिन करते चलना है। परिस्थिति जीवन में चाहे कितनी भी आ जाएं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम स्मृति स्वरूप होकर रहें। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यकता होगी बार बार अभ्यास करने की। अगर हम बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो परिस्थिति हमें सब कुछ भुला देंगी, विस्मृत कर देंगी। क्या क्या स्मृति में रखना है हमें? परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, ये परिस्थिति आई है मुझे और पावरफुल बनाने के लिए, ये चैलेंज मेरे सामने आया है। और पांचवी बात ध्यान रखें, ये परिस्थिति भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह यदि हम अपने चित्त को सरल करना सीख जाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को बिगाड़ नहीं पाएगी। आज सारा दिन हम सारे संसार के कल्याण के लिए सकास देने का काम करेंगे और ये दोनों स्वमान सारा दिन प्रैक्टिस में लाएंगे। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, अब मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। तो कैसे देंगे? मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या पवित्रता की देवी हूँ, बहुत पवित्र हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, परमधाम से पवित्रता के सागर बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं।
और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। संकल्प कर दें, सभी को सुख शांति प्राप्त हो, सभी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, सभी का जीवन निर्विघ्न हो जाए। आज सारा दिन यही अभ्यास चालू रखेंगे। ओम शांति।

0: अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सुबह के इस सुंदर समय पर जब कोई सुंदर विचार भी हम सुनते हैं तो पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है, और न केवल हमारा लेकिन हम जिनको मिलते हैं उनका भी दिन अच्छा करने के लिए हम निमित्त बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, पेश है आपके लिए एक बहुत सुंदर सुविचार। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। दोस्तों, आखिर सब कुछ किस लिए जिंदगी में? सुख के लिए ना। तो कितनी सिंपल और कितनी छोटी सी बात है जो हम बहुत ही सहज रीति से कर सकते हैं। मन को सच्चा रखो और दिल को अच्छा रखो, और मन को सच्चा रखने के लिए, दिल को अच्छा रखने के लिए अमृत धारा सुनते रहो और उनको शेयर करते रहो और सदा मुस्कुराते रहो। दोस्तों, चलिए इसी सिलसिले में हम जो अमृत धारा प्रोग्राम में शास्त्रों की बातों का बहुत सुंदर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो उसके लिए ही आज हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। हम सब उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, सुविचार जो है, सुविचार, अच्छा विचार भक्ति जी, बहुत ही सुंदर विचार है। दिल सच्चा और मन अच्छा। दिल सच्चा होता है तब ही मन अच्छा होता है। बहुत ही सुंदर विचार है। और भूत, भविष्य और वर्तमान, इसके बारे में भी कहा है, और अच्छा क्या होना चाहिए इसके ऊपर भी बहुत अच्छा भाष्य किया है। मुझे लगता है अगर दिल सच्चा होना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए, वर्तमान के बारे में हमेशा सोचेंगे तब मुस्कुराहट आएगी। ज्यादातर मनुष्य दुखी होता है, वह भूतकाल के बारे में सोचते रहता है और भविष्य की चिंता करता रहता है, तो वर्तमान उसका खराब हो जाता है। उसके बजाय अगर वो वर्तमान की तरफ ध्यान दे और ये सोचे कि भविष्य मेरा उज्जवल है, तब चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा हर चीज को, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया कैसा है, उस पर ही सब कुछ निर्भर है। और इसीलिए आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका भी नाम बहुत सुंदर है, उसका नाम है नजरिया। चलिए तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में कुछ मजदूर जो है वो पत्थर के खंबे बना रहे थे, तो उधर से एक साधु गुजरे। उन्होंने एक मजदूर से पूछा, भाई यहाँ क्या बन रहा है? तो उसने कहा, देखते नहीं हो, मैं पत्थर काट रहा हूं। तो साधु जी ने कहा, हाँ भाई देख तो रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहा हूं यहाँ बनेगा क्या? तो मजदूर झुंझला कर बोला, मुझे नहीं मालूम, यहाँ पत्थर तोड़ते तोड़ते जान निकल रही है और इनको देखो चिंता है क्या बनेगा यहाँ। साधु दो मिनट वहां रुके और वहां से आगे बढ़े। उन्हें एक दूसरा मजदूर मिला, फिर से साधु जी ने उससे भी पूछा, भाई यहाँ क्या बनेगा? मजदूर ने कहा, देखिए साधु बाबा, यहाँ कुछ भी बने, चाहे मंदिर बने या जेल बने, मुझे क्या, मुझे दिन भर जो मजदूरी करता हूँ उसके 100 रुपये मिलते हैं, बस शाम को रुपये मिले और मेरा काम बन गया। मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि यहाँ क्या बन रहा है। साधु महाराज आगे बढ़े। उन्होंने तीसरे मजदूर को देखा, तीसरे मजदूर के साथ उन्होंने बात करनी चाही। साधु ने उनको पूछा, भाई यहाँ क्या बन रहा है? मजदूर ने कहा, साधु बाबा यहाँ मंदिर बन रहा है। इस गांव में कोई भी बड़ा मंदिर नहीं था। इस गांव के लोगों को दूसरे गांव में उत्सव मनाने जाना पड़ता था। मैं भी इसी गांव का हूँ। और क्या क्या वो बातें करता है दोस्तों, जरूर सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आइए ब्रेक के बाद आप सबका सहर्ष स्वागत है और हम सुनते हैं आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। तो दोस्तों, तीसरा मजदूर जो है वो साधु बाबा को कहता है कि यहाँ मंदिर बन रहा है। इस गांव में कोई मंदिर नहीं था और इसीलिए गांव के लोगों को दूसरे गांव में उत्सव मनाने जाना पड़ता था। मैं भी इसी गांव का हूँ और ये सारे मजदूर जो है ना वो भी इसी गांव के हैं। मैं एक एक छेनी चलाकर जब पत्थरों को गढ़ता हूँ तो छेनी की आवाज़ में मुझे मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। मैं आनंद में हूँ। कुछ दिनों बाद यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ धूमधाम से पूजा होगी, बड़ा मेला लगेगा, कीर्तन होगा, भजन होगा। मैं यही सोचकर बहुत मस्त रहता हूँ। साधु बाबा, मेरे लिए ये काम, ये परिश्रम नहीं है। मैं तो हमेशा एक मस्ती में रहता हूँ, मंदिर बनाने की मस्ती। मैं रात को सोता हूँ तो मंदिर की कल्पना के साथ, और सुबह जगता हूँ तो मंदिर के खंभों को तराशने के लिए चल पड़ता हूँ। बीच बीच में ना जब ज़्यादा मस्ती आती है तो भजन भी गाने लगता हूँ। जीवन में इससे ज़्यादा काम करने का आनंद कभी आया ही नहीं। साधु महाराज उसको देखते रह गए और उन्होंने कहा, सचमुच यही सुखी जीवन का रहस्य है मेरे भाई। नजरिया का सिर्फ फर्क है, कोई काम को बोझा समझ लेता है, कोई काम निपटाने के लिए काम करता रहता है, झुंझलाता है, हाय हाय करता है, समय बिताता है, खुद भी परेशान और भी परेशान। लेकिन हर काम को कर्म योगी रूप में जो आनंद समझकर उसका मजा लेता है वही सच्चा सुखी है। दोस्तों, हमने जो सुविचार सुना वो भी तो ऐसा ही था ना। हमें अगर सच्ची मन की भावना है, दिल में सच्चाई है, स्नेह है, तो सचमुच ही हर पल हमारा जो गुजरता है वो बहुत ही सुंदर व्यतीत होता है। न केवल हमारा, लेकिन हमारे पास भी जो आते हैं ना वो भी वही वाइब्रेशंस कैच करते हैं, और वो भी कुछ पल के लिए क्यों न सही अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और हमारे साथ वो सुख में खो जाते हैं। दोस्तों, हमें क्या पसंद है? काम करना तो सबको है, लेकिन वही काम आप झुंझला कर सकते हो, निपटाने के लिए भी कर सकते हो और बहुत आनंद में मगन होकर कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब वही तीसरे मजदूर के कैटेगरी के हैं जो हर काम को एक बहुत सुंदर कला के रूप में देखते हैं। ज्ञानेश्वर जी, सचमुच मुझे लगता है कि इस प्रकार का नज़रिया अगर सबका हो तो हर जगह, हर ऑफिस में, कोई भी कर्म क्षेत्र में इसी प्रकार से हर कोई इंजॉय करता रहेगा।
3: बिल्कुल भक्ति जी, कहानी सचमुच बहुत सुंदर है और मेरे ख्याल से एक पाठ है मैनेजमेंट के लिए। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास जो काम होता है तब नौकरी समझ के हम करते हैं। अगर नौकर है तो यह काम करना उसकी मजबूरी हो जाती है और इसलिए वो काम एंजॉय नहीं कर सकता, उसका आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उससे मालूम है कि मुझे तनख्वाह मिलनी है और नहीं करूंगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी और इसलिए एंजॉय नहीं कर रही। लेकिन जब सेवा समझ के करेगा तब क्या होगा, अपेक्षा कुछ नहीं है लेकिन उसका आनंद जो है वो डबल हो जाए
2: और थकान भी नहीं,
3: थकान भी नहीं रहेगी। देखिए ऐसे बहुत सारे धर्मादाय संस्था है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा में आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे बड़े पोस्ट वाले इंसान, सूट बूट वाले इंसान आते हैं और वो सेवा कर कौन सी करते हैं, जूते साफ करने की भी सेवा करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनको जूते साफ करना पड़ेगा, घर में उनके पास 10 नौकर होंगे लेकिन वहां आने के बाद वो अपना काम सेवा समझ के करते हैं और उसमें उनको आनंद आता है। तो हमेशा अगर मैनेजमेंट का हिसाब से देखेंगे, अगर आपको अपने वर्कर्स को भी खुश रखना है, वर्कर्स को भी निश्चिंत करना है, तो ये सेवा समझ के मैनेजर भी काम करे और वर्कर भी काम करे तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि काम तो करना ही है, काम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर काम करते समय हमने उसे एंजॉय किया तो बहुत ही फायदा होगा। ये जब कहानी सुन रहा था तो मुझे और एक किस्सा याद आया कि मूर्तिकार, यहाँ मूर्तिकार जैसे मंदिर बना रहा था वैसे एक मूर्तिकार था, और छोटा बच्चा वो मूर्तिकार को पूछता है, अंकल आप मूर्ति बना रहे हो ना।

0: तो वो देखता है और मुस्कुराता बोलता है, नहीं भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, इस मूर्ति नहीं बना रहा हूँ। उसको आश्चर्य होता है बच्चे को कि ये तो मैं देख रहा हूँ ये मूर्ति बना रहा है, और फिर भी जब पूछता हूँ तो बोलते हैं नहीं, तो बोलते हैं कई मूड उसका मूड ठीक नहीं होगा, और फिर चला जाता है और फिर वापस आता है। ऐसे दो तीन बार होने के बाद फिर भी जवाब वही आता है कि मूर्ति नहीं बना रहा हूँ। तो बच्चा पूछता है, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो देख रहा हूँ मूर्ति आप बना रहे हो और आप नाना बोलते जा रहे हो। उसका जवाब जो है बहुत ही अच्छा है, वो बोलता है बेटा मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, इस पत्थर में मूर्ति है, मैं सिर्फ जो अनवांटेड पोर्शन है उसे निकाल रहा हूँ। वैसे हर शरीर में अपनी एक मूर्ति है, उसमें बहुत सारे नकारात्मक विचार छिपे हुए हैं, उसे हम निकालेंगे तो मूर्ति प्रकट हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए देखो रिटायरमेंट के लिए बोलते हैं सेवानिवृत्ति, अर्थात हम सेवा कर रहे हैं, और वो जो सेवा का भाव है वो सेवा का भाव ही सचमुच हर कार्य को बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर और परिश्रम विरहित बनाता है। दोस्तों कितनी सुंदर बात है, और चलिए हम भी इसी एंगल से हर बात को देखते नजरिया से देखते हुए अपने जीवन को भी बहुत सुंदर बनाएंगे। दोस्तों अब समय हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए हम दशम स्कंध, जो बहुत ही रुचि से भागवतकारों ने अलग अलग पहल

0: श्री कृष्ण जी ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से व्रजवासियों को बचा लिया तो स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए, उनके सामने उपस्थित, उनके चरणों को स्पर्श किया, उनके समीप जाकर उन्होंने श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर सुनकर अपने घमंड को पूरा का पूरा छोड़कर तोड़कर उनको कहा, उनकी स्तुति करना शुरू किया कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपका स्वरूप जो है वो परम शांत है, ज्ञानमय है। आगे वो कहते हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण से रहित विशुद्ध है, अप्राकृत है, सदा सत्वमय है और इन गुणों के प्रवाह रूप से पतित होने वाला ये प्रपंच जो है वो मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप उन्होंने जाना नहीं। आप में इसकी प्रतीति होती है जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, तो फिर आप में कोई भी प्रकार का दोष कैसे हो सकता है। दोस्तों, यहाँ कुछ बातें जो है मुझे लगता है कि सचमुच ध्यान देने जैसी है। ज्ञानेश्वर जी, जैसे इंद्रदेव कहते हैं कि प्रपंच मायामय है लेकिन आप अप्राकृत सत्वमय हो, विशुद्ध हो, और आपका स्वरूप जो है वो दुनिया वाले जानते नहीं। अब वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण जी का स्वरूप तो हर कोई जानता है, इतना ही नहीं हमारे मन में, हमारे दिल में ऐसी उसकी अमिट छवि है कि श्री कृष्ण कहने के बाद आज तक जिसने भी जितनी भी उसकी छवियां देखी है वह सामने उपस्थित हो जाती है। तो ये रूप कौन सा, इसमें क्या भागवतकार बताना चाहते हैं, क्या ये निराकार का रूप है, क्या ये अप्राकृत माना ऐसा कोई रूप है जो श्री कृष्ण से भी परे है, सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल भक्ति जी, भागवतकार जो कहते हैं, जो संकेत करते हैं, उसमें गुह्यता है। इसके ही आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें भागवतकार लिखते हैं कि बाकी जो लोग जन्म लेते हैं वो कर्म के अधीन लेते हैं, कर्म के अधीन उनका जन्म होता है, लेकिन आपका जन्म जो है वो कर्म के अधीन नहीं है, तो प्रकृति के कल्याण के लिए है।
0: बिल्कुल, उन्होंने वही बात कही है कि जीवों के समान कर्मवश होकर आपने जन्म नहीं लिया है, लेकिन स्वतंत्रता से और अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। ये बहुत सुंदर बात है। और फिर वो कहते हैं आपका ये शरीर भी विशुद्ध है और ज्ञान स्वरूप, शरीर भी विशुद्ध, बहुत सुंदर बात है। वैसे देखा जाए तो शरीर तो किसी का विशुद्ध नहीं हो सकता, आत्मा के लिए वो वर्णन हमेशा ही शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में आता है, लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है और इसीलिए वो बार बार उसको नमस्कार करते हैं और स्वयं एक रियलाइजेशन, एक महसूसता करते हैं कि मैं अभिमानी हूँ, मैंने अभिमान में आकर बहुत क्रोध किया। वो क्रोध साधारण नहीं था, वो क्रोध बहुत तीव्र था, और ये मेरा जो क्रोध है भगवान, ये मेरे वश के बाहर है। ज्ञानेश्वर जी, कोई भी इंसान जो है वो तो एक महसूसता कर सकता है, जब उसको क्रोध आता है तब वो बहुत क्रोधवश होकर कुछ भी कर्म करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको वो महसूस होता है कि इतना नहीं क्रोध करना चाहिए था। लेकिन स्वयं इंद्र आदि देव, जो देवों के देव भी कहते हैं, जो स्वर्ग के महाराजा कहते हैं, और इन्होंने इस प्रकार से अपना क्रोध प्रकट करना, ये भी एक श्री कृष्ण जी का प्रभाव है। क्योंकि कोई ऐसे महान प्रभाव में जब आता है तब अपने अंदर झांक सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, हर किसी के मन में

0: प्रश्न आएगा कि देवताओं का राजा इंद्र है, हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनका राजा कितना पवित्र होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। फिर भी बहुत सारे शास्त्रों में कथाएं जो है वह हमेशा ऐसी है कि इंद्र को अपनी कुर्सी की हमेशा चिंता रहती है, उसको हमेशा लगता है कि मेरा इंद्रपद कोई दूसरा ना ले जाए। इसके पीछे का भाव क्या है और इंद्र को ही क्रोध क्यों दिखाया? मुझे लगता है इसके पीछे का अध्यात्म हम जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध जो है वो इंद्रियवश होता है। इंद्रियों में जो विकार छिपे हुए हैं उसके कारण उसको क्रोध आता है, क्योंकि अहंकार एक विकार है। अगर किसी ने अपनी बात नहीं मानी, कितने ने अपनी स्तुति नहीं की, किसी ने मेरी निंदा की, तो क्या हो गया, मुझे क्रोध आ गया। और जब आदमी क्रोधवश हो जाता है तब विवेक शक्ति खो देता है, और विवेक शक्ति खो देने के बाद क्या अच्छा है, उसका परिणाम क्या है, यह भी पता नहीं चलता। आप जेल में जाएंगे, जिन्होंने मर्डर किए हैं उनसे बात करेंगे, तो मेजॉरिटी जो लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरे ऊपर भूत सवार था और मैंने ये कर दिया, बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है। तो क्रोध को जीतने के लिए इंद्रियों से परे होना चाहिए, क्रोध को जीतने के लिए खुद को आत्मा समझना चाहिए, ये शास्त्रकार बताना चाहते हैं, लेकिन वो अलग रीति से, कथात्मक रीति से बताते हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा, कथा सुनने में भी अच्छी लगती है और इशारे इशारों में वो क्रोध छोड़ना है तो क्या करना है, इसका इशारा भी भागवतकार देते हैं।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि इन बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस लिए भागवतकारों ने इन सब प्रसंगों का बहुत ही सुंदर रीति से वर्णन किया है। दोस्तों, इसके बारे में जरूर आगे देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे. सो वी नीड टू से.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, हमें इस प्रकार की खुद को सहूलत नहीं लेनी है कि वैसे देखा जाए तो ऋषि मुनियों ने भी क्रोध किया, इतनी तपस्या करने के बावजूद भी। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन है कि अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जिस पर चिंतन कर रहे हैं कि देवादिदेव इंद्रदेव उनको भी क्रोध आ गया, तो इसका मतलब हमें कुछ यहाँ भागवतकार सूचित करना चाहते हैं। और इसीलिए इस प्रकार का जब महसूस होकर अपराधों की क्षमा करने के लिए इंद्रदेव स्वयं श्री कृष्ण जी को कहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। इसलिए अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण में रखो, ऐश्वर्य जो है, धन संपत्ति जो है, उसमें अंधे नहीं बनो और अपने हाथ में कायदा नहीं उठाओ। मैं जिस पर भी अनुग्रह करता हूँ उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ, इसलिए तुम्हारा हमेशा ही मंगल हो। तुम अपनी राजधानी में जाओ और मेरी आज्ञा का अगर पालन करो, उन मर्यादाओं का पालन करो, तो हमेशा ही सुखी रहेंगे। इस प्रकार की सब बातें जो है वो उनको समझाते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम भी अगर हमेशा के लिए ग्रहण करें, हम भी अगर समझे, तो सबसे बहुत ही सुंदर बात होगी। और आगे वो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार से इंद्रदेव को सारी बातें समझाई, उनको रियलाइजेशन भी कराया, और फिर गोविंद नाम से श्री कृष्ण का जब अभिषेक किया गया तो उनकी पहचान बनी गोविंद। और इसीलिए कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने सारे श्री कृष्ण जी के नाम हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, बहुत सुंदर बात मुझे लगी, और यहाँ ये एक नई बात हमारे श्रोताओं के लिए भी हो सकती है कि गोविंद नाम क्यों उनका हुआ।
1: बिल्कुल, देखिए श्री कृष्ण जी के आपने जैसे बताया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और एक तो विष्णु सहस्र नाम के रूप में भी उसे गाया जाता है, हजार नाम है उनके। लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, और आगे क्या है, प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ, मुकुंद विष्णु भगवान नमस्ते। ये सब नाम किसके हैं? एक भगवंत के हैं। और गड़बड़ इसी में है कि 12 नाम है और 12 नाम एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम भूल जाते हैं, उस व्यक्ति के पीछे का भाव भूल जाते हैं, वो शक्ति क्या है वो भूल जाते हैं, और हम चरित्र को खाली देखते हैं और चरित्र को सुनते हैं, चरित्र एकों पर बहस करते रहते हैं, ऐसे क्यों किया, ये ठीक नहीं था, इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। उसके बदले अगर हम वो शक्ति का अनुभव करें तो बहुत ही अच्छा है। और भागवतकार जब भी कुछ कहते हैं तब कॉरपोरेट सेक्टर में जो चलता है, मेरे ख्याल से उसका ही दिग्दर्शन यहाँ भागवतकारों ने किया है। देखिए, कोई अगर वर्कर है और अच्छा काम करता है, मैनेजर उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी देता है, उसका उत्साह बरकरार रखता है, लेकिन वर्कर क्या होता है, कभी कभी मस्ती में आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसे लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, और उसके अंडर जो कुछ काम करने वाले लोग हैं उनको वह डांटेगा, धमकाएगा, कुछ अत्याचार करने की कोशिश करेगा। अभी उसमें क्या है, उसे लगता है कि मैं ही मैनेजर बन गया हूँ, लेकिन बाद में होता क्या है, उसका घमंड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति की जाती है, और फिर वो पदभ्रष्ट भी हो सकता है और उस नौकरी भी जा सकती है, लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। तो क्रोध एक विकार है, और क्रोधवश आदमी हो जाता है तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती है, रिलेशन जो है हमारे उसमें भी टकराव आता है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां हो जाती है, और ये सब दुख का कारण है। उससे सुख नहीं मिलता, हमेशा दुख मिलता है। क्रोध करोगे तो लगता है दूसरों के ऊपर मैंने क्रोध किया, लेकिन वो तो किया, दूसरों के ऊपर क्रोध किया, उसका मन भी खराब किया, लेकिन मेरी तबीयत भी जो है वो भी बिगड़ जाती है। जितने लोग क्रोधी होते हैं उनका बीपी भी बढ़ता है, टेंशन भी बढ़ता है और वो बीमार होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी काम करने के पहले, कोई भी कर्म करने के पहले अगर आपको क्रोध आता है तो सिर्फ 10 तक गिनो। तो क्या होगा, 10 तक गिनते गिनते आपको रियलाइज होगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है। बाद में पश्चाताप करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, सजा तो मिलेगी ही। तो इसलिए मुझे लगता है काम और क्रोध मुख्य रूप से दो विकार है और इस विकारों के ऊपर ही बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रकारों ने टीका टिप्पणी किए है और दोनों इंसान के चरित्र को भ्रष्ट करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच जाने अनजाने में कई बार हम ऊपर से क्रोध नहीं दिखाते पर अंदर थोड़े झुंझला जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में हर एक मनुष्य स्वभाव का भी वर्णन है, हमारी कमी कमजोरियां निकालने की युक्ति भी बताई है और उसके साथ साथ बहुत सुंदर श्री कृष्ण जी का भगवान के रूप में जो चरित्र है वो भी बहुत सुंदर है। किस प्रकार से अपने भक्त को भगवान सदा ही अनुग्रह करते हैं, क्षमा करते हैं, ये भी बहुत सुंदर रीति से पेश किया है। चलिए दोस्तों, इसका आनंद लुटाते हुए हम भी आगे चिंतन को बढ़ाते हैं, लेकिन अभी समय को देखते हुए मैं भक्ति अपने वाणी को देते हुए विराम। फिर से मिलेंगे अमृतधारा में, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि संसार के समस्त लोगों को एक राउंड टेबल में बिठा दिया जाए और सबसे कहा जाए कि सब अपनी अपनी समस्याओं को टेबल पर रख दें और उसके पश्चात ये कहा जाए कि आप किसी की भी समस्या को ले सकते हैं और अपनी समस्या को दूसरे के लिए छोड़ सकते हैं, तो आप पाएंगे कि गहरे सन्नाटे के बाद हर एक अपनी अपनी समस्या लेकर वापस उठ जाएगा, क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई समस्या है और हमारे पास जो समस्या है उससे कहीं विकराल समस्या सामने वाले व्यक्ति के पास है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद मैं ही परेशानियों से जूझ रहा हूँ, मैं ही समस्याओं से जूझ रहा हूँ, इसलिए हम कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत लिखा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इसलिए केवल अपने गम, अपनी समस्या से ही ना जूझते रहें, संसार के दूसरे लोगों के गमों की ओर भी देखें कि वो कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि शायद आपकी समस्या बहुत छोटी है, बहुत हल्की है और उसे दूर करने का साहस, हिम्मत आपके पास आ जाएगा। यही चर्चा हम भ्राता जी के साथ कर रहे हैं। आइए पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: भ्राता जी, ये जो एक दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से हम दूसरे की भी समस्या को देख करके मदद करें या समाधान करें, तो कई बार ये होता है कि हम अपने में ही उलझे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत भारी पहाड़ मुझ पे टूट पड़ा है। क्या हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि वो समस्याओं से मुक्त हो तो उसका बल मुझे भी थोड़ा मिले?
2: बिल्कुल सत्य है कि यदि मनुष्य इस तरह के परोपकार में लग जाए तो वो अपनी समस्याओं को तो भूल ही जाएगा, और जब वो भूल जाएगा तो उसकी समस्याएं भी उसे भूल जाएंगी।
0: बिल्कुल।
2: एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सिद्धांत है, उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति माना हमारे मन का मूड, हमारे मन की स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड यदि बहुत एलिवेटेड है, बहुत ऊंची है, हाई है, तो जैसे हम जब एरोप्लेन में चलते हैं, ऊपर जाते हैं तो नीचे की चीजें छोटी लगने लगती है ना। कभी कभी रात का समय होता है, नीचे हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं तो केवल लाइट लाइट दिखती है कि कुछ जा रहा है, कीड़ी जैसी कोई चीज, चींटी जैसी चल रही है। तो हम अपने मानसिक लेवल को इतना ऊंचा उठा दें कि हर बात हमें छोटी लगने लगे
0: जी,
2: तो वास्तव में कोई परिस्थिति हमारे पास रहेगी ही नहीं।
0: भ्राता जी, आपने जो कहा बहुत सुंदर बात है, यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बहुत ऊंचा कर ले, महान कर ले, हर एक चीज के लिए बहुत पॉजिटिव रवैया अपनाए तो सचमुच समस्याएं बहुत छोटी छोटी लगेंगी, और जो चीज छोटी होती है वो खेल की तरह हो जाती है। एक छोटी सी चींटी को नष्ट करना किसी हाथी के लिए बहुत सामान्य सी बात है, तो वैसी हमारी भी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी तो समस्याएं चींटी बनकर समाप्त हो जाएंगी।
2: हम सभी को यही मान लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, हमारी मनोस्थिति का महत्व तो बहुत बड़ा है, उसकी शक्तियाँ, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है, उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं और ये परिस्थितियाँ बहुत छोटी हैं। परिस्थितियाँ कमजोर मन की रचना है और स्वस्थिति एक पावरफुल माइंड की रचना है, तो कमजोर मन की रचना तो कमजोर ही होती है ना। हम उन्हें माने ही ऐसा कि दे आर नथिंग, आई हैं जाएंगी, ये तो खेल चल रहा है,
0: जैसे बादल आते हैं बरसात के दिनों में और चले जाते हैं, वैसे ही समस्याएं आई हैं और चली जाएंगी, मैं इसे सही अप्रोच रखूं इनके प्रति और सहज रूप से इनसे पार हो जाऊं, ये दृष्टिकोण रहता है तो हम उसे खेल की तरह एंजॉय भी करते।
2: बिल्कुल, जैसे आपने बादलों की बात कही तो मैं एक और सुंदर चीज अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं।

0: करता हूँ कि देखिए कभी कभी संसार में बहुतों के साथ किसी किसी के साथ क्या, पर बहुतों के साथ ये होता है कि सत्य बात सुनी नहीं जाती, असत्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, झूठ को साथ देने वाले हजारों लोग होते हैं, सत्य अकेला पड़ जाता है। तब जो सत्य में रहने वाला व्यक्ति है वो बड़ा निराश होता है कि मैं अकेला हो गया, अब क्या होगा मेरा, इनके साथ तो बड़े पावरफुल लोग हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सिद्धांत, मैं बीच बीच में ये जो स्पिरिचुअल सिद्धांत है उनकी चर्चा अवश्य करूंगा ताकि एक सत्य ज्ञान का प्रकाश सभी तक पहुंचता रहे। और वो सिद्धांत ये है कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। इसलिए कभी कभी जो सत्य निराश हो जाता है, इस निराशा को हम समाप्त करें, सत्य में बहुत पावर है, सत्य का सूर्य तो चमकेगा ही। जैसे देखिए दिन हो और चाहे सूरज के आगे कितने भी घने बादल क्यों ना आ जाएं, लेकिन रात नहीं होती है, उसका प्रकाश फिर भी दिखाई देता रहता है। तो अपनी सत्यता में विश्वास रखें और असत्य को प्रबल होते देखकर अपने आत्मविश्वास को डगमगाएंगे नहीं तो परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, अपने सत्य पर भी विश्वास रखें और साथ ही उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पर भी विश्वास रखें, क्योंकि वो भी तो सत्य के सागर हैं, वो भी सत्य का साथ देते हैं, तो उनकी भी शक्ति हमें मदद करेगी और जल्दी से जल्दी हम अपनी परिस्थितियों से उभर जाएंगे।
0: बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा है मैं उधर ही हूँ जिधर सत्य है। जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा ये बात बार बार कही गई है, लोग उससे पूछते हैं तुम किधर जाओगे, तुम इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो वो कहते हैं जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ। तो भगवान के भी यही महावाक्य हैं, जिधर धर्म है, जिधर सत्यता है, जिधर पवित्रता है, उधर ही मेरा साथ है। तो जिसे भगवान साथ देता हो, परिस्थितियां या झूठे लोग उसका क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसे कष्ट दे सकते हैं, उसे विवश कर सकते हैं, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए असत्यता का प्रभाव सत्य को विवश भले ही कर दे कुछ समय के लिए, छुपा भले ही दे कुछ समय के लिए, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल, तो इस सत्य पर विश्वास अवश्य रखें, परमात्मा की शक्ति पर, स्वयं की शक्ति पर विश्वास रखें। लेकिन जो प्रश्न आज भी हमारे पास आए हैं भ्राता जी, वो इसी प्रकार के हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में अपने कह लें कि निराशा के भाव, या कह लें कि थोड़ा सा दुख के भाव लिए हुए हैं, और आपने जैसे कहा कि थोड़ा विश्वास को अपने कायम रखें अपने अंदर, तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो भ्राता जी, मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं। ये हमारे पास आया है हिमाचल प्रदेश से, और कैलाश पंत जी लिख रहे हैं कि मेरे भाई ने बिजनेस में मुझे धोखा दिया और मेरे लिए काफी उल्टा सीधा प्रचारित भी किया। उसके धोखे से मैं बहुत टूट गया हूं और बहुत दुखी रहने लगा हूं। मैंने एक बार तो मरने की कोशिश भी की लेकिन बच गया। अब भी मैं इस सदमे से उबर नहीं पाया हूं, मैं क्या करूं? जब अपना कोई भ्राता जी इस प्रकार धोखा दे जाता है, जिसपे हमने बहुत विश्वास किया है, तो सचमुच एक टूटने की स्थिति तो आ जाती है।
0: इन्होंने उसको साथ भी बहुत दिया होगा, सहयोग भी बहुत दिया
1: और
0: होगा,
1: अपनी पूरी एनर्जी भी लगाई ना उन्होंने।
0: और ऐसे व्यक्ति से जब धोखा मिलता है तो निश्चित रूप से मनुष्य टूटता है और वो मरने की सोचता है। लेकिन मैं इन्हें कहूंगा कि जीवन बहुत मूल्यवान है। ये धोखा देना, ये धन का चले जाना, ये सब तो विनाशी है, आज है कल नहीं है। आज कोई मित्र है कल शत्रु बन जाते हैं, कोई शत्रु है आज मित्र बन जाता है, ये खेल तो चल रहा है। लेकिन कभी भी अपने जीवन को नष्ट करने की नहीं सोचनी चाहिए, जीवन बहुत मूल्यवान है। मुझे कहानी याद आ गई, सच्ची घटना है। बहुत साल पहले हमारे यहाँ नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी है अफ्रीका की, तो वहाँ का एक बहुत रिच व्यक्ति बॉम्बे में हमारे प्रोग्राम में आया और उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उसने राजयोग सीखा और केनिया में हमारा सेंटर खोलने के लिए निमंत्रण दिया। अचानक क्या हुआ, 6-8 मास ही हुए थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका 47 कंट्रीज में, दिवाला हो गया। दिवाला हो गया तो सब कुछ चला गया, मकान एक बचा उसके पास, वो अपने बगीचे में घूम रहा था। उसका फ्रेंड उससे मिलने आया, सांत्वना दी और बातचीत होने लगी, तो बहुत भाई बहुत बुरा हो गया और आपका इतना सब कुछ नष्ट हो गया,
1: सहानुभूति जताने लगे,
0: हम आपके साथ हैं, कोई मदद चाहिए, अभी तो ऐसे विकट परिस्थितियों में ही मनुष्य को मदद की जरूरत पड़ती है। वो सोचता रहा। उसने बहुत सुंदर बात कही फिर कि देखो, जब मैं भारत से अफ्रीका में आया था तो मैं एक अटैची और बैग लेकर आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने एक छोटी सी नौकरी की थी और केवल 30 साल में मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बन गया था। मैंने बिजनेस क्रिएट किया था ना, मैं क्रिएटर हूँ। चलो बिजनेस नष्ट हो गया, पैसा चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तो जब क्रिएटर जिंदा है तो मैं फिर क्रिएट कर लूंगा। मैंने क्रिएट किया था ना, और टैलेंट्स मेरे पास हैं, तो मुझे भी बहुत आनंद है। और तब से बात बहुत साल पहले की है, शायद 32 साल हो गए हों, मैंने भी सीखा वी आर क्रिएटर,
1: बिल्कुल
0: हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, हमें अपने को नष्ट करने की कभी नहीं सोचनी चाहिए।
1: हमारा आत्मविश्वास, हमारा हिम्मत यदि डगमगा जाए तब तो हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो तो कायम है, और साथ ही हमारा जो विजन, हमारी जो क्षमता, हमारी योग्यता है वो तो कायम है, हम फिर क्रिएट कर सकते।
0: और सबने देखा उसको कि 5-7 साल में उसने सब कुछ एस्टेब्लिश कर लिया और फिर वो उसी पोजिशन पर था। तो मैं भाई साहब को कहूंगा, मरने की कभी ना सोचें, और ये बुरे दिन इनके जीवन में आए हैं। और सबसे बुरी बात ये होती है कि जब अपना व्यक्ति कोई गलत प्रचार कर दे, धोखा उसने दिया लेकिन कहे ये रहा है, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे इतने पैसे मार लिए, इसने मेरा ये नहीं दिया, तो ऐसे में वही बात जो हम पहले कर रहे थे, आपको तो पता है ना सत्य आपके पास है, अपने सत्य में विश्वास रखें और बाहरी इन चीजों से, दूसरों के द्वारा फैलाए गए गलत प्रचार से अपने को निराश न करें, मूर्छित न करें, अपनी खुशी को नष्ट न करें। देखिए संसार ही ऐसा है, ये कलयुग का अंत है, और इसमें वो व्यक्ति जो बहुत गलत है, वो व्यक्ति जो पाप कर रहा है, वो व्यक्ति जो धोखा दे रहा है, अपने को बचाने के लिए, अपने को सत्य सिद्ध करने के लिए उल्टा सुलटी बातें तो करेगा ही, इसलिए इससे प्रभावित न हो के वैसे ही सोचें जैसे बहुत सारी बदबू हो और हम एक अगरबत्ती जला देते हैं। अगरबत्ती ये तो नहीं सोचते ना बदबू बहुत है, नहीं, वो तो अपनी सुगंध फैलाएगी। तो आप उसके कमेंट्स से, उसके द्वारा झूठे प्रचार से अपने मन को दुखी ना करें, लेकिन अपनी सत्यता में स्थित हो जाएं, अपने मन में सुंदर अभ्यास करें, राजयोग सीख लें। राजयोग हमें सदा प्रसन्न रहने की कला भी सिखाता है। राजयोग का एक ये भी विधान है कि वो हमारे मन में सुंदर विचारों को क्रिएट करने की कला प्रदान करता है। तो आप सुंदर विचार क्रिएट करें और आपके विचारों के वाइब्रेशंस, आपकी सत्यता के वाइब्रेशंस इस असत्य वाइब्रेशंस को नष्ट कर देंगे। हमें ये जानना चाहिए कि निगेटिव एनर्जी चाहे 100 विचारों के द्वारा क्रिएट की गई हो, लेकिन एक पॉजिटिव विचार में उनको नष्ट करने की शक्ति होती है। पॉजिटिव विचार इज मोस्ट पावरफुल, पॉजिटिव थॉट इज मोस्ट पावरफुल थॉट, एंड निगेटिव वाइब्रेशंस आर ऑलवेज वीक।
1: बिल्कुल,
0: तो अपने में विश्वास करें और इस दुविधा से, इस निराशा से बाहर आ जाएं। वो क्या कह रहा है ये ना सोच के अब फिर से आप स्टैंड हो जाएं और संसार को दिखा दें कि कोई व्यक्ति धोखा देकर हमें बिगाड़ नहीं सकता, हमारे भाग्य को नहीं छीन सकता, भगवान हमारे साथ है, भाग्य हमारे साथ है, हम फिर से उससे भी आगे हैं।
1: बिल्कुल, तो अपने मन में निराशा ना आने दें और बल्कि वहीं से शुरुआत करें, और यदि संभव होता है तो भ्राता जी एक चीज़ और यदि हम बात करें तो क्या इन्हें कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए या कानून की शरण में भी जाना चाहिए?
0: ले लेनी तो चाहिए, पर आजकल कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है और उसमें मनुष्य टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है, और आजकल लेन देन इतना चलता है कि जिसके पास पैसा है बस न्याय उसी की तरफ है, इसलिए उससे अच्छा है कि इस चीज को एक तरफ रखकर फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और अपनी हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त करें।
1: बिल्कुल, इनके पास योग्यता तो है, क्षमता तो है, ईश्वर का साथ है, उनका आत्मविश्वास है, तो जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था वैसे ही ये भी जर्रे से भले शुरुआत करें लेकिन शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति, सत्य की शक्ति इनके साथ है। प्रताप जी अगला मैं मेल ले रहा हूँ। ये आया हमारे पास भवानी पटना उड़ीसा से सत्रुपा मोहंती जी लिख रही हैं, कहती हैं कि मैं और मेरे पति दोनों बहुत क्रोधी हैं, कभी कभी हमारी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसियों को आकर छुड़ाना पड़ता है, मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं। एक बड़ी भयंकर समस्या है कि पड़ोसियों को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है।
0: बिल्कुल एक कटु समस्या है और दोनों को ही पीछे पश्चाताप भी होता होगा,
1: शर्मिंदगी होती होगी थोड़ी देर के बाद कि लोग
0: वो समझाएंगे कि भाई चुप हो जाओ, लड़ो नहीं, तुम दोनों ही तो समझदार हो। तो देखिए, क्रोध की शुरुआत मूढ़ता से होती है और इसका अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रोधी व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में न जलता हो। उसका अंतर का विवेक, जब उसका मन शांत होगा ना, तो उसका अंदर का विवेक उसे धिक्कारेगा, क्यों
1: इन्हें ये हो रहा है कि भाई ये गलत होता गलत है और मुझे अपने क्रोध को जीतना है। ये बात इन्होंने प्रश्न
0: इनके अंदर इच्छा हो गई है कि हम इस क्रोध से निजात पाएं किसी भी तरह, क्योंकि घर का वातावरण तो बहुत खराब
1: और बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता रहता है जी। उनकी पढ़ाई भी जाती रहती है, लोग भी कॉमेंट्स करते होंगे कि तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं, और कहीं ना कहीं उनके बाल मन पे इसका असर पड़ रहा है कि ये गुस्सा करते हैं तो हमें भी गुस्सा करना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये उनके वाइब्रेशंस, क्योंकि माँ बाप के वाइब्रेशंस बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं, तो बिल्कुल ये संभव है कि वो भी क्रोध के वश होते जा रहे हों। वहाँ नहीं करेंगे तो अपने साथियों से करते होंगे, स्कूल में करेंगे, तो ये बहुत बुरी चीज है। और इनको जो इच्छा है कि क्रोध से मुक्त होना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है वहाँ प्रेम और खुशी का माहौल तो रहता नहीं, और जिस घर में प्रेम और खुशी ना हो वहाँ बच्चों की बौद्धिक विकास और उनका शारीरिक विकास दोनों ही रुक जाते हैं। हम कई तरह की निगेटिविटी को, बीमारियों को समझो निमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाओ हमारे घर में, क्रोध स्वयं में निगेटिविटी है। मुझे याद आ रहा है एक बार कि जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि वो बाहर की बहुत सारी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजिकल थ्योरी हो गई, क्योंकि जब क्रोध आ रहा है तो हमारा मन एक निगेटिव एनर्जी से भर गया, खाली भी हो गया पॉजिटिव एनर्जी से और निगेटिव एनर्जी से भर गया, तो बाहर की सारी निगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश।
1: और मैंने कहीं पढ़ा था प्रताप जी कि एक बार गुस्सा करने के बाद उसका असर 72 घंटे तक हमारे मानस पटल पे और शरीर पे दोनों पे ही।
0: हाँ, मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो तो इस पे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि क्रोध की तरंगों से बॉडी में क्या क्या हो जाता
1: है, नस नाड़ियां खिंच
0: जाती हैं, सेल्स डेड होने लगते हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट अटैक होने लगता है, तो इससे बचना चाहिए। पर इन्होंने इच्छा व्यक्त की है तो मैं इन्हें कहूंगा आपके शहर में जो भी नजदीक में ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है वहां आप जाएं, और राजयोग के द्वारा इस क्रोध पर विजय पाने का बहुत सरल तरीका मिलता है। मैं अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में होता हूं, जब मैं हाथ उठवाता हूं, अगर 500 लोग बैठे हैं कि किस किस ने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है, तो मुझे गर्व होता है कि 40% लोग हाथ उठाते हैं कि हमने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया है। फिर मैं पूछता हूँ 50% जिसने जीत लिया हो वो हाथ उठाओ, तो लगभग सब उठाते हैं, कोई थोड़े से बचते हैं 10-20 जो कहते हैं अभी हमें बहुत गुस्सा आता है। तो देखिए, राजयोग और स्पिरिचुअल नॉलेज क्रोध को समाप्त कर देती है। फिर भी जब तक ये वहाँ जाएं, मैं इन्हें एक सुंदर सी प्रैक्टिस सिखा देता हूँ। सवेरे उठ के दोनों ही बिल्कुल सवेरे थोड़ा जल्दी उठें, प्रकृति के शांत वातावरण का इफेक्ट अपने ब्रेन पर आने दें, थोड़ा खुली हवा में आ जाएं, छत पे जाएं, केवल बंद कमरे में अंदर रहना वो बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी, ब्रेन के विकास के लिए भी। तो थोड़ा बाहर जाएं और इस तरह विचार करें, ये जीवन कितना सुंदर है, भगवान ने ये कितना सुंदर संसार रचाया है, हम क्यों छोटी बातों में उलझ कर इसकी सुंदरता को नष्ट कर देते हैं। नहीं, हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, वो तो शांति का सागर है, मुझे भी शांत हो जाना है। तो 7 बार रोज संकल्प करें, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। मैं भगवान की संतान हूँ, मेरा चित शांत है, मेरा चित शांत है। तो अगर 7 बार रोज ऐसे करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिसीव करेगा और वो चित्त को शांत करेगा, चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा और क्रोध की अग्नि थोड़े दिन में बुझ जाएगी।
1: बिल्कुल, तो बहुत सुंदर युक्ति आपने बताई भ्राता जी। सुबह उठ करके अभ्यास करें और यदि आसपास सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी का तो वहां जाकर के योग का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से इस पे संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी और पड़ोसियों को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ समाप्त
0: हो जाएगी। वो इनके लिए अपना समय देते हैं। लेकिन साथ में मैं एक चीज और कहूंगा, क्रोध को जीतने के लिए एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्रोध का जन्म होता है कामना से। मनुष्य एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करता है, भाई ये व्यक्ति मेरे सामने झूठ ना बोले, ये व्यक्ति अपने काम परफेक्टली पूर्ण करे, ये व्यक्ति टाइम पर आए, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, ये मैंने बार बार इसको समझाया अब ये गलती ना करे, ऐसी कामनाएं मनुष्य के मन में।
1: और ये कामना तब बहुत बढ़ जाती है जब आपस में दो संबंधी होते हैं, संबंधों में कामना सबसे ज्यादा,
0: अपनों से कामना ज्यादा। तो कामना रखना तो अच्छा है लेकिन दूसरे के विवेक को, उसकी सिचुएशंस को भी तो हमें समझना होगा। और ये जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति हमारी कामनाओं पे हमेशा खरा ही उतरे, तो अपनी कामनाओं को भी थोड़ा सा डाउन करें, थोड़ा सा धैर्य चित्त हो। और ये याद रखेंगे, धैर्य से क्रोध को जीता जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत जल्दी इन्हें सफलता होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही दिनों में इनके घरों में खुशहाली आ जाएगी।
1: बिल्कुल, तो एक कामनाओं को थोड़ा सा नीचे करें और साथ ही विशेष करके जो आपने सुबह का अभ्यास बताया वो अभ्यास प्रारंभ करें। और ये चीज भी जरूर ध्यान रखें कि यदि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मैं थोड़ी शांति बनाए रखूं, मैं धैर्यता बनाए रखूं, मैं सहनशील हूं। वैसे भी नारी को सहनशीलता का अवतार कहा जाता है, तो यदि ये सहनशीलता को, धैर्यता को बनाए रखती हैं तो मुझे लगता है कि ये आग और ज्यादा नहीं भड़केगी बल्कि शांति में तब्दील।
0: बिल्कुल, इनको 2-4 बार दिन में ये सोच ही लेना चाहिए, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मेरे पास सहन करने की शक्ति है। तो इनका पति जब इनको ज्यादा कुछ बोलेगा तो कुछ तो धैर्य इनमें आ जाएगा और कुछ देर तक तो कम से कम क्रोध को ये अवॉइड कर सकेंगे।
1: विचारों का वैसे भी प्रभाव तो होता ही है।
0: बिल्कुल, और एक और चीज होती है, मनुष्य में तुरंत रिएक्ट करने की आदत। थोड़ा भी अगर मनुष्य समझदार है तो वो जरा तुरंत रिएक्ट ना करे, थोड़ा धैर्य चित्त हो तो समस्या समाप्त।
1: जी भ्राता जी, बहुत सुंदर बातें आज आपने कही हैं, जो भी प्रश्न हमने लिए बहुत सुंदर समाधान दिए हैं, हमारे सभी दर्शक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चर्चा हो रही है समस्याओं की और उसके समाधान की। आपके विभिन्न प्रकार की समस्याएं मेल के द्वारा, पत्रों के द्वारा हम तक पहुँच रहे हैं। आप अपनी समस्याएं हम तक पहुँचा सकते हैं, ऐसी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही हैं, ऐसी समस्याएं जिनसे आप दुखित हैं, जिनसे आप पीड़ित हैं। हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई अशांति हो, कोई पीड़ा हो। आप इन सब से मुक्त होकर के जीवन का संपूर्ण आनंद उठाएं, यही समाधान का लक्ष्य है। इसलिए आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य भेजें, हम हमेशा आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं और अपने कार्यक्रम में उन्हें शामिल भी करेंगे। आज के लिए अपने मित्र को यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो, योर रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप, नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो, इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस. तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी, वो बाहर अपने आप आएगी. वी विल नॉट हैव टू डू इट. एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं. तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कंफर्टेबल बिटवीन द टू पीपल.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सात तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर

है हंस के उस पार जाना पड़ेगा, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।

नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 FM पर। गुड मॉर्निंग आबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। शनिवार का दिन है और आप सभी शनिवार को गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम को सुनते हैं और निश्चित तौर पे आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है। और तो चलिए आज के इस विशेष एपिसोड में, विशेष प्रोग्राम में, शनिवार ऐसे कहा जाता है हनुमान जी को, बालाजी को याद करते हैं। बालाजी को दो बार हफ्ते में याद करते हैं, एक बार मंगलवार को और एक बार शनिवार को। तो ऐसा क्यों है थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, मंगल और शनिवार दोनों दिन क्यों याद किया जाता है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर मुझे फ़ोन करके बताइए 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। तो मुझे खुशी होगी कि आप मुझे ज्ञान से अवगत कराएंगे, जागृति देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जीवन में भाग्य लेकर आते हैं लोग, अर्थात जब ऊपर से आते हैं तो परमात्मा अपना भाग्य हमें देकर जन्मसिद्ध अधिकार दे के भेजते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करते करते हमारा भाग्य जो है हमारे कर्मों के आधार पर फिर परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, तो हमारा भाग्य कम हो जाता है। तो ऐसे में फिर हम अपने भाग्य विधाता परमात्मा को, सर्वशक्तिमान को याद करते हैं, तो फिर से हमारा भाग्य नए से शुरू होने लगता है और हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो धीरे धीरे समाप्त या फिर कम होने लगते हैं। तो ऐसा ही भाव भरा एक गीत आपके लिए, अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये शब्द अपने आप में इतनी प्रभावशाली है, ताकतवर है कि ये कोई मनुष्य सबके लिए उच्चारण नहीं कर सकता। ये सिर्फ अथॉरिटी यानी परमात्मा के पास ये संपूर्ण अधिकार है, इन शब्दों का प्रयोग सारे मानव के लिए कर सकता है। तो इसीलिए ये शब्द इतने पावरफुल, इसे घड़ी घड़ी याद करने से आपके जीवन में आपकी आत्मा को रोशनी मिलेगी, अज्ञानता दूर होगी, आप आत्मा प्रेम से भरपूर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए 94-14-14-15-14-15 इस नंबर पे कॉल करके हनुमान जी को मंगल और शनि दोनों दिन क्यों याद किया जाता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। 29 अगस्त को विशेष रूप से इन खेल दिवस मनाया जाता है। उस महान खिलाड़ी, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद की याद में ये खेल दिवस मनाया जाता है। आज उनका जन्मदिन है, तो ऐसे महान खिलाड़ी को याद करते हुए उनकी कुछ जीवन की बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। और दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी, और इनके लड़के अभी हैं तो उनसे मेरी बातचीत हो गई थी। एक बार माउंट आबू वो खेल विंग विभाग में आए थे, स्पोर्ट्स विंग में, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने अपने पिता के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की थी। तो चलिए, ऐसे महान विशेष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान सिंह जी, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक दिलाया था, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का आज का दिन है। 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही ऐसे महान खिलाड़ी को याद करते हुए आइए एक और सुंदर गीत आपके लिए सुनते रहो।

राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार साथियों, 8:22 हो रहे हैं और आप सभी मेरे साथ हो गुड मॉर्निंग बाबू इस कार्यक्रम में। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह हम जब ईश्वर का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं तो हमारा दिन जो है सुंदर बन जाता है। और निश्चित तौर पे आप सभी भी इसको महसूस करते होंगे। थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। कभी आप अगर ऐसे नेगेटिव इमोशन के साथ रहते हैं तो दिक्कतें आती हैं, अदरवाइज आप बहुत ही सुखद अनुभूति कर पाएंगे जब आप शांति से ईश्वर को याद करेंगे। क्योंकि ये संसार उसने बनाया है और उनको जब आप याद करेंगे तो उनको याद करके उनको समर्पित कर देंगे अपने जीवन को, तब जीवन जो है उनके हवाले होगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीवन दिया उनका है तो वो सोचेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है ना। तो अच्छे से अच्छा ईश्वर आपके लिए देता है, लेकिन हम कभी कभी अपने दिमाग को यूज़ करते हैं जिसके वजह से मुश्किलें आती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से ले चलता हूं एक और सुंदर गीत की तरफ। और मेजर ध्यानचंद के बारे में भी आप बातें बता सकते हैं, अगर आपको कोई बात उनकी अच्छी लगती हो या उनकी कोई बात आपको याद हो तो ज़रूर बताइएगा। आप सुनाए हैं गुड मॉर्निंग आबू, सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जैसा राम राखियो वैसे काम कीजिएगा। तो आइए एक दो सवार सा जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हेलो जी नमस्कार, क्या बात करते हो? आपके सामने बात करके कि हमारे को इतना आनंद आ गया। बात मत पूछो, आपने भगवान के गाने सुना करके हमारा दिल खुश कर दिया और राखी का सारा बंधन बांध दिया आपने तो मेरा इसके सामने गाना सर वो भी ऐसे होगा और भी मेरा मजा आ जाएगा और सभी साथियों को भी मजा आएगा। मेरा मनवा के जम रहा है राम जी के द्वार, मेरा मन ऐसे जम रहा है राम जी के द्वार, लाखों मोती तेरे भगवान राम ने कावेरिया ने उतारा पार। ये गाना सर ये हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको और रेडियो मधुबन वालों को सबको मेरा प्यार भरा। सूरज भाई है, मदन भाई है, बुरा राम जी है और कितने भी आदमी है, सब नाम मुंह से जल्दी जल्दी आता नहीं है तो जो भी मैं दे रहा हूँ सबको प्रेम से प्यार से राखे रक्षाबंधन का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गुड़ीलाल जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी खुशियां आप सभी को। और चलिए आगे बढ़ते हैं और निश्चित तौर पे मैंने सवाल पूछा था, शनिवार और मंगलवार क्यों हनुमान जी को पूजा जाता है, इसके बारे में बताइए। हेलो जी नमस्कार।
2: हाँ जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सूरज भाई बोलता हूँ जटाना से, कैसे हैं सर? हेलो आदिल, नमस्ते सर
0: जी। जी
2: मैंने सोचा क्या हुआ, आवाज बंद हो गई
0: सूरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शनिवार और रविवार ये दो दिन बालाजी यानी हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है, इसके बारे में बताइए आप। और खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बताइए।
2: जी सर आपको भी आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिन है तो ये हमारे जो मेजर ज्ञानचंद जी है इसके याद में वो मनाया जाता है। तो हनुमान जी का तो सर क्या कहे, हनुमान जी तो कई सारे जाते हैं, हनुमान जी ने अच्छा काम किया इसलिए भी उसको पूजा जाता है। और देखो आज लोग यही बात है कि आज हनुमान जी अभी तक वो जिंदा ही है, यानी कि कोई भी वक्त आपको बुलाए तो हनुमान जी हाजिर हो जाता है, यानी कि तो हनुमान जी को तो पूजना जरूरी है। अच्छे नेक काम किया है, कई सारी बातें जो रामायण में लिखी है कि हनुमान जी ने जो रामचंद्र भगवान का तो सेवक था पूजा जाता है।
0: जी जी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि शनिवार और मंगलवार दो दिन क्यों पूजा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है?
2: ये तो ज्यादा पता नहीं है हम, लेकिन आज वो सदियों से चला आया है।
0: जी जी जी, तो चलिए कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन हम चाहेंगे कि क्योंकि सब चीजें जो है सभी से सुनकर सर्वसहमति से चीजें होगी तो अच्छा है, इसलिए पूछा मैंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। नमस्ते, ओम शांति। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं और खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। खेल जो है बहुत अच्छा काम करते हैं और खेल हमारे जीवन को जो है बेहतर बनाने में उपयोगी होते हैं। हम अगर खेलते हैं तो हमारा मस्तिष्क और मन प्रफुल्लित हो जाते हैं और ताकत मिलती है उन्हें, और शरीर की संरचना भी सही रहती है और शरीर भी स्वस्थ और मजबूत रहता है। लेकिन आज के समय में हम लोग खेलों से कहीं दूर आ गए हैं और मोबाइल के चक्कर में हम जो है अपना सेहत को भी बिगाड़ रहे हैं और अपनी आंखें कमज़ोर कर रहे हैं और हमारी मेमोरी नाम याद रखने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए आपको नाम याद नहीं हो रहे हैं। हेलो जी नमस्कार।
3: ओम शांति भाई जी, नमस्ते।
0: नमस्ते ओम शांति, नीरज भाई कैसे हैं आप?
3: ठीक है जी।
0: जी बताइए, हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार क्यों पूजा जाता है, क्या कारण है?
3: जानकारी नहीं है जी
0: चलिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपका दिन शुभ रहे, खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
3: गीत सुनना था भाई जी, गीत
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: जग में सुंदर है दो नाम कृष्ण को या श्याम।
0: ठीक है सुनाता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी नए गुड मॉर्निंग बाबू इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम पूछ रहे हैं आपको कि भाई हनुमान जी को दो दिन क्यों हफ्ते में पूजा जाता है। हेलो जी नमस्कार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और खेल दिवस के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग और आज के दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति खेलों में विशेष योगदान देने वालों के लिए खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं जिसमें बहुत सारे पुरस्कार हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके अलावा तेंजिंग नर्गो राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय स्कूल और शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन अपना सालाना खेल समारोह आयोजित करते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताइएगा और इसके साथ में ब्रह्मा कुमारी इसमें भी आध्यात्मिक साथ खेल का भी जुड़ाव किया गया है। हर साल 25 अगस्त के आसपास में दादी प्रकाशमणि दिवस के उपलक्ष्य में दादी जी को याद करते हुए खेलों को सम्मानित किया जाता है, खेल का प्रदर्शन किया जाता है और मैराथन का आयोजन होता है जिसमें लगभग 5000 से लोग जो है भारत और विदेश से आते हैं और खेल में भाग लेते हैं, दौड़ते हैं सब लोग 21 किलोमीटर तक। तो ये 4 से 4.5 घंटे का पूरा मैराथन होता है, सुबह 5 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक समापन होता है। तो निश्चित तौर पे हर साल ये होता है। तो इसके पीछे लक्ष्य यही है कि हमारा जीवन में खेल कितना इम्पोर्टेंट है। हेलो जी नमस्कार।
1: राजू सर, आपने जो सवाल पूछा था मुझे थोड़ा सा याद आ गया कि
0: जी, जी, जी,
1: मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्मदिन था, इसीलिए हनुमान जी को पूजा जाता है मंगलवार के दिन
0: जी।
1: और जो शनिवार के दिन तो पूजा जाता है, तो शनि का मतलब है कि जो रावण को लंका के दहन के दरमियान शनि देव को मुक्त किया था, इसीलिए वो शनिवार को दिन उसको माना जाता है
0: जी। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया।
1: तो जी सर,
0: नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, तेरा मन मेरा तेरी भक्ति मेरा मन डोले, ऐसा कुछ भाव भरा ये गीत है अभी आपके लिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। अभी अभी इंदौर से जगदीश जी याद कर रहे थे आप सभी को और उन्होंने फोन करके जवाब दिया कि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है। तो उन्होंने बताया मंगलवार को हनुमान जी का जन्मदिन है और शनिवार के दिन उन्होंने रावण की लंका में जो है अपना शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्हें दोनों दिन हफ्ते में याद किया जाता है। चलिए, बहुत सुंदर। और जगदीश जी कपड़े के व्यापारी हैं ये उन्होंने बताया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ राष्ट्रीय खेल दिवस पर। मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा अपने आंगन में सही, अपने सोसाइटी में सही, थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह उठ के अगर आप तेज चलते हैं तो ये भी खेल में शामिल हो जाता है। इससे भी आपका जो है शरीर की संरचना सही होती है। तो थोड़ा सा आधा घंटा, 15 मिनट 20 मिनट, छोटा छोटा थोड़ा सा टाइम निकालिए और इसको अगर आप अपने जीवन में योग के साथ जोड़ लेंगे तो आपके शरीर की रचना जो है अच्छी बनी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये संकल्प लेके आप इन चीज़ों को ज़रूर करें, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आज परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, जिसमें खास करके प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों में परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता करना है। और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा 64वें सत्र में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। दूसरा एक और जो विकल्प है हमारे पास, एक महिला जो है परमाणु के लेकर जो है उस पर काम करती है और परमाणु से जो है अगर इसको सकारात्मक रूप से लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ना कि हम इसे लड़ाई के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए यूज़ करें। हम इसे बिजली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजली का जो खर्चा है वो कम हो सकता है। इस पर भी काफ़ी विकल्प किए गए और यहाँ पर हमारे यहाँ राजस्थान में एक जगह इसी शक्ति का यूज़ करके बिजली बनाया जा रहा है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: भूरा राम बोल रहा है सर।
0: भूरा राम जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: आपको रक्षाबंधन का और सब बंधुमन भाइयों को, सबको मेरी तरफ से सुरेश भाई, भूरेलाल जी, सुभाष भाई, सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम। और अच्छा भजन सुनाया था, सुबह सुबह सुन रहा था, अच्छा एकदम राम जी का भजन सुनाया।
0: जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बुरा राम जी, थैंक यू।

0: राम राम।
1: क्या बात है, जग में सुंदर है दो नाम, बोलो श्याम या राम। आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने बातें की आपसे और आपसे एक सवाल पूछा था, क्योंकि अब वक्त धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है, तो मुझे भी समाचारों की तरफ आपको लेके चलना है। समाचार भी डाउनलोड हो रहे हैं और आप सभी को मैं ले चलूँगा समाचारों की तरफ, लेकिन उसके पहले जवाब आपको, जैसे कि हमने पूछा था जो सवाल, उसी का जवाब आपके लिए बताना चाहूँगा। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का जो कारण है वो मंगल ग्रह और बल का प्रतीक है। मंगल का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है, जो ऊर्जा, साहस और बल का कारक है। हनुमान जी भी असीम बल और पराक्रम के प्रतीक है, इसलिए मंगलवार को याद किया जाता है। विशेष प्रसंग की बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी ने माता सीता की खोज का शुभ समाचार दिया था और कई महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे किए थे। इसके साथ ही तीसरा एक विकल्प जो है, तीसरी एक बात यहाँ पर बताया जाता है, मंगल के दिन कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का प्रगट यानी जन्म भी मंगलवार के दिन ही हुआ था, ऐसी मान्यता। दूसरी बात जो हमने बताया था आपको, शनिवार को क्यों पूजा जाता है, इसका कारण क्या है, तो शनि ढैया और साढ़े सती का प्रभाव। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव का माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि की पीड़ा और दोष खत्म हो जाते हैं। और पौराणिक कहानियों में ये भी बताया गया है कि जब रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने लंका में जाकर शनिदेव को मुक्त कराया था। और तीसरा कारण ये भी है कि शनिदेव का वरदान, इस उपकार से प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा उसे शनिदेव के प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, दो कारण हमने बता दिया और आप सभी ने भी सही जवाब दिया है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए चलिए समाचारों की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको अभी।
2: दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है, ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं गुड मॉर्निंग आबू में शनिवार को। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति

0: शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919-88 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाहर से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
5: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
6: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों, @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है।
8: अभी बजे हैं सुबह के 9, एक मिनट का समय स्वयं को दे।

उसका भी आजमाई ले जो पछी अंताक्षरी में कराला धमाल आसियाना आयो ठाठ सूं आसियाना आयो रे श्रोताओ बड़ा ठाठ सूकाई जुड़ जाई जो जुड़ जाई जो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। सच ही कहा गया है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, परिवार मनुष्य जीवन की सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम इकाई होती है, जिसमें माता पिता के रूप में स्वयं वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में विराजमान रहता है। संस्कारों से परवरिश और परवरिश से परिवार का परिचय मिल जाता है। एक आदर्श परिवार के बिना एक आदर्श जीवन का निर्माण कदापि संभव ही नहीं। मानव जीवन के संस्कारों की प्रथम पाठशाला का नाम ही है परिवार। परस्पर प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा से ही मकान घर और घर परिवार बन जाता है। वर्तमान परिदृश्य में अथवा आज की सदी में हम इकट्ठे होकर न रह सके कोई बात नहीं, मगर कम से कम एक होकर तो जरूर रह सकते हैं। परिवार के साथ रहे, संस्कार के साथ रहे, मुसीबत में खड़ा जो साथ बन दीवार होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही जो मैं आपको सुनाना चाहूँ कि कैसे माता पिता हंसते हैं तो उस घर में भगवान बसते हैं, कैसे सिद्ध होता है। एक भाई है, ठीक है, माता पिता एक ही, बेटा और बहू, परिवार थोड़ा सा गरीब, गरीब परिवार है, लेकिन बेटा माता पिता का बहुत सेवा करता है, बहुत प्यार से माता पिता के समक्ष पेश आता है। माता पिता का आज्ञाकारी बेटा कह सकते हैं आप, जो वो कहते हाँ जी हाँ जी, कभी मना नहीं करते। ये बात बीवी को पसंद नहीं आती कि हर बात में क्या हाँ में हाँ मिलाना, हर बात में क्या, इतना माता पिता का केयर भला आज के समय में कौन करता है। लेकिन फिर भी वो सुना अनसुना कर देता है, लेकिन माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाता। माता पिता भी दिल से आशीर्वाद देते हैं, दिल से कहते हैं ऐसा बेटा सभी को मिले। और कहते ना कि भाई आजकल वो कलयुग का प्रभाव है, तो बीवी को ये बात पसंद नहीं आई, तो एक दिन थोड़ा झगड़ा कर लिया, झगड़ा करके मायके चली गई। उसने परवाह नहीं की,

भाई के गई हो तुम्हारी मर्जी, तुम जा रही हो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं। मैं जितना मान सम्मान अपने माता पिता को देता हूँ उतना ही मैं तुमको भी देता हूँ। फिर भी अगर आप जाना चाहती हो जाओ, और रहना चाहती हो ये आपका ही घर है, साफ कह दिया। तो उसको आश्चर्य हुआ कि अच्छा तो ये मुझे ही भेजना चाहता है, चल मैं चली जाऊँ तो पता चलेगा घर का काम कौन करेगा। चली गई बीवी माई के, लेकिन बेटे ने कभी माता पिता का बहू का एहसास ही नहीं होने दिया, सारा काम खुद पर ले लिया। बुजुर्ग माता पिता रो रहे थे कि समझा रहे थे बच्चे को कि मत तू झगड़ बहू से, और तो हमारी चिंता छोड़ दे, तो अपना ध्यान रख। लेकिन बेटा है कि मानता नहीं कि नहीं, मैं सभी को अपना अपना स्थान दे रहा हूँ, सभी को सम्मान दे रहा हूँ, किसी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं एक बीवी के लिए माता पिता को परेशान करूँ या छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो बीवी चली गई, लेकिन बेटा माता पिता की सेवा भी करता और कड़ी मेहनत भी करता। माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बेटा धीरे धीरे पनपने लगा, धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। क्योंकि पैसा होता है तो इंसान भी, वो कहते हैं ना, गरीब कितना भी संस्कारिक हो लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब पैसा आता जाता है और फिर देखते हैं कि अरे ये तो ऐसा बेटा है, सत्युगी बेटा जो इतना ध्यान रखता है, तो लोग तारीफ करने लगे, वाह भाई बेटा हो तो ऐसा। अपने बच्चों को एग्जाम्पल देने लगे कि देखो फलाने के बेटे को। बीवी चली गई, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ा, और माता पिता को इतना प्यार से रखते, तुम क्या सामने बोलते हो, ऐसे अपने बच्चों को समझाते उनका एग्जाम्पल दे करके। तो और उधर जो बीवी मायके गई तो भाई की शादी हो गई, भाई की शादी हुई तो वहाँ भाभी आ गई तो भाभी ननंद के बीच अनबन होने लगी, और इधर पतिदेव की इतनी तारीफ सुनने लगी, पता चलने लगा कि अरे घर में पैसा हो गया है, अपने आप लौट आई घर पर कि मुझे यहाँ नहीं रहना। एक दिन पियर में झगड़ा करके आ गई कि मुझे नहीं रहना है, और घर में आई तो कोई बात नहीं, सास ससुर और पति ने बहुत ही प्यार से उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से रहे। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। बस आप धैर्यता बनाए रखिए, अगर परिस्थिति विपरीत है तो अनुकूल हो जाएगी, लेकिन माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और सुन लेते हैं फिर से एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। मैं हूं गायक कलाकार राम शंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, देखिए हड्डी टूटने पर क्या करें। आप सोच रहे होंगे कि उषा दीदी के फ्रैक्चर क्या हुआ, अब ये भी घरेलू उपाय देने लगे। लेकिन देखिए, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है ना, और हम तो चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, किसी के भी साथ कोई भी ऐसा ना हो कि उनको इस दौर से गुजरना पड़े। लेकिन शरीर की व्याधियाँ हैं, परीक्षाएँ हैं, आ जाती है तो परेशान भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। तो अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि फ्रैक्चर होने पर आप को तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। डॉक्टर की जांच, एक्सरे, उचित प्लास्टर, जो भी डॉक्टर करते हैं आप वो करने दीजिए। हाँ, फिर डॉक्टर के इलाज के साथ आप शरीर को हड्डी जो भरने के लिए आप अच्छा पोषण ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम और प्रोटीन, दूध, दही, पनीर, रागी, तिल, दालें और चना जैसे खाद्य पदार्थ भोजन में आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा है कि विटामिन डी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिएगा। विटामिन डी की पूर्ति और उचित धूप शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरी बात है हरी सब्जियां और फल, संतुलित आहार लीजिए जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और पर्याप्त प्रोटीन शामिल हो। फिर देखिए, आप जैसे मीठे नीम के पत्ते हैं, जिसको कड़ी पत्ते भी कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। फिर ये जो सहजन की पत्तियां हैं वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें भी कैल्शियम फुल होता है। तो खास करके हड्डी जोड़ने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं और थोड़ा सा साथ ही साथ इन नुस्खों को भी आजमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, धूम्रपान और तंबाकू से दूरी रखनी है, यह हड्डी को भरने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, फ्रैक्चर वाले अंग पर अपने मन से मालिश, तेल, गरम सेक या कोई भी जड़ी बूटी न लगाए, खासकर जब तक डॉक्टर अनुमति न दे। प्लास्टर को सूखा रखे और डॉक्टर ने जितना वजन डालने या व्यायाम करने को कहा हो उतना ही करें। याद रखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हड्डी को जोड़ने का असली नुस्खा है सही इलाज, पौष्टिक आहार, पर्याप्त आराम, डॉक्टर की सलाह। तो अगर इस तरह हम चलते हैं तब तो स्वस्थ ही रहेंगे और हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए घरेलू उपाय, और अब क्या करने वाले हैं? आप सभी को पता है आज अंताक्षरी कार्यक्रम है, और अंताक्षरी में आज की थीम है रक्षाबंधन के गीत भाई बहन के, और ये तीज आ रही है तो बड़ी तीज के गीत, सावन के गीत और लोकगीत, ये सब शामिल है मिक्स, ठीक है। आपको जो पसंद आए सुनाइएगा, और प्रथम आने वाले को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा। हेलो
1: हाँ दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सरज भाई बोलता हूँ थाना से।
0: हाँ जी नमस्कार, रेडियो मधुबन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आप जुड़ गए हैं तो आपसे ही शुरुआत कर देते हैं।
1: चलो कोई बात नहीं, हम भी सुना दे, क्योंकि कल अच्छा त्योहार गया तो त्योहार से बड़े खाना मैं भी सुना दूँ दीदी। तो पहले तो मैं एक गाना मस्त सुना दूँ कि जो काल महाभारत के रामायण में जो हुआ था गाना, वही गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत
0: हाँ जी जरूर
1: पहले से कर देता हूँ कि

0: और दूसरे की मुझे नहीं आती, थोड़ी देर में भूल गया हूँ।
1: अच्छा तो, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपके द्वारा शुरुआत हो चुकी है, बहुत बहुत आभार आपका।
0: नमस्ते।
1: तो चलिए सुरेश भाई झोटाना से थे और आपके द्वारा आगाज हो चुकी है अंताक्षरी की। तो अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो आप अंताक्षरी कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा और पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। प्रथम आने वाले को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा। तो चलिए और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते। हेलो
2: हेलो, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं?
2: सगुना बहन बोल रहे।
1: अच्छा सगुना बहन, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे हैं, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही
1: है। जी जी जी बिल्कुल। तो आप भी सुना दीजिए गीत, बाकी परिवार में सब ठीक है?
2: हाँ ठीक है।
1: हाँ जी, तो आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सगुना बहन, बहुत बहुत आभार आपका।
1: गई नहीं थी ना दीदी, ये बार गई नहीं थी, मेरी माँ का जो पहला हमारे पहला त्योहार हो तो नहीं जाते हैं। हाँ तो अभी मैं गई नहीं थी, तो मेरे भाइयों को भी मैंने यही जाना भिजवा दिया था।
0: जी जी जी जी,
1: सभी सुखी है, परमात्मा की दुआ है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और सभी का देखिए रीति रिवाज अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, नहीं गए तो कोई बात नहीं, शुभ भावनाएं आपकी है ना उनके प्रति। हाँ जी, ओम शांति। तो ये थे सगुना बहन जोटाना से, सुरेश भाई जोटाना से, और आइए अब एक ब्रेक लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। आज की थीम तो बड़ी ही सरल है, भाई बहन का गीत रक्षाबंधन का जो कली गई है ना। और ऋषि पंचम तक हमारे भारतीय संस्कृति में देखे बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं जिनमें बहुत सारे लोग ऋषि पंचमी तक इस त्यौहार को मनाते हैं। तो भाई बहन का गीत, अभी तीज आ रही है सोमवार को, तो बड़ी तीज के गीत और लोकगीत आपको सुनाना है। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
0: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई, फिर से स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: जी जी जी, कितनी गेद है आज, हमारे मित्र कम जोड़ा है मेरे हिसाब से।
0: जी जी जी,
1: सुनो आ जाएंगे अभी।
0: जी जरूर आएंगे। हाँ जी,
1: मेरी बहना दीवानी है, मेरी बहना दीवानी है, और वो समझती है सबसे वो सयानी है, मेरी बहना दीवानी है। नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने भाई बहन का गीत सुना है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। अरे भाई, आज का दिन तो खास है, कली रक्षाबंधन गई है, अभी तो तीज आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। आठम के तो हम श्री कृष्ण जी के गीत बाद में रखेंगे भजन, अभी और शनिवार आएगा, लेकिन आज की थीम यही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है और तीज त्यौहार के भी बहुत सारे गीत हैं। देखिए, फिर मैं शुरू हो जाऊँगी तो आप दोष मत देना कि बस उषा दीदी किसी को चांस नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि आप जुड़े और आप अंताक्षरी में भाग लेवे। और आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी बहनों के कल फ़ोन आ रहे थे, अच्छा कौन सी थीम है, मैसेज भेज दिया फिर भी फ़ोन आ रहे थे कि कौन सी थीम रखी है दीदी, हम ज़रूर जुड़ेंगे, हमारी बहनें कहाँ गायब हो जाती है। पर ऐसे मत कहना कि हमारे फ़ोन ही नहीं लगते हैं, एक दो फ़ोन लगा करके घबराना नहीं। देखिए आज का दिन क्या है कि फ़ोन थोड़ा मुश्किल से लगता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, फ़ोन लगाते रहिए, ज़रूर लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक गीत सुना देते हैं। सावणिया

0: मोरिया, बहुत ही सुंदर गीत है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: आपको पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की भी।
1: जी दीदी, थैंक यू। और मैं हर्षिता बोल रही हूँ दीदी।
0: क्या बात है हर्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, बहुत समय के बाद आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा जी।
1: जी दीदी, आज ज्यादा गई तो आपको फोन कर दिया।
0: जी, बहुत अच्छा किया। और बाकी सब बढ़िया, घर में सब ठीक?
1: हाँ दीदी, बढ़िया सब कुछ।
0: अच्छा, तो आज देखते हैं, बाजी मारिएगा आज अंताक्षरी में।
1: आज थी मैं तो वो मैं गुजराती गाना नहीं गाती हूँ।
0: हाँ, गाइए गाइए, चलेगा।

0: क्या
1: और
0: बात
1: दीदी
0: है
1: मेरा
0: जी।
1: मैसेज विशाल भाई को देना,
0: ठीक है, जरूर
1: बहन उनकी याद करती है।
0: जी जी जरूर जरूर। ठीक है,
1: जी दीदी, थैंक
0: हाँ
1: यू।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ते रहिए। तो ये थे हर्षिदा जी, हमारे बहुत ही पुराने लिसनर है, रेडियो मधुबन परिवार के ही सदस्य है। लेकिन कहते हैं ना, परिवार में कभी कोई थोड़ा सा दूर चला जाता है तो फिर जल्दी जल्दी नहीं आ सकता, तो ऐसा ही हुआ आपके साथ। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से
0: हाँ जी
2: फोन कर रहे
0: नमस्कार
2: हैं।
0: फिरोज
2: आप
0: भाई, नमस्कार।
2: क्या बोलता हूँ,
0: हाँ जी,
2: अब मैं

0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत आभार सगुना बहन। तो ये थे सगुना बहन, बहुत ही सुंदर आपने भी प्रस्तुति दी है। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में आप गीत सुना सकते हैं, ठीक है। और लोकगीत है तो जो जिस स्टेट के है वहाँ की भाषा में आप अपना लोकगीत सुना सकते हैं। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई
1: जी। पहले तो हमारे अर्पिता बहन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत रक्षाबंधन के चंदन की शुभकामनाएं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं
0: जी।
1: तो हमारे मन में थोड़ा सा ख्याल था और उसका कॉल आ गया, हम सोच ही रहे थे इसके बारे में और फोन आ गया।
0: जी जी जी जी,
1: तो अच्छा हुआ, चलो आज
0: जी
1: बात हो गई
0: बिल्कुल।
1: और सुना दो गाना में
0: जी।

0: मासे ठंडा मामा से प्यारा मेरा मामा।
1: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। आज की थीम बड़ी अच्छी है, बहुत सारे गीतों की थीम आपको दे दी है, जैसे भाई बहन का गीत है, जैसे तीज त्यौहार का गीत है, लोकगीत है, तो और क्या चाहिए। इतनी सरल थीम है और कोई भी अक्सर हम नहीं दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा। जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी कोशिश करते रहे और जुड़ते रहे, हम तो यही चाहते हैं। और फिर हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में आप गीत सुना सकते हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार जी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूँ। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई,
2: गीत बोलता हूँ।
1: हाँ जी,
2: सावन सावन सावन जल बरसे सुंदर सर से, बादल बरसे अंबर से, सरोवर विरवर से, लता लहर से, नदिया पर से, सागर में दंपति दुख दर से, सहज समर से, लगत लहर

सॉरी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी है, छंद सुनाया आपने। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर छंद आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15, और यहीं पर एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर आपका तुरंत फ़ोन बज गया तब तो ठीक है, नहीं तो एक गीत सुनाने के बाद हम फिर से आपसे रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आमना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंताक्षरी कार्यक्रम चल रही है जिसकी थीम है भाई बहन का गीत, तीज त्योहारों का गीत और लोकगीत हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा और अंताक्षरी में भाग जरूर लीजिएगा। हेलो
1: दीदी नमस्कार।
0: क्या बात है भूरीलाल जी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: अभी आया हूँ मैं और आज यार रेडियो ऑन करते हुए आपकी आवाज ऐसी मधुर आई है, बात मत पूछो। आपने सारी बातें कह रहे हो, मैं सुन करके आनंद ले रहा हूँ।
0: अच्छा
1: तो
0: जी थैंक यू।
1: सुना दो।
0: अरे जरूर, अंताक्षरी चल रही है, सुनाइए आप। हाँ जी, थीम रखी है भाई बहन का गीत, लोक गीत और तीज त्योहारों के गीत, सावन
1: अच्छा,
0: के गीत
1: अच्छा।
0: हाँ जी
1: सावन के गीत भी है।
0: हाँ जी, सावन भादवा तो हरा भरा ही है।
1: वो बात सही है
0: जी।
1: उसका
0: जी तो अभी आप सुना दीजिए, क्या आ रहा है?
1: एक भजन सुना दो, वो कृष्ण भगवान का गाना सुना दो।
0: सुना दीजिए।
1: खेलो रे कन्हैया संग में हमारे, यशोदा के प्यारे नंदे के दुलारे। खेलो रे कन्हैया संग में हमारे। अब जुड़ गया हो तो जो सुना रहा हूँ मैं।
0: जी जी कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका, और जुड़ते रहिए आप अंताक्षरी में। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और आज की थीम भी बड़ी सुंदर है। इतने सारे गीतों के छूट और कोई भी अक्षर नहीं तो भाई अंताक्षरी कितनी सरल है, आप ही सोचिए। हेलो
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ जी,

0: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। तब तक हम दो लाइन सुना देते हैं। राखी का त्योहार है, भाई बहन का प्यार है, दिल की मारी दुआ है, वीरत है, जियो हजारों साल है, राखी का त्योहार है। राखी का त्योहार है, भाई बहन का प्यार है, दिल की मारी दुआ है, बेनड़ थे, जियो हजारों साल है, राखी का त्योहार है। बहुत ही सुंदर गीत है ये, लेकिन मैं आप सभी को सुना चुकी पहले, स्वरचित गीत है। हेलो
1: हेलो, भूरा राम बोल रहा हूँ।
0: भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
1: रक्षाबंधन की आपको हाथ जोड़ के राम राम, और मधुबन भाइयों को और सुरेश भाई, भूरे लाल कृपाल भाई और सबको हाथ जोड़ के ये रक्षाबंधन का राम राम
0: जी। आपको भी प्रणाम और बहुत बहुत आभार आपका।
1: और एकदम आप फोन पे बात होती है नहीं तो हम प्रेम का धागा आपसे बांधते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, और यही धागा महत्व रखता है जी।
1: आज तो पूरा परिवार आया, बच्चे आए, बच्चे आए सब, पूरा बात करने को भी इस टाइम इतने बच्चे कर रहे हैं रात से इधर ही।
0: अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। बच्चे लोग भी जुड़ना चाहे तो उनको भी जोड़ सकते हैं आप।
1: और अच्छा कोई गाना सुनाएंगे तो अच्छा है
0: जी। आप सुनाइए, आज अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है, लोक गीत आप सुना सकते हैं, राखी का गीत सुना सकते हैं, आप सावन महीने का सुना सकते हैं, तीज त्योहारों के गीत सुना अच्छा। सकते हैं।
1: तो ऐसा तो अभी मैं भी बहुत अभी घर में आया और बात सुन रहा था
0: जी।
1: सुना देता वो हिंदी में सुना देता, मारवाड़ी तो बहुत आसान, लेकिन वो मारवाड़ी में सुनाओ तो चलेंगे।
0: हाँ, अरे हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में सुनाइए, आप जो भी भाषा में आता हो सुनाइए।
1: अच्छा, तो हिंदी में सो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को भूल न जाना। इतना सा हिंदी में तो बोल देता हूँ।
0: बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, आप इसी तरह याद करके आप सुना सकते हैं, लोकगीत भी बहुत सारे हैं। ठीक है,
1: अच्छा अच्छा ओके।
0: हाँ जी, जो भी याद आए सुनाइएगा, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरा राम जी ओर से। तो आज हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, जुड़िएगा। जिनको बहुत समय हो गया है वो भी जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। देखिए, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे टूरिस्ट लोग भी माउंट आबू पर बहुत आते हैं, आबूराज, अब तो माउंट आबू का नाम आबूराज हो गया है, आबूराज में बहुत ही भ्रमण के लिए आते हैं। तो हमारे टूरिस्ट भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंताक्षरी कार्यक्रम में। तो देखते हैं और कौन जुड़ते हैं, क्या बात है, लोकगीत, भाई बहन के गीत, सावन के गीत, तीज त्योहारों के गीत बहुत सारे हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई
2: जी।

0: रातियों में चोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया जी।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलते हैं, जिताना थे।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
2: एक मैं सुना दूं गाना जो।
1: जी सुना दीजिए, सुना दीजिए।
2: सोना वाट केड़ी केसर गुड़रे मालनिया, लीलो छे रंग नो चोर रंगवा गुड़रे मालनिया। सोना वाट केड़ी केसर गुड़रे मालनिया।
1: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, बहुत ही सुंदर आपने गुजराती में गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, जो भी जुड़ना चाहे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात नहीं हो पा रही है, फिर से आप फोन कॉल्स लगाइएगा। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी जुड़ रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करते रहिए। हेलो,
3: हाँ जी जी नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन।
3: हाँ, एक गाना सुना रही।
1: हाँ जी

0: ओम शांति।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सगुणा बहन जोटाना से, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। आज की थीम बड़ी सरल है और प्रथम आने वालों को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारना होगा। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, नमस्ते, ओम शांति।
1: नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: बस दीदी अच्छे हैं, और अंताक्षरी का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और हम भी सुन रहे कि चलो हम भी थोड़ा सा भाग ले।
1: अरे थोड़ा क्यों, पूरा ही लीजिएगा आप, पूरा ही भाग लीजिए।
2: जी जी दीदी, और मैं एक बहुत अच्छा गीत सुनाता हूँ, गुजराती है, रक्षाबंधन पर।
1: जी
2: राम।

0: जी जी जी
1: बहुत सुंदर
0: जी जी जी और अगली बार मैं अगर कॉल करूँ तो मैं एक छोटी सी बात, जो कहानी तो नहीं, छोटी सी बात है, बहुत अच्छी भाई बहन पर, तो मैं बता सकता हूँ?
1: अभी बता दीजिए, अभी भी बता सकते हैं।
0: डबल हो जाएगा।
1: कोई बात नहीं, आप सुनाइए।
0: तो दीदी ऐसा कि भाई बहन थे तो उनमें क्या बहुत गहरा रिश्ता था, तो वचन लिया कि भाई मेरे हाथों से आपको जरूर राखी हर जन्म तक बांधूंगी। तो उस बहन का कोई हादसा हुआ तो चल बसी, तो उसके बाद उनके माता पिता भी बहुत अच्छे लोग थे तो ऑर्गन डोनेट कर दिए और उनका रिया नाम था। और अभी हुई भी कहानी, ये कोई पुरानी भी नहीं ये कहानी है, तो वो हाथ किसी और बहन के साथ, वो भी मुस्लिम थी, तो उनके साथ हाथ लगाया गया, तो जैसे ही पता चला तो वो ही हाथ से जो वचन लिया हुआ था वही हाथ से मुस्लिम होते हुए भी राखी बांधने आई। तो ये बहुत मैंने कहानी सुनी, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली। तो कितना भाई बहन का जो प्यार रहता है और जन्मों जन्मों तक ये बात सच निकलती है दीदी।
1: अच्छा, इनका हाथ वो बहन के लगाया, ऐसा कह रहे हैं आप?
0: जी जी जी, आवाज कट रही है।
1: अच्छा, आवाज कट रही है, आप सुनाई दे रही है?
0: हेलो,
1: आप सुनाई दे रही है? चलिए कोई बात नहीं, जो घटना आपने सुनाई है सुरेश भाई ने, तो कहते ना कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह अगर आपके पास भी कोई बात हो या कोई कुछ तो आप सुना सकते हैं, ठीक है? हेलो हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी फिरोज भाई, ओम शांति, सुना दीजिए आप भी।
2: एक क्षण बोलता हूँ।
1: हाँ जी।
2: तारा के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छायो हिरणे चढ़ो, रजभूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, गर्मागन आयो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, कवि गंध कहे सुन सा अकबर, कर्म छुपे नहीं, बबूत लगायो, एज कर्मे छुपे नहीं, बबूत लगायो। जी
1: जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई जी। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, हमारे श्रोता बंधु बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, और आप भी अगर सोच रहे हैं तो सोचने में समय मत गवाइएगा, जुड़ जाइएगा। रेडियो मधुबन आपका अपना परिवार है, इसलिए संकोच मत करिए, जुड़िएगा और अंताक्षरी में एंजॉय करिएगा। हेलो,
3: नमस्कार दीदी।
1: हाँ जी नमस्कार भूरीलाल जी, सुना दीजिए।
3: रंग रंगीली राखी बांधे भैया के, रंग रंगीली राखी बांधे भैया के, राखी है जागो का त्योहार, राखी है भाई बहन का त्योहार।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आभार भूरीलाल जी। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। आइए यहाँ पर फिर से एक अल्पविराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। चलिए जाते जाते हम फोन उठा देते। हेलो
4: दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते सगुना बहन।

0: अधीरे हळवे हा कोणी दिसल घोडला होती रे। ओम शांती
1: जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सगुना बहन, आभार आपका। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से, और अब सुनते एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: तड़कली। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। अंताक्षरी की थीम आज की है भाई बहन के गीत, लोकगीत, तीज त्योहार के गीत, सावन के गीत। तो इतने सारे गीतों की थीम है, तो फिर कहना ही क्या भाई, आज तो बिल्कुल ही फोन बिजी होना चाहिए। एक सेकंड मुझे समय नहीं मिलना चाहिए कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, किसका उठाऊँ किसका नहीं, ये स्थिति हो जानी चाहिए, है ना। और बहुत ही सरल थीम है, कोई कंपटीशन मतलब ऐसे नहीं कि आपको मैं कोई अक्षर दे रही हूँ या शब्द दे रही हूँ, बहुत ही सरल अंताक्षरी है। अगर हम इस सरल अंताक्षरी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ करेंगे। अरे ये रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है कि इसके माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा और अपने पसंद के गीत जरूर सुनाइएगा। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, सुरेश जय बोलता हूँ जसाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई जी, सुना दीजिएगा। हाँ जी,
1: जोड़े रे जोरा किया ते भाई गोरी कोनी वो, जोड़े रे जोरा जोड़े नहीं रे उरा दो पड़े जोड़े के रे जोड़े रे जोरा।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप अंताक्षर में भाग ले सकते हैं, अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार, दिल्ली पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा।
0: हाँ जी फिरोज भाई नमस्कार,
2: अभी लाइव है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
2: तो एक गीत बोलता हूँ, वो ये रिमाइंड करता हूँ कि वो।
0: हाँ जी
2: पहले गाया था वो,
0: जरूर।
2: घर में पधारो नंदलाला कन्हैया, ओ नंदलाला, घर में पधारो नंदलाला।

0: वन माँ मोरलियो टहू के वन राते वन माँ मोरलियो टहू के वासली वगाड़े नंदलाला कन्हैया ओ नंदलाला वासली वगाड़े नंदलाला कन्हैया ओ नंदलाला।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। आपने मोर की आवाज भी बहुत अच्छी निकाली जी, आपको तो बहुत सारी आवाजें आती है।
2: कल मेरे एक मित्र का फोन आया बड़ौदा से, बहन
1: जी
2: सुबह आपने रक्षाबंधन का बोला था, वो अभी बोलो मेरे को रिकॉर्ड कर रहे थे शाम को, ऐसा फोन आया था मेरा।
1: अच्छा, अरे वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, आपको बहुत सारे पंछी पक्षी पशुओं की आवाज़ निकालना आते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता बंधु हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है और रेडियो के माध्यम से हम उनके टैलेंट को सुनते रहते हैं। हेलो जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में सुरेश भाई। जी, अंताक्षरी कार्यक्रम आज की थीम है लोकगीत भाई।

0: जी, लेकिन कन्हैया के भजन उस समय रखेंगे ताकि सभी, क्या है कि जन्माष्टमी पर गाएंगे ना तो याद भी रहेगा सभी को।
1: तो भाई दूज के भैया भाई बहन के तो भी गाने शायद हो गए होंगे,
0: तो आप लोकगीत सुना दीजिए, तीज त्योहार के सुना दीजिए।
1: वो हो गया क्या चंदा रे?
0: हाँ हो गया
1: वो भी हो गया
0: जी।
1: जना में भाई जी का लाइफ तार वाला
0: जी, ये भी हो गया।
1: चलो ठीक है, ये हो गया क्या? सावन आया बादल का
0: है? नहीं नहीं हुआ शायद, सुनाइए आप।
1: सावन आया बादल छाई, बरसे के फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए।

0: जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे श्रोता बंधु उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे गीतों की प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। तो देखते हैं अब और कौन जुड़ते हैं। भाई अभी तक तो आपके पास बहुत समय है, 20 मिनट आपके पास है, इसलिए आप जुड़िएगा और अंताक्षर में भाग जरूर लीजिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई
1: जी, मैं योगी सुनाता हूँ दीदी।
0: हाँ जी,
1: चांद उग्यो चोख मघायल, चांद उग्यो चोख मा, चांद उग्यो चोख मघायल, चांद उग्यो चोख मा, तेरे रूड़ा हेरूड़ा, तेरे रूड़ा हेरा, अकुने मने जाऊरे बाल मिया, चांद उग्यो चोख मघायल, चांद उग्यो चोख मा। थोड़ी गड़बड़ हो गई है दीदी इसमें
0: जी, बहुत सुंदर है।
1: एक लाइन भूल गया था थोड़ा, नमस्ते दीदी
0: जी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आभार। तो फिर भी अच्छी कोशिश की है सुरेश भाई ने। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। सावन आयो रे साथीड़ा, आपी तीज मनावा रे, सावन आयो रे, अरे रे रे सावन आयो रे साथीड़ा, आपी तीज मनावा रे, चांद का दर्शन कर स्यारे, सावन आयो रे। बहुत सारे सावन के गीत है, तीज के गीत है और लोकगीत है, तो आप सुना सकते हैं। हेलो जी, जय श्री हरि सुरेश भाई।
1: तो सावन के भजन भी चलेंगे ना?
0: चलेगा, सावन पर भजन, लोकगीत, जो भी आप सुनाना चाहे।
1: सावन सब गाने चाहिए
0: जी,
1: आपके तो सावन सूखा गया है,
0: इसलिए हम चाहते कि भादव महीना है वो पूरा हरा भरा जाए।
1: तो इसीलिए इंद्र राजा को बुला देता हूँ।
0: ठीक है, बुला दीजिए।
1: ये हो गया क्या? बरस बरस इंद्र
0: नहीं हुआ,
1: इंद्र राजा को बुला देता हूँ।
0: ठीक है।
1: बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस

0: थैंक यू बहना
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर गीत है ये। बरस बरस मारा इंदर राजा थे, बरस्या मारो काज सरे, रेडियो मधुबन पर एड़ो बरस जे श्रोताओ टुकार करे। ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा गीत है। तो देखते हैं आप कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो,

0: चलिए, फोन किसी का कट जाता है तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं. कहते हैं ना कि भाई ये साइंस के साधन है, तो कभी ऐसा भी हो जाता है. तो आप कोशिश करते रहिए, जुटते रहिए, और समय तो तीव्रता से आगे बढ़ ही रहा है. हेलो.
1: हाँ दीदी, कब से ट्राई कर रही हूँ, नहीं लग रहा था, अभी लग
0: अच्छा,
1: गया.
0: चलिए आखिरकार लग गया. जी
1: सेवा रंग
0: अच्छा, ये
1: गयो
0: हो गया सगुना
1: गुजरात
0: बहन, ये हो गया. आप
1: रे,
0: तुरंत ही दूसरा
1: हो
0: सुना
1: गया.
0: दीजिए. हाँ जी.
1: हाँ तो फूलों का तारों का सबका कहना है.

0: ये भी हो
1: शांति।
0: गया, ये भी हो गया।
1: ठीक
0: तुरंत आप फिर से दूसरा सुना दीजिए, आप लोकगीत भी सुना सकते हैं।

0: पकड़ती पटोड़ा मोंगलावट्यो।
1: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सगुना बहन। तो ये थे सगुना बहन झोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और थीम बहुत ही सुंदर है, क्या बात है, ठंडे ठंडे क्यों हो गए। हेलो, हाँ जी, जय श्री हरि।
2: आ गई सावन की रम जोड़े झूला झूले रे बनवारी।
1: ग्यारस की रम झोल, ग्यारस की रम जोड़े
2: रे सावन की रम जोड़े झूला झूला।
1: आहा, झूला झूले रे बनवारी, आ गई ग्यारस की रम झोल। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर हमने गीत सुना है, झलझुलनी एकादशी का ये गीत था। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। देखिए आपके पास समय तो कम है, लेकिन फिर भी आप जुड़ सकते हैं, अभी आपके पास थोड़ा सा है समय। फिर समय तो तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप ये मत कहिएगा कि अब अंताक्षरी कितनी बाकी है, हम तो जुड़ना चाहते थे, ये मत कहिएगा, ठीक है। हेलो,
3: हाँ जी, नमस्ते, सुरेश भाई बोलता है बुटाना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
3: एक राजस्थानी गाथा मैंने सुना दो लोकगीत।
1: हाँ जी जरूर।
2: मने लागे लागे प्यारो मारवाड़, मने लागे।

0: माने लागे प्यारो मारवाड़,
1: लागे लागे प्यारो मारवाड़, ओ रंगीलो मारवाड़, ओ रंगीलो मारवाड़, मने लागे लागे
0: प्यारो मारवाड़। जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और आइए यहाँ पर अब फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम अंतिम चरण पर है। जो भी जुड़ना चाहते हैं, स्वागत है आप सभी का। जुड़ करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाइएगा। आज की थीम बहुत ही सुंदर है। लोकगीत, भाई बहन के गीत, सावन के गीत, सभी मिक्स है। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ मेहताना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
1: लोकगीत सुनाता हूँ।
0: हाँ जी।
1: तो कागड़िया लखी लखी था कि कानूरा तारा मन महान सी। तो कागड़िया लखी लखी था कि कानूरा तारा मन महान सी। आवा सिया राना चार छा महीना आया मारा काल जड़ा ठरी ठरी जा रे छमिला तारा मन महान। तो आगड़िया लकी लकी साकी कानूरा तारा मन महान सी।
0: जी बहुत सुंदर। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, बहुत ही सुंदर गीत की प्रस्तुति की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं। आपके पास 7 मिनट है, 7 मिनट में जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम अंतिम चरण पर है। हेलो,
2: हेलो गुरु नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार भूरीलाल जी।
2: तो गाना सुनाऊं?
0: हाँ जी बिल्कुल। जी
2: सावन की चले गड़ी, सावन के चले बोचार, सावन की चले बोचार, सावन की चले बोचार, झूला झूले मैया बोले के तन।
0: अच्छा,
2: झूला झूले बोले के तन,
0: ठीक है।
2: यह मैं अपना साथ आने के बाद नहीं आ रहा हूँ, मैं इतने इसका जुड़ करके आपका टाइम पूरा कर रहा हूँ।
0: अच्छा। जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। अब देखते हैं आपके पास 4 मिनट है, जो भी जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। वो कहते हैं ना कि भाई समय बीत जाएगा उसके बाद आप जुड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। समय रहते कहते हैं ना, समय पर कार्य करे वही अच्छी बात है, नहीं तो फिर टू लेट हो जाते हैं। तो समय के अनुसार ही आप जुड़िएगा। हेलो,
3: हाँ जी दीदी नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते सगुना बहन।
3: हाँ
0: सुना दीजिए।

0: बढ़िया, बहुत
1: ओम
0: सुंदर।
1: शांति।
0: ओम शांति जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सगुना बेन झोटाना से। अब आपके पास 3 मिनट है, देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। और बहुत ही सुंदर थीम है, तो जाते जाते भी आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। हेलो,
1: माता जी जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
1: दिल आई आई सावनी हर लोड़ी।

0: सहेल्या तोड़े तोड़े रंग रंग रा फूल ते सहेल्या तोड़े तोड़े रंग रंग रा फूल केलम तोड़े हे दारम तारो
1: जी। बहुत सुंदर, आपके गीत से हमें भी एक गीत याद आ गया जो हम सुनाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और यहाँ पर हमें भी एक गीत याद आ गया है, आई आई।

0: ମାନେ ଜୟପୁରୀ ଏଥେଲେ ଚାଲୋ। बहुत सुंदर गीत है ये भी, लोक गीत है। हेलो,
1: हाँ सगुना बहन,
0: हाँ जी सगुना बहन नमस्ते।
1: एक गाना सुना,
0: हाँ जी।

0: जी ओम शांति, बहुत बहुत आभार। अब आपके पास एक मिनट है, जो भी लास्ट में जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं, मैं 10 तक बोलती हूँ, तब तक आप जुड़ सकते हैं। 1, 2, 3, चलिए 3 पर जुड़ गए हैं। हेलो, हाँ जी सुना दीजिए।
1: मेरे भैया को राखी बंधन को ना भुलाना, मेरे भैया को राखी बंधन को ना भुलाना, धन्यवाद।
0: क्या बात है, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी जी, चलिए आभार आपका। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। अब कोई फोन नहीं करेंगे, हमने पहले कह दिया कि बस ये लास्ट गीत है और समय भी हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला है आज का, सुंदर सा विचार भी आप सभी ने सुना, नुस्खे भी सुने, तो अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। अंताक्षरी में आज हमारा संकल्प पूरा हुआ, हमारा संकल्प चल रहा था कि चलिए हमारे जो श्रोता बंधु प्रथम आने वाले हैं ये इतने पॉइंट तक ही रुक जाए तो अच्छा है, ज़्यादा का नंबर आ जाएगा, तो आज ऐसा ही हुआ। तो मैं प्रथम आने वालों का नाम बाद में सुनाऊँगी। बाकी हर्षिदा जी जुड़े हैं, एक बार प्रस्तुति दी है आपने, कंचन भाई मंडाली से जुड़े आप भी एक बार जुड़े हैं, भूरीलाल जी मानपुर से आपने 4 बार प्रस्तुतियाँ दी है, भूरा राम जी ओर से आप एक बार जुड़े हैं, फिर सुरेश भाई धानेराव से आप भी एक बार जुड़े हैं, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने 5 बार प्रस्तुतियाँ दी है, और आज के विनर है सुरेश भाई जोटाना से, सगुना बहन जोटाना से, फिरोज भाई पालनपुर से, आप सभी 9-9 बार जुड़े हैं। तो आज आप तीनों ही प्रथम आए हैं, तो आप तीनों के लिए ढेर सारी तालियां। फिर आप सभी जुड़े इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। इतने समय से अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन 3 जने एक साथ में प्रथम आए ये आज पहली बार हुआ है, तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, और हमारे जो भी श्रोता बंधु अंताक्षरी में जुड़े सभी को भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये जुड़ना, ये पार्टिसिपेट, ये प्रथम आना द्वितीय आना, ये तो एक खाली हम जुड़ने के लिए करते हैं कि चलो जुड़े, और एक खुशी होती है कि चलो हमने जुड़ करके पार्टिसिपेट किया और प्रथम आए द्वितीय आए। ठीक है, द्वितीय तो निकालते नहीं, बहुत ही सरल अंताक्षरी है, इसलिए तो एक खुशी होती है। बाकी आप सभी कहते ना कि भाई रेडियो मधुबन ऐसा है कि आपके बिना अधूरा है, इसलिए आप सभी जुड़ते हैं तो हमें हार्दिक खुशी होती है, तो इसीलिए आप जुड़ते रहिए और गुनगुनाते रहिए, जो भी प्रश्न जवाब करते हैं आप जवाब देते रहिए, और हम भी आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए हम भी साथ देते हैं गीतों का अंताक्षरी में, कि आपको ऐसा ना लगे कि हम गा रहे दीदी कुछ अलग पर्सनालिटी है, नहीं, हम भी आपकी तरह ही है, इसलिए हम भी जुड़ जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आज का मीठा मोती है, संसार अनेक प्रकार के फूलों रूपी मनुष्य का बगीचा है, हर एक की खुशबू एक दूसरे से अलग है।

अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, सोमवार को फिर मिलेंगे आशियाना कार्यक्रम में। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, आज शनिवार की सुप्रभातम, कैसे हैं? और भाई, कल रक्षाबंधन रहा, सभी मनाए होंगे। हम भी अपने सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं, दुआएं देते हैं उनके प्रति। परमात्मा जी से दुआ करते हैं कि हमारे भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कुशल मंगल रहे। अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आप सबका स्वागत करते हुए दिल से मन का रथ और आत्मा की ध्वनि। महाभारत काल की बात है, कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला रहा। चारों ओर शंखनाद हो रहा था, युद्धों की रथ सज चुके थे और सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रहे थे। उसी समय पांडवों की सेना में एक युवा योद्धा था, सत्यकेतु। हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: हमारे को हमने बात सुना थोड़ा।
1: हाँ,
2: अच्छा, आज मौका मिला है आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आपको
1: भी बहुत जी।
2: हाँ, और आपकी आवाज़ सुन करके हमारे को आनंद आ रहा है।
1: हाँ,
2: आनंद के साथ में हम आपको याद करते हैं।
1: हाँ,
2: भगवान श्री कृष्ण ने भी बहन के साथ में सारा बात करी थी।
1: हाँ,
2: सारी कथा सुनाई थी कृष्ण भगवान और अपने पिता के साथ में रहे हुए सारी संवाद बताए सुनाए है सुने है और सुन करके भी हमने भी आनंद लिया है। आपके बात को सुन करके और ज्यादा आनंद लेंगे, आनंद के साथ में खुशियाँ बनाएंगे
1: जी।
2: धन्यवाद आपको।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो हम आपको बता रहे थे महाभारत समय की बात कि सभी अपने अपने शस्त्र संभाल रहे थे। उसी समय पांडवों की सेना में एक युवा योद्धा था, सत्यकेतु। वो वीर था, धनुष चलाने में निपुण था, लेकिन उनके मन में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। युद्ध भूमि में जाए से पहले वो अपना रथ से उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सारथी उसके पास आया और बोला, वीर, आज तुम्हारा शरीर युद्ध के लिए तैयार है, फिर तुम्हारा मन इतना विचलित काहे है? सत्यकेतु बोला, मेरा मन मुझे कभी भय की ओर दौड़ाता है, कभी क्रोध की ओर। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा, यदि मृत्यु सामने आ गई तो? सारथी मुस्कराया और बोला, यही मन की प्रकृति है। मन धावक है, वो एक पल में भूतकाल से भविष्य तक दौड़ सकता है, लेकिन क्यों का तुमने कभी अपने भीतर उठने वाली उस शांत आवाज़ को सुना है जो तुम्हें सही और गलत का अंतर बताती है? सत्यकेतु ने पूछा, वो कौन सी आवाज है? सारथी ने कहा, वो तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है। मन तुम्हें अनेक दिशाओं में खींचेगा, लेकिन आत्मा तुम्हें तुम्हारे धर्म की ओर बुलाएगी। फिर उसने सत्यकेतु के रथ की ओर संकेत करते हुए कहा, इस शरीर तुम्हारा रथ है। यदि रथ मजबूत है लेकिन सारथी दिशाहीन है तो रथ भटक जाएगा। यदि मन शक्तिशाली है लेकिन आत्मा की आवाज नहीं सुनता तो मनुष्य अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। सत्यकेतु कुछ देर शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, भय को देखा, क्रोध को देखा और अपनी इच्छाओं को भी देखा। फिर उसने अपने भीतर से एक शांत आवाज सुनी, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य पर है, परिणाम पर नहीं। उसने आंखें खोली, अब उसके चेहरे पर भय नहीं था। वो रथ पर चढ़ा और बोला, आज मैं जीतने के लिए नहीं अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करूँगा। सारथी मुस्कराया। युद्ध समाप्त होने के बाद का भया? युद्ध समाप्त होने के बाद सत्यकेतु ने समझा कि सबसे कठिन युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलता है। मन हमें दौड़ाता है, आत्मा हमें दिशा देती है और शरीर उस दिशा में चलने का माध्यम बनता है। तो देखिए भाई, शिक्षा ये है, याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया, और जिसने मन, आत्मा और शरीर में संतुलन बना लिया उसके लिए कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आज इंसान न मन की सुनता है न आत्मा की सुनता है, वो तो बस दौड़े जाता है, ठहरता ही नहीं, तो आवाज़ सुनेगा कैसे? न मन की न आत्मा की आवश्यकता है। शांति में बैठकर अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, ऊ का कह रहा है, और वो जो कहेगा ना वो कभी गलत नहीं होगा। हमारी बात गांठ से बांध के रख लीजिए, काहे कि हमारे पास प्रश्न होते हैं, हमारे पास उत्तर होते हैं। ईर्ष्या की नहीं आशा की दीपक जगाओ। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो मन है जो अभाव में भी कृपा देख सके। जब हम दूसरे की कमियों के बजाय उसकी विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं तब रिश्ते मधुर और जीवन शांत बन जाता है। मुश्किलें आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत पहचानने आती है। दुआ हमेशा कुछ पाने के लिए ही मत करो, कभी जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहने भी बैठो। दिव्य ऊर्जा ही अर्थ और उद्देश्य से भरा जीवन देने की शक्ति रखती है। इसे प्राप्त करने का मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। और भाई, कल सारे जहां की दौलत एक तरफ और कलाई पर बंदी बहन का ये प्यार एक तरफ, भाई बहन के अटूट विश्वास, असीम स्नेह एवं समर्पण के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एक महान जीवन का अनुभव करने के लिए हर दिन कुछ महान सीखें, महान परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य रखें। कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा किया हुआ कर्म सामने आएगा। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हमेशा सोच समझ कर बोलो। आप पहले बोल देते हो, फिर समझते हो कि गलती हो गई, फिर सोचते रहते हो कि क्यों बोला। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही सोचो तो बोल कभी गलत नहीं निकलेंगे। मुश्किलें सबके रास्ते में आती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रुक जाता है और कोई रास्ता बना लेता है। जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पकाकर खाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। आप सब समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है, जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है। जब पैसा नहीं होता तो नींद में जगाना पड़ता है, जब पैसा आ जाता है तो नींद ही गोलियां देकर सुलाना पड़ता है। बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ गए हैं। बाकी आगे की बात काहे हम कहेंगे भाई। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा की संपूर्ण मदद आपके साथ है। अरे के साथ चलिए गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनिएगा ये गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: एक माँ की महानता। पति पत्नी दोनों डॉक्टर रहे। बाहर से उनका जीवन सुखी और सम्मानित दिखाई देता था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं न रहा। पत्नी ने आखिरकार पति से तलाक लेकर निर्णय किया और पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। फैसले से एक दिन पहले जज साहब ने दोनों को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों से अलग अलग बातचीत की। जज साहब ने पति को समझाकर पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन पत्नी अपने निर्णय पर अडिग रही। आखिरकार तलाक हो गया। कुछ समय बाद संयोग से जज साहब की मुलाकात उसी महिला डॉक्टर से अस्पताल में हुई। औपचारिक बातचीत के बाद डॉक्टर ने उन्हें अपने कक्ष में चाय के लिए बुलाया। चाय पीते हुए जज साहब ने कहा, डॉक्टर साहिबा, आज ना मैं जज हूँ ना आप वादी। आपका तलाक हो चुका है, लेकिन एक बात आज भी मेरी समझ में नहीं आई। आपके तलाक का वास्तविक कारण वो नहीं था जो मुकदमे में सामने आया। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आज उस सच्चाई को जानना चाहता हूँ। महिला डॉक्टर कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जज साहब, मैं उस व्यक्ति से मुक्त होना चाहती थी। उसके साथ कल कुछ भी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण उसकी नौकरी, उसका सम्मान और उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। जज साहब ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसे आपने अदालत से भी छिपा लिया? महिला डॉक्टर की आंखें नम हो गई। हम दोनों डॉक्टर हैं। मैं 4 महीने की गर्भवती थी। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा 9 महीने तक मेरे गर्भ में शांति, प्रेम और खुशी के वातावरण में पले, लेकिन मेरे पति और परिवार की जिद थी कि बच्चा लड़का ही होना चाहिए। वो भ्रूण का परीक्षण करवाना चाहते थे। डॉक्टर होने के कारण हमारे लिए ये आसान था, लेकिन मेरे लिए ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का अपमान था। वो कुछ देर रुकी और फिर बोली, मैंने ये बात अदालत में इसलिए नहीं कही क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें सजा हो सकती थी। वो अपने पेशे से में मेहनती और ईमानदार हैं। मैं उनकी गलती की सजा उनके पूरे भविष्य को नहीं देना चाहती थी। तलाक मेरे लिए अपने जीवन को बचाने का रास्ता था, बदला लेने का हथियार नहीं। जज साहब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, इतना सब सहने के बाद भी आपने उन्हें बचा लिया? वो व्यक्ति भविष्य में किसी दूसरी स्त्री के लिए भी परेशानी बन सकता है। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, जज साहब, भविष्य का निर्णय मैं नहीं कर सकती, मैं अपने वर्तमान को जरूर बचा सकती हूँ। आज मेरे गर्भ में एक जीवन पल रहा है, मेरा पूरा ध्यान उसी पर है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित वातावरण में जन्म ले। बाकी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब ईश्वर पर छोड़ दिया है। फिर वो मुस्कुराई और बोली, कहा गया है कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, इसलिए मैं अपने वर्तमान को सुंदर बनाने में लगी हूँ। मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए ये फैसला लिया है। तभी अस्पताल से ऑपरेशन का बुलावा आ गया। डॉक्टर ने जज साहब से क्षमा मांगी और ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। जज साहब काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। उनके मन में एक ही विचार था, जिस स्त्री को दुनिया तलाकशुदा कहेगी वो वास्तव में कितनी महान माँ है। ये उसकी कहानी जानने वाला ही समझ सकता है। कभी कभी किसी रिश्ते का अंत नफरत से नहीं बल्कि अपने और आने वाले बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए किया जाता है। किसी के निर्णय को जानने से पहले उसकी पूरी कहानी जरूर जानना चाहिए। आशा करते हैं आप भी बात की गहराई को समझ गए होंगे और समझ के ही कोई कदम उठाएंगे। चलिए एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। सुनिएगा मीठा सा गीतवा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: जब एक छोटी सी राखी ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करने के बाद लौट रहे थे। उही समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए, हेलो,
3: हाँ दीदी, नमस्ते।
2: नमस्ते, ओम शांति। कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ से।
2: अरे बाबा की दुआ से।
3: आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम घर का काम भी कर रहे हैं। देखो आपकी बातें सुन सुन के तो देखो हमको पॉजिटिव शक्ति मिलती है ऐसे।
2: अरे
3: अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना
2: जी,
3: तो शक्ति मिलती है, जैसे नेगेटिव सब चला जाता है।
2: वो ही तो चाहिए है ना अपने लाइफ में, वो ही तो चाहिए पॉजिटिव। तो घर भी सुखी रहता, हमारे संबंध भी सुखी रहते एक दूसरे के साथ। और कल रक्षाबंधन मनाया?
3: नहीं, हम तो नहीं मनाए, क्योंकि हमारी माँ जो गुजर रही थी, हमारी माँ को इस साल अभी हुआ नहीं दिवाली पे होगा।
2: अच्छा,
3: हमारे में क्या है, गुजराती में से पहला त्योहार है तो नहीं मनाते।
2: अच्छा अच्छा,
3: नहीं नहीं। लेकिन भाइयों को दुआ तो बाबा की प्रेरणा से दुआ भेजी है। बाबा सुखी रखे हमारे भाइयों को।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहनों की दुआएं तो हमेशा रहती है अपने भाई के लिए।
3: हमारे जैसे भाई हैं, ऐसे हम सभी भाइयों को मैं दिल से कहती हूँ कि बाबा उनको सदा सुखी रखे,
2: सुखी रखे।
3: पूरे विश्व की तमाम आत्माओं को परमात्मा सुखी रखे, ऐसी हम दुआ मांगते हैं।
2: सही।

0: कार्यक्रम देखा जैसे चालू होता है, हम तो पहले भी हमारी ईशा दीदी का कार्यक्रम जो आता है, आज शनिवार हमारी अंताक्षरी चल रही थी, हाँ उसमें भी हम जुड़े थे। देखो काम करते करते कार्यक्रम भी सुनते हैं,
1: हाथ से काम करें और कान से प्रोग्राम सुनते रहते हैं, दोनों हो जाता है।
0: अभी क्या करें, अभी इसमें भी जुड़ते हैं तो फिर ध्यान से जुड़ना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए या कुछ।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप जब भी फोन करती हैं तो, और ये सुन के कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही, सकारात्मकता आ रही, ये बहुत अच्छा।
0: अरे दीदी हम क्या बताएं, देखो सही में आप नहीं मानते होंगे कि देखो हम थोड़ी कोई, अभी संसार है देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, थोड़ा टेंशन आ जाता है, कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो
1: वो अलग बात है, लेकिन जनरली जब हम व्यवहार में आते उस समय पॉजिटिविटी रहना चाहिए।
0: हाँ लेकिन वो थोड़ा कठिन है, लेकिन हो तो जाता है।
1: हाँ
0: देखो हम खुद विचार हमारे नहीं बदलते, तो आप जैसे आके हमारे विचार बदल देते हैं।
1: हाँ वो भी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। अभ्यास करते करते करते करते ना कहते हैं कि जड़मती भी सुजान हो जाता है, जो पत्थर बुद्धि है वो भी।
0: देखो आते हैं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है उनका भी, रोज अच्छा कार्यक्रम में हमको नई नई रेसिपी सिखाते हैं। फिर अभी कोई तकलीफ होती है, शरीर को बीमारी होती तो उसकी दवाइयाँ भी बताते हैं हमको, घरेलू नुस्खे
1: जी।
0: और बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं वो लोग तो, वंदे मातरम और पूरा कार्यक्रम। रेडियो मधुबन का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जो हमें नहीं अच्छा लगता, पूरा
1: सभी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सभी का प्रयास यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी बातें बताएं जी।
0: हाँ हम तो देखो अभी घर में हम तो ऐसे दो जने और हमारा बाबा है, परिवार ज्यादा नहीं है, हमारा बाबा है और हम दो जन।
1: अच्छा।
0: तो सुबह में वो तो चले जाते, तो पूरा दिन में घर में अकेली रहती हूँ, तो मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं, उसको याद करती हूँ।
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा दिन जाता है हमारा।
1: बस ऐसे ही रहिए, बाबा को साथ रखिए, मैं और मेरा बाबा है ना। तो सदा ऐसे ही खुश रहेंगे। आपको रक्षाबंधन की कोटि कोटि बधाई।
0: आपको भी देखो मैं भूल गई बातों में, आपको भी और पूरे रेडियो मधुबन परिवार को भी
1: जी जी
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू, थैंक यू, ओम शांति। तो हम बता रहे थे द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करे के बाद लौट रहे थे, उही समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त बह लगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग भगवान की सेवा में दौड़ पड़े, लेकिन तभी द्रौपदी की नज़र श्री कृष्ण की घायल उंगली पर पड़ी। वो अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, सखी तुमने मेरे घाव पर ये कपड़ा बांधकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भैया इसमें उपकार कैसा, भाई की उंगली पर बहन पट्टी नहीं बांधेगी तो कौन बांधेगा। द्रौपदी के इन शब्दों ने श्री कृष्ण के हृदय को छू लिया। उन्होंने उसी क्षण ही मन अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लिया। समय बीतता गया। एक दिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया जाने लगा। कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर लाया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों से सहायता मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार उसने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण अब मेरी लाज आपके हाथ में है। द्रौपदी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी का वस्त्र इतना बढ़ता गया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र

0: समाप्त नहीं हुआ। द्रौपदी समझ गई कि ये उसके उस छोटे से कपड़े का प्रतिफल था जो उसने कभी श्री कृष्ण की घायल उंगली पर बांधा था। श्री कृष्ण ने उस दिन अपना भाई होने का धर्म निभाया। इसी घटना को रक्षाबंधन की भावना से जोड़कर देखा जाता है। ये पर्व केवल भाई की कलाई पर धागा बांधने का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का पर्व है। राखी का धागा हेलो
1: नहीं
0: राखी का धागा देखने में बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन उसमें भावनाओं की ऐसी शक्ति होती है जो भाई बहन के रिश्ते को जीवन भर मजबूत बनाए रखती है। कहते हैं राखी का धागा छोटा जरूर होता है, लेकिन उसमें बहन की दुआ और भाई की जिम्मेदारी बंधी होती है। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने बचपन हेलो
2: ओम शांति ओम शांति
0: गुड मॉर्निंग भैया, एकदम ठीक हूँ प्यारे भैया। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं
2: आपको और सभी हमारे दीदियों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हमारे बुरीलाल जी भाई आ गए, हमारी बहना भी आ गए, प्रोग्राम हम सुन रहे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है दीदी। और कल तो मन की बात है, कल आप आएंगे नहीं, मैं बोला चलो दीदी को रक्षाबंधन की बधाई भी दे देंगे, ओम शांति भी कर देंगे।
0: ओम शांति, थैंक यू भैया, थैंक यू,
2: शुक्रिया।
0: सदा खुश रहो, सुखी रहो, ओम शांति। तो आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने बचपन की यादें, अपना प्रेम, अपनी उम्मीदें और भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना भी बांध देती है। और भाई केवल उपहार देकर अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता, बल्कि ये संकल्प लेता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो अपनी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। यही रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ है। एक धागा जो रिश्तों को नहीं बांधता, बल्कि दो दिलों को जीवन भर के लिए जोड़ देता है। तो देखिए भाई, आप इसी रूप में रक्षाबंधन बांधिए, बांधे भी होंगे, और दिन दिन में यही बात रखिए कि सिर्फ एक धागा नहीं है, लेकिन वो तो प्रेम का प्रतीक है अपने भाई के प्रति। और सदा पहने तो दुआएं करती ही हैं कि हमारे भाई खुश रहें, और उनके प्रति दुआएं करती हैं। आशा करते हैं आपने भी इसी अर्थ में कल राखी मनाई होगी, और आपको एक बार पुनः राखी की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो। चलिए एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे बहन जी। कौन कौन गीत वसंत गीत सुना दीजिए। तो

ये धागा ऐसा बांधा जो बंधनों से मुक्त करने वाला है, ये डोर ऐसी पक्की जो माया कितना भी जोर लगाए तो डोर नहीं टूटेगी।

0: सबसे सस्ती राखी और सबसे अनमोल रिश्ता। रक्षाबंधन के दिन एक बहन ने अपने भाई को सिर्फ 20 रुपए की राखी भेजी थी, लेकिन उस राखी के पीछे छिपी उसकी पीड़ा जब भाई को समझ आई तो उसने जो फैसला किया उसने भी। हेलो
1: दादी जी, नमस्ते। सूरज भाई बोलता हूँ थाना से। कैसे हो दीदी?
0: नमस्ते, एकदम ठीक है। ओम शांति। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, दिल से दुआएं।
1: आपको भी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सभी बहनों अच्छी रहे, अच्छे मस्त रहे और खुश में रहे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। हमारे सभी आगे भाई बहन है और हमारे जो लिखना मिले कई सारी हमारे बहन है, तो सबको हमारे तरफ से नमस्ते दीदी
0: जी।
1: और अच्छा कार्यक्रम भी चल रहा है दीदी। आपने जो डॉक्टर से बात बताई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई। आज हर कोई ऐसा समझ ले तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, लेकिन आज दीदी ऐसा है कि आज जो कोई समझता है कि जो गर्भ में जब बेटी है तो बेटियों को नाश कर देते हैं
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए दीदी। पर चाहे वो डॉक्टर भी उसने अपना जो नियम कह दे रही और अच्छा एक सबको एक अच्छा बातें बताई दीदी। बहुत अच्छा लगा हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी बहनों को शुभकामनाएं आज के दिन की
0: जी। और आपकी सिस्टर आई
1: सुन रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपसे लास्ट में बात कर लूं।
0: हाँ। और आपकी सिस्टर है क्या, लौकिक सिस्टर?
1: हाँ, मेरे तो दीदी 5 बहने हैं, सभी बहने कल आके गई।
0: तो कल आके गई सभी?
1: हाँ, कल सभी बहने आई थी। एक बहन 2-3 दिन पहले आई थी, एक दिन एक
0: अच्छा
1: बहन, क्योंकि सबको जब मौका मिलता रहता
0: है। हाँ, घर के परिवार के वो देखते हुए। हाँ,
1: क्योंकि परिवार में होता है उसको भी सामने कोई आता जाता है, तो बहने आके गई और बेटियां भी आई हैं।
0: अच्छा,
1: बेटियां भी अभी घर में बस हरा भरा कर रहा है। बेटियां हैं, बेटे के जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी सभी आज हो रहा है।
0: अच्छा लग रहा होगा ना, घर भरा भरा।
1: हाँ, हरा भरा रहता है दीदी, इसीलिए तो जो कोई नहीं होता तो सुना सुना लगता है, लेकिन जब
0: आते हैं तो घर भरा भरा अच्छा लगता है। सही बात
1: है, अच्छा लगता है दीदी
0: जी जी।
1: नमस्ते,
0: ओम शांति भैया। तो भाई को समझ आई तो उसने जो फैसला लिया उसने पूरे परिवार को रिश्तों की असली कीमत समझा दी। सतारा के पास एक छोटे से गांव में पुराने घर की ओसरी पर मंदा चुपचाप बैठी थी। तन पर पुरानी और कई जगह से घिस चुकी साड़ी थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आँखों में सिर्फ एक उम्मीद, इस बार तो मेरा भाई मुझे नहीं भूलेगा ना। रक्षाबंधन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मंदा ने घर की पुरानी पेटी खोली और उसमें से 3 रेशमी राखियाँ निकाली, साथ में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और 20 रुपए की एक पुरानी नोट रखी। सब कुछ एक साधारण सफ़ेद लिफाफे में रखकर उसने बंद किया। लिफाफा बंद करते समय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरे भाई की कलाई पर मेरी राखी पहुंच जाए बस इतना ही काफ़ी है। उसे पता था कि उसके भाई के घर में अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास भाई को देने के लिए न महंगी घड़ी थी न महंगी मिठाई, उसके पास था तो सिर्फ प्यार से बंधा एक रेशमी धागा और 20 रुपए का आशीर्वाद। उधर पुणे में मंदा का बड़ा भाई माधव अपने बड़े से घर में रक्षाबंधन की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कई बड़े बड़े पार्सल रखे थे। नागपुर में रहने वाली बहन वंदना ने महंगी मिठाई और सुंदर घड़ी भेजी थी। कोल्हापुर में रहने वाली सविता ने सुंदर साड़ी और महंगी राखी भेजी थी। तभी माधव की पत्नी स्नेहा चाय लेकर आई और सहजता से बोली, माधव बाकी दोनों बहनों की कितनी सुंदर चीजें आई है, लेकिन मंदा ताई का हमेशा की तरह साधारण सा लिफाफा आया है, उसमें सिर्फ राखी और 20 रुपए हैं। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वो लिफाफा धीरे से हाथ में लिया, लिफाफे पर बहन की जानी पहचानी लिखावट देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति, नमस्कार, कैसे हैं भैया?
2: बस एकदम अच्छे हैं।
0: हाँ जी,
2: और सभी रेडियो मधुबन परिवार को जो कल रक्षाबंधन गया सबको ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मालिक इनकी सभी तमन्नाएं पूरी करे।
0: आपको भी
2: मालिक से मेरी प्रार्थना है
0: जी, आपको भी हम दिल से दुआएं देते हैं पूरे रेडियो मधुबन की तरफ से, सदा सुखी रहे, खुशी रहे।
2: बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने अभी।
0: जी जी जी,
2: ओम
0: शांति, ओम शांति। तो उन 20 रुपयों की कीमत बाकी सभी महंगी चीजों से कहीं ज्यादा थी। मंदा की शादी 10 साल पहले सांगली के पास एक परिवार में हुई थी। शुरुआत में उसका संसार ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसके ससुर के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। फिर संपत्ति को लेकर भाइयों में झगड़े हुए और मंदा के पति को घर छोड़ना पड़ा। इन सब परेशानियों के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। वो एक छोटी सी किराने की दुकान पर जो काम मिलता करने लगे, पर मंदा ने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे ओंकार को पढ़ाया, पड़ोसियों के घरों में काम किया, कभी खेतों में मजदूरी की तो कभी दूसरे के घर बर्तन साफ किए। लेकिन उसने अपने मायके वालों को अपनी परेशानी कभी नहीं बताई। उसे डर था मेरी वजह से मेरे भाई पर बोझ न पड़ जाए। माधव को ये सब पता चला था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से काम ही व्यस्तता के कारण वो भी अपनी बहन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया था। आज उन 20 रुपये की नोट ने उसे अपनी गलती का एहसास करा दिया। उसने स्नेह की ओर देखा, स्नेहा इस बार रक्षाबंधन हम यहाँ नहीं मनाएंगे। तो फिर माधव बोला, इस बार हम सब मंदा के घर जाएंगे और उसे बिना बताए जाएंगे। स्नेहा कुछ पल रुकी, लेकिन अचानक पहुँचेंगे तो वो हमारी खातिरदारी की चिंता करने लगेगी। माधव मुस्कराया, वो हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेगी, इस बार हम उसके लिए कुछ करेंगे। रक्षाबंधन की सुबह माधव, स्नेहा और उनका बेटा आर्थव सतारा के उस गांव में पहुंचे। घर के सामने पहुंचकर माधव कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मंदा आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी, तन पर वही पुरानी साड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। भाई को सामने देखते ही उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। दादा आप, उसकी आवाज़ में खुशी से ज़्यादा आश्चर्य था, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में उसके दरवाजे पर खड़ा था। माधव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हाँ बेड़ा, इस बार मुझे तेरे हाथ में राखी बंधवानी थी। माधव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, हाँ बेड़ा, इस बार मुझे तेरे हाथ से राखी बंधवानी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दादा, पहले बताया होता तो घर थोड़ा ठीक कर लिया होता। माधव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मुझे तेरा घर देखने नहीं बहना, तुझे देखने आना था। नेहा मंदा को बाजार ले गई, उसके लिए नई साड़ी खरीदी, ओंकार के लिए नए कपड़े लिए, घर के लिए महीने भर का राशन, दवाइयाँ, चादरें, पर्दे और ज़रूरी सामान खरीदा। मंदा बार बार कहती रही, भाभी इतना सब क्यों? स्नेहा हंसकर बोली, चुप रह, आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। कई वर्षों बाद उस घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। मंदा की आंखों में खुशी थी, लेकिन माधव ने एक बात नोटिस की, मंदा बार बार अपने सीने पर हाथ रखती और कुछ देर चुप हो जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं दादा, थोड़ी थकान है, वो मुस्करा दी। माधव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई,

0: बंदर ने राखी की थाली सजाई, उसने माधव के माथे पर कुमकुम लगाया और राखी उठाई। तभी माधव बोला, रुको जरा। बंदर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों? माधव मुस्कराया, तेरी दोनों बहनें अभी आई नहीं हैं। बंदर को कुछ समझ नहीं आया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला। सामने वंदना और सविता अपने परिवार के साथ खड़ी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दोनों बहनों से लिपट गई। कुछ दिन पहले माधव ने दोनों बहनों से कहा था, हम हर साल घूमने जाते हैं, इस बार कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोला था, इस बार हमारी चार धाम की यात्रा हमारी मंदा का घर होगा। दोनों बहनों ने उसी समय हाँ कर दी थी। उन्होंने तय किया था कि मंदा की आर्थिक मदद तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले उसे ये एहसास कराएंगे कि तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। उस रात सभी पास के होटल में खाना खाने गए। मंदा बहुत कम बोल रही थी, वो बस सबको देख रही थी, कभी भाई को, कभी बहनों को, कभी अपने बेटे को, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, वे आंसू थे इस एहसास के कि मेरे अपने आज भी मेरे अपने हैं। रात को सभी घर के आंगन में गद्दे बिछाकर सो गए। बचपन की पुरानी बातें निकल आई, सब हंस रहे थे। मंदा चुपचाप माधव के कंधे पर सिर रखकर लेटी थी। दादा, क्या आज बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा माधव, मेरा मायका वापस मिल गया। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मायका कभी ख़त्म नहीं होता, बस हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मंदा ने आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर संतोष था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक माधव को महसूस हुआ कि मंदा का हाथ बहुत ठंडा हो गया है। मंदा, उसने उसे हिलाया, मंदा उठना। कोई जवाब नहीं आया। सब घबरा कर उठ बैठे। दिया जलाया गया, लेकिन मंदा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत संतोष भरी मुस्कान थी। तभी सबको एहसास हुआ कि वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शायद उसे दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लोगों की, और शायद इसलिए वो उस दिन इंतज़ार करती रही। देखिए भाई, कितनी दुख की बात है ना, आज के ज़माने में क्या हो रहा है। यही चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिवार बहुत सयाने होते हैं जो अपने परिवार की एकता के बहुत मानते हैं। मंदा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत और संतोष भरी मुस्कान थी। तभी सबको एहसास हुआ कि वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शायद उसे दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लोगों की, और शायद इसलिए वो उस दिन तक इंतज़ार करती रही थी। जिस दिन उसके भाई की कलाई पर उसकी राखी बनने वाली थी, जिस दिन उसके आंगन में फिर से बहनों की हंसी गूंजने वाली थी, जिस दिन उसे एक बार फिर महसूस होना था, मेरा मायका आज भी मेरे साथ है। मंदा इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई। उसके आखिरी पलों में उसके अपने लोग उसके आसपास थे। उसके सिर पर भाई का हाथ था और उसके चेहरे पर संतोष था। कभी कभी महंगे भेंट वस्तुओं से ज़्यादा किसी इंसान का समय, उसका साथ और उसके चार शब्द अनमोल होते, मैं हूँ ना। इसलिए रिश्तों को सिर्फ त्योहारों पर याद मत कीजिए। किसी अपने से मिलने के लिए बहुत देर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी एक मुलाकात का इंतज़ार कर रहा हो और आपको इसकी खबर भी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, कहे कि कल आप मन की बात सुनेंगे और हम दादी जी से मिलेंगे। चलिए नमस्कार।
1: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: फूले।
1: राम राम रतन, राम राम कई मेरी है।
0: अरे राम राम जतन ना भाई, आओ देख मैं तो गीत गा रही हूँ मस्त। तुम्हें तो
1: हाँ मन ठाए, आज तू मस्त देखा रही है, जरिस तो गीत मस्त गावे रही है।
0: तो पहले तो आपा गावरी बातें कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हाँ।
1: खूब खूब अभिनंदन करा हाँ।
0: आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो अनि कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधुओं स्वागत है। देख भाई मने यो गीत अनि वास्ते याद आयो। आज मैं बैठी बैठी सोच रही ही कि आपने राजस्थान रा मायने लोकगीत कसा कसा है।
1: हाँ वे तो थू पूछिस मत, एक थी एक है, वे चालू भी है तो अपना पग अपने आप नाचवा चालू भी है।
0: हाँ और खास कणी कणी भाषा का गीत है कि पे
1: हाँ
0: ज्यादा बने उड़ा है। तो सबों पहले मने काजलियो याद आयो,
1: हाँ
0: तो काजलियो याद आयो तो काजल को गीत याद आ गयो, थाने
1: हाँ
0: काजलियो बना लू थाने काजलियो बना लू। और देख भाई काजलिया पे भी खूब गीत है, खूब अपने जतरा ढूंढा वतरा ही मिल जाए लोकगीत।
1: खूब है।
0: और पचे है कागा, कागा पे भी कतरा गीत बनावे। अपने कोई भी मेहमान आवा का वे मने याद आ गयो, दो लाइन सुना दू। उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे, उड़े उड़े रे मारा काला रे कागला,
1: कागला
0: कद मारा पीव जी घरे आवे, कद मारा पीव जी घरे आवे। तो कागला का ऊपर भी घना गीत बनोड़ा।
1: ले पसे गोरबंद गोरबंद
0: हाँ
1: कुन
0: जी
1: गावे,
0: लड़ली लुमा
1: लुमा झुमा रे, लड़ली लुमा झुमा रे, मारो गोरबंद नखरालो, ले जा मारो गोरबंद नखरालो।
0: तो गोरबंद पे भी कतरा गीत बने उड़ा है। मैं ये
1: हाँ
0: सब सुना आपने कतरो अच्छो लागे, मार तो हीरो हिलोरा खावे
1: मारे इलोरा खावे मजो आवे, ओपरा गीत होवला जर कतरो अच्छो लागे।
0: राजस्थानी लोकगीत रहे तो कई कहनी बात है, अपने आप ही पग थिरकवा लाग जावे के नाचो।
1: हाँ नाच लो, सही बात कह रही है तू।
0: और देखो अपने शादी ब्याह में भी बंदोलिया निकले करे तो एड़े गीत ज्यादा चाले।
1: हाँ एड़े गीत चाले,
0: हाँ
1: सही
0: अने
1: बात
0: एड़ा
1: कह,
0: गीत भी ज्यादा डांस करे भाईया।
1: सही बात कह रही है। नहीं तो नहीं कही तो डीजे वाला जाए चैन कही के वो गीत लगाओ
0: हाँ तो मैंने आज अपने राजस्थान की संस्कृति की याद आ गई, केड़ा केड़ा तो अपने गीत है, कसा कसा गेना घाटा है। हर समाज का पेरवेश अलग,
1: सही बात
0: हर
1: कह रही
0: समाज का
1: है।
0: गेना घाटा अलग, पर गीत सबका एक जड़ा।
1: एक जेड़ा, हाँ गीत तो एक जेड़ा माते नासीला, भले
0: हाँ
1: कोई भी वो।
0: सही है ना, ना मोटा आधुनिक या कम शिक्षित सब,
1: सब
0: और पूरा आनंद ले।
1: हाँ एक गीत वाजी तो हैंग वरना मार पड़े नासी
0: देख भाई आपा दो तीन गीत को नाम ले दो, काजलिया, कागा, गोरबंद, अभी मने याद आ रही हो कांगसियो।
1: हाँ कांगसियो
0: कांगसिया पे भी कतरा गीत बना रखा,
1: खूब गीत है।
0: ये भी गीत आपा का छोड़ा
1: हाँ
0: बोली दा।
1: बोली दो,
0: अब
1: सही बात है।
0: तू भी मारा साथ दीजे।
1: हाँ मु तो साथ दोस्त आरो, तू चालू भाई तो मन तो अपने आप गावनू पड़ी।
0: मारा
1: छेल
0: छेल
1: बबर्रा
0: बारा कांगस
1: कांगजियो पण हार्या ले गई रे, मारो छेल बबर

0: तो इसके पे भी घना गीत बने उड़ा है, पर मैंने ये दो लाइना याद आई तो मैं सुनाया कि देखो हर चीज पे गीत है।
1: वो तो है।
0: हाँ सर, तो हंसी पे भी गीत, मेन मेन बता रही हूँ आपने राजस्थान का लोक गीत कणी कणी पे बने उड़ा है, तो मैंने याद आ रही हूँ कि देखो कुर्जा,
1: कुर्जा
0: कुर्जा भी केड़ा मस्त मस्त है। तो चलो कुर्जा को मैं बोलू ना थारे बोल लो,
1: अच्छा
0: मैं कि कहीं दूसरा का द्वारा सुनाऊं, ठीक
1: अच्छा
0: है?
1: हाँ ठीक है।

0: वाह वाह वाह वाह,
1: का गीत मस्त गीत है।
0: और देख मारा लारे तू भी नाच रही है, नाच भी रहा, गीत को भी आनंद ले रहा।
2: अपना श्रोता बंधु तो यू होता भी मोने कदी मौको मलन में ही अनोर रहे हाथ है गीत गावो।
0: बिल्कुल, अरे आपा अटू गुनगुनावा, अपना श्रोता बंधु सुनता
2: सक भी गुनगुनावता
0: भाई। तो केड़ा केड़ा गीत बनियोड़ा है, अबे कोई विचार कर सके के भाई काजलियान कागान गोरबंदन कांगसियोन हिचकिन कुर्जान इंडोनी ने का छोड़नी
2: इंडोनी रुई गीत है

0: तो भाई देखो अबे इडोनी पे भी गीत आचा आचा बनोड़ा है। अबे यहाँ का
1: हाँ
0: मीनिंग तो कहीं है नहीं, बस एंजॉय करवा को है।
1: इंडोनी रू गीत है गोमो में तो इंडोनी मटको उपाड़वा आयो लेन जाए नन्नो गीत गायो है।
0: अरे मजाक का तौर पे आप कहीं भी बना सको।
1: हाँ पर घर गाना रे पूटे कोई ना कोई तो है इसे।
0: हाँ अरे और ये जो आपने परंपरा है वणी का अनुसार ही है। देखो भाई
1: हाँ
0: कागलो पहला का जमाना में आपने दादी नानी ये कई करता पहला के घड़िया ही एक फोन हा कर टेलीफोन कहीं नहीं हा
1: कोई नहीं तू
0: तार हान कहीं हा
1: कोई नहीं तू।
0: मेहमान आवा का वेता तो कागलो अपने घरों के छान पे बैठता है
1: हाँ
0: तो पचे कहता अरे आज तो अपना घरे मेहमान आई।
1: हाँ सही बात कह रही है। इचकी इचकी तो आवे जर के ओपन को याद करे रही हुए ओपरे।
0: इचकी आवे
1: हमें तो फोन पर करें पहला हिचकी आवती जर के मारे तो मारे माँ याद करे हावरे वेता तो के मारा पप्पा याद करे। तो ये सब पुरानी चीज हो
0: सही बात है। और आज भी हिचकी आवे तो आज भी अपनी मान्यता यही है।
1: ओपे तो करो ओपे तो अजय ही कौन
0: हाँ
1: नहीं कहता। तू मन याद करे जर मन हिचकी आवे मु तन याद करू जर हिचकी आवे।
0: तो असान हिचकी एक बार मैंने जोर जोर आ रही ही
1: हाँ
0: तो दादी सा कहे करे सात घूट पानी पी ले तारी हिचकी
1: इसकी
0: बंद हो
1: बंद हो
0: जाए।
1: जाए। हाँ
0: और मैं कह रहे दादी सा एड़ो कहीं नहीं होवे ये अंधविश्वास की बात है। अरे तू पीन तो देख और मैं
1: हाँ
0: पी दो हिचकी टप देन बंद
1: बंद
0: होगी।
1: वही तो अपे तो रोटी खाता खाता हिचकी आवे जर के ओ हिचकी आई है जो तो खूब तेज बने थने कोई याद करे रही है।
0: अरे जतन खानो खाता खाता उलझ जावा ने
1: हाँ
0: तो यूज के भाई अरे जोरदार कोई याद की जा।
1: मोरे यूज भी है मैं रोटी खाऊं कोई पाड़े बैठे हुए मम्मी या फिर बहन कोई भी ओ थन अतरू तेज कौन याद करे जो थन अतरी खाता खाता इसकी आई प्री है न थन टूपा आयो पौनी पीपरू
0: सही
1: ये
0: है।
1: करे।
0: और जो आपा हिचकी में सात घूट पानी की कह रहा तो यू कह सात घूट पानी पीवा हिचकी बंद हो जावे तो समझ लो खाने कोई याद की दो।
1: याद की दो सही बात
0: मैं क्यों
1: कह
0: और नहीं बंद हुई तो क्या बच्चे कोई याद नहीं की दो कई बीमारी है गैस बन गई वही।
1: गैस बन गई
0: तो
1: वही सही बात कह रही है।
0: सच्ची में बड़ा बुजुर्ग जो अपने अंदाजो लगाता है ना बिल्कुल सही हो।
1: सही बात कह
0: पहला
1: रही
0: की
1: है।
0: हर चीज ना आज आपा सोचा आज वो कहीं भी नहीं रहो पर आज आपा जो बढ़ती सकी बीमारियां ने देखा ना तो यूं लागे कि अपने जो बुजुर्ग है पुराना अपना जो दादी नानी वाकी मम्मी पर दादी पर नानी तो वे बिल्कुल सही चालता वन टाइम वे पढ़ाई नहीं ही
1: पढ़ाई नहीं है
0: पर केवे भणिया कोनी पर गुणिया कतरा हा
1: तो
0: नॉलेज कतरो हा।
1: नॉलेज ने हमें तो अपन सर्दी वे कोई वे ओपे दौड़न पहला तो कहता कड़ी बना दो
0: हाँ
1: रात्रो पियन हुए रही हो तो सही सर्दी
0: हाँ
1: सब सही वे फ्री।
0: और कड़ी में अदरक
1: हाँ
0: कूटन डाल दो ताकि
1: हाँ
0: खांसी तो छूमंतर ही हो जाए।
1: छूमंतर के गरम गरम उकली ओड़ी कड़ी पियो तो एकदम रड़ी ताव बीजो सर्दी जुकाम कटे जाई।
0: मैंने तो याद आवा दी दसा ही है मैं छोटी ही जदी मैंने ऐसा नहीं सर्दी खांसी वेगी और बुखार आ गयो। अबे नानी सा के कई को नहीं इन्हें एक कटोरी हो बढ़िया गर्मा गर्म कड़ी पिला दो उड़ान सुला दो बुखार ही उतर जाए सर्दी खांसी भी ठीक हो जाए।
1: ओ
0: और सचमुच में ठीक भी हो गयो
1: सही बात।
0: क्योंकि ननियाल गांव में तो आनी बात ने आपा नहीं मानता तो मैं नानी सा एडो कहीं नहीं होवे और एक कड़ी पीवा ठीक को नहीं होवे तो क्या थाने ठानी पड़े तो थारे माँ केवा जो कर ले
1: सही बात
0: और
1: है।
0: पी दो और ओढ़न सुला दी दे। और सच्चे में सुबह तो सर्दी खांसी बुखार सब गए।
1: सब ओपे तो सही बात कह रही है मुथन ने एक बात को बारू मनक तो हर बीमारी ने अतरू हाइपर लिए अतरू टेंशन में आवे। पहला रू मनक टेंशन लेतु ही नहीं तू अबे तो पेट दुखे तो के ओ मर पेट दुखियो ओ मन ताव आयुन पहला तो नॉर्मल हमें ताव या पेट दुखे मम्मी के का वो है ताव आयो है कड़ी पियन हु जो परा अपने आप रड़ी वही हो पेट दुखे अजमारी फाकी ले परी तो
0: हाँ
1: एकदम ठीक।
0: बिल्कुल जतन तो चाल भाई फाकी अजमा की भी ले वहां जीके भी पेट दुख रहे वहां से लेना ही पड़ी पर समय हो गए गीत सुना दा अच्छो
1: हाँ
0: और
1: चल
0: तू अजमो याद दिलाए तो अजमा पे भी अच्छा अच्छा गीत है।
1: हाँ अजमा अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: गीत है पर पहला ओपे एक ब्रेक लेन पासा
0: हाँ
1: मलवा आवे और
0: आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: सुनता रहो।
1: मुस्कुराता रहो।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है, आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ने कल सुना था कि सफलता की चाहत क्यों है, तो इस विषय पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आशा करूंगा आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद हम लोग आज जो विषय है हमारा वो है कि मैं ही सफलता हूँ। ये एक थोड़ा सा यूनिक विषय है जो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आशा करूंगा आपको कल और उसके पहले वाले एपिसोड्स भी अच्छे लग रहे हैं। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषय को लेकर बातें कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिर से राजेश जी उपस्थित हैं और वो मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने और आप अगर चिंतन करते हैं, मनन करना चाहते हैं, आप अगर टेंशन फ्री होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अब शांति प्रेम के साथ जीना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। राजेश जी हैं, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, मजे में। जी जी।
0: और मैं चाहूंगा कि आज जो आपने विषय चुना है मैं ही सफलता हूँ, ये विषय क्यों चुना और इसके पीछे का रीज़न क्या है, बताइए।
1: मैं ही सफलता हूँ
0: जी।
1: लोग तो सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये विषय मैं ही सफलता हूँ, इसको थोड़ा स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी।
1: मैं ही सफलता हूँ मतलब कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो सफल है।
0: हाँ।
1: और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मैं ही सफलता हूँ माना बिना किसी शर्त के, बिना किसी आधार के मैं जीवन में सफल हूँ। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सफलता जो है मेरा वो बर्थ राइट है। लेकिन इसको हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की,
0: बिल्कुल,
1: कि एक व्यक्ति जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता तो उदास हो जाता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया है उसी प्रोफेशन में अगर वो नहीं जाता तो सारी उम्र उसके मन में हमेशा ये रहता था, मैं तो ये बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो ये कर नहीं पाया। और बहुत सालों तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार कहते हैं कि टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, लेकिन जब तक वो टाइम उनको हील करता है वो उनके जीवन के वो क्षण, वो महत्वपूर्ण क्षण वो अपने खो देते हैं। क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अपने प्रोफेशन में आनंद नहीं आता, क्योंकि अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर जो उनका ड्रीम था दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं। तो हमने जाना पिछले प्रोफेशंस में कि एक्चुअली अगर वो इंजीनियर या अपने प्रोफेशन में चला जाता तो उसको क्या मिलता। अल्टीमेट उसको चाहिए खुशी, आनंद, प्यार, शांति, लेकिन ये दूसरे प्रोफेशंस में जाकर भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें यह था कि ये प्रोफेशन मिलेगा तो ही हमें

0: ये गुण मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये ऐसा क्यों नहीं है इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि मुझे याद है जब मैं विदेश में यूएस में पढ़ा रहा था, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहती हो। तो उसका एक बहुत अच्छा उत्तर था कि मैं जिंदगी में जो भी बनूं, वॉट एवर आई बिकम इन माई लाइफ, चाहे मैं फोटोग्राफर बनूं, चाहे मैं मॉल में मैनेजर बनूं, या मैं मॉल में काम करूं, या मैं कारपेंटर बनूं, जो भी मैं जिंदगी में बनूं, लेकिन मैं हमेशा जीवन में खुश रहना चाहती हूं। तो अल्टीमेट एम हमारा ये है, हम प्रोफेशन के पीछे ना दौड़ें, उसके कारण अपने जीवन को खराब ना करें, दुखी ना हो जाएं, सुसाइड की तरफ ना जाएं, दूसरों को देखकर उदास ना हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि आपने जो एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट का बताया आपने, कि मैं अपने जीवन में कुछ भी बनूं लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि स्वाभिमान है, एक आस्था है जहां पर हमें इस लक्ष्य को लेकर चलना है। क्योंकि हम लोग अगर किसी स्टेटस को लेकर चलते हैं तो वो तो टेम्प्रेरी रहता है, और उसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा है कि कुछ भी बनूं मैं, लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसको कह सकते हैं, स्वाभिमान की बात कह सकते हैं, ये आपके लिए स्वभाव कह सकते हैं, इस तरह का स्वभाव जो है आपको खुश रखेगा हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज हम लोग मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, राजेश जी भी हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके बताया। और इंडिया में फिलोसफिकली ये सारी बातें जो है बच्चों को, माता पिता हो या अपने दोस्त हो, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करे, तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बन जाती है हमारे साथ में। माता पिता सोचते हैं कि हाँ मेरा लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए, है ना, और दोस्त भी कहते हैं अरे तू स्पेशलाइजेशन कर लेना डॉक्टर के साथ साथ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जिसके वजह से, और फिर वो अचानक अगर वो कहीं सेट नहीं हो पाए तो उसको लगता है कि मैं अब मेरा जी के जीवन जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जो गलत धारणाओं की वजह से भी, गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से भी चीज़ें जो है हमसे मुश्किल कर देती हैं हमारा जीना। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इंडियन फिलॉसफी में और जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं, तो उनको कैसे आप बताएंगे कि जीवन में सफलता मैं ही हूँ।
0: इसका अपोजिट देखें, कि हमें खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, शांति ही चाहिए। हम जब कॉलेजेस में गए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट्स को गेम खिलाई एक, उनको बोला कि आप ये पेन पास करो अपने दोस्त को, पहले बोला खुशी से पास करो, फिर बोला गुस्से से पास करो। ऐसे चार स्टूडेंट्स को एक एक करके बोला पास करो, फिर बोला अभी शांति से पास करो, फिर बोला ईर्ष्या से पास करो। फिर उनसे सवाल पूछा कि आपको वैल्यूज अच्छी लगती हैं या एंटी वैल्यूज अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला हमें वैल्यूज अच्छी लगती हैं। तो उनको पूछा गया आपको ईर्ष्या, दुख, अशांति, क्रोध अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपको खुशी, शांति, आनंद, प्रेम ही क्यों अच्छा लगता है, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, अशांति, उदासी क्यों नहीं अच्छी लगती। तो उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। तो इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर ये है क्योंकि ये हमारे मानवीय मूल्य हैं और हम इन मानवीय मूल्यों के साथ ही पैदा हुए हैं। मानव मानव कहलाता है क्योंकि मानवीय मूल्यों के साथ उसका जन्म हुआ है, ये हमारा बर्थ राइट है। हमें कोई प्यार करना सिखाता नहीं, एक माँ नेचुरली अपने बच्चे को प्यार करती है। हमें ये चीज़ें नेचुरली अच्छी लगती हैं बिकॉज वी आर बॉर्न विद दीज वैल्यूज, हम इन मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सेल से बना होता है जिनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो पता लगता है कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं। लेकिन इन सेल्स को भी कौन बनाता है? इन सेल्स को कहते हैं एक विशेष तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे मिलकर के हमारे शरीर के सेलों को बनाते हैं। और हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन भोजन में भी हम क्या खाते हैं? आप गेहूं लेते हो, आप फल लेते हो ना, आप सब्जियां खाते हो, उनमें भी क्या होता? उनमें भी वही कंपोनेंट्स हैं जो आपके शरीर में हैं। और हर एक सेल में जितना प्रोटीन है उतना ही आपके भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, हर एक सेल में जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना ही आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो सारे दिन में जो हम भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं, तो 70% जो है वो वाटर होना चाहिए। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसी का हमारा शरीर बना हुआ होता है, बचपन से ही हमारा शरीर उसी का बना है, इसीलिए बाहर से हमें वो चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए। हम बाहर से मांगते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोफेशन के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों के व्यवहार से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम इन्हीं गुणों के साथ ही पैदा हुए हैं। ये मेरे निज गुण हैं, इनको हम कहते हैं हमारे अनादि अविनाशी गुण। दीज आर द इनेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन वैल्यूज के बिना हम मानव नहीं कहला सकते और मानव जिंदा नहीं रह सकता। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, माँ अपने बच्चे को रोज भोजन कराती है और बड़े प्यार से खिलाती। मान लीजिए किस दिन बच्चा स्कूल में लेट हो गया और लड़की लेट हो गई और माँ को शक हो गया इसने कुछ गलत काम किया होगा, तो बेटी तो रुक गई थी स्कूल में टीचर से बात करने, क्योंकि कल उसका एग्जाम था और टीचर से वो डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनसे समझना है, लेकिन वो लेट होगी। लेकिन माँ ने जाते ही गुस्सा कर दिया, खाना तो खिलाया, भोजन तो वही खिलाया, लेकिन आज गुस्से में खिलाया, तो पेट तो आपका भर गया लेकिन मन नहीं भरा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त भले हमें कुछ ना दें लेकिन प्यार तो दें, कम से कम प्यार से बात तो करें। जैसे कई बार हम अपने किसी दोस्त से धन मांगने जाते हैं तो कहते हैं भले वो धन नहीं देता लेकिन मेरी रिस्पेक्ट तो करता, इज्जत तो करता, मेरे से प्यार से बात तो करता। इसीलिए जब कोई गलती करता है तो कहते भले मेरे को समझाते लेकिन मेरे को प्यार से बताते ताकि मैं उसको परिवर्तन कर पाता। तो इन मानवीय मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उसको समझें कैसे, उसको अनुभव कैसे करें, रियलाइज कैसे करें। क्योंकि सफलता मेरा आधार है, क्योंकि सफलता माना ही प्यार, शांति, आनंद, प्रेम, लेकिन वो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, हमें वो रियलाइज क्यों नहीं होता? उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता, विधि नहीं पता, तरीका नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में हम अगले सेशन में, एपिसोड में आपसे ज़रूर बात करेंगे।
1: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या तरीका है, कैसे हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। आगे हम लोग ज़रूर बात करेंगे। आपके मन में एक छोटा सा सवाल ज़रूर होगा कि कैसे ये संभव है। बिल्कुल संभव है, बस उसके लिए जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया, सफलता मैं ही हूं, इस पर थोड़ा सा आप चिंतन करके देखिए। जो एग्जांपल राजेश जी ने दिया है उस पर बात करके देखिए, अपने आप से बात कीजिए। क्योंकि ये पूरा जो टॉक शो हमारा चलता है, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा, जिस प्रोग्राम का नाम ही हमने ऐसा रखा है, ताकि आप जो है सेल्फ एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचें, और जो हमारा मेन मकसद है हमारे जीवन में, खुशी, शांति, प्रेम, वो पाए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मंथन करके आपको बताया जा रहा है, और आपका भी चिंतन मंथन चले, यही हमारी शुभकामना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे राजेश जी?
0: मैसेज हमारा ये रहेगा कि दुनिया में बहुत तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। दो तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक वो होती हैं जिनको बोलते हैं मोनोटोनस पर्सनैलिटीज़। मोनो माना उनको एक ही चीज़ पसंद होती है, एक ही तरह का भोजन रोज खाएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या उनकी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, वो टेबल पर रोज़ उसी सीट पर जा करके बैठेंगे और इधर से उधर कोई भी चीज़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त परिवर्तन होते रहते हैं, उनको हर दिन कोई ना कोई वैरायटी चाहिए, अलग अलग जगह पे बैठेंगे, वैरायटी काम करेंगे। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जो बाय बर्थ होती हैं। लेकिन ये जो हमने कहा अनुभव
1: जी,
0: कि मैं ही खुशी हूँ, शांति हूँ, प्यार हूँ, कल हमने कहा था कि मैं खुशी का सितारा हूँ अपने को देखें, लेकिन कई हमारे जो दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं या हमारे जो चाहने वाले श्रोतागण हैं, शायद उनको कई बार मोनोटोनस लगे कि हर बार हमने क्या यही विचार रखना आता है। तो उनको हम और भी तीन चार विचार दे देते हैं आज कि जो आपको लगे रोज परिवर्तन कर लीजिए। जैसे रोज आप सब्जी नहीं खाते हैं, फल रोज अलग तरह से खाते हैं, रोज वही नहीं खाते, तो कईयों को तो पसंद होता है, कईयों को नहीं होता। तो उनको हम तीन विचार और देंगे, उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं खुशी का सितारा हूँ, पहले दिन ये ले लीजिए, या एक ही दिन में आप चारों टाइम, सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। मैं शांति का सितारा हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, मैं एक शक्तिशाली सितारा हूँ। ये आप लगातार चार दिन कर सकते हैं या जैसे आपको अच्छा लगे, सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो जब आप ये लगातार इस पर विचार करेंगे, ये संकल्प अपने आप को देंगे, ये थॉट्स अपने मन में जनरेट करेंगे स्वयं के स्वयं ही, तो आपको अपने अंदर ही इन गुणों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और सफलता मेरा अधिकार है, शायद ये भी आपको समझना धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आज का जो हमारा विषय था, खास मैं ही सफलता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी मित्रों के जहन में ये बात ज़रूर आ गई होंगी कि हमें कुछ भी करें लेकिन मेरे जीवन में खुशी हो, शांति हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। आप भले पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा करें पढ़ाई और अच्छा मार्क्स भी आप ले आए और अच्छे स्टेटस पे भी बने रहें, लेकिन साथ में अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, उस पर ज़रूर आप चिंतन करें कि मुझे जो है अपने जीवन में क्या चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, ये मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कैसे गए एग्जाम?
1: मेरे तो मस्त गए, तू बता।
0: मेरे भी बहुत मस्त गए, लेकिन एग्जाम पसंद है क्या?
1: बिल्कुल भी नहीं, पूरे साल की पढ़ाई एक ही दिन में करनी पड़ती है। तुम्हें पसंद है मिक्षा?
2: नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, पर एग्जाम के बिना बात ही नहीं बनती है।
1: क्या कर सकते हैं अब?
0: एग्जाम नहीं होंगे तो हम अगली क्लास में भी तो नहीं जा पाएंगे ना।
3: क्या बात हो रही है भाई, एग्जाम्स नहीं होंगे, अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगली क्लास में तो आप लोग आ गए हो ना?
0: हाँ, एग्जाम देकर ही तो आए हैं।
3: अच्छा, मतलब एग्जाम्स किसी को भी पसंद नहीं है यहाँ पे?
2: नहीं,
4: दीदी,
3: एक आवाज आई जिसको पसंद है। तो चलिए काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज एग्जाम्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, है ना?
2: हाँ।
3: है ना, कभी कभी जो चीजें नहीं पसंद है उनके बारे में भी तो बात कर सकते हैं ना।
2: हाँ।
3: तो आज हमारे साथ बच्चों की दुनिया में कौन कौन बच्चे हैं, जरा अपना नाम और क्लास तो बता दीजिए।
0: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8 में आ गई हूँ।
5: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5 में आ गई हूँ।
2: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7 में आ गई हूँ।
6: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6 में आ गया हूँ।
7: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6 में आ गई हूँ।
8: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: ये होता है ना कि हम नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं, लेकिन आदत तो पड़ी होती है पिछले क्लास की बोलने की, है ना?
2: हाँ।
3: तो बार बार रॉन्ग क्लास बोल देते हैं, है ना?
2: हाँ।
3: ऐसा होता है। तो हो, आप लोग को नई क्लास अच्छी लग रही है कि पुरानी क्लास की याद आ रही है?
0: पुरानी क्लास की याद आ रही है।
8: दीदी, अभी पुरानी की याद आ रही है, फिर जब नेक्स्ट क्लास में चल जाएंगे फिर इस क्लास की याद आएगी।
3: अच्छा, पुरानी की लेकिन क्यों याद आ रही है?
0: क्योंकि उसमें जो बच्चे थे उन्हें हम जानते थे, अब नए बच्चे आ जाएंगे।
3: अच्छा, पुराने वाले बच्चे नहीं है साथ में आपके?
0: है ना।
2: टीचर्स भी नहीं आ जाती है।
3: हाँ, टीचर्स तो बदल जाते हैं, ये बात तो है। अच्छा, तो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे आप लोग इससे पहले, तो एग्जाम्स अच्छे क्यों नहीं लगते, क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या लगता है?
0: इतना सारा पढ़ के जाना पड़ता है पूरे साल का, वो भी
3: और
8: प्रेशर आ जाता है सारा दिमाग पे, भी ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, वो भी याद करना है।
2: क्वेश्चन आंसर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर,
3: इतने बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं आंसर। ये बात तो है, बड़े बड़े तो होते हैं।
2: एक दिन में पूरे दिन की पढ़ाई कौन करता है?
8: हाथ थक जाता है एग्जाम्स लिखते लिखते भी।
2: हाँ, और उसमें भी दीदी दिमाग पकड़ के बैठ जाते हैं। कोई इसका क्या आंसर होगा? आंसर सही होगा दीदी, एग्जाम सेंटर से निकलते ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, पूरा दिमाग खराब होता है उसमें।
3: और
5: क्वेश्चंस भी बहुत भारी आते हैं। भी
3: क्वेश्चंस बहुत भारी आ जाते हैं।
8: हाँ। सारे सवाल ऐसे दिमाग के ऊपर घूम रहे होते हैं।
3: और राघव को क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है एग्जाम्स में आपको?
6: उसके बाद हम नई क्लास में जाते हैं।
3: और एग्जाम्स देते टाइम क्या अच्छा लगता है, डर नहीं लगता एग्जाम में, जैसे ये लोग बता रहे थे सब चीजों में?
6: बस अच्छी तरह पढ़ के जाना चाहिए और फिर डर नहीं लगता।
3: बिल्कुल नहीं लगता, ओके, चलो ये भी अच्छी बात है। तो मोस्टली सबको यहाँ एग्जाम पसंद नहीं है सिवाय एक के, है ना? अच्छा, लेकिन एग्जाम्स पसंद नहीं है या टेस्ट जो होते हैं बीच बीच में वो भी पसंद नहीं है?
8: दीदी, टेस्ट चलता है, एग्जाम ना हो,
3: टेस्ट ठीक है।
0: क्योंकि टेस्ट में कम क्वेश्चन आते हैं।
2: कम क्वेश्चन आते हैं तो क्लास के उसमें ही रहते हैं।
3: ओके,
2: अगर टेस्ट में बात बन जाती तो हम लोग आगे क्लास में भी चले जाते, पर एग्जाम भी होती है।
0: हमारी क्लास में तो टेस्ट के क्वेश्चन भी बता देते, इसलिए टेस्ट बहुत इजी जाते हैं,
3: पहले से बता देते।
0: हाँ, और इतने बड़े क्वेश्चन देते भी नहीं है कि प्रेशर आ जाए।
3: प्रेशर वाले क्वेश्चन नहीं देते और हेल्प कर देते होंगे कि आप ये इम्पोर्टेंट है ये पढ़ लो, है ना?
0: हाँ।
3: और उसको क्या लगता है, टेस्ट के बारे में क्या लगता है आपको, अच्छे हैं बुरे हैं, होते हैं नहीं होते हैं?
5: टेस्ट तो अच्छा है।
3: टेस्ट अच्छा है, क्यों अच्छा है?
5: क्योंकि उसमें कम क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल भी होते हैं।
3: हाँ, सिंपल होते हैं ना उसमें क्वेश्चंस। हाँ। राघव को क्या लग रहा है, टेस्ट अच्छे हैं कि बुरे हैं?
6: अच्छे हैं।
3: एग्जाम ज्यादा अच्छे कि टेस्ट ज्यादा अच्छे?
6: एग्जाम्स अच्छे हैं।
3: टेस्ट से ज्यादा एग्जाम्स अच्छे हैं, क्यों भाई?
6: एग्जाम में थोड़े कम इजी, मतलब थोड़े ज्यादा और थोड़े कम आते हैं, और टेस्ट में थोड़े बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं।
3: अच्छा, टेस्ट में मुश्किल आते हैं, एग्जाम में इजी आते हैं। ओके, ठीक है।
8: दीदी, अभी छोटी क्लास में है ना, इसलिए अभी इसको लग रहा है एग्जाम पसंद है, जब ये 9th-10th में आ जाएगा फिर बोलेगा मेरे को तो बिल्कुल एग्जाम्स पसंद नहीं है।
3: अच्छा, आप लोग जब छोटी क्लास में थे तो एग्जाम्स अच्छे लगते थे?
0: हाँ, तब अच्छे तो हमें लगते भी अच्छे लगते थे।
3: अच्छा।
0: हाँ।
3: क्यों अच्छे लगते थे तब?
0: इसी की तरह क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते थे और इजी होते थे।
8: एक लाइन का क्वेश्चन होता था और एक ही लाइन का आंसर होता था। अब एक लाइन का क्वेश्चन होता है और 10-15 लाइन का आंसर होता है।
6: दीदी, मेरे 2 पेज के आंसर होते हैं फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं एग्जाम।
2: एग्जाम इसीलिए अच्छे लगते थे, क्वेश्चन होता था और एक लाइन का आंसर होता था।
3: ओके, तो अगर क्वेश्चंस आपके छोटे होने लगे तो एग्जाम्स अच्छे लगेंगे, आंसर छोटा लिखना पड़े तो.
1: हाँ फिर ठीक है,
3: फिर ठीक है. ओके तो इतने लंबे लंबे चीजें आपको याद करने में मुश्किल होता है कि लिखने में मुश्किल होता है?
2: दोनों ही.
1: लिखने में होता है, याद तो हो जाते हैं,
2: याद करने में लगता
1: है कि हाँ बहुत देर हो रही है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है. 3 घंटे लगते हैं दीदी पूरे एग्जाम लिखने में, वो भी कम लगते हैं कि हाँ टाइम ना चला जाए.
2: 3 घंटे नहीं देते, वो आधे घंटे एक्स्ट्रा दे देते हैं, नहीं 2.5 घंटे का होता है पेपर.
6: टाइम देते हैं और ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं.
3: टाइम कम देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं.
6: लर्न करने में टाइम नहीं लगता, बस लिखने में ज्यादा टाइम लगता है.
5: और दीदी कुछ कुछ स्कूलों को तो आधा घंटा और मिलता है, हम लोगों को तो आधा घंटा नहीं मिलता. जितना टाइम होता है उतना ही, बाकी मैं पेपर ले लेते.
3: 3 घंटे का होता है ना एग्जाम?
2: नहीं दीदी 2.5 घंटे का होता है.
3: 2.5 घंटे का एग्जाम होता है?
5: नहीं हमारे 3 घंटे
6: का होता है.
3: 1.5 घंटे का? अच्छा आपका, आप छोटी क्लास में हो इसलिए.
2: बस दीदी मैं 2.5 घंटा देते हैं.
5: अलग है ना.
3: कितने मार्क्स का होता है 1.5 घंटे का एग्जाम? तो अगर 3 घंटे का होता है, ढाई घंटे का जो एग्जाम होता है वो, मतलब 3 घंटे का जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है.
5: हाँ 2.5 घंटे का जो होता है वो 20 मार्क्स का पेपर होता है.
3: 20 मार्क्स का 2.5 घंटे?
5: ढाई घंटे नहीं, उससे भी कम.
1: हमारा 3 घंटे का होता है 80
2: मतलब
1: का होता
2: है. हाँ दीदी हमारे भी
6: 20 मार्क्स के, उसके साथ एक और 50 मार्क्स का भी दे देते हैं.
3: नहीं तो आप जो 2.5 घंटे का पेपर बोल रहे हो अमीक्षा,
5: उसके साथ 50 मार्क्स का पेपर भी आता है.
3: 50 मार्क्स का तो होता होगा ना कम से कम.
2: और जो हमारे 2.5 घंटे देते हैं उसमें हमारे पूरा 80 नंबर का पेपर होता है.
3: अच्छा
0: दीदी हमारे तो 2.5 घंटे के पेपर में 70 मार्क्स होते हैं.
3: ओके तो सबके अलग अलग है, किसी के 70 किसी के 80 है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होते हैं साथ में. है ना,
0: ओरल क्वेश्चंस भी होते हैं,
3: वाइवा भी होता है, ओरल क्वेश्चंस होते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो आप लोग को लगता है लंबा लिखना पड़ता है इसलिए तो टाइम लगता है.
5: हाँ दीदी हमारे तो 1 ही घंटे का होता है.
3: 1 ही घंटे का होता है. ओके
1: दीदी अभी छोटी क्लास है ना इसलिए.
3: बड़े हो जाएंगे तो फिर और लंबे लंबे एग्जाम्स होने लगेंगे है ना.
5: एक पेपर में 1 घंटा देते
3: हैं. अच्छा तो किसी को क्या टेंशन भी होती है एग्जाम्स में कि मतलब बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा लगता है या फिर नहीं होता है कुछ भी?
0: थोड़ा सा ही स्ट्रेस.
1: दीदी इतना स्ट्रेस होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे. अब बड़ी क्लासेस होगी ना तो अब बाहर से क्वेश्चन आएंगे तो फिर अब थोड़ा वो टेंशन होती है, पहले नहीं होती थी.
3: ओके मतलब अभी आप 10th में आए हो तो इसलिए लग रहा है आपको ऐसा?
1: हाँ जी.
3: ओके तो और क्या लगता है?
5: और ऐसा लगता है कि हमने लर्न किया है वही आए क्वेश्चन, अगर दूसरे आ जाते हैं तो फिर वो याद नहीं होते.
3: अच्छा ओके
2: और अगर दीदी एग्जाम्स में ऐसा हो जाए जो हम याद करी गए वो क्वेश्चन ना आए तो फिर हमारा और हो जाता है
1: दीदी,
2: दिमाग घूम जाता है.
1: याद करके जाए ना और फिर भी याद ना आए तो बहुत प्रेशर पड़ता है कि पढ़ा तो था बस एक लाइन याद नहीं आ रही.
3: हाँ, ये
1: जो मेन वर्ड होता है वही याद नहीं आता
0: और वही भूली हुई चीज फिर एग्जाम देने के बाद याद आ जाती है.
2: हाँ इसका आंसर तो ये था.
3: फिर बड़ा बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है.
0: हाँ.
1: 3 घंटा सोचते रहे फिर बाद में
3: याद आया अचानक से.
2: पर दीदी कोई कोई एग्जाम शीट लेके पता है उसे 10-15 मिनट तो निहारता है. देखो ये एग्जाम है
6: तो
2: इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये.
3: रीडिंग टाइम होता है. ओके ठीक है.
2: हमें नहीं देते रीडिंग टाइम.
3: किसी स्कूल में कुछ होता है,
5: हमारे बेल बजने तक हम लोगों को देते हैं, वो लोग फिर घंटी बजाते हैं.
3: ओके तो आपको मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि वो जो हमने पढ़ा है वही आ जाए और हम कुछ भूल ना जाए बस. ओके
6: जो थे उनको करवा देते और हमको नहीं करवाते, फिर बाद में हमको बोलते हैं तुम्हारी गलती थी, तुम मेरे से आके पूछ लेते.
3: अच्छा मतलब आपको पढ़ाए नहीं गए होते हैं वो सवाल,
6: वो दूसरे सेक्शन को पढ़ाए होते हैं.
3: अच्छा दूसरे सेक्शन को पढ़ाए होते हैं.
5: और दीदी जब पढ़ने जाते हैं तो टीचर्स बोलती क्लास में पढ़ाया था
3: तो आपको दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं पता होते. कई बार होता है ऐसा, कभी कभी क्वेश्चंस हमको नहीं पता चलते एग्जाम में. और बाकी सबको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती ना?
0: नहीं मेरे साथ भी हुई थी एक बार. हमारी क्लास तो एक ही है, सेक्शन एक ही है, लेकिन बच्चे अलग अलग क्लास में बैठे थे ना जब एग्जाम्स में, तब मैम ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था जो बताया नहीं था और उस वाली क्लास में बता दिया था, फिर हमको नहीं बताया.
2: हाँ मेरे साथ भी हुआ था एक बार.
3: ओके
2: पिछले साल है ना एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमारी बुक में भी नहीं था, नोटबुक में भी नहीं. फिर मैम दूसरी क्लास में आके उनको बता के गए, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो उनको आंसर बता दिया और हमको नहीं वापिस नहीं बताया.
3: ओके इसलिए भी एग्जाम अच्छे नहीं लगते. ओके अच्छा अगर मान लो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा लिखने के दिक्कत ना हो, हमें फास्ट लिखने लगे तो एग्जाम्स अच्छे लगने लगेंगे.
2: हाँ
3: तो मतलब बस बहुत लिखना पड़ता है, मेन प्रॉब्लम ये है.
2: हाँ.
3: याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है?
8: नहीं
2: नहीं.
3: पढ़ाई सारी कर ले तो सारा सिलेबस एक बार में?
2: पर दीदी एक दिन में सारा पूरे साल का पढ़ना पड़ता है.
8: अगर पहले रिवीजन कर रखी होती है ना तो फिर जल्दी
5: तब कोई डिफिकल्टी नहीं होती, जल्दी से हो जाता है. और अगर एक ही दिन में पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हमने पहले पढ़ा ही नहीं होता कुछ भी.
3: तो एक दिन में तो पूरे साल की पढ़ाई संभव ही नहीं है, पॉसिबल है क्या?
8: नहीं.
3: अच्छा लास्ट मोमेंट कौन कौन तैयारी करता है, सच्ची सच्ची बताओ. सब लोग जो एग्जाम टाइम पे आके पढ़ते हैं पहले से नहीं पढ़ते, कौन कौन करता है ऐसा? ऐसा करते हैं जब एग्जाम की छुट्टियां मिलती हैं तब पढ़ते हो और पहले से रिवाइज नहीं करते?
0: नहीं, मेरा ऐसा है कि जब मैम पढ़ाती है ना तब मुझे आधी चीजें तो तभी याद रह जाती है, बस एक बार रिवीजन कर लेती हूँ फिर एग्जाम देने चले जाती हूँ.
3: ओके, और अनुष्का क्या करती है?
5: हम तो छुट्टी मिलती है एग्जाम की तब पढ़ते हैं.
3: तब पढ़ते हो, उससे पहले नहीं रिवाइज करते?
5: नहीं.
3: ओके, और अमीक्षा?
7: मैं पहले ही रिवाइज करती हूँ.
3: पहले मतलब जब पढ़ाया जाता है तभी घर आके रिवाइज करते हो दोबारा से?
7: जो मतलब क्लास में पढ़ाते हैं ना रोज, मैं वो रोज आके रिवाइज करती हूँ.
3: ओके, और राघव?
6: मैं भी साथ साथ रिवाइज करता हूँ.
3: और
2: नहीं, मैं तो पहले से सिलेबस बना के रखती हूँ कि मैं इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी.
3: तो फिर वो मतलब वीकडेज में ही पढ़ते हो, जब आपके जब पढ़ाया जा रहा है तभी पढ़ते हो या फिर बाद के लिए बनाते हो?
2: एग्जाम्स के एक दो महीने पहले से सिलेबस बना के रखती हूँ मैं.
3: ओके, एग्जाम्स के एक दो महीने पहले से. और आप क्या करते हो शिवांशी?
8: चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वो पढ़ लेते हैं, बस जिस दिन छुट्टी होती है लगे कि हाँ आज पढ़ने का मूड भी है चलो आज चैप्टर पढ़ लेते हैं.
2: नहीं तो अगर नहीं होता तो बिना पढ़ी जाती है बहन एग्जाम देने.
8: चैप्टर्स पढ़ने से ही सब हो जाता है क्योंकि नोटबुक्स में से कुछ आता ही नहीं है.
3: ओके,
7: अगर दीदी हम लोग चैप्टर भी पढ़ लेना तो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर आराम से लिख सकते क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है.
2: अगर सारे क्वेश्चन आंसर आते गए चैप्टर में से ही तो आते हैं.
3: अगर कभी कभी पहले से पढ़े तो फिर आसान नहीं हो जाती एग्जाम टाइम में पढ़ाई?
7: दीदी आसान होती है ना,
3: है ना, थोड़ी तो आसान होती है पहले से.
0: हाँ, होती
8: दीदी
0: है.
8: होती है पर एंड मोमेंट तक ये लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, कहीं अगर मेरे को याद ना रहा तो ये क्या करूँगी वो क्या कर, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस इसी टेंशन में फिर वो हो जाता है,
3: थोड़ी टेंशन हो जाती.
0: ऐसा करते हैं ना हम कि पहले पढ़ते हैं तो कभी कभी बहुत सारी एग्जाम साथ में आ जाती है मैथ्स को लेके, तो उसमें ज्यादा प्रेशर बन जाता है फिर.
3: अच्छा प्रेशर बनता है तो क्या लगता है आपको, अगर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है स्ट्रेस जो आप लोग बोल रहे थे तो कुछ फील होता है आपको स्ट्रेस में?
0: हाँ, जल्दी जल्दी सारा सिलेबस खत्म कर दे ऐसा लगता है.
3: ऐसा लगता है ना. हाँ. और कुछ परेशानी तो नहीं होती किसी को?
2: नहीं दीदी, क्योंकि दीदी हम पहले से पढ़ के रखते हैं, एक दिन में बुक खोलो तो आराम से पढ़ते
7: हैं. दीदी मेरा क्लास में सबसे पहले पेपर खत्म होता है.
8: दीदी लास्ट डे पे जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ तो हम बुक्स के पास रहते हैं, बस हमारा दिमाग पूरी दुनिया में घूम रहा होता है, उधर क्या हो रहा होगा इधर क्या हो रहा होगा.
2: और ये सोचोगे नहीं जब हमारे सामने पेपर आता है ना तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती है, क्वेश्चन की जगह आंसर की जगह.
8: क्वेश्चन के अलावा गाने याद आते हैं, जोक याद आते हैं, बस आंसर्स नहीं आते.
3: उसी वक्त सब कुछ याद आ रहा होता है ना.
8: हाँ जी.
3: ये तो हो सकता है. तो फिर क्या करते हो जब गाने याद आ रहे होते हैं? तो
2: दीदी एक बार गलती से क्या हुआ, गाना याद आ रहा तो मैंने पेपर में गाना ही लिख दिया.
3: हाँ सच्ची में?
2: सच्ची में दीदी, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने उसका इरेज किया फिर.
3: अच्छा चलो मिटा तो दिया ना टाइम पे.
2: हाँ.
3: ओके,
2: अगर मैम उस टाइम चेकिंग पे आ रही थी, अगर मैम देखती ना मेरे को डांटती.
3: ये क्या लिख रहे हो?
2: हाँ.
8: ये मैम कहते क्यों, आंसर्स कहाँ है, गाने हैं ये तो.
2: वही ना.
0: अच्छा मैम जब आंसर शीट पढ़ेगी तब पढ़ेगी नहीं गाएगी.
3: गाना लिखा तो गाना पड़ेगा. अच्छा ये बताओ, अगर अगर आपको अपने से एक छोटी वाली क्लास को बोला जाए कि आपको उनको ये बताना है कि आप एग्जाम टाइम को इजी कैसे बना सकते हो, तो उनको क्या बोलोगे, क्या टिप्स दोगे उनको? आपसे एक छोटी वाली क्लास है, जैसे जिस क्लास को आप लोगों ने पास कर लिया है, अभी आपने जैसे टेंथ में आ गए हो, नाइन्थ पास कर लिए है ना, सिक्स्थ में आ गए हो, फिफ्थ क्लास पास कर लिए है, तो वो क्लास में जाके आपको बोला जाए कि इन बच्चों को बताओ, क्योंकि आप तो बड़े हो गए उससे, कि वो लोग अपने एग्जाम्स को ईजी कैसे बनाए या एग्जाम टाइम को अच्छा कैसे बनाए, तो उनको क्या टिप्स दोगे?
0: जब मैम चैप्टर पढ़ाए तब एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ना वही याद रखेंगे तभी वो एग्जाम से याद आ पाएगा.
3: ओके, और अनुष्का क्या बोल रही है? बोलो बोलो लाइन से, सब लोग बोलो. क्या टिप दोगे आप अपने क्लास जो आपने पास कर लिया वो बच्चों को एग्जाम आसान बनाने के लिए?
5: वो लर्न कर देंगे तो उनके लिए तो आसानी हो जाएगा.
3: ओके,
7: और उन लोगों को एक दिन पहले याद नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले
5: लर्न नहीं करना चाहिए. अगर मैम पढ़ा रही हो तो ध्यान से सुन के फिर घर पे आके उसको रिवाइज करना चाहिए. इससे हमारा इजी हो जाएगा लर्न.
3: ओके, और एग्जाम टाइम को फन और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है?
6: जब मैम पढ़ा रहे होते हैं तो हमको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं.
3: ओके, ठीक है. मैम पढ़ा रहे हैं तो उसी वक्त ध्यान देना चाहिए.
7: जब मैम पढ़ा रहे उस टाइम तो ध्यान देना ही चाहिए, पर आपको उससे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मेरे को ये इस बार ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है.
3: Okay.
7: मतलब पहले से ही मतलब पढ़ के रखनी चाहिए चैप्टर, तो जब मैम पढ़ाएगी तो उसको ध्यान से समझ सकते हैं.
3: अच्छा, उससे और पहले से पढ़ लेना चाहिए. ओके.
8: जब भी कोई ऐसा कोई मेन पॉइंट दिखे कि हाँ इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए. फिर एग्जाम टाइम पे इजी होगा कि पूरा चैप्टर एकदम नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेना चाहिए.
7: तो उसके बाद क्या होगा, जब एग्जाम होगी तो उससे एक दिन पहले पढ़ने में आपको ज्यादा लगेगा, तो फिर क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो.
3: ठीक है, तो पहले से तैयारी तो कर ही सकते हैं, ये बात तो आप सबने बोली. और एग्जाम टाइम पे उस दौरान क्या कर सकते हो कि उसमें थोड़ा लाइट फील करें हम, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? ऐसा मान लो एग्जाम शुरू हो गए आपके,
8: एक ही दिन में पूरा 3-4 घंटे लगातार ना पढ़े, बीच बीच में रेस्ट लें ताकि दिमाग भी शांति से बैठ के पढ़ाई कर सके.
3: Okay.
8: पूरी दुनिया ना घूमे.
3: ओके. पूरी दुनिया नहीं घूम के थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना है. ओके. और क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम को लाइट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए? आप लोग क्या करते हो जब बहुत स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम में, क्या करते हो?
8: जब कोई क्वेश्चन याद ना हो रहा हो तो उसको एक मतलब गाने के टाइप में बोल के लर्न करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए.
3: हाँ, ये किया जा सकता है, उसको गाने की तरह बोल के याद करो. गाने तो याद रहते हैं ना, है ना?
6: हाँ दीदी,
8: जितने क्वेश्चंस याद नहीं रहते उतने गाने
3: याद रहते हैं, तो गाने की तरह उसको याद कर सकते हैं.
7: जब गाने याद नहीं होते, हम गाने आते ही नहीं है ना, पेपर के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो दिमाग में.
3: ब्रेन भी उस समय परेशान करता है. और क्या,
7: कभी भी जोक ला देता है, बीच में चुटकुला ला देता है, कुछ भी
3: कुछ भी आ जाता.
7: सोचो कि पुरानी पुरानी बातें आ जाती
6: है. अगर अपन एग्जाम से एक दिन पहले अपन ने सब पढ़ लिया और अपन फ्री है तो हम कोई गाना सोच रहे हैं, ये वाला गाना मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, तो वो हमको आंसर्स की जगह एग्जाम में याद आएगा गाना.
3: ऐसा हो जाता है ना. आपको भी होता है ऐसा? नहीं होता राघव को? नहीं होता. और कैसे फन बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं एग्जाम टाइम को? कोई आइडिया है आप लोग के पास? क्या करते हो आप लोग एग्जाम टाइम में, कैसा डे का शेड्यूल रहता है आपका?
0: मैं तो पहले पढ़ती हूँ, फिर जैसे शिवांशी ने बताया फिर रेस्ट लेती हूँ. मैं तो खेलते खेलते भी एग्जाम्स के क्वेश्चन याद करती हूँ.
3: ओके. खेलते खेलते भी याद कर सकते हैं, ठीक है. और
7: दीदी, अगर मैं कभी कभी याद नहीं करती तो पता है मेरा दिमाग कैसे चलता है? सुबह उठ के याद करती हूँ, सुबह सुबह. और ये टीचर भी बोलती है हमारी, सुबह सुबह उठ के याद करो तो आपको जल्दी याद होता है. तो हाँ. मेरे को ऐसे ही याद होता है ज्यादा.
3: हाँ, ये कर सकते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, जल्दी उठने से जल्दी याद हो जाता है.
8: रात के 2 घंटे और सुबह का 1/2 घंटा बराबर होता है.
3: जी, कहा जाता है कि सुबह आपको जल्दी याद हो जाता है. किसी ने ट्राई करके देखा है सुबह उठ के पढ़ने?
7: हाँ, दीदी बहुत ट्राई किया. इस एग्जाम में मैंने यही किया था.
3: कितने बजे उठते हो?
7: दीदी सुबह 4.
3: ओके. आप लोग भी सुबह उठ के पढ़ते हो जल्दी?
6: हाँ जी.
3: सब लोग?
6: हाँ.
3: जबरदस्ती उठाया जाता है कि खुद उठ जाते?
7: नहीं, खुद उठते हैं.
8: दीदी एक बार तो मैं पढ़ने के लिए उठी थी, पढ़ने लगी ना तो ऐसा लगा लेट के पढ़ लेती हूँ, फिर लेट के पढ़ने लगी फिर सो गई, फिर स्कूल के टाइम पे उठी सीधा.
3: हाँ, ये होता है, अगर सोचो कि लेट के थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फिर नींद आ जाती है ना. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके बताया, थोड़ा सा ब्रेक लेना. और खेलते हो आप लोग एग्जाम टाइम पे या फिर खेलना बिल्कुल बंद रहता है?
8: नहीं थी, खेलते तो है
7: थोड़ा थोड़ा,
5: खेल खेल में दीदी लर्न करते हैं टीचर टीचर बन के.
3: हाँ, ये भी अच्छा आइडिया.
0: दीदी मैं तो अपनी पेंसिल वाली कठपुतली ले जाती
3: हूँ. ओके.
8: दीदी अगर एग्जाम में टाइम पास नहीं रहता है, छोटे छोटे पॉपिट्स होते हैं, उनको किट में रखती हूँ ताकि अगर थोड़ा माइंड को रेस्ट देना हो तो पॉप पॉप पॉप करके माइंड फ्रेश हो जाए.
3: ओके. तो आप लोग पॉपिट्स लेके जाते हैं छोटे छोटे?
6: हाँ.
3: ओके. ठीक है, बड़े क्रिएटिव आइडियाज हैं आप लोग के पास. तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा है, थोड़ा खेलना बीच में अच्छा है, और छोटे छोटे पॉपिट्स ले जा सकते हो ताकि एकदम से अगर टेंशन हो जाए, याद नहीं आ रहा तो उसकी तरफ ध्यान जाए और फिर उसके बाद वापस आप रिफ्रेश हो जाओ. ओके, वेरी नाइस.
8: बस टीचर के सामने वो नहीं निकालते, नहीं तो टीचर ले लेगी ना फिर.
3: फिर डांट पड़ेगी,
7: टीचर उल्टा सुनेगी, कल से कल अपने पापा को लेके आना, मम्मी को लेके आना, डांट पड़ती है फिर.
0: दीदी इसलिए तो मैं पेंसिल में घुसा के जाती हूँ, पेंसिल निकालती हूँ तो उनको, वो तो ऊपर से देखने आते, वाह पपेट वाली पेंसिल खुद बनाई है, कहाँ से लाई है.
3: हाँ, पपेट वाली पेंसिल लेके जाते हो आप.
0: हाँ.
3: आजकल पेंसिल भी बड़ी अच्छी अच्छी आती है ना, क्रिएटिव क्रिएटिव, और बना हाँ. भी तो सकते हैं घर पे अगर नहीं खरीद रहे तो.
0: हाँ.
3: है ना, बना भी सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ओके, तो

0: सारे तो आइडियाज दे दिए आपने, मुझे लगता है इतने आइडियाज के साथ तो फिर एग्जाम टाइम आपको कैसे
1: दीदी मैं
0: अच्छा
1: तो
0: नहीं लगेगा।
1: जब विनर लेके जाता हूँ मैं कभी कभी मैं शिवांशी की पॉकेट में डाल देता हूँ और जाते वक्त वैन में घुमाता हूँ।
0: अपनी पॉकेट में क्यों नहीं डालते हो?
1: ताकि मुझे डांटना पड़े,
0: ताकि शिवांशी को डांट पड़े।
1: नहीं सोचोगे नहीं, जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते
0: हाँ, फिर
1: वो बहुत सारे टॉयज लेके जाती है, इसीलिए मतलब वो अगर रखेगी तो मैम को शक तो नहीं जाएगा कि ये किसी और का है।
2: दीदी गर्ल्स के इतने चेक भी नहीं होते ना, इसलिए इसका एडवांटेज उठा रहे
0: हैं। बड़ी बहन होने के फायदे उठा रहे हो आप।
1: अगर मान लो मैं एग्जाम सेंटर में बैठी हूँ जहाँ पे एग्जाम दे, अगर उससे आगे मेरी कोई क्लास की लड़की बैठी है या फिर कोई दूसरी क्लास की लड़की बैठी है, मेरी फ्रेंड है, बता हम क्या करते हैं? अगर टीचर बाहर गई होती है या फिर टीचर का ध्यान कहीं और होता है ना, हम स्टोन पेपर सीजन खेलते हैं
0: एग्जाम में। अरे बाप रे, तो डर नहीं लगता मेरा टाइम कम हो जाएगा एग्जाम में लिखने का?
1: जब पूरा करके बैठते हैं और टाइम पास नहीं होता।
0: अच्छा, पूरा करने के बाद?
1: हाँ, और अगर पूरा करने के बाद में ये इसका आंसर ये याद आता है तो फिर उसे कर देते हैं।
0: ओके
2: दीदी, हम तो पेपर करके आराम से सो जाते हैं अगर टाइम बचा होता है तो। नींद आ जाती है, फिर टीचर आग उठाती है, बेटा पेपर दे दो, बहुत सो लिया।
0: खत्म हो गया।
3: एक दिन तो मुझे नींद ही आ गई थी इतनी जोर की, क्योंकि घर पे पापा ने जबरदस्ती उठाया था, मन ही नहीं कर रहा था, छोड़ो ना एग्जाम क्या देना है, नींद आ रही है उसको पूरा करो पहले।
0: पर पेपर देना तो जरूरी है इसलिए पापा ने उठा दिया होगा।
1: दीदी मुझे तो कभी कभी नहीं, मुझे रोज ही नींद आती है।
0: एग्जाम में जाके सोते नहीं जाते हो?
1: नहीं, मैं एग्जाम देके फिर सोती हूं।
0: फिर सो जाते हो। अनुष्का, अनुष्का को नींद आती है एग्जाम में? आती है।
4: हाँ।
0: फिर कैसे जगाते हो खुद को?
4: जग जाते मैम आती है, ऐसे ही जब नींद लगने वाली है तब तक तो मैम ही आ जाती है।
0: मैम आ जाती है तो जगना ही पड़ता है फिर।
1: नहीं, मैम खुद बोलती है बेटा पेपर हो गया, सो जा, जा सो जा सो जा,
0: होने के बाद। पहले नहीं।
1: अगर
4: दीदी एक बार ना मैं स्कूल में था, मेरा पेपर 10 मिनट में ही खत्म हो गया था।
0: 10 मिनट में? कितने मार्क्स का पेपर था?
4: 50
2: होगा दीदी।
0: 50 मार्क्स का पेपर 10 मिनट में खत्म कर दिया? अच्छा, वो MCQ वाला था क्या? फिर 10 मिनट में कैसे खत्म कर दिया?
4: क्वेश्चन आंसर्स वाला ही था।
0: तो आपने 1 वर्ड लिखना था?
4: नहीं।
0: तो फिर भी 10 मिनट में खत्म कर दिया? बाप रे, ये स्किल तो सीखनी पड़ेगी, ये वाली तो आती नहीं है किसी को, 10 मिनट में पेपर खत्म करने वाली।
1: दीदी खत्म करते तो जल्दी भी खत्म किया, 1.5 घंटा। 10 मिनट में कौन पेपर खत्म करता?
4: दीदी फिर ना जो मेरे मतलब मेरे स्केच थे, जो मेरे स्टेशनरी आइटम था, उससे मैंने एक एरोप्लेन बनाया था, वो मतलब मैं फिर उससे ही खेल रहा था
0: बाकी पेपर में ना।
3: लेकिन दीदी जब जल्दी जल्दी पेपर करते है ना, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
0: हाँ, पेपर को ध्यान से करना चाहिए ना, सारे क्वेश्चंस पढ़ के।
1: ना दीदी हम लोग तो ध्यान से करते हैं। सोचोगी नहीं, मैं एक क्वेश्चन को लिखने में 10-15 मिनट लगाती हूँ, चाहे वो छोटे उसका क्यों ना हो, अच्छे से उसकी राइटिंग निकालते, अच्छे से उसको याद करके लिखती
4: हूँ। दीदी एक बार क्या हुआ, मुझे जब मैं स्टार्टिंग में आया ना तो मुझे पता नहीं था कि रीडिंग टाइम भी होता है, तो मैं रीडिंग टाइम में ही सब लिख दिया मैंने, फर्स्ट पेज का, सेकेंड पेज आधा लिख दिया, और रीडिंग टाइम तब खत्म हुआ। मैम ने बोला ये तो सारा आपको हुआ कैसे? मैंने बोला मैम एग्जाम तो पहले ही स्टार्ट हो गया था ना।
0: आपको पता नहीं था
2: दीदी, हम 10 मिनट।
4: फिर मैम ने मुझे पूरा इरेज करवा के वापस लिखवाया।
0: ओहो, कोई बात नहीं, पहली बार था ना, होता है कभी कभी।
2: दीदी 10 मिनट में तो करने को हम भी कर सकते हैं, फिर सोचने की बात है, 3 घंटे क्यों दिए? फिर आराम आराम से ही करो, क्यों इतना दिमाग को स्ट्रेस दिया?
0: हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन में आंसर नंबर आपने सही डाला है वो ठीक से लिखो।
1: और दीदी और है ना, हम लोग अगर हेड डाउन कर लेते हैं ना, सोने जाते हैं तो मैम बोलती है पेपर हो गया, हम बोलते हैं हो गया, तो मैम चेक करती है सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ना, तभी हमें सोने देती है, नहीं तो बोलती इसका नहीं आ रहा लिख।
0: तो छोड़ना नहीं चाहिए, जितना समझ में आए वो लिखना चाहिए, है ना?
4: अगर अपा लिखते हैं तो मैम आधा तो मार्क्स देंगे।
0: हाँ, कुछ तो मिलेंगे ना नंबर, तो एकदम छोड़ना नहीं चाहिए।
1: आप आधे नंबर से पास क्यों ना बाकी हो तो कुछ तो मिल जाते हैं।
0: हाँ, थोड़ा तो देखो आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर, कुछ तो याद होता ही होगा, तो उससे संबंधित जो याद हो लिख दो। चलिए, बहुत सारी बातें आप लोगों ने की है, मुझे लगता है एग्जाम को इजी बनाने के तरीके भी आप लोगों के खुद के ही पास हैं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए और क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके निकालना इस साल, जिस भी आप क्लास में हो एक और क्रिएटिव तरीका सब लोग निकालना एग्जाम टाइम को और आसान करने के लिए, पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए क्रिएटिव तरीका, ठीक है? फिर बताना कि कौन सा तरीका आप लोगों ने निकाला है थोड़े समय बाद, ठीक है? चलो फिलहाल हमारे दोस्तों को करते हैं गुड बाय, और जिनके भी एग्जाम या टेस्ट आने वाले हैं या इस साल जब भी होंगे उसके लिए अभी से सबको ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

रखा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरी विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी और उस समय बच्चों तथा बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित थी, उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा है। जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थीं, उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी कुमारका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, मैं और ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी तथा दो तीन माताओं ने भी यह जिम्मेदारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ, तुरंत सभी बच्चों को एक जैसी पोशाक यानी यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वे हाथ पांव मुंह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलती थी। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष की कन्याओं की अलग कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। वे प्रातः 5 बजे से उठकर सैर करने जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर वे नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राजविद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था उसमें इस प्रकार लिखा रहता था, यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है, आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली है, आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये मेरे हाथ पांव हैं, जानते हो यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं, मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूं, मैं आत्मा सत्य चित्त हूं, मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाने आई हूं, मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूं परंतु मैं इनसे अलग हूं। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होता था। इसके पश्चात वे भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे और 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद और गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर 5:00 बजे वे दूध पीते थे और 6 बजे फिर घूमने जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वे वापस लौट आते थे और भोजन करते थे। रात्रि को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्य उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड में लगभग 1 बजे के बाद दोपहर में सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब एक शिक्षिका ओम की ध्वनि भी करती थी। बच्चे भी उसके साथ ही धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यानावस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। वह दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहां के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुनकर स्वयं उन

का अनुभव पाने को ललायित हो जाते थे। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। जब तक सभी को भोजन न परोस दिया जाए तब तक कोई भी भोजन खाना शुरू नहीं करता था। वे शांति पूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नान गृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों को आंख मिचौनी, रसाकशी, दौड़, कुर्सियों का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। फिर सायंकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होते थे। अंत में रात्रि को सोने के समय में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था, जिसका गीत इस प्रकार था, सोजा राजकुमारी सोजा। यह गीत सुनते हुए सभी आत्म स्वरूप की याद में शरीर को ढीला छोड़कर सुख पूर्वक सतोगुणी नींद में सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 बजे जागो मोहन प्यारे जागो यह रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। थोड़े समय में काफी लोगों को यह मालूम हो गया था कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले नामवार व्यक्ति अचानक ही बोर्डिंग को देखने आ जाते। उनका यह विचार रहता था कि सूचना दिए बिना अनायास ही जाकर वहां की साफ सफाई को, बच्चों को मिल रहे भोजन आदि को तथा वहां की शिक्षा पद्धति को और वहां की लौकिक विद्या के साथ साथ ही आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वहां ओम निवास के प्रबंधकर्ता अथवा शिक्षिकाएं खुली छुट्टी देते थे कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि के ढंग को देखें। वे लोग वहां राज ऋषि कुल जैसा वातावरण, वहां की स्वच्छता, वहां की भोजन व्यवस्था आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को रजिस्टर्ड करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वे सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि यह ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम ओम की ध्वनि सुनते सुनते ध्यानावस्था में चले जाते और उन्हें इस संसार तथा देह की सुध-बुध नहीं रहती। वे इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी होते और हर्षित भी होते। जब बच्चे ध्यानावस्था से नीचे उतरते थे तो वे उनसे पूछते कि उन्होंने क्या देखा। वे उन बच्चों द्वारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद होते थे। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवीय बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी और माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था, इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क नहीं रह गया था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि से लगाव या मोह नहीं रहा। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूं तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा है, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल होते हैं। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकते तो हम बाबा को कहते थे, बाबा यह बहुत तंग करते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें हैं उन्हें छोड़ने से क्या लाभ होगा यह बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि फला कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहां या
धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है, अतः यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो सबसे प्यारी चीज है आप वह बंद कर दो तो वे अपने आप ही सुधर जाएंगे। इस प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था उससे उसे बात करने के लिए मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता था, जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा उद्दंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग से ही एक कोने में बिठा दो और उससे बोलो मत। हम ऐसा ही करती थी, उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी परंतु उसे अलग बिठा देती, इससे वे भी सुधर जाते थे। हर एक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षाएं तो होती ही है। इसी प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षाएं होना जरूरी है। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे निंदा स्तुति, मान अपमान, हर्ष शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पार करते हैं तथा उन्हें सहन करते हैं। इसलिए अब ऐसी ही परीक्षाएं ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने आई। वे कैसा रूप धारण करके आई और उन्हें कैसे पार किया गया, यह अगले भाग में सुनिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। आज है हमारे साथ उर्मिला श्रीवास्तव जी। आप एक काजरी फोक सिंगर हैं और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है फोक सिंगिंग के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं कि मिर्ज़ापुर से आते हुए ये कजरी फोक सिंगर जो उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने फोक सिंगिंग की फील्ड में किस तरीके से अपना योगदान किया है। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो फोक सिंगिंग की यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई, और आपकी ये जो कहानी है हम आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और यहाँ मैं आई हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है, मेरा बचपन, मेरे माँ बाप तो तीन मेरे भाई, मतलब हम चार भाई बहन थे, और अब तो सब बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे तीनों भाई और हम, मतलब चारों लोग बिल्कुल अनाथ ही हो गए थे। फिर बाबा दादी थे, चाचा चाची थे, उन्होंने पाला पोसा और जो संभव हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। मैंने भी अपने जीवन में मेहनत किया, ट्यूशन किया, और जब परिस्थितियां खराब हो गई तो अपने भाइयों के लिए जो भी हो सका मदद किया, और हम चारों भाई बहन पढ़ते रहे। हमें बचपन से गाने का बहुत शौक था, किसी का भी गाना सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं मिर्ज़ापुर की हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ, और बाय द वे मेरी शादी भी मिर्ज़ापुर में हुई। तो मिर्ज़ापुर में लोकगीतों की एक विधा कजरी है, वहाँ के कजरी गायन बहुत प्रसिद्ध है। ये कह सकते हैं कि कजरी का उद्गम, कजरी की शुरुआत मेरे मिर्ज़ापुर में ही हुई है। वैसे तो आसपास के जगह में लोग गाते हैं, बनारस में, जौनपुर, गाजीपुर, आसपास भी लोग गाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रज के लोकगीत होली जो है ब्रज में है, तो उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कजरी जो हमारी एक विधा है, लोकगीत की एक विधा है। लोकगीतों के अनेक विधाएं हैं, देवी गीत है, पूर्वी है, चैती है, होली है, कजरी है, खेमटा है, इस तरह से संस्कार गीत है, खेती बाड़ी के गीत, सारे गीत आते हैं लोकगीतों में। लेकिन उसमें जो मिर्ज़ापुर की कजरी है, हमारे चूंकि मिर्ज़ापुर की है तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और आप यूँ कहिए कि हमारे बचपन में जगह जगह, हर चौराहे पे, हर गलियों में, हर घरों में गाई जाती थी। और मुख्यतः जो नागपंचमी का त्योहार होता था उस दिन से शुरू होता था, या ऐसे कहिए तो सावन और भादो के महीने में, जब कजरारे बादल घूमड़ घूमड़ के चारों तरफ वर्षा होती है और पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उस बारिश के दिनों में मदमस्त हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं खुश होगा। तो इंसान खुश होगा तो कुछ न कुछ अंदर से उसके उमंग उठेगी, तो उस उमंग को कैसे व्यक्त करें। तो हमारे जो मिर्ज़ापुर में जो गीत गाई गई, गीत को पहचाना गया, लोगों ने गाया और चिरकाल तक चलता रहा, शुरू से और आज तक चलता रहा और आदि अंत तक चलता रहेगा, तो वो है हमारी बहुत प्यारी सी कजरी, जिस गीत का नाम कजरी है। एक बात और है कि कजरी आप ऐसे कह सकते हैं कि कजरारे बादल से भी लिया गया है, लेकिन एक और इसके सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ विंध्याचल माँ है मेरी, विंध्यवासिनी माँ, उनका नाम कजला देवी है।
0: अच्छा।
1: तो हम ये कह सकते हैं, वैसे किंवदंतियाँ तो बहुत सारी होती हैं, कहानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जो हम लोग अपने दिल से मानते हैं वो ये कि मेरी माँ विंध्याचल माँ का एक नाम कजला देवी है, उनके नाम से ये गीत की। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जो मेरे सामने स्वरूप है वो मेरे माँ का है, विंध्याचल माँ का है, तो उनके नाम से गाए जाने वाले गीत को हम कह सकते हैं कजरी। कजला देवी उनका नाम, तो उसे कजरी। आप अगर प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति चारों तरफ जब काले बादल घुमड़ घुमड़ के वर्षा करते हैं और सभी पशु पक्षी सभी मदमस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खेत लहलहाने लगता है और सबको आशा होती है कि इस बार हमारी खेती बहुत ही अच्छी होगी। अब एक पक्ष और भी है कि नागपंचमी के दिन जितनी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो पोखरा समझती हैं, जहाँ तालाब जिसको कहते हैं, तो वहाँ से मिट्टी लाती थी क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ मानते हैं। मिट्टी लाके उसको गोला सा, जैसे शंकर जी की पिंडी बनती है, से गोला सा बना के उसमें जौ बोते हैं। तो उसका सेंस ये है कि हमारा घर, हमारा देश, हमारे सब खुशहाल हैं। जब खेती होगी, अन्न उपजेगा, तो हम लोग खुशहाल होंगे, हमारा पेट भरेगा, हम औरों का पेट भरेंगे। तो वो जो जौ बोए जाते थे, जब बोए जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह, जैसे पूजा की चीज हम लोग रखते हैं उसी तरह वहीं पे रखते हैं, और ये यूं कहिए कि पूजा स्थल पे ही हम रखते हैं। रोजाना उसमें पानी भी डालते हैं और रात भर कजरी गाते हैं, रात भर गाई जाती है। सारी औरतें हमारे घर के काम काज करके बाहर निकलती थी अपने चौराहे पे, गलियों में, मोहल्लों में, और वहां पे कजरी गाती थी। तो अपने ये गाने की विधा तो है ही, अब अगर अलग से देखिए तो वो हम प्रार्थना करते कि हमारे खेत खलिहान भी उपजे। तो खेत खलिहान रोज तो हम देख नहीं सकते हैं, तो जो हमने बोया हुआ है जौ, तो उसको हम देखते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर जरई, जरई मतलब उसका घास की तरह निकलेगा तो उसको जरई बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो करीब नाग पंचमी से हमारे यहाँ जागरण का एक दिन होता है, तो उस दिन तक गाया जाता है, और जागरण के दिन उस जरई को, मतलब उसको, उनको सुला दिया जाता है, उनको जैसे कुछ पुष्प अक्षत और कुछ खाने की चीज दे होके कि मतलब आज का उनका आखिरी दिन रहता है, और सुबह सुबह औरतें जो है जाके उसको नदी में या तालाब में, जिसके पास जो भी आसपास रहता है, उसमें वो उनमें से सारे जो मिट्टी है वो निकाल देती है, और जो जरई है मतलब जो बालियां ऐसे लंबे लंबे रहते हैं उनको इकट्ठा करती हैं। सबसे पहले वो मंदिर में जाती हैं, मंदिर में चढ़ाती हैं, और मंदिर के बाद अपने से बड़ों को, चाहे वो बाबा हो, चाचा हो, ताऊ हो, जो भी भाई हो, या अगल बगल हमारे मोहल्ले आस पड़ोस के लोग हैं, उनके कानों पे रखते, मतलब कान पे रखने मतलब उनको हम चढ़ा रहे हैं, उनकी हम इज्जत कर रहे हैं, उनको एक तरह से उस आराध्य की तरह मान रहे हैं, क्योंकि भगवान को हमने चढ़ाया और अपने बड़ों को भी हमने वो किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक कजरी का शुरुआत होता है, और जागरण के दिन माँ के वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ पे पूरे रात पूरे देश विदेश के कलाकार वहाँ पे आते हैं और अपने को गाकर अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और मेरे यहाँ मिर्ज़ापुर शहर में भी जगह जगह हम लोग स्टेज बनाते हैं, औरतें तो गाती हैं अपने अपने गांव मोहल्ले जगह जगह जितना मोड़ होता है लगभग। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि पहले से बहुत बदलाव हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन ये समय का बहाव है, हर चीज में फर्क आता है, और हमारे इस कजरी में भी बहुत अंतर आया है। जो गाने हम हर मोहल्ले में चौराहे पर सारे जगह होता था, वो थोड़े अब बहुत कम हो गए हैं। गांव में अभी है, और थोड़े जो पुराने लोग हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हम अभी 75 के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे तक तो अभी है, और लेकिन हमारे से नीचे वालों में हम जब अपनी नजर दौड़ाते हैं तो काफी कम हो गया है। लेकिन ये है, जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारी मिट्टी की सुगंध होती है, वो कभी जाने वाली नहीं होती, थोड़े कम हो जाएगी, कुछ दिन तक ऐसा रहेगा, लेकिन फिर वो अपने कुछ दूसरे फॉर्म में, कुछ दूसरे तरीके से वो गाया बजाया जाने लगेगा।
0: जी मैम, अक्सर करके हम देखते हैं कि जब भी ये फोक सिंगिंग की बात आती है या लोक कला की बात आती है, जैसे आपने कहा कि लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज और वहाँ के जो पहनावा, ये सभी चीज़ें बहुत ही दर्शाते हैं। तो जब अपने बचपन से ही इस चीज़ को अपने अपना एक कला या अपना जीवन बना दिया है, तो इस कला के माध्यम से जन जागरण के लिए भी आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं? जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा।
1: बहुत कुछ किया है और अभी मैं सोचते हैं जब तक जिंदगी है मेरी तब तक करते रहेंगे। अभी तो ये कहे कि हमारे भारत सरकार में बहुत सारी कल्चरल विंग है, कल्चर ऑफिस है या संस्थाएं हैं जो इसको काफी प्रमोट कर रही हैं। जैसे हमारा संगीत नाटक अकादमी है, सांस्कृतिक विभाग लखनऊ है, तो ऐसे ये तो हमारे प्रांत की बात है, फिर दिल्ली में भी है, इस तरह से हर शहर हर प्रांत में तो सांस्कृतिक विभाग है, जनजाति विभाग है और ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी के अलावा संगीत के और भी बहुत सारे विभाग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो वो नए नए कलाकारों की खोज कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो परंपरा है वो टूटने न पाए। तो वो लोग तो कर ही रहे हैं और जगह जगह मंच बना रहे हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त सावन भादो के महीने में मिर्जापुर में ये जगह जगह कजरी होती है, बनारस में होती है और जगह होते हैं, अब ये सिलसिला चल ही रहा है एक दो महीना, तो वो तो कर ही रहे हैं, तो उसमें हम सब की भागीदारी होती है। और जिसमें हम तो सोचते हैं हमारा बहुत ही नैतिक दायित्व है कि हमें इसी चीज में अवार्ड मिला है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खोज खोज के कहाँ कहाँ से टैलेंट ला रहे हैं,
0: और
1: नहीं तो हमें तो लोगों का कहना है, हमें नहीं, लोगों का कहना है हमको 10-20 साल पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब ही आँख खुले सवेरा है, तो आज हम करीब 74 साल के थे, लास्ट ईयर हमें मिला है, तो हम देख रहे हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए कि आदमी में और उत्साह बढ़े, और हमें देख के, हमारे में तो जो उत्साह है, हमको देख के कितने कलाकार ऐसे हैं जिनको कितना उत्साह मिल रहा होगा कि अरे उर्मिला जी को मिला है, अब हम भी ऐसे मेहनत करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो मेहनत केवल अपने ऊपर हमने नहीं किया, हम कॉलेज में रहे 40 साल तक, हम रहे कॉलेज में, आर कन्या इंटर कॉलेज में म्यूजिक टीचर रहे, तो म्यूजिक में तो आप जानते हैं कि क्लासिकल सिखाया जाता है, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ हम फोक भी सिखाते थे, कुछ न कुछ देते थे, बताते थे बच्चों को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर है, तो आज इस चीज का कंपटीशन है, तो उसमें हम लोग फोक ही करवाते थे, क्लासिकल कम ही करवाते थे। तो मैं शुरू से ही फोक में जुड़ी रही, मेरे बचपन का जो शौक था वो धीरे धीरे बढ़ के रेडियो तक आए। जब मैं इंटर में थी उस समय रेडियो में 68 में थी, और तो रेडियो में दिया, तो रेडियो से हम करने लगे, फिर टीवी में आए, फिर बहुत सारे कैसेट है, रिकॉर्ड है, ये सब बने। अच्छा, क्या होता है कि आदमी अच्छा गाता है तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। दूसरे शहर में गए, फिर दूसरे शहर में गए, दूसरे प्रांत में गए, फिर उसके बाद विदेशों में भी गए। तो ये तो मेरा पक्ष रहा कि हमें मौका मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे, कभी जो जैसे पानी का बहाव होता है कभी रुकता नहीं है, तो ईश्वर की दया थी और माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा थी कि मैं आगे बढ़ते ही कभी मुड़ के हमने पीछे नहीं देखा। पर हमने अपने लिए किया, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी लेके चले, जैसे हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेके चले। इसके बाद हमने बहुत सारी कार्यशालाएं की और करते हैं और करते रहेंगे। तो कार्यशाला में कभी 50 बच्चे, कभी 60 बच्चे, कभी 100 बच्चे, कभी 200 भी। तो इस तरह से क्या है, उन कार्यशालाओं को करके जो हमारी थोड़ी सी परंपराएं हैं, थोड़ी सी गाने की कम हुआ है, उसको हम लोग जागृत कर रहे हैं कि जो हमारे नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें ये शौक आए और हमारी जो परंपरा है वो बनी रहे
0: जी।
1: तो हम कार्यशालाओं के माध्यम से और कार्यक्रम करके या करवा के इस तरह के माध्यम से और जगह जगह छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन करके उनको मिले कि हम फर्स्ट सेकेंड आएंगे, तो ये एक चाव रहता है, उसी बहाने बच्चों को सीखने को मिलता है। तो इस तरह से
0: जब आप कॉलेज में पढ़ा रहे थे फोक संगीत, ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि क्लासिकल संगीत सीखने का और स्टेज परफॉर्मेंसेस करने का, एक पॉपुलर सिंगर बनने का। तो बॉलीवुड में भी फोक सिंगर, प्लेबैक सिंगर बहुत कम बनते हैं। तो म्यूजिशियंस जो बनना चाहते हैं युवा पीढ़ी, तो उस तरफ ज़्यादा रुझान रहता है क्योंकि उसमें एक कमर्शियल वैल्यू भी है। तो जब आप एक फोक सिंगर के रूप में उनको आप ये चीज़ें सिखा रहे थे, तो कितना आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट देख रहे थे और वो जन जागरण के लिए उनको फोक सिंगिंग को लेकर के कैसे आप उनको प्रमोट कर पाते थे?
1: उनको जब हम सिखाएंगे उनको पहले तो उसका देखिए उसका अर्थ बताएंगे। बच्चों के क्या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। अभी आपको हम एक गाना ऐसे सुना दें तो आपके समझ में आ भी सकता है, थोड़ा नहीं भी आ सकता
0: जी जी जी।
1: हम आपको सुनाएंगे,
0: जरूर गुनगुनाइए कुछ,
1: तो आपको उसका अर्थ भी बताएंगे
0: है ना,
1: कि इसका क्या अर्थ है। जहाँ तक गुनगुनाने की बात है कोई बात नहीं है, तो हम आपको दो लाइन देवी की सुना रहे हैं
0: जी।
1: और देखा और आपको ये बताना चाहेंगे कि उसमें देखिए शब्द जो है कितने माने रखते हैं और शब्द का जो अर्थ है और फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है जो मेरे हृदय से निकलता है। तो एक देवी गीत है, माँ की वंदना है।

0: सीधे सीधे शब्द है, लेकिन आप देखिए इसके एक एक शब्द को समझा। मैया झूले, माँ झूल रही है किस पे, चंदन के पालने पे।
1: अच्छा।
0: मैया झूले चनन झूलनवा, और पवनवा, पवन यानी
1: हवा,
0: हवा पवनवा चवर डोलावे ना। तो ऐसा लगता है कि माँ तो चंदन के पालने में झूल रही है और जो हवा है वो पंखा जल रहे हैं, माँ को हाँक रहे हैं। तो कितना कितना सुंदर भाव है। आगे की लाइन है, अमृत से पग धोवे बदरिया। ये पानी नहीं है, ये जो जल परसता है ये अमृत है, एक एक बूंद में अमृत है। कहते हैं कि पानी बचा के रखो। अमृत से पग, तो माँ का जो पैर है वो किससे धोया जा रहा है, अमृत रूपी जल से। जो जल है वो अमृत है। अमृत से पग धोवे बदरिया, बादल जो है अमृत से माँ का पैर पखा रही है, रिन धो रही है। रही रही आरती उतारे बिजुरिया। देखिए क्या एक भी चीज आपका लग नहीं रहा है, सब प्रकृति कर रही है। जो बिजली है वो क्या कह रही, रही कि आरती उतार रहे हैं। रही रही आरती उतारे बिजुरिया, और अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया। जो हमारे बगीचे हैं तो ऐसा लगता है लाल हरा नीला पीला हर तरह के, तो ऐसा लगता है कि फूल माँ को नहीं चढ़ा, अक्षत चढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए
1: सुंदर,
0: कितना सुंदर कल्पना है
1: जी।
0: अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया, और गंध यानी

पवनवा। और जो अक्षतरोरी फूल हम चढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए फूलों में कितनी खुशबू है। गुलाब का अलग खुशबू है, चमेली का अलग है, तो ऐसे से सारे फूलों अक्ष

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैम, आपने जब ये इतना सुंदर गीत सीखा है, तो वो सबसे पहली प्रेरणा या सबसे पहला इंस्पिरेशन क्या था? कौन सा आपने पहला गीत सीखा था?
1: बहुत सही सवाल। हमसे बहुत लोग, कितने ही लोग

0: पूछते हैं आपके कौन गुरु हैं? बिना गुरु के तो ज्ञान मिलता नहीं है, लेकिन ताजुब मेरे गुरु कौन है? मेरे मिर्जापुर की धरती माँ।
1: ओह वंडरफुल।
0: क्यों कि हर जगह कजरी गाई जाती थी तो एक गुरु थोड़े थे, अनेकों गुरु, मतलब एक झुंड में थे, मतलब वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था, वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था। तो मेरे लिए तो कितने गुरु रहे, तो ये हम बड़े फख्र के साथ कहेंगे कि हम सबको गुरु मानते हैं, बिना गुरु के तो कोई बन नहीं सकता है। लेकिन मेरे मिर्जापुर की धरती माँ, मेरी विंध्यवासिनी नगरी की धरती माँ ही मेरे गुरु हैं। फोक में जो फोक है उसका हम पूरे अपने मिर्जापुर की धरती को, अपने माँ विंध्यवासिनी को ही गुरु कहते हैं। हाँ ये अलग बात है जो क्लासिकल है, जब तक सिखाया नहीं जाएगा
1: जी
0: है, देखिए डलिया है, बिनते बिनते देखते देखते बिन लेगा, खाना देखते देखते बना लेगा। लेकिन क्लासिकल का एक होता है जिसे दो और दो दुनी चार होता है, तो जब तक कोई नहीं बताएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से क्लासिकल में कोई सारे गामा पाध निशा स्वर है तो उसको कैसे गाया जाता है, कैसे संजोया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो क्लासिकल का जो हमारा गुरु है वही बता सकता है। तो क्लासिकल का तो मेरी कई गुरु रही, नलिनी कालेकर बहन जी थी, फिर उसके बाद अमिता दत्त बहन जी थी, और कमला प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी थी, और गुप्ता जी वकील रहे पेशे से लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार थे उन्होंने। तो हमारे अनेकों गुरु थे और जिससे हमें जो भी मिला, बल्कि आप भी कुछ कह देंगे तो हम आपको भी एक छाड़ के लिए मेरे गुरु हैं। कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात बता देता है वो भी गुरु होता है। तो आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं,
1: सीखना चाहते हैं, वो आपके गुरु तो बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कदम कदम पर हर जगह पे हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर किसी से। लेकिन जिस दिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का मैं एक विद्यार्थी हूँ, उस दिन हमारा सीख खत्म हो जाता है। तो यही इसी के लिए शायद आपको इतने बड़े पुरस्कार मिले हैं, जो आप उम्र के इस पड़ाव में भी आप ये सोचते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सो मैम, जैसे आपने कजरी की बात कही और आपकी जीवन की संगीत की जो शुरुआत है वो फोक सिंगिंग से हुई है, विंध्याचल की माँ धरती के मिर्जापुर से, उसके बाद आपने क्लासिकल में क्या क्या सीखा है?
0: क्लासिकल में हमने उसमें एक निश्चित चीजें होती हैं, जैसे अगर हाई स्कूल में है तो 10 राग था, जैसे यमन है तो भैरवी है, भैरव है और भूपाली है, तो इस तरह से बहुत से राग होते हैं। तो इंटर में आए तो थोड़ा उसका जो दायरा है बढ़ गया, उन रागों को छोड़ के 12 और राग, उसमें थोड़ा सा और थोड़ी भारी चीजें, जैसे कि हाई स्कूल में सिंपल हम लोग सीखते थे तो उसमें जैसे विलंबित ख्याल होता है, द्रुत ख्याल होता है, तो वो सीखा। ताने हैं, बोल ताल है, आलाप है, तराना है, ध्रुपद है, धमार है। तो जैसे जैसे आपकी शिक्षा आगे बढ़ती जाती है आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। इसमें तो सारी चीजें हमने सीखी और एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं कि क्लासिकल जो सीखता है वो फोक नहीं गा सकता है, या फोक का गायक है तो वो कभी क्लासिकल का मौका मिले तो वो नहीं गा सकता है। एक दूसरे का पूरक रहता है, जो क्लासिकल सीखा रहता है उसको और सहारा मिलता है कि मेड़ खटका मुर्के सब गले से निकलता है, तो वो सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं और हमारे गाने में और निखार आता है। हालांकि जो फोक है वो फोक के ही ढंग से गाना चाहिए, उसमें क्लासिकल मिक्स नहीं करना चाहिए। कहीं पे एक आध चीजें छोटी सी लेके हम छोड़ दें, क्योंकि फिर उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। इसके लिए बना हुआ है सेमी क्लासिकल, जो आप देखिए बनारस के लोग गाते हैं, मेरी कजरी गाएंगे, मिर्जापुर की कजरी गाएंगे, लेकिन वो ठुमरी अंग से गाएंगे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो हम लोग सीधे सीधे गाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में

0: मन के, कहने का मतलब है ठहराव के साथ, उसमें कुछ आलाप, कुछ बोल आलाप, कुछ उसमें चीजें क्लासिकल की डाल के जब हम गाते हैं तो वो ठहराव के साथ, ठहर ठहर के, सुंदर समझा के, उसमें क्लासिकल अंग पुट डाल के जो गाते हैं वो ठुमरी अंग से हो जाता है। तो दोनों में केवल यही फर्क है, हम गाएंगे सीधे सीधे, जैसे कि हमारी गांव देहात की औरतें हमेशा गाती हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, जो शुरू से गाया जा रहा है पारंपरिक ढंग से बस उसी तरह गाती हैं। तो ठुमरी अंग से गाते हैं, जो अभी आपने देखा होगा, अभी अभी हमारे छन्नू महाराज जी की डेथ हुई है, तो वो बहुत अच्छे क्लासिकल की, हमारी गिरजा देवी महान विदुषी कलाकार थी, वो इस सब अंग से, और बहुत सारे जितने भी क्लासिकल के कलाकार हैं वो इसी अंग से गाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं उसी को ठुमरी अंग से कहिए या बनारसी कजरी कहिए। तो इस तरह से हम लोग सीधे सीधे गाएंगे, जो पारंपरिक तौर तरीका है, पारंपरिक सीधे साधे, और बनारस के लोग जो क्लासिकल के लोग हैं उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेहनत को डाल के उसको सुंदर से सुंदर बनाते हैं।
1: जी मैम, जैसे आपने इतने लंबे सफ़र है बचपन से लेकर के आज 74 इयर्स तक आप गा रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने गीत गाए होंगे, या कुछ ऐसा आंकड़ा है, कहीं पे आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए होंगे दूरदर्शन में?
0: 2-4 हज़ार तो गाए ही होंगे।
1: ओह माय गॉड।
0: किसी जगह किसी स्टेज पे कभी कभी 2 ही गाना, कभी 1 ही गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी,
0: कभी 5-10 गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी।
0: कभी कभी हम जो प्राइवेट जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो केवल सुनने के ही उद्देश्य से, केवल मुझे ही सुनना है, तो 40-50 गाने से कम नहीं गाते।
1: ओह माय गॉड, वंडरफुल। मतलब आप 2-3 घंटा नॉनस्टॉप गा लेते हैं?
0: 5-6 घंटा गा सकते हैं, आज भी गा सकते
1: हैं। वेरी नाइस।
0: जरूर उम्र हो गई है
1: जी,
0: 75+ चल रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि लोगों मेहनत करना छोड़ दिया है ना। हम ये नहीं कहते कि बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं, पर हम लोग जो है, अपने को नहीं कह रहे, हम लोग, कुछ लोग जो बहुत पुराने हैं वो बहुत मेहनत करते थे, और तब हम लोग 5-10 साल तक कोई हम लोग को जाना ही नहीं कि ये उर्मिला श्रीवास्तव कौन है, मतलब हम लोग गाते रहे, कुछ लोग जाने नहीं जाने। आज के कलाकार, आज के लोग हैं, 4-6 गाना अगर सीख लिए तो तुरंत अपने को कलाकार समझते हैं, लेकिन हम लोग 10-20 साल तक अपने को कलाकार नहीं समझे, आज भी नहीं समझते हैं, कलाकार नहीं है, हम तो उनकी पूजा करते हैं भाई, हमारा जो हमारा कला की पूजा करते हैं, लोग कहते हैं कलाकार है तो भाई चलिए ठीक है। तो पहले और अब में केवल इस बात का जरूर है कि आज हम सबको नहीं कहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, तो आप सोचिए अभी भी हम करीब 8-10 हज़ार गानों का कलेक्शन मेरे पास है।
1: My God.
0: हाँ, मतलब आपके भी गाने, उनके गाने, उनके गाने, मतलब शौक था हमें उनका,
1: कभी इन सभी चीजों का संकलन करके कोई किताब या ऐसा कुछ करने की, लाइब्रेरी बनाने की कोशिश?
0: नहीं, सोचा, और काफी लोगों ने भी कहा, सोचा भी, और लेकिन काफी समय निकल गया, कुछ हमारे कार्य

0: कि कब जीवन लीला समाप्त हो जाए पता नहीं है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी हमें थियोरेटिकल काम जो है और सोच रहे हैं। लेकिन आप बताएं, जब जब सोचते हैं कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है, कभी बाहर का कार्यक्रम आ गया, कहीं हमें कार्यशाला लेनी है, तो थोड़ा सा बीच में वो हो जाता है, पर करना है हमको। जाने के पहले हमें चीजें सुरक्षित जो मेरे पास है वो लोगों को दे के बांट के जाना है, और कुछ तो संस्थाओं को, हमारे सांस्कृतिक विभाग है, कई बार हमारे डायरेक्टर हैं अतुल द्विवेदी जी हैं, कई बार कहते हैं कि उर्मिला जी हमको कम से कम 100-100 गाने का ही दे दीजिए, मैं आपका किताब छपा दूँ। बस इतना मौका नहीं मिले, लेकिन ये बात नहीं है, मौका मिले ना मिले मौका निकालना पड़ता है हर काम के लिए, और मैं निकालूंगी, और जो भी मेरे पास कलेक्शन है, और नहीं 10,000 तो 1,000-2,000 उसमें से छाट के, जो बहुत अच्छे हैं लोगों के कलेक्शन है, वो उसको मैं अपने द्वारा जो है निकालूंगी।
1: बहुत सुंदर मैम, हम भी इंतजार करेंगे आपके उस कलेक्शन को देखने का, क्योंकि यही है कि भारत की विरासत और परंपरा जो आप आने वाली पीढ़ियों को देने वाले हैं। किसी भी कला या संस्कृति अगर जीवित है, वो पारंपरिक रीति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब जाती है वो
0: बिल्कुल
1: जीवित रहती है,
0: बिल्कुल
1: और उसमें भी नवीनताएं आती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं और एक पेरिनियल रिवर की तरह वो बहती रहती हैं। तो आपने अभी तक कितनी पीढ़ियों को सिखाए होंगे?
0: चौथी पीढ़ी तो जरूर चल रही है। एक बार बॉम्बे में
1: जी
0: कार्यक्रम देने गए थे,
1: जी
0: तो नाम बता दे, हीरा लाल भैया बहुत अच्छा लोक गीत गाते थे, तो उनका हालांकि बिरहा, उनका कई टाइप होते हैं ना, तो बिरहा था, तो उनके साथ तो हमने गाया, उनके लड़के के साथ गाया, और उनका उनके लड़के का लड़का यानी पोता, तो जब मैं एक बार कार्यक्रम कर रही थी वहां पे बॉम्बे में, तो एक लड़का मेरे साथ गाया, मतलब मेरे मंच पे साझा किया कि हमने गाया, फिर उसका भी कार्यक्रम रहा, और आके पैर छुआ कि बुआ प्रणाम, तो हमने कहा कि खुश रहो भाई भाई, बुआ दीदी जो भी कहता है, तो बोले आपने हमको पहचाना नहीं, हम जो हीरा लाल जी के हैं उनके बेटे के बेटे यानी पोते हैं, और अपने बेटे को खड़ा किया जो 10 साल का था, और नेक्स्ट टाइम आप आएंगी अगले साल या 1-2 साल बाद, तो मैं इसको आपके साथ गवाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी 3 पीढ़ी तो सामने रही और
1: चौथी
0: चौथी
1: पीढ़ी भी
0: पीढ़ी
1: आपके साथ गाने
0: गा
1: वाली
0: सकती है,
1: है।
0: तो
1: बहुत सुंदर।
0: हमें हमारे बहुत गर्व फील होता है कि हमने 1, 2, 3 और चौथी पीढ़ी भी आ रही है, और जैसे छोटे बच्चे गा रहे हैं तो मेरे साथ गा ही रहे हैं, तो कहने का मतलब कि बच्चों के
1: जी,
0: साथ बच्चे बन के,
1: बच्चे
0: बड़े
1: बन
0: एक साथ
1: करके
0: बड़े
1: गाते
0: बन
1: हैं।
0: के, जैसे भी होता है उनको भी लेते हैं, उनको ये महसूस नहीं होता है कि हम क्लास भी लेते हैं, तो ये हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनको मिल के उनको समझा के, जैसे अभी हमने आपको बताया, जब हम बताते हैं
1: एक
0: बहुत
1: सरलता
0: बच्चे
1: के साथ
0: बच्चे भागते हैं,
1: जी
0: अरे क्या लोकगीत है, एक दिन के बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी झलकती है
1: जी
0: कि हमारा इंतजार करते हैं, तो इंतजार मेरा नहीं करते हैं,
1: वो
0: वो जो
1: गीत
0: कला
1: का।
0: हमारी है, जो जो जिस विधा को हम लेके चले हैं उसका इंतजार करते हैं, अब मैम आएंगी तो हमें सिखाएंगी, और पहले दिन तो उनका लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया है, तो आप जितना सरल ढंग से, जितने सरस ढंग से आप किसी को बताएंगे, आप सीधे मत लाद दीजिए, आप थोड़ा सा करिए, बच्चों के अंदर से निकलवाइए, हम तो बच्चों के अंदर से भी निकलवाते हैं, भाई अगले दिन तुम्हारा एक लोकगीत हम सुनेंगे, तो कहाँ से, अब उनके पास तो लोकगीत तो है नहीं, वो क्या करेंगे, हमने कहा तुम अपने दादी से, नानी से, माँ से, जो तुम्हारे काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, उनको अम्मा कहो, दादी कहो, जो भी कहो, आप एक लोकगीत लिख के लाएंगे, अब आप सोचिए कि कितने लोकगीत हमारे सामने आ जाते हैं, अगर 50 बच्चे मेरे क्लास है तो 50 लोकगीत, और वो जाके घर में बहुत खुशी खुशी अपनी माँ को, अपने जो भी है उनको बताती हैं कि अरे
1: जी
0: हमारी मैम ने ऐसे सिखाया, हमारे ये देखिए सिखाया, और उन्होंने ये मांगा है, हमें एक लोकगीत चाहिए, तो कहीं न कहीं

0: से किसी रूप में हमें उनके अंदर जगाना है। जब वो जग जाएगा ना, आप देख रहे हैं कि गाना बज रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं
1: जी।
0: थोड़ा सा उनको अगर उसका अर्थ मालूम होगा तो गाना ध्यान से सुनेंगे।
1: सही बात है।
0: और फोक में कितनी ताकत है, बॉलीवुड की बात कर रही थी आप ना, बॉलीवुड में जो भी फोक लिया गया है वो
1: सुपर हिट
0: हुआ है।
1: वो एकदम लोगों की हाँ, दिल को छू जाती है और उनको उमंग उत्साह को बढ़ा देती है। सही बात कहा आपने।
0: मेरी कचरी का उन्होंने लिया है।

0: ये लिया है, बहुत सारे हैं। आपने वो देखा होगा एक बन्नी बन्ना, माई हमारे में तो ये भी है, बन्नी बन्ना, पूर्वी, चैती, होली, सारे रंग हैं। तो बनो तेरी अखियां सुरमे दाने, बनो तेरी अखियां, तो कहाँ से लिया गया है? मेरे फोक से लिया गया है
1: जी
0: तो जो भी गाना उन्होंने लिया है, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा, कहाँ से लिया है? फोक से लिया गया है। जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, और बरस रहती राजा तोरे बंगले पे, कहाँ से लिया गया? फोक से लिया गया। तो आपको कौन सा, कितने गाने बताए, सैकड़ों गाने, अब तो इस समय
1: समय की सीमा है। हाँ। और
0: तो जो भी लिया है तो समझ लीजिए लोकगीतों का कोई जवाब नहीं है। हमारी मिट्टी की सुगंध है, मेरी माटी की खुशबू है, मेरे जो दादा परदादा दादी पर नानी सबने जो दिया है वो थाती है, हमारी अनमोल धरोहर है, मेरी अनमोल रतन है कह लीजिए। तो फोक के लिए तो भाई मेरे दिल में क्या क्या होता है क्या बताएं
1: जी। मैम अब ये बताइए कि वो वक्त जब आपको फोन आया कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा और आप प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं और आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उस पल के बारे में बताइए कि कैसा ये चयन हुआ और वो जर्नी कैसी रही आपकी, वो प्राउड मोमेंट के बारे में।
0: बहुत ही रोमांचकारी, देखिए मेरे आपसे बात करें मेरा मन भर गया है, पता नहीं हम आगे बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आप सोचिए कि दो चार दिन पहले तो हमारे मंत्रालय से फोन आया था कि आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ कि उसको चुरा के रखे, चुरा के मतलब कि हमने किसी को बताया ही नहीं। तो खबर तो थोड़ा थोड़ा थी कि जब ये 22 अप्रैल का दिन था, 22 अप्रैल 2024 को हम लोग को बुलाया गया, जितने भी अवार्डी थे, दो बार में हुआ है, आधे लोग एक बार में आधे लोग का बाद में हुआ है। तो जिस समय सुना हमें जाना है और इसके पहले जिस दिन अनाउंस हुआ है, आपको हम क्या कहें कि वो पल मेरे आंखों के सामने जैसे कि चलचित्र की तरह घूम गया है कि इतनी खुशी, इतनी खुशी। रात को करीब 11:30 बजे अनाउंस हुआ है और मेरे सारे परिवार वालों का फोन, सबकी बधाइयाँ ये, और रात को ही पत्रकारों का फोन आने लगा और उनका, पूरी रात हम जगे, शायद एक आध झपकी हमने लिया होगा तो लिया होगा। और सुबह सबसे पहले हम माँ विंध्याचल माँ के दरबार में गए, उनके चरणों को छुआ, माँ आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, बहुत बड़ी चीज दी है, भारत का 4 सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कारों में से हमें एक दिया है, इससे बड़ा हमें क्या मिल सकता है, और मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। और उस दिन मेरे घर जब मैं घर आई तो कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़ और 30-40 पत्रकार, मीडिया वाले सब, टीवी वाले सारे लोग आए थे। एक सुबह से शाम 8-10 बजे रात तक समझिए देती रही। तो ये तो पल था। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे वो समय आई, तो हफ्तों ये सिलसिला चलता रहा। मेरे यहाँ जो भी हमारे यहाँ के मंत्री थे, विधायक थे, वो लोग मेरे घर आए, सबने सम्मान किया, शॉल से, बुके से, माला से, जिसको जो भी बन पड़ता था सबने बहुत बहुत सम्मान किया मेरा। और आखिर वो दिन आया जो हम राष्ट्रपति के यहाँ चलने के लिए तैयार हुए कि हमारे देश की कितना, मेरे एक एक रोया समझ लीजिए कि वो रहा द्रवित हो गया खुश से। तो मैं दिल्ली पहुंची, बनारस से मेरी फ्लाइट थी, बनारस जाके वहाँ दिल्ली पहुंची और द अशोका में हम लोग वहाँ पे उतरे और उनके यहाँ एक दिन पहले आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज एक दिन पहले लिया गया, जिस दिन अवार्ड देना था उनके एक दिन पहले काफ़ी लोगों ने कवरेज किया वहाँ भी। और 22 अप्रैल का वो सुनहरा, मेरे लिए सुनहरा दिन था जबकि उनके यहाँ जाना था और हम लोग समय पे गए वहाँ जाना। राष्ट्रपति भवन में तो बाद में गए, जब राष्ट्रपति भवन की सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो वहीं से ऐसा लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के राजा महाराजा जैसे पहले होते थे, तो वो तो हमारे लिए राजा ही तो हैं। तो वो क्षण का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इतना सुंदर लगा, इतना मन में उमंग, उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे दो बेटे, दो लोग को अलाउ किया गया था, तो बड़ा बेटा विवेक और छोटा बेटा विशाल, ये दोनों मेरे साथ थे और हम लोग साथ में गए। अपना एक निश्चित सीट था जहाँ हम लोग पहले से पता था, वहाँ हम लोग बैठे और वो राष्ट्रपति जी आई तो ऐसा जैसे बिगुल बजता है, जैसे पहले के राजा महाराजा आते थे तो वैसे ही हमारी रानी कहिए, राजा कहिए, उस तरह से उनका पदार्पण हुआ। और एक एक शरीर का रोया रोया जैसे कि रोमांचित हो गया, तो बिना मिले हमें इतनी खुशी हुई, उनको देख के इतनी खुशी हुई कि आज देखिए हमारी राष्ट्रपति महोदया कहाँ थी और क्या उनके अंदर कितनी बड़ी टैलेंट थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से
1: एक रतन को चुन करके निकाल के सिंहासन पे बिठाए हैं
0: और इतने बड़े पद पे, इतने बड़े सिंहासन पे बैठी। तो पहले तो हम प्रणाम करते हैं उस देवी को कि उनकी तो जर्नी आप लोग को मालूम है, हम क्या बताएं कि कितने कठिनाइयों से गुजरते हुए उनकी
1: जी
0: जिंदगी बीती। और वो पल था जबकि बारी बारी से बुलाया गया और जब मेरा नंबर आया तो हम भी अपने जगह से जब गए तो आपको पता ही है सब आगे सारे मिनिस्टर्स लोग बैठे थे, हमारे मोदी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जयशंकर जी जो विदेश मंत्री वो, और सारे मंत्री लोग बैठे थे, बहुत को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, सभी लोग बैठे थे। और हाँ, उस समय का एक हम आपको वाकया बताते हैं।
1: हाँ जी जरूर।
0: हमने अभी उनके जन्मदिन पर ये बात शेयर की थी, हमने फेसबुक पे साझा किया था कि जब हमने ऐसे सबने नमस्ते किया, हमने नमस्ते किया और हाथ भी नमस्ते करने के बाद हाथ तो जनरली नीचे ही चला आता था, ना मेरा हाथ नीचे आया, मेरा क्या और सारे मंत्रियों का आ गया नीचे। और आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताएं, मेरे मोदी जी का हाथ, वो हाथ जुड़ा का जुड़ा रहा, इस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा था, जो उन्होंने नमस्ते के लिए जो जुड़ा हुआ था हाथ, वो इतने आदर भाव से उनका हाथ जुड़ा ही रहा। मैं उनके पास से पूरे पास से ऐसे गुजरती चली गई, सबके हाथ नीचे, मेरे भी हाथ नीचे चले आए लेकिन मोदी जी का हाथ नीचे नहीं आया। मैं आपको भी तस्वीर दिखाऊंगी। और उसके बाद से उनके तरफ से पीठ होते हुए तब हम राष्ट्रपति के तरफ बढ़े हैं तो उनका हाथ नीचे आया होगा, हमने नहीं देखा। तो वो क्षण हम तो भूल नहीं सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास पहुंचने के पहले जो हमें ये बहुत सुंदर सा एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, मेरा मन बिल्कुल रोमांच से भर गया। फिर मैं आगे बढ़ी और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के पास मैं खड़ी रही। मैं तो एक पल तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही में खड़ी हूँ लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ा कि मेरे सामने वो थी। मैंने नमस्कार किया, उन्होंने किया, बधाई दिया, कुछ और भी शब्द बोले लेकिन वो शब्द मेरे कान में सुनाई नहीं पड़ा, खुशी के मारे, खुशी और रोमांच के मारे उन्होंने कुछ और कहा जरूर लेकिन हमने सुना नहीं। फिर उन्होंने सबसे पहले एक, आपने देखा हुआ पद्म का एक बहुत बड़ा सा जो है
1: मेडल,
0: मेडल उन्होंने पहनाया और उसके बाद
1: प्रशस्ति पत्र,
0: हाँ, प्रशस्ति पत्र जो बहुत लोग पूछते हैं कि उस गोले में क्या है, तो हम आपको बता दें, और लोग भी सुन रहे हैं, आपको तो मालूम है, लेकिन बहुत लोग को जिज्ञासा होती है कि ये जो गोला है उसमें क्या, तो उसमें वो जो प्रशस्ति पत्र रहता है, उसको जैसे बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस तरह से एक प्रमाण पत्र पद्मश्री का उसमें रोल करके उसी में रखा रहता है। ये प्रश्न बहुत लोगों ने हमसे पूछा था, तो हमने सोचा कि आज आपसे भी साझा करें। तो वो उसमें रखा जाता है
1: जी।
0: और आपको एक और छोटी सी बात साझा करूं, राष्ट्रपति जी को मैं ऐसे देखती रही, निहारती रही, उनका चेहरा ऐसे ऊपर हमने देखा, तो वो कहती है धीरे से, सामने देखो, सामने फोटो खींच रही है। अरे बापरे, क्या क्या सादगी थी, इतना महान व्यक्तित्व, और वो कह रहा है सामने देखी फोटो, मतलब कि उनको लग रहा है ऐसा ना कि इसकी फोटो मिस हो जाए तो जिंदगी भर इस पर। तो ये बात एक लाइन है, लेकिन आप इसमें भाव सोचिए कि उनका कितना बड़ा वो था कि मैं उनको देख रही थी, उन्होंने अपने को कहा कि वही सामने देखो। तो ये जो महान व्यक्ति है, ऐसे महान नहीं बनता है
1: जी।
0: वो गुणों की खान, अपने कर्मों से, अपने गुणों की खान से होता है। तो ये है तो बड़ी छोटी सी बात, लेकिन कितनी बड़ी बात है, मेरे पूरे जीवन में अगर मैं उधर ना देखती तो मेरी फोटो जो लोग देख रहे हैं शायद ना आती। तो आप को ये बताए कि जितने महान लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो कौन सी छोटी सी बात आपको जो है परोस देते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत पल था। हम बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके रेडियो के माध्यम से, जो मधुबन रेडियो है, अब तो 57 साल से रेडियो में गा रहे हैं, और लेकिन गाने का हमारा रेडियो है, इस तरह से हम स्टूडियो में आके शायद मेरा पहला ही इंटरव्यू होगा, ऐसे तो इंटरव्यू बहुत होते हैं, लेकिन आपके मधुबन रेडियो में आके हमने ये हमारा जो आपके साथ
1: जीवन की यात्रा
0: साझा किया है, ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है। और धन्यवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, धन्यवाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति को, और भी सारे लोग। हाँ, ये तो हमने बताया नहीं कि वहाँ से निकल के हम रात का जो रात्रि भोज था वो हमारे अमित शाह जी किया था, हमारे गृह मंत्री, और उन्होंने एक एक लोगों को, मतलब जब हम लोग यहाँ से अवार्ड पाने के बाद, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे जितने परिवार वाले थे, मतलब अवार्डीज के परिवार वाले थे, सबसे सब लोग मिले ऐसे लाइन से, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही उनके पास थे, सबसे मिले। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग सीधे अमित शाह जी के घर गए, उनके यहाँ हम लोग का रात्रि भोज था, और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अंदर हाथ जोड़ के बधाई दिया और अंदर जाने दिया, फिर हम लोग अंदर गए। तो ये पल जो है हमारे साथ, जो राष्ट्रपति भवन में से गृह मंत्री से लेके सारी चीजें रही, वो मेरे दिल दिमाग आत्मा अमित छाप छोड़ दिया। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मिर्जापुर जनपद, मेरे और भी साथी लोग, सब लोग इससे बहुत ही गर्वान्वित हैं। और एक बार पुनः हम सबको धन्यवाद देते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन को, जो हमें जो है यहाँ पे,
1: धन्यवाद तो हम आगे करेंगे। लास्ट में हमारे बहुत ही क्विक सवाल है, एक रैपिड राउंड हम खेलते हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि कजरी क्या है, एक लाइन या एक शब्द में आप इसका जवाब दे सकते
0: हैं। एक शब्द में कजरी का अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे, सावन भादो के महीने में बारिश का मौसम जो होता है, कजरारे बादल छाए रहते हैं, उसमें जो उमंग उठती है, प्रकृति में और इंसान में सब में, तो उस उमंग को हमें अपने दिल से निकालना है तो वो किस रूप में निकलता है? वो हमारी कजरी के रूप में निकलता है। कजरी जो गीत है, कजरी जो बोल है, इसको ढुनमुनिया कजरी भी बोलते हैं, तो इस रूप में निकलता है। हम अगर अगर कहा जाए तो यही है
1: जी। भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत तो लोग कहते हैं भारत देश महान ना, तो महान तो महानता में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये जैसे एक एक ये छोटा सा वो है, ऐसे आपका खेल है, कृषि है, और सारे जगह के फोक डांस है, फोक गाने हैं, सबके अपने आंचलिक भाषाएं हैं, आंचलिक लोक गीत है, तो सबको मिला के कोई एक से हमारा भारत नहीं। बच्चा से लेके बूढ़ा तक का पूरा जो उसकी जर्नी है, युवा वर्ग, प्रौढ़ता, फिर ये हम क्या बताएं, कितनी चीजों में ये सारी इंडस्ट्री है, हमारे उद्योग है, हमारे और भी छोटे छोटे हाथकरघे वाले हैं, मिट्टी का काम है, तो कुछ भी मतलब क्या बताएं, इतना बृहत है सारे चीज को मिला के
1: भारत।
0: मेरा भारत है, मेरा भारत महान, बहुत बहुत हमें गर्व है कि हम भारत देश जैसे देश में इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है।
1: सुंदर मैम, आखिरी में उर्मिला श्रीवास्तव जी कौन है?
0: उर्मिला श्रीवास्तव जी को कौन है ये तो आप ही बताएंगे। बस मैं एक बहुत छोटी सी एक छोटी सी कलाकार हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, अध्यापिका हूँ, और सबके समय पड़े तो सबके सेवा करने के लिए जो हमसे हो सकता है, मतलब तन मन और धन जो भी हमारे पास है उससे सबके लिए समर्पित, यही उर्मिला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप मधुबन रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत प्यार स्नेह और दुलार सहित धन्यवाद। नमस्कार।
1: थैंक यू।
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। संगीत एक समंदर समान है, जिसमें जितनी गहराई में जाएंगे उतने ही हीरे मोती मिलेंगे। समंदर जैसे ही संगीत में जो राग रागिनी है वो हीरे मोती के समान ही तो है, लेकिन इसके लिए चाहिए नियमित साधना और अथक रियाज। सुना है हमारी श्रद्धेय लता जी, जिसको सुर मल्लिका कहते हैं, वो भी अंतिम दिनों तक रियाज करते थे। इसलिए अभ्यास अनिवार्य है, कार्य

0: चाहे कोई भी हो। तो आइए संगीत साधना के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको प्रणाम। और जितने सारे लिसनर है, संगीत प्रेमी है, उसके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं
0: जी। आज हमने कहा कि संगीत समंदर के समान है, माना उसका जो निचोड़ कहना हम जो चाहते हैं
1: जी,
0: कि काम कोई भी हो लेकिन अथक मेहनत प्रयास हमको जारी रखने चाहिए। ऐसे संगीत रूपी साधना में भी रियाज या अभ्यास अनिवार्य है। आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: जैसे हम कुछ पसंद करते हैं
0: जी,
1: या कोई भी कला अगर उसमें दिलचस्प है तो हमारा दिमाग में वही घूमता रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कार्य करते, काम करते करते भी वो कर सकते हैं। ये खाना बनाते हैं, गुनगुना सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे, ये बंद नहीं हो सकता।
0: मन नेचुरल है, नेचुरल होता है।
1: अगर संगीत के साथ प्रेम है, प्यार है, जिगरी प्यार जिसको कहते हैं, वो तो करेंगी। जैसे हम भी, हमारे तो गृहस्थी में रहने से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा भी टाइम मिले संगीत के सामने संगीत करने बैठ जाइए। तो इसलिए कहते हैं कि कोई कला अगर प्रेम है तो वो अपना जगह ढूंढ लेंगे, समय ढूंढ लेंगे। समय को
0: उसके लिए समय नहीं है ये बहाना नहीं चलेगा।
1: समय पाबंदी नहीं हो सकता है, कोई भी समय वो बैठ सकता है, कर सकते है
0: जी। श्यामली जी, आज आप मालकोस राग में आगे क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, मालकोस राग में जो द्रुत लय की जो स्वर लिपि हो हमने दे दिया
0: जी।
1: आज बंदिश देने का दिन है, बंदिश उसके साथ थोड़ा तान करेंगे, विस्तार करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं जितने सारे लिसनर है उनको एक प्रकार की गीत है जिसको कहते हैं ध्रुपद। जैसे हम पढ़ाई में निबंध लिखते हैं ऐसे होता है ना, कोई भी टॉपिक लेकर हम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बहुत सुंदर उसको भाव प्रकाश करते हैं सबके सामने। इसलिए ध्रुपद जैसे है एक संगीत होता है। तो ऐसे आम जनता के लिए नहीं है, लेकिन जो ये शास्त्रीय संगीत प्रेमी है वो बहुत पसंद करते हैं ध्रुपद। तो
0: अच्छा।
1: इसलिए ध्रुपद करना चाहती हूँ। ये है श्री गणेश जी की स्तुति है।
0: Okay.
1: स्तुति के ऊपर एक बहुत सुंदर है। ये ताल जो होता है चौताल होता है, जो ध्रुपद के साथ चौताल ही बजते हैं। चौताल पखवाज एक पकड़ की वाद्य यंत्र है, उसके साथ बजते हैं। तो मैं करके सुनाती हूँ, लिसनर को सुनाना चाहती हूँ। वो भी सुनना चाहिए ना, वैरायटी टाइप का गीत सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जी।

0: आपने हमको गणेश स्तुति ध्रुव पद में सिखाई,
1: इसमें इस पद में गणेश जी कैसे है, लेकिन हमने भजन भी कह सकते हैं इसको, हम भजन की हिसाब से भी ले सकते हैं।
0: जी जी, आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, जो हमने पिछले एपिसोड में दूत स्वरलिपि दिया था उसका बंदिश जो है, पहले बंदिश अगर लिसनर किताब पेन लेकर बैठते हैं तो हम बताते हैं तो लिख सकते हैं। पिया संग लड़े पछे तानी में, पिया संग लड़े पछे तानी में, देखो ऐसी मदा की इनी में, देखो ऐसी मदा की इनी में, पिया संग लड़े पछे तानी में, देखो ऐसी मदा की इनी में। ये स्थाई हो गया, अभी अंतरा है
0: जी।
1: उन बिन मैं का कलन पड़ते हैं, उन बिन मैं क्या कलन पड़ते हैं, यूं ही रैन बिहानी तरफ तरफ मैं रही सेज पड़े, तरफ तरफ मैं रही सेज पड़े, जैसे मीन बिन पानी में, जैसे मीन बिन पानी मैं, पिया संग लड़ पछ तानी में। बहुत सुंदर बंदिश है
0: जी।
1: तो पहले हम स्वरलिपि के साथ ये धुन बैठा देते हैं, ये जो बोल बैठा देते हैं, ठीक है
0: जी।

0: हमको मालकोस राग की बंदिश दे दे।
1: हाँ, स्वरलिपि हमने दे दिया पिछले एपिसोड में। हाँ। अभी बंदिश इस पे बैठा दिया है, बहुत सुंदर बंदिश। हाँ। अगर कटते हैं तो बहुत अच्छा है
0: जी।
1: ठीक है
0: श्यामली जी, आगे भी मालकोस राग में आपसे जरूर सीखेंगे, मगर अभी वक्त हो चला है एक छोटे से अल्प विराम का। तब तक हम अपने श्रोता मित्रों को मालकोस राग से ही संबंधित एक प्यारे से मीठे से गीत का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हुए फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: पुनः आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज शुरुआत में ही श्यामली जी ने हमको संगीत के रियाज या अभ्यास कहो इसकी महत्ता हमको बताई, साथ साथ में मालकोस राग में ही हमको गणेश स्तुति भी सुनाई और मालकोस राग की बंदिश भी सिखाई। आगे श्यामली जी आप हमको क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी जो हमने जो बंदिश दिए हैं उसमें थोड़ा विस्तार करेंगे, थोड़ा तान करेंगे
0: जी।
1: लिसनर और भी कर सकते हैं सुनकर okay. अगर गुरु जी के पास शिक्षा लेता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके अगर लिसनर उठा सके। ठीक है
0: जी, बिल्कुल।

धनिसा गम धनिसा धनिसा पिया संग लर पछता गंग सम मग धनिसा पिया संग लर पछ धनिसा गम धनिसा

0: शामली जी, तो ये आपने विस्तार और तान हमको करके सिखाया।
1: हाँ, मालकुस को थोड़ा विस्तार किया, थोड़ा तान कर दिया
0: जी।
1: ऐसे तो गुरु के पास शिक्षा लेना ही है, जितना थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा दिया, जितना हो सकता है ले सकते हैं
0: जी।
1: ठीक है
0: शामली जी, आज खास आप हमारे लिए कौन सा गीत लेकर आए?
1: हाँ, बहुत पुरानी एक फिल्म है, अपेरा हाउस 1961 में लता जी बहुत बहुत सुंदर एक गीत उन्होंने प्रस्तुत किए थे, बालम्मा मानेना, बहुत सुंदर गीत, वो करके सुनाती हूँ
0: जी।

जब जब पलटू गागर भर के लट रही जाई मुख पे बिखर के, जब जब पलटू गागर भर की

নাপাও ঘুম ঘেটে তারু।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: ठीक है, हम ये कोशिश कर सकते हैं, लता जी का गीत है ना
0: जी,
1: तो कोशिश कर सकते हैं।
0: बिल्कुल श्यामली जी, पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, तो आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा भी आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है लेकर आ गए हैं और पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे आदरणीय गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन कहानी, कैसे वो गुजरात के एक गांव से निकले और उनको जैसे परमात्मा का ये ज्ञान, परमात्मा की अनुभूति हुई, उन्होंने सोचा है कि अपनी जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित करें, इस देश की सेवा करें और इस संसार की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। सेवा की भावना जो जागृत हुई है उनके अंदर, लेकिन उसको कैसे हासिल किया? जैसे आप सभी को याद होगा कि उनके बहुत सारी कठिनाइयां थी उनके लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि हर किसी को मंजूर नहीं था इस तरीके की सादगी और योगी जीवन जीने का। कैसे वो आगे बढ़े और वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, अपने जीवन को वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे उन्होंने कैसे जिया है, आइए आज जानते हैं आगे की कहानी को। जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। आदरणीय गंगाधर भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको घसीट कर लेके गया है उसके बाद फिर क्या हुआ?
1: तो इसी दौरान एक जब मैं गुरुवार को सेंटर पे गया था, 85 की बात है, फरवरी मार्च की बात, तो वहाँ एक बुलेटिन आता था। उस टाइम तो ये मोबाइल की ये सुविधा नहीं होती थी, एक मधुबन से जो डायरेक्शन आता मुरली के अंदर लिखा हुआ आता था और वो दीदी पढ़ती थी और जिसको जो है डायरेक्शन देती, तो उसमें आया कि एक पदयात्रा का निकलने वाली है भारतवर्ष से, 13 पदयात्रा का आयोजन 1985 में, ये बुलेटिन आई। तो उसमें पढ़ा और फिर बोला कि शाम का समय था, हम सेंटर पर थे, तो कहा कि कौन कौन जाएगा, किसको जाने की इच्छा है तो हाथ खड़ा करो। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसा जैसे दीदी ने, पुष्पा दीदी थी हमारी, तो हाथ खड़ा किया। तो फिर ठीक है, मैं ना जाना ना पहचाना, क्योंकि घर में तो छुट्टी थी नहीं, और वो कितनी लंबी यात्रा, 5000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से दिल्ली पद यात्रा, और करीब करीब 6 महीने समय। मैं फाइनल ईयर में था तो मार्च में मैंने एग्जाम देने के बाद जून से स्टार्ट होने वाली वो पद यात्रा। तो मुझे अभी वो फॉर्म भरना है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, घर से स्वीकृति पत्र चाहिए और खुद की स्वइच्छा चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, तो ये सारी बातें थी। तो ये फॉर्म भरना था, तो अब फॉर्म की तारीख लास्ट थी और मधुबन वो फॉर्म भेजना था, वहाँ से सिलेक्शन होगा। और फिर तो लास्ट डेट आ गई, तो दीदी फिर मेरे को बोले कि आपका तो कुछ आया नहीं, तो नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, आपको जाने नहीं मिलेगा। अब भाई

0: मैं अभी गुजरात जाऊंगा और मेरी एग्जाम भी हो गई है, पापा को मिलने चला जाऊंगा। तो लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान ऐसे युक्ति रहता तो मुरली में बहुत अच्छी बात आई, बच्चे कभी भगवान के बच्चे कभी झूठ नहीं बोल। अब ये बात आई, अभी मैंने युक्ति रची, लेकिन ये युक्ति मेरी वो बाबा की मुरली से, मैं बोला ये झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, बस तो वहाँ खत्म हो गया, मेरी युक्ति फेल हो गई। बाबा कहता है उसमें मेरा फायदा है, मेरा खुद की मनमत में तो मेरा नुकसान ही होगा। तो इस तरह से मन में द्वंद्व चला और फिर मैंने बोला नहीं ये तो युक्ति है, तो वो दिन चला गया। फिर दूसरा दिन भी दूसरी युक्ति रही, वो भी फेल हो गई। फिर तीसरा अभी लास्ट लास्ट है, तो अभी क्या करूँ, अमृत वेल बाबा करो मुझे तो जाना है पदयात्रा, कुछ भी हो जाए ये आपको करना। तो हुआ क्या कि लास्ट में जब हम फैक्ट्री में जाते थे तो सारे ऑर्डर्स वगैरह आते थे, तो हम फैक्ट्री बंद हुई 5 बजे और उसके बाद जो किसका ऑर्डर पूरा हुआ, बॉम्बे का, कलकत्ता का, चेन्नई का, वो सब हम सप्लाई करते थे, तो इसका तैयार हो गया, ये प्रोसेसिंग बाकी इतना है। तो हम ऐसे दो भाई फैक्ट्री में अंदर देखने गए, मूड भाई का बहुत अच्छा था, तो मेरे मन से मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन मन में मूड अच्छा था ऐसा मैंने संकल्प आया और तुरंत मन में ये हिम्मत आई कि मैं है ना पदयात्रा में जाना चाहता हूँ और ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये यात्रा है और 5 महीने की है, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मेरा भाई का पता नहीं क्या हुआ, अभी जाओ तो मैं भी चलूँगा जो विरोध करने वाला, तो ऐसे हुआ। तो मैंने ऑफिस में गया, ऑफिस में A4 का पेपर ले आया और उसको ब्लैंक पेज पे साइन करा दिया। लिखना क्या वो पता नहीं, तो लिखना है वो तो दीदी को बोलूंगा इसमें जो लिखना है लिख दो। और मैं बस ऐसा जैसे कि शाम को खाना बना एक तरफ रह गया और यहाँ हम 15 किलोमीटर बस ये काम पूरा करके जो भी है, तो भागा भागा भागा दीदी के पास जाके आया, दीदी मैं ये ले आया और उसमें सारा लिखा और मेरे को पद यात्रा में जाने मिला। फिटनेस सर्टिफिकेट हमारा जो फैमिली डॉक्टर था उसको उसे ले लिया और ये स्वीकृति मिल गई और इन्होंने भेजा और मेरा फिर आना हुआ मधुबन और पदयात्रा का मेरा फाइनल हो गया। तो इस तरह से बाबा की श्रीमत में चलते हैं, तो वो न जाने, अब मैं तो भाई के सामने मेरा मुंह बंद हो जाता था, लेकिन बाबा का चमत्कार के कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये बात मेरे जीवन से बिल्कुल ये ज्ञान में आने से कि दृढ़ता है वह सफल, ये बात मेरी वहां से स्टार्ट।
1: आपके जीवन में आदर्श कौन रहे?
0: आदर्श तो फिर जैसे मैं 85 में जो पदयात्रा में आया, तो पहले तो हम गीता पाठ ही थे, तो गीता का ही सारा ये योगेश्वर और ये सब चलता था, लेकिन यहाँ जब आए तो मधुबन में आए तो पहले पहले मुझे सेवा मिली ओम शांति भवन, वो भी एक मजेदार कहानी है कि भाई अभी 6 महीना मुझे निकलना है, 6 महीना कोई अपने बेटे को कैसे छोड़ेगा, तो हम जाना है तैयार भी हो गया, तो भी मैं अभी भाई से हिम्मत नहीं कर पाया 6 महीना, लेकिन बाबा की ये मदद के उन लोगों को मैंने बोला कि अभी मेरी डेट आ गई मुझे जाना है, तो वो मुझे वाजते गाजते सेंटर पर ले आए सभी परिवार को लेके, और वहाँ सेंटर पर ले मैं इसको छुट्टी दे रहा हूँ, आपने हमें नहीं बताया। फिर वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आए, रेलवे स्टेशन छोड़ने आए तो विदर्भ जोन है हमारा, तो विदर्भ जोन ने सभी सेंटर की इंचार्ज जो बहने थी वो व्हाइट व्हाइट कपड़े, उन्होंने कभी देखा नहीं था बहनों को ब्रह्मा कुमारी को, तो व्हाइट व्हाइट 25 बहने जो, क्योंकि पदयात्रा का जो ओपनिंग था ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति तत्कालीन जो थे वो वहाँ ओपनिंग करने वाले थे, ज्ञान कलश देके यात्रा का शुभारंभ ओम शांति भवन में करने वाले थे। तो जो डेकोरेशन की जो मधुबन में डेकोरेशन करने की ड्यूटी नागपुर जोन को दी गई थी, परिणाम स्वरूप हम सारा सामान लेके आ रहे थे, तो 25 मुख्य बहने थी सेंटरों की वो भी आ रही थी हमारे साथ, दीदी भी साथ में, तो हम दो भाई सिलेक्ट हुए थे, एक भंडारा से और नागपुर से, दो भाई थे तो हम आए और यहाँ आए, और फिर यहाँ हमें जो अभी आप देखोगे पांडव भवन में राजू भाई की जो ऑफिस है वो देवधाम करके था, वहाँ हमें रहने का भी मिला और वहाँ सारा डेकोरेशन का सामान, ऑफिस तो बाद में बनी और हम यहाँ आ गए मधुबन।
1: सो जैसे लगभग 1985 से आप संस्था में समर्पित रूप से अब सेवा,
0: हाँ फिर वहाँ ही रह गए और बीच में गए जो भी कार्यवाही थी कि भाई समर्पित के लिए किया है तो वैसे करके गए, और फिर दिल नहीं लग रहा था और रिजल्ट भी आ गया और सब, फिर यहाँ ही रहने लगे।
1: तो आपने क्या पढ़ाई पूरी की थी?
0: मैंने BCom ग्रेजुएट किया

0: एम कॉम में कर रहा था, तो एम कॉम का सेकंड ईयर के बीच में ये घटना घटी और फिर मैंने
1: काम छोड़ दिया,
0: वो परीक्षा भी नहीं दिया और आधे में ही मैं फिर मधुबनी आ गया। अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मन में यही है कि मुझे जीवन ऐसे ही जीना है, तो फिर यहाँ मधुबनी।
1: क्या प्रेरणा रही समर्पित होने के लिए आपको?
0: समर्पित लेके बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान। हम क्योंकि ज्ञान गीता पढ़ते थे तो ज्ञान में जो उसमें एक श्लोक आता था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार, और तो नरक के द्वार पढ़ते तो उस टाइम समझ में नहीं आता था। अब यहाँ ये पता है काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है, तो चेतना से अंदर कॉन्शियस से भी ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हमारे जीवन में चल रहा है तो ये तो हिंसा है, और हिंसा है तो बाबा से प्यार कैसे जुटे? बाबा से नजदीक तो हम नहीं जाएंगे,
1: परमात्मा के नजदीक,
0: परमात्मा से नजदीक हम नहीं जा पाएंगे। तो वो एक अंदर मन में चलता रहा, तो फिर ये जीना है तो नशा खूब रहता था। बाबा ने जो कहा है तो मुरली बस सुनना है, और फिर हमें ड्यूटी भी शुरू शुरू में 15 दिन के लिए वहाँ शांतामणि दादी हमारी इंचार्ज हुआ करती सेवादारी, उसके बाद फिर चंद्रमणि दादी ने भी हमें, क्योंकि और मनोहर दादी हमारे विदर्भ जोन की क्षेत्र की वो प्रभारी थी, तो उनसे सारा मेल मिलाप होता रहा और बड़े प्यार से। उसके बाद मैं टोली में गया, टोली डिपार्टमेंट है हमारा जो प्रसाद वितरण का, उसमें रामनाथ भाई के पास गया। रामनाथ भाई भी बड़े ज्ञानी थे, तो मुरली सुनना और एक्यूरेट करना वो खुद भी ध्यान रखते थे और हमारा भी ध्यान रखते थे कि नहीं पढ़ाई पर मुरली सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, वो एक छोटी सी बुक पॉकेट में रखते थे क्योंकि वो सुना थे
1: जी।
0: तो आदर्श में फिर आपने जैसे पूछा बहुत अच्छी बात के आदर्श कौन रहा, तो उसमें ये रहा कि हम जहाँ डिपार्टमेंट है उसके बाजू में दादी का नाश्ते का कक्ष है, तो दादी रोज आती थी हमारे पास, हमें रोज जैसे छोटे बच्चों की तरह, तो दो बातें जरूर पूछती थी, आपने अमृत वेला किया, अच्छा आज बाबा ने क्या कहा बताओ, तो उनको बताना पड़ता था। उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, तो माइक भी नहीं था डिपार्टमेंट जो माइक आता था, तो और हमें ड्यूटी थी तो उस टाइम हम तोसा को पैकिंग वगैरह करते थे, मुश्किल से 2,000-2,500 की, तो लास्ट में पार्टी हुई 2,500 मानना सबसे बड़ी पार्टी, तो 1,500-2,000 ऐसे लोग आते थे पार्टी बाबा को मिलने, तो हमें टाइम नहीं मिलता था कि हम मुरली सुनने जा पाए, और मुरलियाँ हाथ में नहीं मिलती थी, तो एक ही मुरली दादी के पास ही होती थी और सुनाएंगे उससे ही हमें सुन, तो थोड़ा सा हम जाते थे तो प्रसाद वितरण के लिए जो ओम शांति भवन में, तो वहाँ माइक थे तो वहाँ सुन लेते, तो वो नोट कर लेते, वो नोट करके फिर दादी आएगी पूछेगी तो हम बताएं और दादी बड़े प्यार से, और इतना सा प्रसाद लेंगी ना, तोसा का एक उस टाइम तोसा ही होता था, मोन थार दो ही चीज होती, इतना लेंगे और खाएंगे और बड़े प्यार से चली जाएंगे। फिर आगे क्या हुआ कि अब 2-3 साल हो गए मुझे वहाँ, 3-4 साल 5 साल ऐसा मुझे हो गया वहाँ, तो दादी जी ने जो ज्ञान स्वरूप प्रोजेक्ट है इसके बारे में सेवा का वृद्धि के कारण बाबा का मैसेज आया, तो फिर वो ज्ञान का जमीन ली गई और उसका डेवलपमेंट का काम चालू। तो अभी वहाँ कौन जाएगा ये सारा देख रेख करने के लिए, तो ये बात मधुबन में दादी ने सभी के सामने रखी। दादी जी का शाम को लगभग रोज क्लास होता था, तो उसमें मधुबनवासी होते थे और उसमें कहा था, सभी कहते थे भाई माँ दादियों को छोड़ के कौन जाएंगे, इतना मधुबन छोड़ के क्यों, एक भावना थी ना बॉन्डेज, तो कोई जाना नहीं चाहता था, वो तो जंगल था ज्ञान सर, वहाँ भालू रहते थे तो कोई जाना नहीं चाहते थे वहाँ से। तो अभी मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ, तो निर्वेर भाई और दादी ही सारा कारोबार संभालते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो निर्वेर भाई ने कहा कि वो जो बच्चा आया है ना टोली डिपार्टमेंट में वो पढ़ा लिखा है, दादी उनको भेजो वहाँ, जो सारा हिसाब किताब का फाइनेंस का ये सारा मैनेजमेंट करना, लिख के हिसाब देना, अकाउंटिंग करना, तो इनको भेजो। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर दादी जी हमारे पास रोज आती थी, तो दादी मेरे को पूछती थी मैं तेरे को एक दूसरी सेवा दूंगी, तो रामनाथ भाई हमें सहमत नहीं होते थे कि दादी मैंने हैंड्स तैयार किया है आप नहीं ले सकते, मना मेरी सहमति नहीं है ऐसा दादी रामनाथ भाई बताते, लेकिन दादी ने फिर रोज आती थी तो तेरे को एक बड़ी सेवा, इतना तोसा लेंगे और फिर चली जाएंगे। मैं बोला दादी रोज मुझे पूछ रही है, ऐसा 10-15 दिन चलता रहा, तो मेरे से रहा नहीं गया, दादी जी आप जो कहेंगे मैं हाँ जी, वहाँ भाषा ही हाँ जी की थी, मेरे को ये आता है नहीं आता ये बात नहीं, जो दादी जी के वो करना है इसको। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक बार दादी ने कहा तुम 2 घंटे है ना ज्ञान स्वरूप जाना। दादी इतनी रॉयल थी और हमें जैसे कि बच्चों का माँ का प्यार जैसे एकदम पालन पोषण इतना स्नेह होता था दादी के सानिध्य में, आप लोगों ने भी जानते हो। तो उसके कारण मैं कहा कि ठीक है, और फिर मेरे 2 घंटे दिन में जाना, और रामनाथ को बोला इसको 2 घंटे छुट्टी दो और ये हिसाब किताब करेगा और आपके पास भी सेवा करेगा। ऐसी मेरी सेवा चालू हुई। फिर वहाँ कारोबार बढ़ता गया, कहा ज्ञान सरोवर का कारोबार बढ़ा, तो फिर बोला कि 4 घंटा। ऐसे करते करते फिर दादी ने कहा कि अच्छा इसको अभी रामनाथ तो दूसरा हैंड्स तैयार कर ले, और तो मेरा
1: ज्ञान सरोवर रह गया।
0: ज्ञान सरोवर का यज्ञ का बड़ा पहला प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी का ऐसा वैसा उसका दायित्व तो मुझे दिया गया, जो फिर मैं उसके सारे उसी में रच बच गया और ज्ञान सरोवर का कारण।
1: तो ये जो पीरियड आप देखते हैं 4 दशकों से अधिक समय से आप संस्था से जुड़े और सेवाएं कर रहे हैं मुख्यालय में रहते हुए, अपने जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धि या प्राप्तियों को आप अनुभव करते
0: हैं? कहते हैं ना, जो आदि में हमारा जैसे जन्म पत्री होती है ना, ऐसा ही हमारा जीवन बन। तो हमारा जन्म पत्री में जैसे मैंने कहा कि 5-6 बजे से 7 बजे योग कर रहे थे, मैं वो गीता पाठशाला में एंट्रेंस हुआ नया नया, और वहाँ योग चल रहा था, उसमें गीत बहुत सुंदर बज रहा था, परम पिता परम धाम से योग सिखाने आए है, पावर और सुख का वर्षा देने आए। ये गीत बहुत सुंदर गीत है, अभी भी है अपने मधु अपने यहाँ। तो वो गीत से मेरा जन्म हुआ कि भगवान स्वयं आया है, हमें वर्षा देने आया, सुख का वर्षा देने आया। तो उसी से वो वाइब्रेशन योग में बड़ी रुचि रही, और हम 2 से 5 मधुवन में भी आए तो 2 से 5 हम योग करते थे और मज़ा आता था, यंग थे तो वो रुचि रही। तो अंदर में अंदर कि नहीं, मुझे बस बाबा को मैंने जान लिया और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब वैराग टाइप का, और बाबा जो कहे वो ही फॉलो करना, उसको स्टडी करते थे। और रामनाथ भाई हमें अच्छे मिले तो वो भी ज्ञान के चिंतन कराते, आज बाबा ने क्यों कहा कैसे कहा, तो ये भी एक हमारा एक सपोर्टिव और मुझे संग अच्छा मिला। तो इस तरह से कि जीवन में जो बाबा कहते हैं, अब बाबा आया तो हम अभी बाबा का सेवा और बाबा के भी ज्ञान योग करना, यही जीवन का उद्देश्य रहा। और दादी का सानिध्य जो मिला, वो जो एक प्रकाशमणि दादी जी का जो सानिध्य मिला, और मैं जब घर से, मेरे जो बैकग्राउंड में घर से मैं 6 किताब पढ़ के, तभी लगभग 10 बरस का होगा, तब से मैं घर से बाहर ही चला गया, तो माँ बाप का प्यार मुझे इतना नहीं मिला था। तो मैं कभी कहता था कि जैसे राखी बांधती थी बहने, तो मैं कहता था मुझे तो बाबा का चित्र देते थे और उसके पीछे स्लोगन लिखे थे, हाथ से लिखा हुआ स्लोगन देते थे, उस टाइम ये सब प्रिंटिंग का नहीं होता था। तो एक जब राखी आई तो मैंने कहा कि मुझे तो मम्मा का चित्र आना चाहिए राखी में, क्योंकि मैं मम्मा माँ है मेरी, वो माँ का तो प्यार मुझे नहीं मिला, तो ये माँ मेरी में, तो वो सच में वही मेरे को मम्मा का चित्र के साथ वो स्लोगन लिख के आया, तो उसे और विश्वास बैठता गया। तो दादी ने जैसे माँ का प्यार दिया तो वो बॉन्डेज एक बहुत हो गया, और ये मेरा आदर्श रहा कि दादी ने जो कहा और कहा, और वहाँ भाषा ये रही कि जो बड़े कहे उसको हाजी करना, ना जी करना, ये भाषा नहीं। ज्ञान में सफल होना है तो जो बड़ों ने कहा उसमें हमारा कल्याण, ये आदर्श रहा और यही ज्ञान से हम आगे बढ़े।
1: जी, सो भाई साहब, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं, कौन सी सेवाएं संभालते हैं यहाँ पर?
0: बात यह हुई कि जब ये ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसके बाद फिर ये शांतिवन का जो बातें चलने लगी, तो दादी ने कहा कि शांतिवन में अभी करना, तो यहाँ भी कोई आना नहीं चाहता, भगवान नीचे कौन आएगा, यहाँ भोपाल भाई और अशोक भाई करके थोड़े रहते थे और यहाँ खेती बाड़ी हुआ करते। तो मेरे को बोला कि आपने तो सारा किया, अकाउंट का सारा सब कुछ दिया है, तो आप भी नीचे जाओ और ये कारोबार। तो फिर मैं पहली बार दादी को थोड़ा सा सहमे आवाज से बोलने लगा, दादी मुझे दूसरी सेवा दे दो ना, क्योंकि हम मन में तो ये था कि अभी मधुवन छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना, तो ये मन में था। दादी को कहा तो दादी ने कहा अच्छा, तो रमेश भाई थे हमारे जो अकाउंट अपने, तो उससे तो छुट्टी ले ली थी, और लेकिन सेवा में मुझे रखा था नीरज भाई ने, दादी और नीरज भाई संभालते थे उस टाइम, तो रमेश भाई तो मधुवन से आते थे अकाउंट के हिसाब से, तो मैंने छुट्टी ले ली थी, अभी मेरे कोई दूसरी सेवा दे दो दादी, लेकिन मधुवन में। भले झाड़ू पोछा की दो लेकिन मधुबन में रहेंगे। दादी ने पहली बार मुझे थोड़े मतलब डर डर के भी दादी को ऐसा मैंने बोला, कभी ऐसा नहीं बोला था कि वहाँ ऐसा बोलेंगे तो घर भेज देंगे, ये डर रहता था मधुबन में हमें घर भेज देंगे, इसलिए बोलने नहीं होता, लेकिन मैंने बोल दिया। तो दादी ने बोला अच्छा ठीक है। फिर दादी मुरली सुना कर वो आंगन में बैठती आते थे, फिर दो तीन दिन हुआ फिर मेरे को बुलाया, तुमको है ना वो सेवा करनी है, अभी अकाउंट की ही करनी है लेकिन शांतिवन में जाओ, यहाँ दर गर्मी वहाँ ठंडी, तो मन में ये कहने हम नहीं जाएंगे। फिर तीसरी बार बोला तो अच्छा तू रमेश से मिल लेना। रमेश भाई ने बोला कि नहीं तुमको ही करनी है ये सेवा, तुमने ये ज्ञान सुनो तेरे को आता है सब तुम कर। लेकिन मैंने बोला भाई मुझे सारा हिसाब किताब करना, कोई कागज मिलता है वो उसमें सारा मगज उसमें ज्यादा ज्ञान योग छूट जाता है मन में ये था। तो फिर ठीक है ऐसे जो भी हुआ उसके बाद फिर मैंने कहा, तो दादी ने फिर से मुझे जो महादेव नगर है ना जो चंद्रिका दीदी का उनका मकान का ओपनिंग था, उसके पूर्व दिन जो दादी दूसरे दिन ओपनिंग करने जाने वाली, तो रात को मीटिंग हुई, इसमें ये नीरज भाई दादी करुणा भाई और वही लोग संभालते थे ऊपर मधुबन में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि आपको अभी ज्ञान सरोवर की सेवा जिससे मुक्त है। तो करुणा भाई ने बोला कि हमें भी एक सीनियर भाई चाहिए क्योंकि ये भी मेरा कारोबार है जहाँ साउंड का इसका सारा उसका भी अकाउंट करना है तो मुझे दे दो। तो ऐसा डिसाइड हो गया। तो दूसरे दिन मेरे को दादी से अशोक गाबा जो अभी है उसने मेरे को बोला कि तुमको अभी ज्ञान सरोवर में करुणा भाई के पास सेवा कर। तो मेरे मन में बोला अच्छा ठीक है मधुबन तो रहने मिला ऐसा करके, हाँ दादी जी ओपनिंग करने चली गई। लेकिन तीन दिन तक मन में खुंदक रही, मेरे को तो मधुबन रहता फिर ज्ञान सरोवर ये, तो इस तरह से मन में एक द्वंद मधुबन मना बाबा का उसमें गीत बहुत सुंदर कि मधुबन स्वर्ग भूमि है और स्वर्ग भूमि को छोड़ के अभी मधुबन में मुख्य मुश्किल से हमें मिला है मौका फिर से मैं वहां छोड़ के कैसे लेकिन सेवा। तो ये एक मन में थोड़ा सा था तो, क्योंकि यज्ञ में भी कोई ऐसी चीज तो नहीं, भगवान तो आबू में ही आएगा कहीं नीचे थोड़ी आएगा, नीचे जाओ फिर बाहर वाले लोगों से काम कराना ये सब, थोड़ा हम अपने परिवार में पवित्र भाई बहनों के साथ रहना संग ये सब अच्छा लगा। तो मैंने ये भावना मन में थी ठीक है। फिर उन्होंने कहा तो फिर मैं ओम शांति मीडिया का कारोबार, पहले तो मैं अकाउंटिंग करता रहा और मीनवाइल विंग की सेवा आरंभ हुई, तो विंग की सेवा में फिर मीडिया में था, तो मीडिया में फिर मुझे ये दायित्व दिया गया जो हमारी मासिक पत्रिका ओम शांति मीडिया निकलती है उसका उत्तरदायित्व दिया गया, क्योंकि मुझे तो कोई जर्नलिस्ट का नॉलेज नहीं था। लेकिन दादी जी ने मुझे बुला के कहा कि तुमको अभी ये सेवाएं वृद्धि हो रही है तो ज्ञानामृत तो है ही, लेकिन ओम शांति मीडिया में ऐसा समाचार सुनाना है और दो बातें याद रख तुझे ये सब लिखना करना। उस टाइम क्या है कि दादी के चीज के ऊपर नजर हो जाती थी ना, ये काम ठीक कर लेता सेवा ठीक, तो उसको वो दादी सेवा देती जाती थी। तो हम उस टाइम तो पेपर तो पढ़ते नहीं थे, बाबा की महावाक्य में आता था बच्चे है ना रावण की मुरली पसंद करते ज्ञान का मुरली, कि रावण बाबा कहते हैं कि उसमें जो खराब आजकल के न्यूज़पेपर है उसमें तो खबरें ऐसी आती हैं जो, तो हमने वो टच नहीं किया था 10 साल से, ये रावण की मुरली हम टच नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, जिस राह पर हमें जाना नहीं उस राह का समाचार सुन के क्या करेंगे, ऐसा भाव मन में आता था। तो लेकिन हमें सेवा ही वो मेरे जीवन में ये रहा कि समर्पित होने के बाद भी जो मेरी कमजोरी थी, मेरे को जो कम आता था वही मेरे सामने पेपर होता था, वही मुझे सेवा देते थी दादी। तो अकाउंट में भी हमारे फैक्ट्री में तो एक अकाउंटेंट रखते थे और उसको पैसे देते थे, वो अकाउंटिंग करके चला जाता था फैक्ट्री से तो सारा। लेकिन यहाँ मेरी कमजोरी थी अकाउंटिंग करना, ये हालांकि मैंने पढ़ाई की थी अकाउंटेंसी में लेकिन यही करना ये माथा पच्ची है, तो यहाँ भी मुझे वही डिपार्टमेंट मिला ज्ञान सरोवर का सारा हिसाब किताब ये सब करना, तो जो मेरी कमजोरी है वही मुझे सेवा मिलती थी। अब ये मैं सोचा कि अभी ये रावण की मुरली मिली थी तो दादी ने मुझे वही सेवा दे दी, लेकिन दादी यहाँ तो सेवा ईश्वरी सेवा समाचार। तो फिर मैं लाइब्रेरी में गया और अभी कौन सिखाए कैसे लिखना है क्या करना है, तो मैं लाइब्रेरी में गया और एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें राजस्थान पत्रिका होती थी, भास्कर नहीं आया था तब, दिव्य ज्योति नव ज्योति वगैरह होते थे, तो वो मैंने पढ़ने लगा। तो उसमें से मैंने सुना कि न्यूज़ कैसे बनती है, अब कौन सिखाए, यहाँ तो कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं। तो मैं पढ़ा तो उसमें दो चार बातें थोड़ी समझ में आई। एक तो उसमें नाम लिखा है कि कहाँ का है, भीमबाल का है या अरे उधर का है, न्यूज का नाम लिखा रहता था। दूसरे फिर ये बात समझ में आई कि कौन से संदर्भ में है, तो भाई ये मेला है, ये कृषि मेला है, गौ मेला है, उसमें इन्होंने ये बात कही। फिर कौन वीआईपी है, तो उसके वो फिर स्थान, व्यक्ति, कौन बोल रहा है, ये पांच बातें। तो ये बात समझ में आई तो उसके आधार से मैंने, मेरे को ड्यूटी दे दी थी 10 दिन के, आपको 15-15 दिन में चलाना है। तो मीनवाइल फिर मुझे मैंने लिखा, और फिर एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट जो अभी शरीर छोड़ा, कमल दीक्षित जी करके, आप भी जानते होंगे। तो वो कमल दीक्षित जी जो भोपाल में रहते थे और राजस्थान पत्रिका के एडिटर भी रहे हुए थे, तो वो मीडिया कॉन्ट्रोवर्स में और बाबा के यज्ञ से जुड़े हुए। तो फिर करुणा भाई ने कहा कि भाई ये है तो इनके साथ मिलो और सीख लो जो भी है। तो मैं सीखा, फिर वो मेरे को हेल्प करते थे। तो A4 साइज का जो पेपर है ना, उतना ही ओम शांति मीडिया निकलता था, ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर ज्ञानामृत में चला। तो अब जर्नलिस्ट ना होने के कारण, और हमारी हिंदी भी एक साहित्य के रूप में लिखना और बोलना वो अलग बात होती है, तो एक लाइन में मेरी 17 मिस्टेक होती थी। वो कहे ठीक करो, फिर वो बड़े प्यार से कहता था कोई बात नहीं, और वो ऐसे ही छप जाती थी गलतियाँ, बिंदी नहीं लगा कोई तो, लेकिन वो मुझे ढांचे से सीख जाएगा। और वो फिर चले जाते थे, 2-4 दिन आते थे फिर चले जाते थे। तो ऐसा महीने में 1-2 बार आते थे। तो ऐसे करके मैंने फिर ये जर्नलिज्म, बाबा ही कहो समझ लो, मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारी विशेषता, यहाँ सच कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जिसको ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का बारे में एक अगर सही में अगर समझना चाहते हैं, तो ये स्वयं परमात्मा ही सब कार्य कराते हैं और परमात्मा ही नियुक्त करते हैं, परमात्मा ही उसको वो विशेषता भरते हैं, चाहे उसके लौकिक योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो योग्यता भर के उसको परफेक्ट बनाते हैं। और एक सुंदर कारोबार ये ब्रह्मा कुमारी में, और मेरे को भी ये दायित्व तो मिला जो आज भी चल रहा है, ओम शांति मीडिया पत्रिका जो अभी पहले पाक्षिक थी, अभी इस साल से हमने उसको मासिक किया है, और सारे गांव-गांव में जाती है और विदेश में भी जाती है, और लाखों पाठक है उसके, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही है, और उसमें ईश्वरीय सेवा समाचार भी बड़े, जो हमें कहीं मालूम नहीं है तो हम एक दूसरे से पढ़ के भी और सुन के भी, और ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और वर्तमान समय इसका दफ्तर अभी शांति वन में और आनंद भवन में, और मैं वही सेवा करता हूँ, एडिटिंग की सेवा करता हूँ। तो बाबा ने मुझे जो कुछ नहीं आता था, तो जो भी इतनी सेवा बदलते तो मुझे एडिटर बनाया, और एडिटर से और एडिटर ही नहीं लेकिन सारा मैनेजमेंट पे करना, सारा डेवलप करना। आज हम मेरे साथ 10-12 भाई बहन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और समर्पित रूप में हम ये कारोबार चलाते हैं शांतिवन में, आनंद भवन।
1: बहुत सुंदर जर्नी रही भाई जी, एक समर्पण भाव और एक निश्चय। और जब ज्ञान की समझ होती है और क्लैरिटी मिलता है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो जीवन में दृढ़ता अपने आप आती है, और हम जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हैं उसको पार करते हुए हम अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। या आपकी इस जीवन यात्रा से हमें ये समझ में आता है, आज आपने अपनी समय निकाल करके आप आए, और एक योगी जीवन क्या होता है, एक लौकिक काम करते हुए भी एक अलौकिकता को उसमें दर्शाना, और अलौकिकता अपने जीवन में जब आता है, लौकिकता अपने आप जो चली जाती है और हम खुद एक आदर्श बन जाते हैं, ये भी आपने हमें आपके इस जीवन की यात्रा से परिचय कराया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत आपको भी, रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति।
1: दोस्तों, जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम से आज यहीं पर हम विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया समाज, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम

0: धन्यवाद।
1: बताइए।
0: मेरा नाम खमुरा बिश्नोई है, मैं ओशिया तहसील के गांव एकलगोरी का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं और पिछले लगभग

0: दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग 2.5 दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम 3-4 शर्तें होती है। वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए। और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए। तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए। और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो। सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है। भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता। मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का, प्रसाद का ही भोग लगता है।
1: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
0: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विश्नोई समाज शुरू से ही, गुरु दम्बेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विश्नोई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बिठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बिठा के तुम्हें जीना है। तो गुरु दम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विश्नोई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
1: जी सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
0: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु दम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था। और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ, मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ
1: बिल्कुल
0: था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवाओं के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है और पर्टिकुलर एक टाइम बींग के लिए है। उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे और सांसें भी गिनी हुई है। अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूँ। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूँ तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
1: जी सर, बिल्कुल। जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके
0: जी
1: माता
0: मैडम,
1: पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं, और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी, आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले
0: हाँ
1: स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसा कि हमारी जो 5,000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से प्रति हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है। तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी जे देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं, लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है। तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा, तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसा वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पर देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सीक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया, तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरी पेड़ों के लिए अमृता देवी के तुत्व में शहीद हो गए थे, और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है
1: जी। तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
0: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे, तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने। तो मैंने कहा अभी सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था, मैंने देखा इस कट्टे का उपयोग तो मुझे करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं, मैं कचरा बीन रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माय मदर प्लैनेट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूं, और इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
1: जी सर, सलाम है आपके कार्य को, और आज भी वो कार्रवा जारी है, और
0: बिल्कुल शुरुआत में ऐसा हुआ
1: जी,
0: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फब्तियां कसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसी ने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया, जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है, तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है, भले बीच में रस्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे पहुँचता हूँ, वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू में कहा कि ये हमारे समाज मेरे परिवार का हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है, परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू में उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं उनके जो पीर की परिवार के लोग उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था, लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था, तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा, जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाईकोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
1: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
0: नहीं, कई बार ऐसा लगा, कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ था कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते, ऐसे 3-4 बैग हो जाते थे, 4 बैगों को उठा के किसी साथ वाले राही को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता, तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और सेमी खोल रहा हूँ। मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था। और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तो तारीफ करने लगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े, चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे, शुरू में थे वो अब एक भी नहीं था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गया ये। तो अभी भी हमारे कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में 50-100 हो जाते हैं, और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
1: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
0: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का। अपने परिवार में ही बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के, और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है, तो वो भूल जाते हैं। और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का, तो वो भी नहीं समझता है वॉशरूम क्या होता है और किचन क्या होता है। लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता, बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते। और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है, जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं, वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वहाँ लाके कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन जाती है। तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र सभ्य भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं। ऐसे करते करते के लोगों को हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान, ध्यान, साधना, तपस्या और पूजा की और आत्म बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है। तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके यहाँ आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूँ। ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मजा हो वैसे चीजें खाते हैं, उसके लिए नहीं है। लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना वैसे, हर जो महीने एक फेरी दूंगा, अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया, उसके बाद में मेरे भावना में, मेरे क्रियाक्रम में, मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया। अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना। भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है, क्योंकि वो एक बिना मन के बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है। भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है। पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो वो दो वो दो वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, सासू नहीं मानती, तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिपके। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है वहां भी जाके ढूंढ लिया कि यहाँ आके छिपके और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच से अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे अंदर देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हरीफ से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
1: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है। अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा वहाँ छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाए। अब आजकल क्या करते हैं, अपन हम पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर, वो और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होता है, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
1: जी जी, तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
0: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ, उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए। मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया, फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे, फिर पेरिस फ्रांस का था वो, पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा, तो मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा कम, इट्स नॉट ईजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो आफ्टर हाफ एन आवर, 1 पर्सन कॉल्ड यू और गेटिंग योर कंसेंट, सो डोंट से हिम आई डोंट वॉन्ट टू कम देयर, यू शुड से हिम आई हैव नो प्रॉब्लम टू कम देयर, आई वाना कम देयर टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई ऑफ यू। तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ। आधे घंटे बाद मुझने फोन किया, आर यू मिस्टर खमुराम बिश्नोई, मैंने कहा यस आई एम खमुराम बिश्नोई, वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर। मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना, मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम आई विल कम देयर कम व्हाट मे। फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया, और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई। अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू। देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है, मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता।
1: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा, आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित।
0: 52 मिनट की, 2011 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रेंच चैनल पे वो रिलीज हुई थी, और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही। मैं उस समय 2011 में वहाँ गया था, तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए। देखो कमू यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी। मैं अपने आप को भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ, और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य होना, जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है। लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सूर्य है। अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए, या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ देके चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता। वैसे ही जाम्बोजी महाराज, और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं, और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे।
1: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या?
0: मैं इस समय में हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा। वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है। जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको अपन पूर्वज अपन बड़े रख के दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेली, जैसे उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी। वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता, युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता। धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी, मैं वो पहाड़ी पे आके चल गया, आग ये है कि पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना, वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का। मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो ज्वार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना, वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा, तब तक धरती दे नहीं पाएगी, लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी। धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शहर में, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा, वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है। अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहां रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी की, और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
1: जी सर। सर, हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
0: बिल्कुल बिल्कुल मदर टेरेसा ने कहा, बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं, और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है,
1: बिल्कुल संतुष्ट और विचारों से
0: संतुष्टि बाहर नहीं है, संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्ट नहीं है। जोधपुर में मेरा, मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन सात वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया ही, तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इस तरह सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे। हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे, कैसे सुधरे, वो थकान से मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने जब नाव जल में छोड़ी, कितने प्रकार के राष्ट्रभक्ति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी, तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
1: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
0: युवा आज नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पिछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब जवान होंगे तो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% के, तो खुद ने तो जन्म देके हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है, तो वो भी देख रहा है मेरे पास पैसे हैं, अरे पैसे किसी काम के नहीं, मरना वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
1: जी जी सर बिल्कुल, पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
0: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावना को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो वो भावना होनी चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा, उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के बढ़नी चाहिए। जैसे पहले हमारे स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते वो बांटते रहे, ये चीजें टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है, लेकिन अब हमारे परिवार में और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप बच्चों छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है, कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले तो पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं, कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देने चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटते हैं पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के लिए जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल बैग में मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते हैं, शर्म आती है, जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को, अपने बच्चों को, या कोई भी कैंसर हो गए, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
1: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर,
0: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है, वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं। तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं, वहाँ हम 10-15 होते हैं, और मेले होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं, तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है।

0: चाहता है, किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है। बॉडी काम तो सिर्फ है भार उठाना। वो मेरे से एकदम, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे 10 किलो भार उठा है, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो है, 2 क्विंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 क्विंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा। पहलवान ही बनेगा तो पहली उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, तो वो बन पाता है। तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा कि तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिटिया मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए। ऐसा काम मत करना, ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने। ऐसा बेटा बनना है तो ऐसा बन बेटा। बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं। द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है। धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया, या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया। जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है, और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन वो है बुद्धिहीन
1: जी।
0: एयर केस में बुद्धिमान है। परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ दो पैरा वाला जानवर है, दो पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है। क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना, दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना अपना ही पेट भराई करें तो वो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं। एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि
0: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कोई इतना गंदगी नहीं कही। आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना, तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए, तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में के घरों में होते हैं वो 4-5 का झुंड बना के हिरणों को मार देते। क्यों, वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, छलांग लगाता है लेकिन जाली फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो टोली खत्म हो गई, अब किसकी आई है, जिसको अपन कहते हैं ना सूरों की। अब जहां भी देखो, जैसलमेर देखो, बाड़ में देखो, बीकानेर देखो, हरे कहते हैं कि यार हमारे खेतों में सूअर बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो चीज सुंदर थी उसको गायब कर दिया, तो अब सूअर ही आएंगे।
1: बिल्कुल, जानवरों के घर तक हम पहुंच गए, उनके लिए जगह ही नहीं बची है।
0: बिल्कुल सही है, जानवरों का घर तक पहुंच गए, जानवर जाए कहां, तो जानवर आपके घर में आएंगे। और जानवरों की अच्छी क्वालिटी को खत्म कर दिया तो गंदी क्वालिटी है जो सूअर है वो वही आएंगे। अच्छी क्वालिटी जो हिरण थे, जो लोमड़ियां थी, जो वन बिलाव थे, जो भी है, जो हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद थे, उनको हमने उनकी जगह ही नहीं छोड़ी, तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल,
0: वही अपने साथ होता है। हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे। वो तो कहीं गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने दिन लग जाएंगे, और गाली तो 1 मिनट में आके बोल देगा। 1.5-2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हरेक सीखता। आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो 1 मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा दुनिया देखती रह जाएगी, यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है। और जगह जगह देखो, ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु देखो, इसका एक रूप ये देखो, ये देखो, यूं कर करके वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल होता है,
0: बिल्कुल वायरल होता है,
1: लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान आपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में पॉजिटिविटी के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया। मनुष्य मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है, भगवान में इतनी है कि

0: भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है और मैं कभी कभी चूक जाता हूँ। इतनी कमी है, भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ। लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है। भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुंच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था। लेकिन एक क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं। तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: ऐसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने यहाँ इग्नोरेंस है। अपने यहाँ इग्नोरेंस है क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना है वो क्या करना है, समझाए तो समझे नहीं तो अपन समझाओ तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावनाएं और अपने देश को साफ रखना चाहता है, और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है। एक तो आबादी बहुत ज्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है कि हाँ हमें हमारा क्या लेना हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है वो लेती है वो लेती है। मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे, अब दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है मेरा मुंह धो आए के धोएगा। हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है, तो मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो देगी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे। हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, अपने घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फौज कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा। जब तक हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है। जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे दे 50 रुपये लग जाएंगे, 100 रुपये लग जाएंगे या 80 रुपये लग जाएंगे। अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं?
1: जी
0: 80 रुपये
1: जी
0: का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपये कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा। और खाता चलता जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक लास्ट बात कह के मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए। अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है क्या करूँ। आपने कहा ही कह रहा आप कुछ याद आए जरूर बताना।
1: जी
0: अब
1: जी
0: एक गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए,
1: जी हाँ
0: गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए आपस में झगड़ने लगे। एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो। गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग बदल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पे जाता है तो अलग बिहेव करता है। मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है। और वही देख लो कि कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100, 200, 300 रुपये लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है भी, वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है, समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है। सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्र को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा। अब बूढ़ों से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है, जो 25, 30, 40 साल से सिगरेट पी रहा है उसको हम पैर पकड़े बैठे तू सिगरेट छोड़ दे मरे नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक देंगे कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी। तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है? एक शब्द में,
0: एक शब्द में पर्यावरण यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर जैसा जियो वैसा जियो, मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है, और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 50 से नीचे हो जाएगी, वो जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो आ जाते हैं बीमारी है।
1: पर्यावरण मतलब देना है, देना
0: पर्यावरण का मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना। अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी, जैसे इको है, इको आप वैसे ही इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण क्या, इको जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं में बोलते हैं तो वापस आती है आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है। आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा, और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कर देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी मुख्यमंत्री पद से हटी थी तो अगर 1000 जूतों की जोड़ी है, वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है, हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है हर शादी, एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ा के और धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे, वो तो हम भूल गए। अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके, जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे पास नानी जी चले गए, तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी हो कहीं ले जाकर फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे, मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, इस राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो हुए रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात आप कर रहे हैं और जो हमारे पुराने संस्कृति,
0: बिल्कुल सही है। एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी सभी, एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने, एक ने चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट लाके इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूत छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए? मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास कमीज है कहाँ, बगैर कमीज बेटा मस्त मस्त मोला बेटा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता
1: जी,
0: सुख है विचारों में
1: और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है, जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे भी खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है तो वो भी खाद करता है, खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने, ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है, और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, और नए नए पेड़ लगाए, कोनो कोर्पस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं जो 12 मास है, लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है, जैसे बबूल पेड़ों का राक्षस है।
1: Okay.
0: पेड़ों में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है, किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा, और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है, बबूल उगने ही नहीं देता घास को
1: जी। ओके
0: okay. तो ये बात है जो मैंने
1: है, और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए, अगर देख रहे हैं तो उसे,
0: बबूल छोटे बदमाश है, वो राक्षस है, राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: यहाँ पे लगा हुआ है, उसे हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते हैं।
0: इतने इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे हैं, अपने क्या करना, और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे और जहाँ खाली हो या नाडी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जल जमीन आसमान, सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बचाना चाहिए, पांचों तत्व है वही भगवान है, इन पांचों तत्वों जो जल जमीन आकाश वायु अग्नि,
1: लेकिन एक चूज करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे,
1: जल
0: ही नहीं होगा तो पूरी संपत्ति, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं, जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
1: ओके सर, जी सर, बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: प्रदूषण फैलाना, और क्या?
1: ओके,
0: एक आदत, ज्यादा से ज्यादा धरती को हरी भरी रखें, हरियाली में ही भगवान है, भगवान का दूसरा हरियाली ही भगवान है, भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी, हरियाली का नाम ही भगवान है, भगवान कोई भगवान गंदगी पे जाके नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान, तो हरियाली मीन्स प्रभु है,
1: बिल्कुल
0: हरी वहाँ जहाँ हरियाली,
1: हरी वहाँ है जहाँ हरियाली है सर, बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
0: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया, बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि ये भारत को हरा भरा बना दे, जब मनुष्य जागेंगे सब जागेंगे तभी होगा, ऐसा कोई ऐसा आदमी एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, IAS जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने वाला कोई नहीं है, लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है, नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
1: जी सर,
0: मेरे को कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है, वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो, मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आपको यूं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैंने 5
1: लगाना नहीं बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल,
0: हाँ लगा के देखभाल करके बड़ा करें और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए, 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपका लगाया हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है, आप लगाया पेड़ है ही नहीं, और आपके तो मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए, अरे भाई है कौन सी जिंदा कितने है वो तो मालूम नहीं।
1: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास,
0: बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आई विल बी ऑनर्ड बाई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है, गुरु जम्बेश्वर
1: बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सर,
0: धन्यवाद मैडम, गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा।
1: जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा,
0: यह सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ, जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है, तो एक्चुअली में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है, तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ, मैं परमात्मा भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, वो आपने कहीं सुना होगा, एक कोई सेठ दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो, क्या देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ, मुझे समझ दी है, अकल दी है तो भगवान ने दी है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बोजी एंड ऑलमाइटी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपकी कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से, और दोस्तों वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्बूराम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को और प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित हुए कि वाह बेटा मैंने कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तुम उसके काबिल निकला,
1: जी बिल्कुल, आप सर काबिल हैं और
0: जन्म दिया तो कुछ समझ के दिया तो उसके काबिल निकला।
1: जी बिल्कुल, आप सर काबिल हैं और धरती माता

0: के लिए गौरवान्वित है ही।
1: मैं कहता भी रहता हूँ कि हम इतने मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के बड़ा करती, दूसरी माँ गौ माता होती, तीसरी सब माओं की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर, वो कौन होती है? वो धरती माँ होती है जो सब माओं को दूध पिलाती है, सब माओं को भोजन देती है, वो होती है धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहीं पर रुकना
1: और
0: चाहते
1: समय
0: हैं।
1: की मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। तो पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
0: सही सही बात है। तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
1: मैं आपका ऋणी हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा की है उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
0: धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।
1: नमस्ते।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं लेखा पाल के बारे में। जी हाँ साथियों, अकाउंटेंट करियर के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत ही सुंदर करियर है, जहाँ पर सभी लोगों का मन होता है कि आप भी इस जगह पर अपनी करियर को बनाएं। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग जैसे कि एक सीए के बारे में बातें किए थे, वैसे ही यहाँ पर सीए का ही ये एक जो है करियर है जिसमें हम लोग आज बात करने वाले एक अकाउंटेंट के बारे में। और राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाले रमेश शर्मा जी की अगर मैं बात करूँ, तो ये इनके पिता जो है एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन रमेश शर्मा ने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था और इसीलिए उनको जो है एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। 12वीं के बाद वो बीकॉम के स्ट्रीम में गए और वहाँ से उन्होंने सीए की तैयारी की। कई बार असफलता मिली उनको, क्योंकि एक टाइम में करियर को क्रैक करना, सीए क्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन बार बार प्रयास करने से कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह कई बार प्रयास करने के बाद

रमेश शर्मा को आखिरी में सफलता मिल ही गई और दिन में वो दुकान में अकाउंटेंट का काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। इस तरह से उन्होंने रात दिन एक कर दिया और मेहनत बहुत ज़्यादा की। वर्षों की मेहनत के बाद उनको जो है सीए में सफलता हासिल हुई और फिर वो धीरे धीरे जो है अपने कुछ जगह पे असिस्टेंट बनकर काम करते रहे। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में फाइनेंस धीरे धीरे हेड भी बन गए और फिर हर महीने लाखों की सैलरी के साथ गांव के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते रहे। तो इस तरह से अपना जो है करियर अच्छा मजबूत बनाने के बाद गांव के बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई में मदद की। और रमेश हमेशा कहते थे कि लेखापाल बनना सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, अकाउंटेंट बनना सिर्फ पैसों को गिनना नहीं है, बल्कि भरोसा का काम है और भरोसा कमाने का काम है। इसीलिए एक अच्छे अकाउंटेंट की जो खूबसूरती है वो है लोगों का भरोसा। साथियों, यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोगों को अपने भरोसे में रखेंगे, लोग हम पर भरोसा करेंगे और उनके भरोसे पर हम खरा उतरते हैं तो हम अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से ये विशेष लेखापाल का करियर है जो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर देता है और समाज में एक सम्मान भी प्राप्त होता है। तो आइए साथियों, आज हम इसी विषय को लेकर बातें करने वाले हैं और आज के समय में जब हर संस्था, व्यापार, उद्योग, संगठन को पारदर्शिता, नियमबद्धता और आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता होती है तब अकाउंटेंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखापाल वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था के आय व्यय, कर, टैक्स, बजट, बैलेंस शीट, ऑडिट और वित्तीय रिपोर्ट का सही सही लेखा जोखा रखता है। एक कुशल लेखपाल न केवल संस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि गलतियों और धोखाधड़ी से भी बचाव करता है। तो आइए आज हम लोग इसी सम्मानजनक सुरक्षित करियर के बारे में बातें करेंगे आप सब के लिए। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और लेखापाल के बारे में बातें कर रहे हैं। साथियों, इसमें जो अकाउंटेंट है उसकी मुख्य कार्य प्रणाली इस प्रकार होती है, जैसे कि आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, यानी जो इनकम है हमारा वो कितना आता है और कितना हम उसमें खर्च करते हैं, इसका जो हिसाब है वो रखना। चाहे वो घर की बात हो, बिजनेस की बात हो, या फिर किसी संस्था की या फिर सरकारी किसी विभाग की बात हो। बिल, वाउचर और भुगतान का रिकॉर्ड बनाना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी, इनकम टैक्स आदि ऑडिट में सहयोग करना, बजट बनाना और खर्च पर नियंत्रण रखना, मैनेजमेंट को वित्तीय सलाह देना। आज के समय में जब डिजिटल युग में लेखापाल को टैली, एक्सेल, एसएपी, जीएसटी पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल जैसे सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप अपना अकाउंटिंग जो है बढ़िया कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आगे ये भी बताना चाहूँगा, लेखापाल यानी अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ रास्ते उपलब्ध हैं। जैसे 12वीं के बाद आप एक कॉमर्स स्ट्रीम लेकर अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज विषयों का अध्ययन सबसे अच्छा आधार माना गया है और सबसे अच्छा काम इसमें होता है। दूसरा, यहाँ ग्रेजुएशन के बाद भी बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, इन सारी स्ट्रीम को आप क्रैक कर सकते हैं। तीसरा, प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी जिसको सीएस कहा जाता है आंशिक रूप से, और एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए मददगार साबित होता है। इसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी करते हैं, 12वीं के बाद आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर करते हैं जिसमें टैली प्लस जीएसटी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैक्सेशन कोर्सेस भी होते हैं, इनमें से कुछ भी अगर आप करके असिस्ट करते हैं तब भी आप जो है बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी पकड़ मजबूत करके आप कस्टमर भी बना सकते हैं और उन्हें अच्छी सर्विस देने पर आपको जो है अच्छी मुनाफा हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को अकाउंट्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है, और इन चीज़ों को जब हम ठीक से समझ लेते हैं और समझ के अगर काम करते हैं तो हमारा करियर अच्छा बन जाता है। देखिए, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए, सीए बनना हमारा लक्ष्य हो। अगर नहीं बन पाते उस रास्ते में, जो भी आपके, जैसे कि मैंने ये बताया, डिप्लोमा कोर्सेस ये सारी चीज़ें करते हुए भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप एक अच्छा जो है अपना परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट आपको इनकम मिल जाता है, तो है ना अच्छी बात। तो हमेशा कहा जाता है कि भाई लक्ष्य बड़ा रखो ताकि आप उसके नज़दीक पहुँच कर भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। लेखापाल के करियर विकल्प भी बहुत सारे हैं साथियों। मैंने कहा था ना, एक बड़ा ऊंचा लक्ष्य रखिए और उसके बाद आप जो है उसके नज़दीक के अनेकों अवसर आपके सामने खुल जाते हैं। जैसे कि आप अगर अकाउंटेंट के लिए करियर में अनेक जो अवसर है उसको अगर आप समझ लेते हैं तब भी आपका मन होगा कि हाँ, हमें इस ओर जाना चाहिए। एक तो प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज़रूरत होती है अकाउंटेंट की, दूसरा सरकारी विभागों में भी एक लेखा अधिकारी का बहुत अच्छा पद होता है, तीसरा आप बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में भी अपनी जो है जगह बना सकते हैं, चौथा यहाँ पर CA फॉर्म्स और ऑडिट फॉर्म्स होते हैं जो बड़ी कंपनी का ही रूप होता है, उसमें भी आप अपनी जगह बना सकते हैं, पांचवी बात यहाँ पर NGO होते हैं, ट्रस्ट बने हुए होते हैं, बहुत सारे लोग सामाजिक सेवा अर्थ NGOs बनाते हैं और उसमें भी बहुत सारा पैसा आता है और उसको खर्च करना पड़ता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छे अकाउंटेंट और एक समझदार व्यक्ति की मानवता से भावना से भरपूर सेवा कार्य से समृद्ध व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है आप स्कूल कॉलेजेस विश्वविद्यालय जितने भी बड़े संस्थान हैं उसमें भी अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके अलावा आप स्वयं भी खुद एक अपनी कंपनी खोल सकते हैं।

अकाउंटिंग ऑफिस बना सकते हैं, फ्रीलांस अकाउंटेंट बन के आप लोगों के काम कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं पढ़ाई करते हुए मेडिकल स्टोर में एज ए पार्ट टाइम सीखने के दृष्टिकोण से काम किया करता था। तो मेडिकल स्टोर एक छोटा सा काउंटर होता है जहाँ पर आप रेगुलर जो है लोग दवाई लेते हैं, और अगर कोई हॉस्पिटल होता है तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा जो है मेडिकल स्टोर होता है। तो उसमें भी जो है जब रोज का बिजनेस करते हैं और फिर सीए को विशेष रूप से वहाँ पर बुलाया जाता है, और वो बंदा आकर 6 महीने में, साल में, 3-3 महीने में उनके अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उनका जो है टैक्स भरा जाता है। तो ऐसे भी होता है कि भाई, तब मुझे पता चला कि अकाउंटेंट का काम क्या हो रहा है। तो किसी भी बिजनेस में अगर आप एक अवधि से आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तब आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ भी बिजनेस होता है, पैसे का आवक जावक होता है, वहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर साथियों, अनुभव बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक बन सकते हैं। हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन मेहनत उतना ही करना है दिल से। जब आप करते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाता एक अच्छा करियर बनाने में। साथियों, आइए सैलरी की बात करते हैं। जैसे कि एक फ्रेशर अकाउंटेंट होता है, सैलरी समानता उनकी 15,000 से शुरू हो जाती है और 25,000 हर महीने आपको मिल जाता है। फिर जैसे जैसे आपकी अनुभव बढ़ता जाता है तो फिर आप मिड लेवल यानी 40 से 70 हज़ार प्रति महीना पेमेंट पाते हैं। उसके बाद अगर आप बड़े अहदे पर जाते हैं, CA CM में, तो आपके एक महीने में 1 से 5 लाख तक का पेमेंट शुरू हो जाता है। भविष्य की दृष्टि से लेखापाल अकाउंटेंट के करियर हमेशा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि पैसे का हिसाब हर युग में ज़रूरी होता है। चाहे किसी भी युग में रहें आप, लेकिन हिसाब रखने के लिए लेखापाल का करियर फिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अभी लेते हैं एक बहुत ही ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

बताए ये है कि एक सफल लेखापाल बनने के लिए ईमानदारी और नैतिकता, गणितीय समझ, धैर्य और एकाग्रता, नियम कानून की जानकारी, समय प्रबंधन, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता, ये सारे गुण आपके अंदर निहित होना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप करके देखिएगा, इन चीज़ों को समय पर जो है ये गुण आपके जीवन में बहुत बड़ा यूनिक काम आता है। प्रेरक कहानी की बात करें तो एक और कहानी मुझे याद आता है जहाँ पर ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आपके जीवन को अकाउंटेंट करियर में बहुत ज़्यादा जंप देता है, आपको उन्नति देता है। तो यहाँ पर सुनीता वर्मा की बात मुझे याद आती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में से थी और उन्होंने बीकॉम किया और फिर टैली जीएसटी कोर्स किया और फिर उसके बाद एक एनजीओ में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी। एक बार ऑडिट के दौरान उन्हें कुछ अनियमितता दिखाई दी। दबाव के बावजूद सुनीता ने सच्चाई का साथ दिया और पूरी रिपोर्ट ईमानदारी से तैयार करके बनाया। उनकी इस ईमानदारी से संस्था की छवि सुधरी और बाद में उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ में सीनियर अकाउंटेंट की जिम्मेवारी मिली। आज सुनीता कई युवाओं को अकाउंटिंग का ट्रेनिंग देती है। उनका मानना है कि अकाउंटेंट की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्चाई होती है। साथियों, जब आप उसकी सच्चाई पे खरा उतरते हैं तो आपका जीवन बेहतर बनता है। निष्कर्ष यही है साथियों, एक अकाउंटेंट का करियर उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो स्थिरता, सम्मान और जिम्मेदारी चाहते हैं। ये क्षेत्र मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी की मांग करता है, लेकिन बदले में एक सुरक्षित भविष्य और समाज में भरोसे की पहचान देता है। सही शिक्षा, निरंतर सीखने की इच्छा और नैतिक मूल्यों के साथ कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यदि आप संख्याओं से दोस्ती कर सकते हैं और जिम्मेवारी निभाने का साहस रखते हैं तो लेखापाल का करियर आपके लिए एक उज्जवल रास्ता है। अगर आप चाहे तो इसमें धीरे धीरे करके आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं। शुरू शुरू में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। 12वीं के बाद जब आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं, बीकॉम से ज़रूर लें और बीकॉम करते हुए आप छोटे छोटे फॉर्म में थोड़ा थोड़ा जो है बीच में सैटरडे संडे आप प्रैक्टिकल भी चीज़ों को सीखते जाए, करते जाए। और मैं चाहूँगा कि आप पैसे के लिए काम मत कीजिए शुरू शुरू में। सीखने की वजह से आप जाइए, पेमेंट मत लीजिए। जब आप पेमेंट नहीं लेंगे तो लोग भी आप पर ईमानदारी से आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताएंगे और आपका सम्मान भी होगा। जब आप पैसे लेंगे तो लोग आपको सिखाएंगे कम, है ना, और आप पैसे के चक्कर में जो है पढ़ाई पर ध्यान कम देंगे। इसीलिए पैसे मत लीजिए, आप अपना पढ़ाई करते हुए सीखने की वजह से आप ऑफिस में अपना काम कीजिए, उनको हेल्प कीजिए और सीखते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में आपकी पढ़ाई में उसका हेल्प मिलेगा। और जब 5 साल आप पूरी तरह से बीकॉम पूरा करके डिग्री आपके हाथ में आएगा तो उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का सर्टिफिकेट आप अगर लगा देते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको जल्दी जो है नौकरी मिल जाती है और आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ में जो कला के साथ में मैंने कहा गुणवत्ता, वो अगर ईमानदारी से आप अपने जीवन में अपनाते हैं ईमानदारी को, तो वो आपके लिए 4 चांद लगा देता है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी विद्यार्थी मित्रों को फिर से एक बार अपने करियर के लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: श्रोताओं, आज की शाम और शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परंतु हमें मालूम है कि सूरज फिर उगेगा, उम्मीद फिर जगेगी और इस संसार में रोशनी फिर से आएगी, ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका समय हमेशा का दोस्त शरद, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम इस बार लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो जुनून। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी 107.8 एफएम पर हम लेकर आते हैं एक फिर से जुनूनी को, जो समाज में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन की बात कर रहा है और एक नव चेतना की बात कर रहा है। वो युवा है, वो अधेड़ है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है और वो आगे बढ़ चुका है अपने जीवन को बदलने और दूसरे अपने आसपास के अपने भाई बहनों के जीवन को बदलने। तो ऐसे ही जुनूनी के साथ मैं आज राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर से, उदयपुर से हैं हमारे साथ कोमल। आइए जानते हैं कोमल की कहानी। कोमल, आप हमारे साथ हैं और फिर से हमने बात शुरू की है हमारे प्रोग्राम जुनून में। फिर से कुछ दिनों बाद हम जुड़े हैं और लेकर आए हैं हम सबका फेवरेट शो, जो हमें भर देता है चेतना से, उम्मीद से, नव जागरण की चेतना से, जीवन को बदलने और इस समाज को नई दिशा देने के रास्ते पे चलने की उम्मीद देता है हमारा कार्यक्रम जुनून। और जुनून में आप हैं हमारे साथ इस पर। तो कोमल, बताइए अपने बारे में कि क्या आपकी कहानी है और आप क्या करते हैं उदयपुर में।
1: सबसे पहले नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच मुझे ये मंच पर आज मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, मेरा नाम कोमल है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करूं, और जब उनके साथ कोई हिंसा होते देखती थी तो दिल को बहुत दर्द होता था। और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इनका कैसे मदद करूं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों से मिलती गई, अलग अलग एक्सपीरियंस आते गए कि किस तरीके से उनका सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक ऐसा कम्फर्ट एरिया उनको प्रोवाइड करवाती थी जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात, यहाँ मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। और उनको मैं इतना स्पेस देती थी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट देती थी कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं उनकी सीनियर हूँ। वो मुझे अपनी एक बड़ी बहन मानते थे और हर चीज शेयर करते थे, और मैं अपने लेवल तक जो उनको सजेशन दे सकती थी, सलाह दे सकती थी, वो मैं अपने लेवल पे देती। उसमें मैं कोई लीगल एडवाइस जैसे वकील का है, ये सजेशन पहले उनको नहीं देती। देन उसके बाद में मैं उदयपुर की एक विकल्प संस्थान है जो बहुत सालों से महिलाओं और बच्चियों के लिए काम कर रही है और उनका बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन में, उनके मेंटल हेल्थ में, या उनको कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहाँ पे उनका बहुत सपोर्ट करती है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज है जो मेरे लिए इंस्पायर भी हो सकती है, और जहाँ पे विकल्प ने मदद किया है वहाँ पे भी उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो मैं कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मंच पे।
0: हम सुनेंगे उन कहानियों को और उन बातों को, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी क्या है, कोमल की कहानी क्या है।
1: मेरी कहानी तो यही है कि मैं अभी सेवा का काम करती हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, न मैं सरकार से कोई मदद लेती हूँ। मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो मेरे काम को देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो मेरा सहयोग करते हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में भी मदद करते हैं। कुछ गरीब ऐसी फैमिली होती है जिनको उनके बच्चे जो है बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बारिश में आते हैं बिना स्लीपर्स के, गर्मी में आते हैं उनको हम लोग स्लीपर्स पहनाते हैं। सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में बच्चे नंगे बदन स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने कुछ मुहिम चला के उनको स्वेटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भारत में हम लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं है कि मेरा पैसा मेरे तक, ये सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में गरीबी खत्म नहीं हो। लेकिन मैं मेरे लेवल पर, हमारे मुहिम के लेवल तक या हमारे टीम के द्वारा हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे, ये मेरा स्टोरी है।
0: नहीं, ये आपकी कहानी में तो बात है कि कोमल कैसे तैयारी, कोमल में ये बात चेतना कहाँ से आई है, ये समाज परिवर्तन की बात करने की बात जो है, ये आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई।
1: आज से 3-4 साल पहले मैं बस्ती में गई थी लड़कियों से बात करने के लिए कि कैसे मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक दादी से मिली थी मैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिनके बेटे की डेथ हो गई, उनकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके पक्के मकान में रह रही थी। और उस टाइम पे मैं गई थी, बारिश का मौसम था, और वो जो दादी थी वो झोपड़ी में रह रही थी, उसके जो सामान जो था वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने उस दादी से बात किया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरती गई, जैसे जैसे मैं बस्तियों में जाती गई, मुझे लगा कि मैं दुनिया में भेड़ चाल चलने के नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकूं। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कल्पनाएं जागने लगी कि मैं अलग अलग जगह जाके लोगों की मदद करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी। और धीरे धीरे मेरी मुहिम में लोग जुड़ने लगे, लोग मेरी मदद करने लगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप मुझे सहयोग कीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भावना, ये फीलिंग जो मेरे अंदर आई, उसको थोड़ा टाइम लगा है। क्योंकि पहले जब मैं लोगों से कपड़े कलेक्ट करके लाती थी, घर पे रखती थी, तो मम्मी वगैरह डांटते थे कि कहाँ से लेके आई, कहाँ इनको कलेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ता गया। आज मेरे परिवार का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट बन चुका है कि वो मेरे हर समय मेरी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। आज कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले पापा मुझे व्हीकल की चाबी दे देते, फोर व्हीलर की, ये गाड़ी लेके जाओ, कहाँ तुम्हें किसकी जरूरत है वो लेके जाओ। और मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा सपोर्ट करता है। और इस समाज ने भी, और बहुत सारे एनजीओ से जिन्होंने मुझे मंच पे सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं हो पाए।
0: बहुत बढ़िया। दर्शकों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, जो कि है माउंट आबू की वादियों से। और आप सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम जुनून को रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन पर भी, तो जाएं और डाउनलोड करें रेडियो मधुबन। तो हमारे साथ हैं आज हमारी इस कहानी में जुड़ने वाली कोमल, और कोमल बता रहे हैं कि अपने एक जुनून को, कि वो कैसे थे, पुराने सामान, पुराने कपड़े लोग घरों से लेते हैं तो उनके काम में नहीं आ रहे हैं, और लेकिन वो किसी और व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने का साधन बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है कोमल, इसमें आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं?
1: अभी चैरिटी वाला अच्छा चल रहा है। चुनौतियाँ पहले बहुत आई थी, क्योंकि उनको डीप एरिया में जाना, ले जाना, लोगों से कनेक्ट होना, और पहले लोग मेरे से बहुत कम कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे बच्चे देखती थी वहाँ पे मुझे लगता था मुझे कपड़े देने, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो लोगों तक मैसेज पहुँचाना पड़ता था कि मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है। तो बहुत चुनौतियाँ भी आई थी, कुछ फाइनेंशियल भी चुनौतियाँ आई थी कि कैसे उस एरिया में पहुंचा जाए। उसके लिए हमें व्हीकल भी करना होता था, व्हीकल के लिए मैं उस टाइम पे जॉबलेस भी थी। तो उन चुनौतियों से मैंने डरकर अपने मुहिम को स्टॉप किया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा मेरे से जितना हो पड़ेगा करूंगी। लेकिन अभी वो चुनौतियां सारी हट चुकी है, और अभी मेरे साथ बहुत सारा मजमा जुड़ चुका है, बहुत सारे टीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और लोग मेरे से सामने से जुड़ना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ इस मुहिम में पार्ट लेना चाहें।
0: जी, तो ये कैसे चलता है ये कार्यक्रम, इसमें कैसे आप जरूरतमंद की मदद करते हैं और कैसे उनको चिन्हित करते हैं, कैसे ढूंढते हैं?
1: पहले तो हमें बस्तियों में जाना पड़ता था, खुद से ढूंढना पड़ता था, एफर्ट मारना पड़ता था। बट अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रीन सोल फाउंडेशन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने कम से कम मुझे 1000 स्कूल बैग, 1000 स्लीपर्स और 1000 मेट्स जो होते हैं वो मुझे डोनेट करने के लिए दिया। तो मैंने गोगुंदा, उदयपुर और सायरा स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मैंने डोनेट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं। तो अब वो सामने से बोलते हैं कि मैडम यहाँ जाइए, यहाँ आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में नीड है। तो अब मुझे बस्तियों की सर्च नहीं करना पड़ता, सामने से लोगों का कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप यहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं।
0: जी, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही है और क्या रिसोर्सेज आप इसमें लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्पेस है, या कैसे आप अपने घर से इसकी शुरुआत करी थी आपने, या अभी आप सामान कैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ रखते हैं सारे सामान?
1: पहले बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बीच में मैंने सोचा भी था कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैंने अपने घर पे ही स्टोर किया था, देन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका उदयपुर में एक शॉप चलता है, तो फिर हमने कपड़ों को वहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें हमारे पिताजी की वजह से जानते थे, क्योंकि मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं, तो उनकी वजह से हमारी पहचान थी, लेकिन आज हमें गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे ये वो दीदी है, अरे ये दोनों बहन है वो है जो गांव में जाके लोगों को कपड़े डोनेट करते हैं। तो अब घर पे ही हमारे यहाँ सामान आ जाता है, लोग हमारे घर पे ही आके डोनेट करके जाते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं। और हमारे एक ही सोच रखा है कि हमारे पास जो टू व्हीलर है हमेशा उनमें एक बैग भरा रहता है, जहाँ पे हमें लग जाता है कि ये बच्चे हैं, नंगे पैर हैं, या इनके बदन पे कपड़े नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिनके राशन नहीं है, तो हम लोग उनको उसी टाइम हम लोग दे देते। हम वेट नहीं करते कि हम घर जाएंगे वापस लेके आएंगे, ऑलवेज हमारे बैग में सामान रहता है, हम लोग वहाँ डोनेट करते रहते।
0: क्या कहानी है आपको बताइए, उदयपुर में कैसी कैसी कहानियाँ आपकी नजर में है जो आपने देखी और तो लगता है कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है?
1: चैरिटी वाला तो कोई स्टोरी वही है, रैंडम मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन अभी जो मैं विकल्प संस्थान से जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज हमारा टॉपिक है नशा, इस नशे की वजह से इंसान हैवान बनता जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी, यानी माँ ने दूसरी शादी किया था, तब बच्ची अपने माँ के साथ आई थी अपने नए पिता के पास। वहाँ बच्ची की माँ की डेथ हो जाती है, बच्ची महज 8वीं क्लास में पढ़ती है और 13 साल की। उसके पिता 11 साल, जब बच्ची 11 साल से थी उसके साथ गलत हरकतें करता था रात में। बच्ची ने अपने आस पड़ोस में बताया कि मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है, मैं पिता बहुत परेशान करते हैं, मैं घर से निकालो, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग क्या स्कूलों में सेशन करते हैं बच्चों के साथ पॉक्सो पे, यौन हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो किसी बच्ची के पास हमारा टोल फ्री नंबर था, उस नंबर पे बच्ची का कॉल आया, फिर हमने बच्ची का सर्च किया। जहाँ बच्ची किराया रहती थी उसके पिता को भनक लगी, पिता ने वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर पिता ने वहां से बच्ची को तीसरी जगह शिफ्ट किया, फिर पिता ने बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट की। हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने उसका पीछा किया, और जहाँ बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट किया गया वहां पे, मतलब ये बात मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है कि उस पिता ने पैसे के लिए अपनी बच्ची का सौदा किया। हर रात बच्ची को वो बेचता था पैसे के लिए, मज़ा 1000 रुपए के लिए अलग अलग पर्सन को बेचता था। हमें सूचना मिली, हमने कुछ गुप्तचर भी रखे, कुछ एजेंट भी रखे, हमें सूचना मिली कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हमने फिर उसका CWC में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने थाने में भी FIR दर्ज करवाई, पिता को पेश किया गया, बच्ची को पेश किया गया, बच्ची को काउंसलिंग करी गई और बच्ची ने हकीकत जो बताई, और फिर बच्ची को शेल्टर मिला, पिता को जेल मिला। और इस तरीके से जो बच्ची थी, आज बच्ची को हमें देखते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्ची के जो चेहरे की रौनक थी वो हम वापस ला सकें, और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो। आज बच्ची बहुत खुश है, जहाँ पे भी है वो शेल्टर में है, आज वो अपनी खुशी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, और उसकी जो जीवन की जो जर्नी होती है, जीवन की जो रूटीन है वो चल रही है। आज बच्ची अगर हम फ्री मिल भी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमेशा खुश रहे। ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विकल्प संस्थान में आने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से, क्योंकि उसका पिता जो था वो नशे का आदत था, उसको पैसा चाहिए होता है और वो पैसा कहाँ से लाए क्योंकि उससे कमाई होती नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद।
0: जी सर, तो इस पूरी बात में आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका वहाँ जुनून है कि कुछ बदल दें, समाज में कुछ बदलाव कर दें और कुछ लोगों के जीवन में रोशनी भर। तो इस प्रयास में आपने एक बच्ची की कहानी बताई, अब वो बच्ची की उम्र कितनी है अभी वर्तमान में?
1: अभी बच्ची 14 साल की है।
0: जी बढ़िया है, वो डेफिनेटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में अभी होगी और 18 साल तक वहाँ रहेगी। 18 के बाद आपके पास क्या योजना है उस बारे में भी हमें पूछना है। और सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि 19 साल तक उसको एक मदद मिलेगी, एक साल तक कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 19 साल के बाद उसको समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें आप क्यों ना उसकी अडॉप्शन की प्रक्रिया में आप सहयोग करें। और अडॉप्शन क्या आपने उसके लिए अडॉप्शन के लिए आवेदन किया है?
1: अभी नहीं किया सर।
0: CWC ने अपने जी आखिर तो श्रोताओं में आपको बताऊँ की देश में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक रेगुलेटरी एक्ट है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों का अडॉप्शन किया जा सकता है। और कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न और संपन्न पारिवारिक स्थिति से दंपति बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है और उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है और CWC और जिले की DCP यूनिट के माध्यम से अडॉप्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी, कोई बच्चा अगर आपको मिले तो आप उसको तुरंत पीडब्ल्यूसी तक बच्चे को पहुंचाएं, और यदि आपका भी बच्चा है और आप उसको नहीं रखना चाहते तो बच्चे को फेंके नहीं। हर जिले में अस्पताल में डीसीपी यूनिट में पालना गृह है, और पालना गृह में यदि आप बच्चे को छोड़ते हैं तो आप उसको किसी प्रकार की कानूनी उत्तरदायित्व आपके ऊपर नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज नहीं किया जाएगा, आपकी गोपनीयता को भी रखा जाएगा। तो आप बच्चे को फेंके नहीं, जिले के अस्पताल में, जिले के डीसीपी यूनिट में रखे हुए पालना गृह में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो ये थी बात हमारे जुनून की, जुनून में हमारे साथ कोमल। तो कोमल, आप हमें कुछ और कहानियां बताना चाहें तो हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनमें जागरूकता का प्रसार हो।
1: स्टोरी में आपको बताऊंगी, हमारा मेन मकसद ये है कि महिला के अंदर समाज का डर, समाज का डर इस वजह से है कि आज महिलाएं समाज के डर की वजह से बहुत सारी हिंसा सहती है, बहुत सारी मार सहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोलते कि इससे मेरा घर टूटेगा या मेरे समाज में बदनामी हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे घर टूटे हैं, बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया है। और इसका मेन वजह यह है, इसकी मेन रीजन ये है कि महिलाओं के अंदर डर है, समाज का डर। सबसे पहला डर उसके अंदर समाज का है कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले उंगली उठती है औरत के ऊपर। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन समाज का, आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद ने ये देखा है कि आज अगर गलती अगर लड़की की है या लड़के की भी है, लेकिन उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठाई जाए कि लड़की की वजह होगी। अगर लड़की को बेवजह मारा भी जा रहा है तो समाज यही बोलेगा कि लड़की की ही गलती हो, तो लड़के ने हाथ उठाया होगा, उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिला है जो गुट गुट के जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको पता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हैं, अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसके बच्चे हैं वो घर घर के भीख मांगने लायक हो जाए। अगर वो अपने मायके जाके बैठती है तो वहाँ पे भी वो अपने भाई भाभी की नौकरानी बन के जिए, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। ये सारा चीज सोचने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजें सहन करती रहती है, बहुत सारी मार है, बहुत सारे अत्याचार सहन करती रहती है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बताती। तो हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं के अंदर जो डर छुपा हुआ है, जो डर बैठा हुआ, उसको बाहर निकालना। हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका पुरुष आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके थप्पड़ मारो, बट एटलीस्ट आप ऐसा तो करते हैं कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप आवाज उठाए कि मेरी गलती नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, आपको किससे तकलीफ है, आप ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, बस वो आवाज उठा सकते। और इसमें 50% नहीं, मैं 80% मानूंगी कि जो रीजन है वो या तो समाज का है या किसी भी प्रकार के नशे का है। क्योंकि आदमी के जब नशे का टाइम हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो या फिर शराब का हो, अगर उसके नशे का टाइम हो जाता है और उसको उस टाइम पे नशा नहीं मिलता है, नशा करने का पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैंने इस नशे के ऊपर कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आप श्रोताओं के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। नशा वो चीज है, पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, नशा पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, नशा माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, बेटे की पढ़ाई और बेटी का बचपन छीन लेता है, नशा बहन का प्यार और अरमान छीन लेता है, बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है, और नशा अंत में व्यक्ति के शरीर से ताकत और ताकत से आत्मा छीन लेता है, और ये नशा नाश का द्वार होता है, और जो द्वार है वो आपकी बर्बादी और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला द्वार होता है। और एक बार नशे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो यही समझो कि आपको उसका अंत, उसकी मंजिल मृत्यु ही होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी तरह का नशा करता है, आप एक बार सोचिए कि नशे से कितने लोगों का जीवन खराब हो रहा है। आपने देखा होगा, नशा करने वाला झोपड़ी में रहता है और नशा करवाने वाला बंगले में रहता है। आपने कभी देखा होगा, जो शराब पीता है वो झोपड़ी में रहता है और शराब पिलाने वाला बंगले में रहता है, शराब पीने वाला साइकिल पे जाता है और शराब पिलाने वाला मर्सिडीज में जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नशा आपको बर्बाद ही करता है। कभी वो किसी का घर नहीं बनाता है कि नशा करने वाला हमेशा सक्सेस होता है।
0: बहुत ही बढ़िया आपने कविता नशे को लेके पढ़ी है, और जो विचार है आपके बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नशा है वो ऐसा करने वाले के लिए उसका जीवन भी ले सकता है और उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता ही है। तो ये बताइए कि कोमल जी, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको नशे को दूर कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे नशे की दुकानें खुली हुई है या फिर जो इंटरनल बेचते हैं, उनकी सूचना देने वाले के लिए अगर आप 5,000 का या 10,000 का इनाम देना कि नशे की जो भी सूचना देती है उसको इनाम दिया जाएगा, तो आपको उसमें सुधार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे खुद चुप के आपको ये जो कॉलेज के पास, कैंपस के पास होते हैं, इंस्टीट्यूट के पास होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के पास होते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप है जो खुद चुप के ये नशे का धंधा करती है। उनको पैसों से मतलब होता है, तो हम लोग वहाँ मुहिम चला सकते हैं, स्कूल में कैंपेन कर सकते हैं, कॉलेज में कैंपेन कर सकते हैं, और उनको कुछ ऐसी पीपीटी दिखाई जाए, उनको डीपली ऐसे मैसेजेस दिए जाए, डीपली ऐसे वीडियोस शेयर किए जाए जो उनको बहुत दिल तक या बहुत इंटरनल उनको बहुत टच करे कि नशा करना बहुत खराब हो गया है। ऐसे इस मुहिम को चलाने के लिए हमें ऐसे इतने सारे यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे 18 से 25 साल के यूथ है उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनसे इंस्पायर होके बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो उनसे इंस्पायर होके अपना जो डिसीजन है नशा करना है उससे थोड़ा सा दूर हो पाए।
0: तो नशे को लेकर जो आपकी बात है, वो विचार है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अभी नशे को लेकर क्या हालात है ग्रामीण इलाके में, कैसे आप देखते हैं युवाओं को, वो क्या कर रहे हैं, नशा किस प्रकार का नशा बढ़ रहा है?
1: अभी नशे का ये है कि उदयपुर में नशा पहले कुछ कुछ जगह पे होता, लेकिन वो टूरिस्ट सिटी बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो खुद अपने साथ लेके भी आते और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो युद्ध को लगा कि युद्ध बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अगर टूरिस्ट आएंगे उनको रास्ते दे।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो जुनून, और जुनून में आपकी है फ्रीक्वेंसी 107.8 FM। बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तो कोमल बता रहे हैं कि कैसे नशा जो है वो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म के माध्यम से पहुंच रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए भी बात करते रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे देश में आगे बढ़े, यानी कि टूरिज्म भी रहे और वो जिम्मेदार टूरिज्म, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विकास को, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के हेरिटेज को और वहाँ के समाज को ना खराबता है, ऐसे टूरिज्म की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, सस्टेनेबल हो। लेकिन हमें जानने को मिल रहा है कि उदयपुर का जो पर्यटन उद्योग है उसने कहने की नशे में कॉन्ट्रीब्यूट किया, वहाँ के स्थानीय कोमल हमें बता रहे हैं। कोमल बताएं कि कैसे पर्यटन ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है आपके क्षेत्र में।
1: जी सर, तो उदयपुर सिटी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज वॉक है या फिर ऐसी हिस्टोरिकल पैलेसेज है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ही नहीं, इवन ऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो किसी भी तरह के नशे के एडिक्टिव होते हैं। अब उनको जो एडिक्शन होता है, उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर यहाँ आके वो केमिस्ट्री की शॉप से पूछते हैं या फिर किराना से पूछते हैं। और धीरे धीरे आप ये देखो ना कि अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी चीज के लिए 10 बार बोलेंगे कि ये चीज है क्या, तो शॉप वाले को लगेगा कि यार ये चीज मुझे रखनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट है। और धीरे धीरे वो गुपचुप भी उस चीजों को रखते हैं, और फिर उनको जो होते हैं बीच के जो डीलर होते हैं उनको भी हायर किया जाता है। और धीरे धीरे एक बार उनको अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एक बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तो युवाओं को लगता है कि उस पर्सन को लगता है कि यार पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा तो अब वो क्या ही पकड़े, और धीरे धीरे वो इस गिरफ्त में जाते हैं। और जब कोई लाके उसको सेल आउट कर रहा है तो वो कहता है कि एक बार मैं उसको ट्राई करूँ उसका टेस्ट कैसा है, और वही टेस्ट जो फर्स्ट टाइम का जो टेस्ट होता है वही आगे चल के उसके लिए एडिक्शन बन जाता है। और धीरे धीरे इस गिरफ्त में 18 से भी कम साल के, बहुत सोचने लायक बात है कि 18 साल से भी जो स्कूल गोइंग है 9th-10th के बच्चे हैं, वो भी नशे के शिकार होते जा रहे हैं। जैसे स्मोकिंग जो है वो करते हैं, बियर पीते हैं, गांजा पीते हैं। इसका मेन कारण ये है कि उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और उनको पता है कि कहां से हमें ये चीज मिल सकती है, कहां से वो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे मेन रीजन ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है।
0: जी, और किस तरह के उदाहरण आपने देखे? मैंने पिछले दिनों एक शराब की दुकान है वहां से छोटे बच्चे को मैंने 12-13 साल के बच्चे को बियर खरीदते हुए देखा और मैंने वहीं पर दुकानदार को मैंने विरोध किया। दुकानदार ने उसको फिर शराब देने से मना किया, अन्यथा अगर मैं नहीं रोकता तो वो दुकानदार उसको शराब बेच रहा। कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं जो हमारे दुकानदार हैं जो शराब की दुकान पे काम करते हैं, उनको भी समझना है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल ना दे। और इसके साथ ही अगर ग्राहक भी ये घटना देख रहा है तो ग्राहकों का भी फर्ज बनता है कि वो छोटे बच्चे को वहाँ से शराब ना खरीदने दें और दुकानदार को भी मना कर दें। तो कुछ ऐसी ही बात है जो ये हम सबको पहन लेने की जरूरत है कि अरे ऐसा कुछ होते हुए अपने इलाके में देखते हैं, खासतौर पर सरकार के द्वारा चलाई गई दुकान पर यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। और अब तो सरकार के भी पंचायती राज के रूल्स में भी है यदि किसी गाँव की 50% आबादी से हाल है तो वो अपने गाँव के ठेके को अपने गाँव से बाहर कर सकते हैं। और जरूरत है कि पंचायत में ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव लिया जाए, क्या आप जानते हैं? तो इसलिए हम लेकर आते हैं ऐसा ही सुलझुलू जिसमें आप न केवल आप अपनी तकलीफ को कर सकते हैं अपने गांव और अपने समाज के लिए बदलाव के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में ऐसे ही क्रांतिकारी उदयपुर से कोमल। कोमल का नाम बड़ा कोमल है लेकिन उनके जो काम है उनमें दृढ़ता है, उनमें एक आत्मविश्वास है और उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून। कोमल आप बताइए कि आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उदयपुर को कैसे शहर बनाना चाहते हैं?
1: मेरा सपना ये कि मैं उदयपुर को क्लीन सिटी तो वो है बट मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर में अभी बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें युवा लोग भटक रहे हैं। युवा लोग भटकने का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं क्योंकि स्कूल में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है। उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटके वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जैसे घूमना फिरना दोस्त बनाना होटलों में जाना कैफेज में जाना फैशनेबल कपड़े पहनना इन चीजों की तरह उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर जब तक अपना करियर न बना ले वो इन चीजों में न पड़े क्योंकि अभी इस जमाने में आपके इतना हाई कंपटीशन हो चुका है। किसी भी फील्ड में आप जाए किसी भी सेक्टर में जाए हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि पढ़ाई करने की एज में वो करियर बनाने की एज में वो भटक जाते हैं। होटलों में घूमना यार दोस्तों के साथ घूमना मूवी देखना उस टाइम पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है इस वजह से वो भटक जाते हैं और इस वजह से उनका करियर नहीं बनता है और करियर नहीं बनने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो पाठ्य पुस्तकें हैं क्योंकि मेरा थॉट ये है कि जो बच्चा 5th क्लास में जो बुक पढ़ेगा हिंदी की वो चैप्टर उसके 6th क्लास में काम नहीं आने वाला क्योंकि 6th क्लास में हिंदी का चैप्टर डिफरेंट होगा लेकिन उनको जो अदर एक्टिविटीज जो कराई जाती है जो मोटिवेशनल उनको जो स्पीकर के द्वारा जो बातें सिखाई जाती है वो उनके लाइफ टाइम तक काम आती है। जैसे उनको करियर गाइडेंस का है या फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर उनका कोई सेशन होता है या फिर सेल्फ डिफेंस वाला है या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का है ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है या उनकी अदर एक्टिविटीज है स्किल डेवलपमेंट वाला है ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए तो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करे तो भी आगे चल के अपना करियर बना सके। अगर बच्चा 10th फेल भी हो जाता है क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है अगर बच्चा 10th फेल हो जाता है तो उसको फैमिली से समाज से स्कूल से अपने फ्रेंड सर्कल से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तू तो फेल हो गया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए ऐसे उनको गाइडेंस दे ऐसा उनका सेशन स्कूल में चलाए करियर गाइडेंस का कि बच्चा अगर नहीं होना चाहिए लेकिन इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है या उनके परसेंटेज डाउन भी होता है तो वो अदर स्किल को अपनाकर अपना लाइफ या फिर अपनी चॉइस है या फिर अपने जो सपने है उसको पूरा कर पाए।
0: निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक कंफ्यूजन होता है वो एक ऐसी उम्र का दौर है जब आदमी अपने और अपने साथ साथ अपने मानसिक बदलावों से भी गुजर रहा होता है तो और समाज के जो बदलाव है वो तो उसको प्रभावित कर ही रहे हैं तो इन सारे अंतर्द्वंद के बीच वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है तो वो समय होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले और उसको गाइडेंस के साथ साथ उसके हाथ को हुनर मिले और हाथ के हुनर के साथ साथ वो समाज और अपने देश के लिए कुछ कर पाए और उसी समय यदि कोई नकारात्मक अनुभव उसको हो जाए तो वो जीवन भर उसे नहीं भुला पाता। और इसी तरह सब तरह की युवाओं के और बच्चों के जीवन को बदलने में लगी है हमारी आज की युवा कोमल और कोमल के साथ हमने ढेर सारी बातें कोमल हम बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि कुछ और ऐसी कहानियां जो मैं आपसे आप चाहते हैं कि इस मंच पर रखी जाए और मैं आपसे नहीं सुन पाया और आप उसमें रुचि दिखाते हैं, थोड़ा बताएं इसको।
1: जी जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से, अगर ये मेरा मैसेज किसी पेरेंट्स के पास जा रहा है, तो सबसे पहले मैं उस लड़की के माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शराबी है, किसी नशे का आदी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी शादी न करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी तरह का नशा करता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, नशे से छुड़वाएं, उसकी शादी न करें। आप सोचते हैं, मतलब लड़के के पिता माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, नहीं, क्योंकि आने वाली लड़की डॉक्टर नहीं है। आप आने वाली बेटी का भविष्य मत बिगाड़े। अगर आपके बच्चे की किसी तरीके की कोई नशे की आदत है तो किसी बच्ची का भविष्य आप खतरे में न डालें और सारी हकीकत उसको बताएं। दूसरा ये बोलना चाहती हूँ मैं ये बच्ची के माता पिता से कि आप अपनी बच्ची को धन दौलत न दे, दहेज न दे, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना संस्कार दे, इतना एजुकेशन दे कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ा हो सके और शादी के बाद वो किसी के सामने हाथ न फैलाए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो समय आने पर अपना खुद का और अपने परिवार का भी घर चला सके। ये मेरा निवेदन है। जी सर।
0: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये संदेश सभी बेटियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है कि वे भी जैसे ही अपनी उम्र में आगे बढ़े तो सिर्फ राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखें, वो भी अपने जीवन में एक मकसद बनाए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, मुझे देश के लिए उत्पादक नागरिक बनना है और मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका सपना अगर राजकुमार को पाना होगा तो हो सकता है कई बार आपको राजकुमार ना मिले और राजकुमार के बदले में एक नशेखोर युवा के रूप में एक आपको पति मिल जाए, तो ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अपने जीवन का मकसद जो है वो राजकुमार के संग विवाह करना ना होकर अपने जीवन का मकसद खेलों में कुछ अच्छा करना बताएं, किसी की महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखें, आप देश के लिए किसी उत्पादक फैक्ट्री में काम करने का सपना देखें, आप इंजीनियर बनने का सपना देखें, आप नर्स बनने का सपना देखें, आप डॉक्टर बनने का सपना देखें और तो और आप देश की राजनीति में राजनेता बनने का सपना देखें। ये सपने तो कुछ काम के हैं। राजकुमार को आपके जीवन में आपका जब आप इस सफर पे चलेंगे तो उस सफर पे हम सफर तो आपके साथ आ ही जाएगा। तो और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे के साथ कौन नहीं डूबना चाहेगा, तो कुछ ऐसा ही हम सफर आपके साथ अपने आप ही डूबने के लिए मिल जाए। पहली बात तो है कि आप एक मजबूत सफर पे निकले, एक सफर पे निकले जिससे आपका जीवन और आपके आसपास के समाज के जीवन बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हमारी बेटियां ये भूल कर बैठती हैं कि वो जैसे ही बड़ी होती हैं तो राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना देख लेती हैं और उन्हें कुछ नया सपना समाज के द्वारा बताया गया है। तो हमारे बीच में है कोमल जो इस तरह के गहरे विषयों पर हमारी बेटियों के साथ बात कर रही है और इस शो में तो हम पूरी दुनिया के साथ आज बात कर ही रहे हैं। तो ये ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतः समाज में बात नहीं की जाती है, लेकिन आज हम इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके बीच के सारे विषय लेकर आए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8।

0: मेरा मानना यह है कि सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कायदे बनाती है, लेकिन उसी को सरकार ही तोड़ देती है। जैसे कभी ब्लैक डे होता है, उस दिन शराब नहीं बेचने का नियम बना रखा है, शटर डाउन होगा, लेकिन पीछे की विंडो से शराब बिक रही है। और आप देखिए कि पीछे की विंडो से अगर शराब लिया जा रहा है तो वो पुलिस वाला खुद ले रहा है, जबकि वो सरकार का ही आदमी है। नियम यहीं से तोड़ना स्टार्ट होता है कि नियम बनाते भी आप है और तोड़ते भी आप है। अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया है तो उसको फॉलो आप कीजिए पहले, क्योंकि जब तक अगर मिनिस्टर वगैरह या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो लोकल पब्लिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस मुहिम में महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो आपको 100% तो नहीं मान सकती, लेकिन 90% रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पुरुष नशे के जो आदी है वो उससे दूर हो सकते हैं। चांसेस है अगर उसमें इन्वॉल्व महिलाएं ज्यादा होगी 90% इस मुहिम में, तो 90% बच्चे या फिर 90% पुरुष है नशे से छुटकारा पा सकते, मेरा तो मानना ये है। पर
1: बहुत बढ़िया कोमल, आपने हमसे बात की, आप ऐसे ही काम करते रहे और अपने चैरिटी वाले काम में भी जुटे रहे, और आपकी टीम को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे रेडियो मधुबन की तरफ से भी शुभकामनाएं, और उदयपुर को सुंदर नगरी, झीलों की नगरी को और सुंदर बनाते रहे। वहाँ की सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, समाज में आ रही विकृतियों और बदलावों पर भी अपनी सटीक नजर रखी जाए और तुरंत होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाए और उसमें समाज को जागरूक कर बदलाव के लिए आह्वान किया जाए। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे साथ काम करते रहें। रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम और नमस्कार।
0: एक मैसेज मैं उन शराबी भाइयों को देना चाह रही थी कि 1,000 की बियर की बोतल, 1,000 की बियर की बोतल शराबी एक बार में खत्म कर देता हूँ, लेकिन वही 1,000 रुपए का जो सिलेंडर आता है वो 2 महीने तक पूरे परिवार का खाना बन सकता है। तो शराबी भाई इस बात को सोचिएगा कि 1,000 की बियर की बोतल एक बार में आपको काम में लेनी है या 1,000 का सिलेंडर आपको अपने परिवार के लिए 2 महीने का खाना बनाने के लिए काम लेना है, ये बात आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच शरद भाई आपका, और कृष्णा बेन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू कोमल, तो फिर से ऐसे ही हम एक जुनूनी के साथ आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट शो जुनून में, और जुनून में फिर से नई बात होगी, एक नया आयाम होगा और एक नए जीवन को हम छुएंगे। तो फिर से मिलेंगे, योर दोस्त एंड दोस्त सनी ऑफ केयर शरद, जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चटपटी मजेदार गर्मा गर्म पानी पूरी, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ।
2: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया।
3: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है।
2: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना।
3: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं।
2: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना। बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है।
3: जी जी, वो तो है।
2: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
3: जी पूछिए ना।
2: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था।
3: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया। उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा।
2: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी।
3: भाई साहब, बात कुछ और थी। उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया।
2: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
3: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी। मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था।
2: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते। इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें।
3: भाई एक बात पूछें?
2: हाँ हाँ बोलो ना।
3: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर। क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए।
2: ठीक है, देखते हैं।
3: ओम शांति दीदी।
4: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए।
3: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं। उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया।
4: अच्छा, आइए आइए, बैठिए। वैसे क्या करते हैं आप?
2: मेरा बिजनेस है छोटा सा।
4: अच्छा।
2: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं।
4: क्या बात है, बोलिए ना।
2: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते।
4: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
2: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना। बार बार मांगने में भी शर्म आती है, कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ।
4: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए।
2: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता। लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा।
4: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है।
2: परखने की शक्ति?
4: जी, परखने की शक्ति, किसे उधार देना है या किसे नहीं। पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ। उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ।
2: लेकिन हम कैसे किसी को जाने, हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा।
4: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
3: जी जी दीदी बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे, और वैसे ही हुआ।
4: जी बिल्कुल, ये आपकी अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा को चीज करने से रोक रही होती है,
4: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
2: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
4: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
2: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है, ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया, अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
4: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
2: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
4: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
2: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
4: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
2: हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
4: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
2: और अगर फिर भी ना दे तो?
4: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
2: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
4: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
2: दीदी आखिर ये कितनी शक्तियां हैं, इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा।
4: जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं।
2: दीदी ये मन की शक्तियों को कैसे जाने, और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
4: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
2: ओ, दीदी इसकी कोई फीस?
4: नहीं भाई बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
3: जी दीदी हम जरूर आएंगे, पूरा 7 का कोर्स करेंगे।
4: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
2: जी दीदी सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में जब गांव और अंचल का नाम सुनते हैं, अपना गांव अपना अंचल, कितना खुशी लगता है, क्योंकि उस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उसका जो शुद्धता गाँव का भोलापन हमें और प्रकृति का गोद जब देखने को मिलता है तो हमें बहुत महसूस होता है। और शहर में थोड़ा डिफरेंस है, गांव का डिफरेंस, माहौल अलग होता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालयों के सहयोग से बच्चों का विकास के लिए, विद्यार्थी विकास में उनका अंदर में जो भाव और भावना है, जो भक्ति है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच दे रही है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन आज पहुंचा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियाबा में पहुंचे, और बच्चे बच्चों को हिस्सा लेंगे। एक का बाद एक प्रस्तुति आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, सिर्फ सियाबा तक क्यों सीमित रहे, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक स्टेज आज दे रही, जिस स्टेज का माध्यम से अपना बात को रखेंगे। मन का बात हो, चाहे भावना हो, चाहे यहाँ का संस्कृति हो, सब चीज आपका पास रहेगा, क्योंकि हमारा बच्चे सच्चे होते हैं और बच्चे मासूम होते हैं और अपना भाव को लेकर पहुंचेंगे। हमारा इस कार्यक्रम को सर जी कोऑपरेशन कर रहे थे, अपना परिचय देंगे, कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं?
1: मेरा नाम विक्रम कुमार राव है, मेरी पोस्टिंग सियावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मैं L2 अंग्रेजी से हूँ।
0: जी सर। सर आप भी कभी बच्चे थे, आज अब तो शिक्षक बन गए, तो बचपन में आप कैसे पढ़ाई करते थे और ऐसे शरारत करते थे ना, थोड़ा अटेंशन करके पढ़ते थे, तब तो आज सर बने, तब कुत्ता राव से बताइए बच्चों को, जो आप कैसे मेहनत करते थे बच्चों का समय में।
1: डेफिनेटली ये बात सही है, जब मैं खुद एक बच्चा था तो स्वाभाविक है, बच्चा है तो बच्चे जैसी प्रवृत्ति का होना भी स्वाभाविक है।
0: जी सर।
1: उछल कूद, खेल कूद, है ना, ये सारी बातें बचपन में होती है, जो मेरे भी जी चुकी है, मतलब हुआ करती थी। लेकिन मैंने अपने जीवन का मोटो टारगेट एक ही रखा कि पढ़ाई से कभी मैंने अपना लिंक नहीं छोड़ा।
0: वेरी गुड।
1: बाय द वे, यदि स्कूल में कभी किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाता था, या सब्जेक्ट टीचर अगर नहीं होते थे, या कोई गेम्स वगैरह होते थे, या अन्य एक्टिविटी होती थी, तो उस पीरियड में जो मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो मैं स्वयं घर पे जा करके उसको रिकवर करता था। और आप यकीन मानिए, मैं हकीकत कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई इस पे बोल रहा हूँ तो मैं आज झूठ बोल रहा हूँ। मेरी तीसरी क्लास से, आज भी मेरे पास में रिकॉर्ड है, तीसरी क्लास से लेकर के मतलब ग्रेजुएशन तक हर जगह 64 मतलब फर्स्ट क्लास बना हुआ है। और मेरी 10th बोर्ड में, क्योंकि उस समय 10th बोर्ड में मैंने 1995 में 10th किया है, 1997 में 12th किया है।
0: जी सर।
1: ठीक है ना, उस समय है ना, अभी तो स्कूल से 20 नंबर जाते हैं, पहले हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय फर्स्ट क्लास बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, पूरे गांव में मेरे 10th में 63% बने थे, तो पूरे गांव और आसपास के लोग मुझे जानने लग गए कि उनका लड़का, और मैं भी आपकी तरह आपके परिवार से ही हूँ, मैं कोई हाईफाई या मतलब ऐसा, मेरे फादर तीसरे पास भी नहीं थे, मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, मैं अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ।
0: जी सर।
1: मैंने कभी ऐसा, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं एक गरीब परिवार से था, मुझे पता था कि मुझे मेरे परिवार को मैनेज करना है, और जितना मैं कर सका था मैं आज उस जगह पे पहुंच गया हूँ। और यहाँ तक कि मेरे फादर, मैं थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, मेरे फादर पियोन थे, चपरासी थे, प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करते थे, और उनको इत्तफाक से अस्थमा के मरीज थे। तो मेरे 11th और 12th में पहली बार हमारी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, तो उस समय आर्ट थी, तो उस समय ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मेरे मेन सब्जेक्ट थे 11th और 12th में। 12th में भी मेरे 63 point something है। उसके बाद में मैं जानता था कि मेरे फादर सर्विस नहीं कर पाएंगे, ज्योग्राफी हमेशा रेगुलर होती है, मैंने आबरोड कॉलेज में लिया एडमिशन, तो मैंने यहाँ देखो एक जीवन में मैंने चेंजेस किया।
0: जी सर।
1: मैंने तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उनको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ज्योग्राफी रेगुलर होती है, मुझे पता था कि मेरे फादर अस्थमा के मरीज है, वो जॉब नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता मुझे कॉलेज प्राइवेट करना पड़े, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट को ड्रॉप किया। और यहाँ आते ही मैंने इंग्लिश लिटरेचर, जो एक गांव के लोगों के लिए अंग्रेजी बहुत बड़ा मतलब वो तोप समझी जाती थी, उसके बावजूद मैंने इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लिए, और उसी अंग्रेजी ने, क्योंकि यहाँ कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती थी, लोग जब होटलों में बैठ करके चाय पीते थे, मैं उस समय एक पीरियड अटेंड करके वापस अपने रूम पे आता था और लिख लिख के याद करता था, स्पेलिंग याद नहीं होती थी, लिख लिख के याद करता था। और 55% से अबव के साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके तुरंत बाद में 2000 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद में मैंने दो दिन भी वेस्ट नहीं किया और प्राइवेट स्कूल में मैं लग गया। और कहां आब रोड शिवाजी कॉलोनी और कहां हीरो होंडा शोरूम, मतलब पैदल जाकर के ट्यूशन पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में काम करना, तब जाकर के मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं तो आपको भी बोलता हूँ, जीवन में जितनी मेहनत करोगे उतना ही मीठा फल मिलेगा।
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर और वार्म अप करा दिया। और उनका जो जीवन कहानी, बच्चों को एक मोटिवेशन मैंने सीख मिलेगा जरूर। और जब उनका कदम पर कदम चलेंगे और मेहनत, विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे, 5 साल 6 साल जो समय है ग्रेजुएशन तक, मेहनत मेहनत करेंगे तो अगला जो 90 साल 50 साल आएगा ना, फल मिलेगा आपको, पैसा पैसा सम्मान सब चीज मिला, पोस्ट पोजीशन बंगला गाड़ी सब मिलेगा, क्योंकि आप नौकरी करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। लेकिन 5 साल मात्र 5 साल इतना मेहनत, 20 नाखून लगाकर पेट से सिर तक इतना मेहनत करेंगे, जरूर हमारा कदम चूमेगा, माने हमारा कदम में चरण में स्पर्श करेगा नौकरी। एक सर का अनुभव से, सर कैसे मेहनत किए, प्राइवेट हो लेकिन परिस्थिति कितने भी बड़ा परिस्थिति हुई, लेकिन अपना स्वस्थिति आत्मा को मजबूत किया और दृढ़ता से किया तो सक्सेस हुआ। तो आप भी करेंगे ना बच्चे, तो सर इसलिए बताए, सर को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक का बाद एक प्रार्थना होगा, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए रेडी, सभी को धन्यवाद। नाम का साथ अपना नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम नीला है, मैं मालियाबाद से आती हूँ।
2: वेरी गुड।
3: मेरा नाम आरती है।
4: मेरा नाम निकिता राव है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, मैं सियावास में रहती हूँ।
5: मेरा नाम खुशबू है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियावास से पढ़ती हूँ, मैं मालियाबाद से आती हूँ।
6: मेरा नाम अनिता है, मैं 12th में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं सियावास से आती हूँ।
8: मेरा नाम सीमा कुमारी है।
9: मेरा नाम करीना कुमारी है, मैं सियावास से आती हूँ।
10: मेरा नाम ज्योति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियावा कक्षा 12th की छात्रा हूँ, मैं मालियावास USB कॉलेज से।
0: वेरी गुड, चले डन, प्रार्थना करें।

0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद के लिए, धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और खास कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा का नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज, ये हमें बहुत खुशी है। एक साथ सभी ने अपना प्रस्तुतियां दी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक गीत सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रहते मधुबन 107.8 FM पर।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं तो आज हमें खुशी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय के मिलित सहयोग से विद्यार्थी विकास में विद्यार्थियों का टैलेंट को, प्रतिभा को, भाव को, हृदय का साथ संगीत में जो रुचि रखते हैं उसको उजागर करने के लिए एक मंच आज मिलेगा और हमें खुशी है। बच्चों को जब इस तरह मंच आवश्यकता होता है तो उनको मिलता है क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महान होते हैं और इस कार्यक्रम को सजाएंगे। बहुत खुशी लगता है हर विद्यालय में जाते हैं तो विद्यार्थी विकास में बच्चों का भाव और भावना को आप तक पहुंचेंगे। आज हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा में पहुंचे क्योंकि क्यारा भी एक ग्राम पंचायत और बड़ा स्कूल है लेकिन ये क्यारा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा का आवाज को बारी बारी सुनने को मिलेगा क्योंकि हमें खुशी है। क्यारा तो हमारा आस पास ही रहता है क्योंकि आब रोड और तलेटी का पास है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बगल में ही है। मोदल्ला, क्यारा, मोडू एक ही पास का बाद नागपुरा, अचपुरा सब आता है लेकिन बच्चों को सुनेंगे बारी बारी और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए हमारा सभी बच्चे तो है ही है और बच्चे सभी को नाम लेकर आए। मुझे जितना मालूम नहीं है मैम को अधिक मालूम है, सर को अधिक मालूम है। मैम को स्वागत करेंगे, मैम अपना परिचय पहले देंगे।
1: ओम शांति, मेरा नाम अनीता कंवर है, मैं गवर्नमेंट स्कूल क्यारा के अंदर SST सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मेरे बच्चे आज एक सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं।
0: जी हाँ, बहुत अच्छा है, वार्म अप करा दिए बच्चों को क्योंकि मैम का आवाज को सुनकर बच्चे भी अपना आवाज जो जितना था उससे और थोड़ा तेज करके सुनाएंगे क्योंकि बच्चे तो सच्चे होते हैं और बच्चे हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सभी को बारी बारी चांस मिलेगा, एक गुलदस्ता बनेगा आवाज का, मैम का आवाज का साथ, अभी बच्चों का आवाज। प्रार्थना सत्र में जैसे प्रार्थना करते हैं माँ शारदा को आह्वान करते हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में अपना भाव और भावना का साथ गीत संगीत प्रस्तुत करते तो एक प्रार्थना के रूप में हमारा साथ पांच छात्र है तो अपना अपना परिचय देंगे और कहां से आते हैं और स्कूल का पूरा नाम।
2: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूं, मैं नागपुरा से आती हूं और मैं क्यारा विद्यालय में पढ़ती हूं।
0: गुड, नेक्स्ट।
3: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूं, मैं नागपुरा से आती हूं।
0: क्या बात।
4: मेरा नाम राखी कुमारी है, कक्षा 8 में पढ़ती हूं, मैं क्यारा गांव से आती हूं।
5: मेरा नाम भावना कुमारी है, कक्षा 8 में पढ़ती हूं, मैं क्यारा से आती हूं।
0: क्या बात, कितना बुलंद आवाज है हमारा भावना और सुनीता और सुगुना सब, क्योंकि जब भी विद्यालय में जाते हैं सुगुना सुरेश ये सब मिल जाते हैं हर स्कूल में तो आज विद्यालय का एक आवाज सुनेंगे जो कि प्रार्थना सत्र में। सभी प्रार्थना शुरू करेंगे, बच्चे रेडी? ओके शुरू।

0: भगवान नाम तेरा, हर सांस सांस तेरी, हरि ओम नाम तेरा, हर सांस सांस तेरी, हरि ओम नाम तेरा।
1: क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति। और प्रस्तुति जो दी है, प्रस्तुत नहीं थे लेकिन अचानक में एवर रेडी रहते हैं बच्चे।

कहीं भी जाते हैं तो अचानक में और हेल्दी वेल्दी हैप्पी करा देते हैं हमारा प्रोग्राम को, क्योंकि ये रेडियो प्रोग्राम आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही प्रसारण होता है, तो बहुत खुशी लग रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे सुगुना एंड पार्टी से, और भावना भी हमारे साथ है, सुगुना भावना और सुनीता राखी। अभी तो राखी बंधन तो रक्षाबंधन होता है, राखी का महत्व है। तुम्हारा नाम क्या था? बीना जी। आ रहा बीना बजेगी तो सरस्वती का बीना को कौन याद नहीं करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा का आवाज।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ब्रेक का पहले आप सुन रहे थे मैम को और बच्चों को, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और इस कार्यक्रम को संभालने के लिए हमारा संस्था प्रधान को भी कौन याद नहीं करेंगे। कमल किशोर जी हमेशा हमें सहयोग देते और सभी स्टाफ को भी धन्यवाद देते, सभी जानते हैं रेडियो मधुबन को। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ सर जी है, सर अपना इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं और सभी बच्चों को जानते हैं और बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, तो सर आप अपना परिचय देंगे हमारे बच्चों को और जो श्रोता को भी पता चलेगा सर का जब नाम सुनेंगे, अरे तो मेरा दोस्त है, ये मेरा सहपाठी थे और हमारा प्रिंसिपल भी सुनेंगे, तो आप अपना परिचय दीजिए और बच्चों का अंदर में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका ऊपर में थोड़ा बताइए, अपना परिचय प्लीज।
1: मैं सुरेश चंद गर्ग शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा में हूँ।
0: जी सर, और खासकर आप शारीरिक शिक्षक जब बता दिए तो शरीर बिना हमारा मन बुद्धि ठीक रहे, शरीर कितना तंदुरुस्त रखने के लिए बच्चों को क्या क्या कराते हैं स्कूल में?
1: रोज व्यायाम कराते हैं प्रार्थना के अंदर और योग वगैरह की शिक्षा भी देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और तंदुरुस्त रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शॉर्ट एंड स्वीट में बता दे, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों तंदुरुस्त रहेगा तो विद्यार्थी को पूरा लॉटरी एक चांस मिल जाएगा सब चीज में ग्रहण करने में, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो मन बुद्धि भी ठीक रहेगा और मन बुद्धि ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, दोनों का आवश्यकता है, इसलिए आत्मा और शरीर का बैलेंस रखना जरूरी है। और हमारा शारीरिक शिक्षक इस कार्यक्रम को हेल्दी करा दिए और बच्चों को थोड़ा वार्म अप करा दिए और स्वास्थ्यवान रहना कितना आवश्यकता है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य ही संपदा, पैसा रहे कि नहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अगला प्रस्तुति के लिए हमारा एकल गान के लिए चलते हैं, सुनीता एकल गान करेगी शुरू।
2: मैं तो

सदा प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है। सब अपने हैं, कौन यहाँ बेगाना है। हर पल अपना अर्थवान बन जाएगा, बस तो

हर आंगन में सिर्फ सिसकिया उड़ती है, संबंधों की सांस उगड़ने लगती है। भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, सल्लाटों में सरगम हम बन जाएंगे, मरुदरा को मिल करके हम सरगम बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूँ।

गया जो समय उसे क्या रोना है। लो हाथों में हाथ दो, जन जन को विश्वास दो, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, मरुदरा को मिल कर के हम सब।

0: ट्रक कोरक सब चीज सीखते हैं। और मोबाइल से सुनीता अच्छे से कर पा रहे। और बड़ो कर क्या बनेगी सुनीता?
1: आईएएस बनेगी।
0: हाँ देखो सिंगर नहीं बोला, मैं आईएएस ऑफिसर कलेक्टर बनेंगे। उसलिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में, और दो चार घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, और चार पांच साल अभी 8th क्लास होंगे है ना, और पांच छह साल आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपका आगे का समय 90 साल तक आपको कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। 9 साल मेहनत करो, 90 साल तक पैसा आपका पास आएगा। ये 9 साल मेहनत विद्यार्थी जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक के बाद पुनः समूह गीत गाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद।

चलिए चलिए, बोलते बोलते और एक गीत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिली सहयोग से बच्चों का आवाज को आज एक मंच दे रहे हैं। जो बच्चे आज बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनका दिल का भावना, हृदय का जो संगीत है, सब तक पहुंच रहा है और हमें खुशी। रेखा, भावना और सुनीता को धन्यवाद देते हैं, उनको स्वागत करते हैं। इस तरह बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना भाव को रखते हैं। तो और एक प्रस्तुति सुनेंगे।

0: कहाँ
1: हमारे साथ छोटा सा परी भी आई है और उनका आवाज कभी सुने होंगे, वो अपना नाम बताएगी, हीना। आज शर्मा रहा था जब उनका घर में जाते हैं अनुष्का का घर में, तो अनुष्का छोटा सा बच्ची है लेकिन खबरा का घर में रहता है, लेकिन आज देखकर ये भी पढ़ाई कर रही, बहुत अच्छा लग रहा। तो अनुष्का को कौन जानते हैं, सब जानते हैं उनको, कहाँ से आती है,
2: कैरा से।
1: हाँ कैरा से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रस्तुति,

0: तुमी हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए सुनीता। आईएएस ऑफिसर बनने के इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। और उसका दोस्त कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है?
0: भावना कुमारी।
1: कौन सा क्लास भावना?
0: आठवीं क्लास में।
1: वाह, बहुत अच्छा दोस्त मिला है। और हमारा अनुष्का को जानते हैं ना? अनुष्का, हाँ, अनुष्का जो छोटा बच्ची है वो भी पहले गीत गाती थी, आज नहीं गा पा रही। कोई बात नहीं, उनका घर में हम गीत गाना सुनाएंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था आज के उच्च प्राथमिक विद्यालय केरा का आवाज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति वंस मोर कहते कहते हमारा बच्चों को भूल नहीं पा रहे हैं। और पुनः सुनीता सुगुना और रेखा और भावना सबको धन्यवाद देते हैं, उनको पुनः स्वागत करते हैं। चलिए एक प्रस्तुति हो जाए।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चा बच्चा राम है, क्योंकि हर बालक और बालिका छोकरा छोकरी पूरा देव समान देवी समान है, हर बाला और बालिका एक देव समान है। तो सभी को धन्यवाद देते हैं और इस तरह चरित्रवान बनते हैं, विद्यालय में आते हैं, पढ़ाई का साथ साथ इस तरह मनोरंजन भी करते हैं और प्रार्थना सत्र में हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो ये विद्यालय के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए नाम रोशन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक प्रस्तुति एकल गान के लिए हम प्रस्तुत रहेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खास कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा का आवाज।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को, और रेडियो मधुबन के हमारे तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं, और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम, बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर, पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो, एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं, या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं सर, तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो जो, और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहां पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहां से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है, वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाट एवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक की, एल्जब्रा, जो ज्योमेट्री की बात आती थी, तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कोई नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें, और स्क्विंट भी आई मेरा। हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार
1: जो,
0: में ही?
1: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली, जैसे लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो जो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय में नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्या चलती रही सर। क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो,
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे, और उसका
0: जी
1: साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसके बाद मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी, मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। +2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है, वाह,
1: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत, मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट
0: प्लस टू
1: को
0: का बता रहे हैं
1: देख
0: आप, 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
1: करके,
0: टॉप किया
1: ट्वेल्थ
0: ना?
1: का
0: क्या
1: बता रही हूँ जी, 12th में मैंने
0: सब्जेक्ट उस
1: कॉन्स्टिट्यूशन
0: समय,
1: स्टेट, हाँ
0: 12th में सब्जेक्ट
1: जी,
0: क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
0: अच्छा, हिंदी
1: हिंदी
0: मीडियम
1: जो
0: या इंग्लिश
1: पास्ट
0: मीडियम?
1: में हिंदी इंग्लिश मीडियम, 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए,
0: मीडियम।
1: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो
0: जी
1: इसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के
0: जी
1: लिए, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और
0: जी
1: तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में
0: जी
1: मैंने पाया, तो आई वाज सो हैप्पी, लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मेरी जो ग्रैंडमदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि
0: जी
1: भाई आपके इनके शादी कर दो, क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, है ना। तो हाँ
0: जी
1: जी, समझे आया। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई, पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो, और क्या चाहिए, है ना।
0: क्या
1: हमारा
0: आंखों का
1: मतलब
0: क्या ठीक हो गया था? तो वापस
1: जी,
0: बताएं, आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था
0: अच्छा, मतलब आपकी
1: जी।
0: रोशनी वापस से ठीक होने
1: नहीं
0: लग गई थी?
1: रोशनी,
0: ओ
1: नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था,
0: ओके, टेढ़ा
1: तिरछापन जो था, पुतलियां, वो अपनी सही जगह
0: टेढ़ापन
1: पे,
0: था। ओके
1: हाँ
0: अच्छा,
1: हाँ वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके। तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द
0: एंगेजमेंट
1: ईयर
0: आपके जैसे
1: जी,
0: व्यक्ति से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से? साइटेड
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: छाया
0: स्थिति
1: नहीं
0: में
1: था
0: नहीं रहे
1: सर।
0: कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ
0: परिवार
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए जी। तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं, है ना।
0: हाँ,
1: तो यहाँ भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे
1: अनलकी
0: दिन भी
1: रही
0: तेरे भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, कार्मिक अकाउंट से मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन, मेरे सब लोग, फैमिली मेंबर, एवरीवन इज हैप्पी, वाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई, ठीक है। वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल, क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी?
1: कुछ नहीं था सर, अपने
0: कुछ भी नहीं
1: फैमिली
0: था?
1: के टुकड़ों पर,
0: ओके।
1: हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं नहीं कोई बात
1: क्योंकि
0: नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे भी
1: भी, हाँ
0: पर्सनल,
1: जी
0: हाँ वो वैसे भी पर्सनल लाइफ है,
1: हाँ
0: रही है आपकी,
1: जी।
0: तो कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया, ठीक है। देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000, यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
0: ओहो
1: टू
0: ओहो
1: थाउजेंड फोर में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैनॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता। आप
0: एक
1: इंग्लिश
0: ऐसी
1: के साथ आ
0: परेशानी
1: रहे
0: से
1: हो
0: आप जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता।
1: कई सालों से, मतलब है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
0: अच्छा।
1: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू, मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस, आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या
1: हाँ, तो
0: हुआ है
1: बोले
0: जो।
1: कि हाँ, वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू, मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूं और मैं आराम से खाना पका लूं या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूं, इस तरह का स्विमिंग इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया।
0: तो
1: I was in you know depression, पूरा होता है ना एक आदमी का पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस,
0: है और उन्हें बेटे की बेटे का लालन पालन भी साथ में चल रहा है
1: सब तो मैं हाँ वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
0: और ब्रेल लिपि भी सीखी मैडम
1: जी? मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना, कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ में सीखा कहते हैं, है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज अ लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ, वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनिन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी किताबें होती थी सब मुझे बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झाझुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया, तो आज वो नहीं है बट व्हाटएवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
0: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ऐसा समझ में आ रहा है।
1: बड़ा रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया, अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती।
0: हम समझ रहे हैं कि आप भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
1: तो ही वाज अ बैकबोन टू मी एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो। तो बस पिताजी की सहायता से सहयोग से वो कहते थे यू नो मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं।
0: वाह क्या बात है,
1: मतलब इतनी बड़ी बात मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है हम बेटी को नहीं रखे हैं ऐसे कहते थे डैड। तो उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है इसको कहां मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर अजीबो गरीब। मैं आपको बताऊं हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है, मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला कि मतलब एकदम सहानुभूति अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस कि हाँ दया दिखा रहे हैं तरस खा रहे हैं वैसा, एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो चल रहे हैं उनके साथ भी है ना, लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर।
0: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: आप, है ना। तो ये बात है, तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है, बट मैंने बहुत नाम कमाया स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और भगवान ने बहुत बहुत तरक्की दी, मोर देन यू नो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज हाउसवाइफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जॉब सीकर अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग दी है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स पूरा स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारे जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि वेदांत आदित्य बिरला भूषण ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाइप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर ऐसे अपना एक है, उन लोगों ने टाइप किया, तो इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वाज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
0: समय, मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे
1: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी दैट, तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में

0: बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया। तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है। तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए। तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और 2 हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा एक
1: हक।
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले। तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना, वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के। तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक ओटीवी है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को तो उस समय पे। और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे। अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है।
0: नहीं नहीं सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना हमारे समाज में, हम जिस तरह के माहौल में रहे
1: हैं। क्या होता है ना कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी
0: नहीं सोचता इंसान है ना, नहीं सोचता बस है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी। हाँ जी, तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है। देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बातें, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया।
1: अच्छा,
0: ओरल कैंसर जी। तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। So in the year 2018, he was expired. So that was a great loss to our family. So बहुत great loss हुआ और सर मेरी ऐसे lap पे उन्होंने इसे रखा हुआ था when he got expired. It was the last उनका था and उनका मेरा बहुत heart एक full connection है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए। और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ। तो ये
1: छत्तीसगढ़ में कौन से शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है वहाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया एंड उन्होंने ही हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर। फिर जमीन वगैरह
1: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही अपने आपको मतलब
0: बचपन से ही पूरा
1: सरवाइव भी किया, फ्लरिश भी किया, और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने।
0: सब सब।
1: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
0: जी,
1: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
0: जी,
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए, और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
0: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ। सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही, है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन किया।
1: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद ब्लाइंड है।
0: लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी, है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके, और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास, और सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से।
1: वहाँ आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
0: हाँ, बस एक हॉल जैसे था तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी। तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
1: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ, ये बिल्कुल राउर किला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
0: जी,
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा।
1: ये क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया, है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है। तो ये बात देखने को पता है बहुत अच्छी तरह से जी।
1: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्ष।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से। और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं। अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो है ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं। और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर, तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई।
1: जी, मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ। अभी आपने एक रुख स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
0: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाए उस ओर तो।
1: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा।
0: जी आप बताइए।
1: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
0: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए।
1: जी बिल्कुल सर, होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है, है वह मंजिल यहीं कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश, जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
0: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत
1: सर। तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी नहीं, सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊ जी की किताब की दुकान थी, तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे। कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
0: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो तब तब ये हाल है ना,
1: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है, मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
0: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए, पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
1: जी
0: जी,
1: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के, किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही। तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना इन लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है, जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने आई, मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना, वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए, 10 रुपए सर एक काम एक सीडी का लेते थे, और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, क्योंकि मुझे

0: फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, मैं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें
0: कल्पनाओं की
1: बस
0: उड़ान, तो बस
1: घुस, एक
0: हाँ
1: बार जब घुस गए तो निकलने का कोई
0: घुस
1: मतलब
0: गए।
1: नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र है, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनईबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आया कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप
1: सिखाया।
0: इसमें क्लास करो। हाँ तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो और अपने मायके में रहती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे। मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े, जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां
1: बिल्कुल।
0: पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक
1: अरे वाह,
0: आर्टिकल
1: क्या
0: आता
1: बात
0: था
1: है। जी
0: पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं
1: जी
0: काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोग, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से
1: जी
0: पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ,
1: बिल्कुल।
0: मुझे नहीं दिखता है। ओके तो ये रही। तो उस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए। तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और
1: जी
0: ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो
1: जी
0: मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
1: अच्छा
0: वो जब ब्लाइंड लोग के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोग के साथ में। तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग रिम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी,
0: जी तो
1: यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक
0: जी
1: कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है
0: एक सोशल
1: कनेक्टिंग
0: वेंचर
1: रिंग्स
0: शुरू
1: के नाम।
0: किया जिसका नाम कनेक्टिंग रिंग्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं। तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टि बाधित, मैक्सिमम दृष्टि बाधित है, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे
1: अच्छा
0: एडिटिंग नहीं आती थी। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से
1: जी
0: हैं और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति भी
1: वाह,
0: बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक
1: क्या
0: ब्लाइंड
1: बात
0: पर्सन
1: है।
0: है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर हैं, तो इन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी। और सब सब लोग बोलते थे कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर। तो सब
1: जी
0: लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली
1: बिल्कुल
0: बात बताती हूँ। 0%
1: बिल्कुल
0: इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को 1 रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए ना नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आईशाला से बनाए, फ्री ऐप से बने बनाए, है ना, आईशाला से किए,
1: जी
0: तानपुरा में चला रहे
1: जी
0: हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं
1: जी
0: इसमें क्यों नाम लेना चाहूंगी आपके, जयपुर से श्री ओम वेनावरिया जो बीएड अभी कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टि बाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है। तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इशू होते हैं वो सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से
1: जी
0: रिलेटेड, वो सारा कुछ
1: जी
0: मैं करती हूँ, और ओम बिनावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम हमने बनाया, इसमें हमारे 4 कोर मेंबर और हैं जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, और बाकी हमारी टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं के। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लो विजन है,
1: बहुत
0: कोई
1: अच्छी बात है
0: कंप्लीटली ब्लाइंड है। तो
1: जी।
0: लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों में, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं।
0: सब्सक्राइब,
1: वो वही वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया। एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये 3 हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है,
1: जी
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है लेकिन इन फ्यूचर
1: हो जाएगी,
0: आज कल
1: बिल्कुल, आज नहीं तो कल जो सोचा है वो तो होना ही वाला है। जी
0: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में जीरो और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द सन,
1: एक क्या अनेक जीरो लग जाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो कितने, मतलब टोटल ऐसे एक संख्या में कभी नोटिस तो। जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर हम मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जो पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट कहानियां कविताएं, तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: उपन्यास
0: करने का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है का नाम क्या नहीं हो गया और हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं। और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के अंदर के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी, डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है। जी
1: तो बहुत अच्छी बात है, एक मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है।
0: जी बिल्कुल, टोटली ब्लाइंड है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब, तो कभी अगर
0: इनका हमारे साथ अवसर है, कोलैबोरेशन
1: अवसर मिला तो उनके साथ भी हम मन की आंखों से कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल
1: करने की कोशिश करेंगे।
0: हाँ, वो बहुत,
1: और ये अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है। और गोष्ठी, कुछ काव्य गोष्ठियां हमने की है कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है और अक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट कॉम्पिटिशन सेलिब्रेशन गेट टुगेदर छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियाँ लिखने का सर ऐसा है कि कहानियाँ बहुत सी लिखी हैं जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियाँ लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियाँ मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे, क्योंकि ब्रेल लिपि तो आपने बहुत ज्यादा सीखी नहीं?
0: नहीं सीखी, लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी।
1: ओके अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा और उसी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर, वो वाला ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
1: बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर है हम लोग आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ, लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी, मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश सुकून है, क्या वो तेरे पास है जिंदगी। तो ऐसी लेती हैं तो सुकून भी जिंदगी के पास है, आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
0: जी, बहुत शुक्रिया।

मेरी खुशियां बन तू जीवे, तेरी खुशियां बन मैं जीवूं, बस इतनी सी है आरजू। कार्यक्रम है गुलदस्ता, सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन पर राखी पर स्पेशल कार्यक्रम। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, आप सब हैं सुनते हुए मुस्कुराते हुए स्वर्ण लता के साथ। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन पर्व हम सब उमंग उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं वर्षों से, तो आज भी हम हर तरफ खुशियां बिखेरेंगे। हर तरफ खुशियों की बौछार हो, बंधा एक धागे में भाई बहन का अटूट प्यार हो, हैप्पी राखी। राखी का यह अनमोल उत्सव हम सबको यही याद दिलाता है कि हम ढेर सारी शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखते हुए एक दूसरे के प्रति रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो इस रक्षा सूत्र को हम दर्शाते हैं राखी के धागे के संग। तो आइए ना इस खूबसूरत त्योहार को हम मनाएं गीतों बातों और कुछ ऐसी बातों से जो हमारे दिलों को जोड़ कर रखेगा। बने रहिए अंत तक सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

खूबसूरत रेशम की डोरी से संसार बांधा है। साथियों, जरा सोचिए, क्या सिर्फ बहन भाई या भाई बहन एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, या हम सब एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं? है ना, सभी एक दूसरे के लिए। कर्म की गाड़ी लक्ष्य प्रमाण चलती रहती है। हर संबंध में, हर रिश्तों में एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य और लक्ष्य होता है। महज प्रेम या महज अपनापन काफी नहीं, उसमें सुरक्षा की भावना भी जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा की भावना एक कवच का काम करता है और यह सुरक्षा शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से ही होती हैं। शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं जहां होती हैं, वहां कोई भी मनोविकार प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस पर ध्यान देते हुए आज के कार्यक्रम को हम सुनेंगे और आज के कार्यक्रम में हम अपने आप में आध्यात्मिक बल भी भरेंगे, है ना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्रभु शक्तियों की डोरी करती रक्षा हमारी है। अलौकिक राखी हमारी रक्षा करती है और ये अलौकिक राखी हमें स्वयं परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कैसे मनाना है। एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि आत्मिक भाव को जगाकर हम इस पर्व को मनाते हैं। तो ये महज सिर्फ बहन भाई या भाई बहन का त्योहार नहीं बल्कि हर व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति आत्मिक भाव को जगाकर पवित्र दृष्टि रखने का पवित्र दृष्टि निर्माण करने का यह पर्व है।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: राखी का त्योहार यही कहता है कि एक दूसरे के प्रति पवित्र प्रेम की भावना हो, शुद्ध भावना हो, एक दूसरे के प्रति रक्षा की भावना हो। रक्षाबंधन भाई बहन के निर्मल प्रेम और निर्मल संबंध की मधुर स्मृति दिलाने वाला पावन पर्व है। सचमुच बहन भाई का नाता अति पावन नाता है और बहन भाई की दृष्टि एक दूसरे के लिए बेहद पावन होती है। रक्षाबंधन कोई महज एक दैहिक रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की बुराइयों, विषय विकारों एवं व्यसनों से रक्षा करने का सूचक है। और इस रक्षा की जरूरत केवल बहनों को ही नहीं बल्कि भाइयों को भी है। जी हाँ साथियों, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही अलौकिक राखी बाकी राखियों से न्यारी है, अलग है, जो हमें एक दूसरे के प्रति भाई भाई का जो नाता है उसे याद दिलाता है और एक दूसरे की रक्षा की खातिर हमें शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देनी है, यह बार बार सिखलाता है। तो हमें परमपिता परमात्मा को इसके लिए थैंक यू देना चाहिए।

बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। यह गीत बहुत पुराना है और इस पुराने गीत को सुनकर के हम सबको मन कर रहा है ना कि और भी पुराने गीत रक्षाबंधन से जुड़े हमें सुनना है, तो जरूर सुनवाएंगे हम। तभी तो आज आए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम गुलदस्ता में हम सब मिलकर मना रहे हैं रक्षाबंधन पर्व। और इसके बारे में हम बहुत सारे आध्यात्मिक बातें भी सुन रहे हैं और दुनिया में भी बहन भाई और भाई बहन एक दूसरे के प्रति क्या क्या गुड विशेस रखते हैं वह भी हम जान रहे हैं गीतों और बातों के माध्यम से। प्रेम और विश्वास के बंधन की जो यह डोरी है यह हमेशा सलामत रहे, यही तो कामना करते हैं ना हम सब। प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ, जो दुआ मांगो उसे तुम हमेशा पाओ। राखी का त्योहार है भैया जल्दी आओ, अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे बहुत सारे ग्रीटिंग्स आते रहते हैं जिन्हें पढ़ के सुनाने में बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है और पता चलता है कि भावनाएं कितनी पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं। साथ पले और साथ बढ़े हैं हम, खूब मिला बचपन में प्यार, इसी प्यार को याद दिलाने आया ये राखी का त्योहार। तो आपके लिए हम दोनों ही बातें सामने लेकर आए हैं, लौकिक और अलौकिक, यानी इस लोक में कैसे मनाते हैं और ईश्वरीय राखी जिसे हम अलौकिक राखी कहते हैं वह भी कैसे मनाया जाता है, दोनों ही आप जान रहे हैं। और अभी आपके लिए आ रहा है एक बंगाली रक्षाबंधन सॉन्ग।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम सब रक्षाबंधन स्पेशल प्रोग्राम में हैं और कार्यक्रम है गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम में हम वैरायटी गीत बजाते हैं, इसमें हिंदी गीत भी बजाते हैं तो बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम गीत प्ले करते हैं। तो आज हमने बंगाली सॉन्ग सुना रक्षाबंधन पर्व पर। उम्मीद है आपको पसंद आया। दोस्तों, हम भारतीय हैं तो भारत के किसी भी प्रांत के गीत को सुनना चाहिए और सुनकर आनंदित होना भी चाहिए। तो आज के इस अद्भुत जो पल है, जो पवित्रमय है, जो श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त है, इसमें हम यही देख रहे हैं कि आत्मीयता को दर्शाने का, सुखद अनुभूति दिलाने का पाक पर्व है रक्षाबंधन। ज्ञान का दिया जलाकर, आत्मिक तिलक लगाकर, अपनापन का मिठाई खिलाकर, पवित्रता का रक्षा सूत्र बांधकर हम सब मनाते हैं यह पर्व।

0: रास्ते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन। मेरा भैया बड़ा प्यारा है, सारी दुनिया से न्यारा है। हम सब यह अलौकिक राखी, न्यारी राखी सीखते हैं स्वयं परम पिता परमात्मा से। युगों से हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे और उन्हें पुकार रहे थे, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ रहे थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इस नाते वो हमारे बड़े भैया भी हुए तो छोटा भाई भी हुए, तो क्यों ना हम उन्हें भी राखी बांध दें और उनसे भी राखी बंधवा लें, है ना, बहुत खूबसूरत बात। तो इस महान पर्व पर हम यह दृढ़ संकल्प करें कि अपने मन वचन कर्म को पूर्ण पवित्र बनाकर हर नर नारी के प्रति हम पवित्र दृष्टि रखते हुए उन्हें सम्मान देंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम दोनों राखी के बारे में जान रहे हैं कि दुनिया में कैसे मनाते हैं और हम आध्यात्मिक रहस्य से युक्त यह अलौकिक राखी जो बेहद ही न्यारी है वह कैसे मनाते हैं, है ना।

या मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। रक्षाबंधन का यह जो पावन पर्व है, यह श्रेष्ठ फीलिंग भी जगाता है। देखिए, बहन का भाई के प्रति कितना श्रेष्ठ फीलिंग है कि उसे भाई की सलामती ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन प्यारे भाई, हमारी रक्षा का बंधन हमेशा मजबूत और अटूट रहे। आप मेरे लिए बहुत खास हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चेहरे की रूहानियत है राखी, एकता की साक्षी है राखी। रिश्ता राखी का बहुत निराला, आत्मा को सर्व सुख देने वाला। तो ईश्वरीय राखी ऐसे मनाई जाती है, पर दोनों ही राखी हम कहेंगे, दोनों में ही भावना तो वही है कि एक दूसरे के लिए रक्षा। रिश्तों को संभाल के रखने का पर्व है रक्षाबंधन। अपनापन और सुरक्षा की भावना को बढ़ाने का पर्व है रक्षाबंधन। गुड विशेष से जीवन को सुरक्षित रखने का पर्व है रक्षाबंधन। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलूंगी एक नए अनुभव और विषय के साथ। तब तक आप अपना टेक केयर कीजिए और रक्षाबंधन पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे शुभा, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दुनिया नया जमाना, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो हो स्वच्छ, हरित और सतत। धरती केवल हमारे रहने की जगह नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है, तो पर्याप्त

0: पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या फिर संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। तो जब एक व्यक्ति जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज जागता है तो एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्यावरण योद्धा है जिन्होंने वर्षों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, जिनके कार्यों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं श्री खमू राम विश्नोई जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: तो खमू राम जी, सबसे पहले तो आपके अनुभवों और संघर्षों के बारे में हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपके बारे में थोड़ा अधिक हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम खमू राम विश्नोई है। मैं ओशिया तहसील के गांव एकलगोरी का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त 28 फरवरी 2026 को हुआ हूं। और पिछले लगभग ढाई दशक से मैं सिंगल यूज प्लास्टिक और के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े मेले होते हैं, वहां हमारी टीम कचरा बीनती रहती है ताकि लोगों की मानसिकता में जो कचरा भरा हुआ है, जो लोगों की सोच में कचरा भरा हुआ है, वो निकले। हमारी मकसद ये नहीं है कि हम जमीन से कचरा बीने, हमारा मकसद ये है कि जमीन पर कचरा आए उससे पहले ही मानसिकता ही बदल जाए कि मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं जमीन पे कचरा फेंकूं। तो इस प्रकार लगभग ढाई दशक हो गए हैं। और दूसरा हमारा काम है शादी ब्याह, वहाँ भी हम फ्री सेवा देते हैं। उसके पीछे हम तीन चार शर्तें होती है। वो पहली शर्त होती है पूरा कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहना चाहिए, डिस्पोजल मुक्त रहना चाहिए। और दूसरा हमारी होती है झूठन मुक्त रहना चाहिए। तीसरा हमारा होता है नशा मुक्त रहना चाहिए। और चौथा होता है हमारा फटाका मुक्त समारोह हो। तो हम ऐसे सेवाएं देते हैं जैसे मेरी बहन की शादी हो, मेरी भतीजी की हो, भांजी की हो। सारे दिन हम तांबे के लोटे ले जाके मेहमानों को जलपान कराते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दरकिनार करते हैं, नशे को दरकिनार करते हैं, फटाकों को दरकिनार करते हैं, और झूठा भी नहीं छोड़ने के लिए मना करते हैं। क्योंकि धरती का, अगर मेरी भाषा में बोलूं तो धरती का सबसे बड़ा भगवान है वो भोजन है। भोजन से बड़ा भगवान मंदिरों में भी नहीं मिलता। मंदिर के भगवान को भी हमारे भोजन का, प्रसाद का ही भोग लगता है।
0: जी जी सर, बिल्कुल। तो सर, बहुत सारे कार्य आप कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में बीता, प्रकृति से जुड़ाव कैसे शुरू हुआ?
1: अब आपने बिल्कुल सुन रखा होगा कि विष्णुई समाज शुरू से ही, गुरु दम्बेश्वर भगवान 550 वर्ष पहले ही हमें विष्णुई समाज सभी कम्युनिटी में से चुन चुन के हमको अलग बैठा के और 29 नियमों की एक आचार संहिता दी, एक सिस्टम दिया कि प्रकृति के साथ समन्वय बैठा के तुम्हें जीना है। तो गुरु दम्बेश्वर भगवान ने 1485 ईस्वी में सभी कम्युनिटी, सभी समाज के लोगों में से विष्णुई समाज के लोगों को एक नियम देके, 29 नियम देके और एक नया पंथ चलाया या एक नया सिस्टम बनाया, एक नई जीवन जीने की एक नई कला दी जो प्रकृति के साथ में समन्वय बैठा के जी सके।
0: जी सर। सर, सहायक रजिस्टर पद से आपने रिटायरमेंट लिया है, और मतलब पढ़ लिख करके आप अच्छा नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को आपने जीवन का मिशन क्यों बनाया? आप चाहते तो अकेला भी, जितना आपको प्रकृति से प्रेम है तो आप अपने प्रेम के साथ जीते, लेकिन इसको मिशन क्यों बनाया आपने?
1: ऐसी बात है कि पहली बात तो गुरु दम्बेश्वर भगवान जो 15वीं शताब्दी के सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वो उनके अनुयायी हुआ। दूसरे मेरे माता पिता के जो रगों में भी पर्यावरण और संस्कृति बचाओ का खून था, प्रकृति प्रेमी का खून था। और दूसरा विष्णु कम्युनिटी का रंग भी तो मेरे साथ, मेरे ऊपर शरीर में मेरे लगा हुआ था, चढ़ा हुआ था, मेरे खून में घुला हुआ था। तो जब ये इतनी सारी आबो हवा के बीच में मुझे जीने का मौका मिला तो स्वाभाविक है कि मैं प्रकृति की सेवा करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जीवन ये बहुत ही कम समय के लिए मुझे भगवान ने दिया है, और पर्टिकुलर एक टाइम बींग के लिए है, उसके बाद में भगवान मुझसे वापस छीन लेंगे। और सांसें भी गिनी हुई है, अब मुझे रियलाइज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन मुझे अगर रियलाइज है कि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं तो मैं बेहतरीन काम करने का प्रयास करता हूं। और हर आदमी को जब ये मालूम चल जाता है कि मैं जीवन पृथ्वी धरती पे कोई विशेष प्रयोजन से आया हूं, तो वो कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करेगा, वो हमेशा प्रकृति की सेवा करने का ही प्रयास करेगा। मैंने ही वैसा ही किया।
0: जी सर बिल्कुल, जैसे कि ये संस्कार आपको आपकी संस्कृति से, आपके समाज से, आपके माता पिता से आपको मिली है और इसको ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं और एक आपने समाज में क्रांति लाए हैं आपने। तो जब आपने शुरुआत की 2005 में, वर्ष 2005 में, हम सभी आई थिंक मेरे जनरेशन के जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त सभी स्कूल में होंगे, तो आपने अकेले स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उस समय ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली 2005?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया और मैं इसकी रिप्लाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहूंगा। मैंने एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति की बहुत ही तारीफ की गई, जैसे हमारी 5000 पुरानी हमारी संस्कृति है और हमारे जो पर्यटन स्थल है, हमारे जो धार्मिक तो और प्रकृति से प्रतिष्ठ हम पीपल को पूजते हैं, हम गौ माता को माँ बोलते हैं और हम सभी अलग अलग देवताओं के अलग अलग जीव जंतु भी उनके सवारियों में, जीवों को भी उनकी सवारियां बनाई है। तो हम देवता को और जीवों को हमने समन्वय में बैठा के और उनको पोषण देने का प्रयास किया ताकि सभी जीव धरती पर रह सके और उनका सब अपने अधिकार पूर्वक रह सके, यही भारतीय संस्कृति थी। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ अच्छा बताया है, सब कुछ गुणगान किया गया, लेकिन अंत में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे जो पूजा स्थली है, वहाँ अंदर तो आरतियाँ गा रही है, ओम जय जगदीश हरे या और भी देवी देवताओं की जो आरतियाँ हो रही है, और बाहर की तरफ कचरों का ढेर लगा हुआ बताया। तीर्थ स्थानों पर भी मेले में लोग इतने भीड़ कर देते हैं लेकिन भीड़ के बीच में पैरों में इतना कचरा पड़ा रहता है कि वो तीर्थ न होके कोई कचरा घर हो जाता है। तो मेरे को दर्द हुआ और मैंने तीर्थ स्थान को जाके देखा तो जैसी डॉक्यूमेंट्री में फोकस किया गया वैसे को वैसा मैंने वहाँ तीर्थ स्थान पे देखा। तो फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आया, पहले मैं हाईकोर्ट की सीक्रेसी में था, मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मैंने छुट्टी मिली और मैं 2005 में कोई बड़े हमारे विष्णु समाज के बड़े तीर्थ स्थान पे गया। तो मैंने विष्णु समाज के लोगों को बलिदान को याद कर 363 लोग 1730 में पेड़ों हरी पेड़ों के लिए अमृता देवी के तत्व में शहीद हो गए थे और वन्य जीवों के लिए भी शहीद हो गए थे। सलमान खान वाला भी उदाहरण हमारे सामने ही था कि काले हिरण का शिकार करने आए और फंस गए, अभी भी फंसे हुए हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में इग्नोर क्यों कर रही है? तो समाज के लोगों ने मुझे थोड़ा कहा कि तेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हर चीज हमेशा अकेला करता ना वो आगे जरूर बढ़ता है।
0: जी, तो लोग जब आपका मजाक उड़ाते थे तो आपने हिम्मत कैसे बनाए रखी?
1: ऐसी बात है, शुरुआत में जब मैं गया तो वहाँ लोग कचरा फेंक रहे थे तो मैंने उनको समझाने का कोशिश किया तो कौन मानता है, एक आदमी की कोई नहीं सुनता है, बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनता, तो मैं एक साधारण आदमी था, मेरी कौन सुने। तो मैंने कहा अब ये सुनने वाला तो है नहीं, तो मैंने वो जो मेलों में हमारे विष्णु समाज के लगभग अपनी आमदनी का 10% चुगा पक्षियों के लिए, गायों के लिए लाते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े चुगा घर बनते हैं, वहाँ वो चुगा घर के लिए बोरी कट्टा भर के लाते हैं बाजरा का या गेहूं का, जो भी धान उनके फसल होती है वो ला के वहाँ डालते हैं, तो वो उसका खाली कट्टा पड़ा था। मैंने देखा अब इस कट्टे का उपयोग तो मुझे ही करना चाहिए, मैंने वो कट्टा उठाया और वहाँ जितना भी बिखरा हुआ कचरा था वो उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा विष्णु समाज के लोग थोड़े मानते कम है, कुछ अलग टाइप के हैं, मानेंगे नहीं, वो नहीं। मैं कचरा बींध रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को धक्का नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ माई मदर प्लानिट, मैं धरती माँ की स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ, इसमें भी मुझसे कोई धक्का मुक्की होगी तो मैं मेरे सहन करूंगा।
0: जी सर, सलाम है आपके कार्य को और आज भी वो कारवा जारी है और
1: बिल्कुल ये शुरुआत में ऐसा हुआ
0: जी,
1: फिर लोगों ने मेरे हंसी मजाक भी कौन चुके और फब्तियां कसने में कौन चुके, किसने कहा पागल हो गया, किसने कहा इसकी नौकरी चली गई, किसने ये कहा गया अब ये फटीचर हो गया, जो उनके मन में आता था वो कह रहे थे, लेकिन मेरा टारगेट था, मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ और रोड से जा रहा हूँ तो कहीं गोलाई भी आती है, कहीं पुल भी आता है, कहीं बाईपास भी आते हैं, कोई कुछ भी आता है, लेकिन मेरा टारगेट जयपुर जाने का होता है, तो मैं हर हाल में उसी रोड को चुनता हूँ जहाँ जो जयपुर जाती है, भले बीच में रस्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो भी मैं उससे बच के आगे यहन कहन में पहुँचता हूँ। वैसे मेरा टारगेट था, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इस फील्ड में धरती माँ की सेवा करने में मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैंने वैसे किया। हालांकि मेरे पास खूब सारे ऐसे भी अवसर आए, परिवार के लोगों ने भी मुझे शुरू शुरू में कहा कि ये हमारे समाज, मेरे परिवार का, हमारे खानदान का नाक कटा रहा है, गंदगी उठा रहा है, परिवार के श्रीमती जी भी थे वो शुरू शुरू में, उन्होंने उनकी सहेलियों ने और उनके लोगों ने उनके परिवार जो उनकी बहनें हैं उनके जो पीर की परिवार के लोग उनको भी थोड़ा ऐसे महसूस हुआ, तो उसने भी अपने आप में नाक में सर डाली और मेरे को भी कभी व्यंग्यात्मक रूप से कभी कभी बोल देती थी, लेकिन वो भी मैंने सहन किया क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे आगे बढ़ना था, और लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य था, तो मैंने भगवान की कृपा और प्रभु की कृपा से मैं मेरे उस रास्ते पे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता मैं हाई कोर्ट से सर्विस से छुट्टी लेके परमिशन लेके मैं उस लक्ष्य पे काम करने लग गया।
0: जी सर, कभी ऐसा लगा नहीं कि अभियान छोड़ देना चाहिए?
1: नहीं, कई बार ऐसा लगा, कभी कभी मैं अकेला जाता था, बिल्कुल अकेला, तो मेरा चेहरा भी उतरा हुआ होता था कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां होती थी, कुछ बैनर होते थे, कुछ पर्दे होते थे, कुछ अन्य सामग्रियां भी होती थी, मेरे खुद के कपड़े भी होते, ऐसे तीन चार बैग हो जाते थे, चार बैगों को उठा के किसी साथ वाले राई को मैं निवेदन करता था कि थोड़ा मेरे हेल्प कर दो, तो उस समय लगता था कि तुम करने क्या जा रहा है, अकेला क्या कर लेगा, लेकिन फिर प्रभु कहते थे कि अरे भाई जो अकेला करता है ना उसको किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, तो जब अकेला चलता है ना उसको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो लेट नहीं होता है, वो हमेशा सही टाइम पे पहुंचता, तो मैं अकेला था तो मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है, मैं स्वयं ही डिसीजन ले रहा हूँ और स्वयं ही फाइनल डिसीजन और स्वयं ही मन बंद कर रहा हूँ और स्वयं ही खोल रहा हूँ, मेरा काम शुरू भी मैं श्री गणेश भी मैं कर रहा था और वाइंड अप भी मैं कर रहा था, तो मुझे कोई दर्द नहीं था, और धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आने लगा, लोग कुछ लोग हेल्प के लिए, कुछ हेल्प नहीं होती थी तो तारीफ करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे दो जुड़े चार जुड़े, और शुरू में जो आज मेरे साथ में थे शुरू में थे वो अब एक भी नहीं था, लेकिन मेरा कारोबार चल रहा है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने छोड़ते रहते हैं, रोटेशन बन गए ये, तो अभी भी मैं हमारी कब शादी ब्याह में जाते हैं तो 10-20-30 हो जाते हैं, मेलों में हम 50-100 हो जाते हैं, और काम बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है।
0: जी सर, तो सर धार्मिक मेलों में और जो पर्यटन स्थल है वहां पर प्लास्टिक रोकने के लिए विशेष प्रयास आप क्या कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कैसे कर सकते?
1: बिल्कुल सही है, हर चीज शुरू से करना चाहिए। हम मैं एक मोस्टली मैं जहां भी जाता हूँ एग्जांपल देता हूँ, वॉशरूम और किचन का, अपने परिवार में ही बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं 70-80 साल के और उनकी मानसिकता थोड़ी सी या सोचने की शक्ति या यादगार शक्ति कम हो जाती है तो वो भूल जाते हैं, और छोटा बच्चा होता है 1.5-2-3 साल का तो वो भी नहीं समझता वॉशरूम क्या होता है और किचन क्या होता है, लेकिन उनकी इतनी मानसिकता विकसित हो जाती है कि किचन से भोजन लेके वॉशरूम में जाके कभी नहीं बैठता, चाहे बच्चा भी नहीं बैठता बूढ़े आदमी भी नहीं बैठते, और वॉशरूम का डब्बा या बाल्टी जो होती है जो विशेष रूप से हम वहाँ काम लेते हैं वो दूसरी जगह काम नहीं लेते, वो कभी लाके किचन में या दूसरी जगह नहीं रखते, या पानी के जो अपन जिसको परिंडा बोलते हैं वहाँ लाके कोई डब्बा या बाल्टी नहीं रखते, इतनी मानसिकता उनकी और बन जाती है, तो हम तो जागरूक है, इतनी मानसिकता तो हमारी होनी चाहिए कि जो चीज हम नहीं चाहते वो दूसरों को देंगे तो वापस हमें अच्छी कैसे मिलेगी। जैसे मैं आपको अभद्र सब भाषा में बोलूंगा तो आप क्यों मेरे को सभ्य भाषा का प्रयोग करेगी, कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी, कर नहीं पाएगी, कौन से अलाउ नहीं करेगा, तो ऐसे ही है, ऐसे ही हम करते हैं, हम लोगों को बेहतरीन व्यवहार देते हैं तो लोग हमें शाबाशी देते हैं, ऐसे करते करते लोगों को हम समझाते हैं कि तीर्थ स्थान ध्यान साधना तपस्या और पूजा की और आत्म बल को मजबूत करने की जगह है, ये कोई कचरा फेंकने की और मौज मस्ती करने की या पिकनिक स्पॉट नहीं है, तीर्थ स्थान तो संकल्प को मजबूत करने की, हे भगवान मैं आपके आया हूँ और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं मेरे मानवत्व को पहचानूं और अच्छा मानव जीवन जी के किस प्रकार मैं मेरी ये यात्रा पूरी करूँ, ये तीर्थ स्थान उसके लिए है, न कि कोई नगर पालिका मेला होता है जहाँ झूले लगते हैं, लोग आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज जो मजे आओ वैसे चीजें खाते हैं उसके लिए नहीं है, लेकिन लोग आजकल उसको तीर्थ स्थानों को भी सिर्फ एक वो कहानी में बेल घूमता ना वैसे, हर जो महीने एक फेरी दूंगा, अरे फेरी शरीर की नहीं लगानी है, फेरी विचार की लगानी है कि मैंने पिछले गुरु जो भी तीर्थ स्थान था वहां जाके आया उसके बाद में मेरे भावना में मेरे क्रियाक्रम में मेरी सोच में क्या कुछ फर्क आया, अगर फर्क आया है तो मेरी यात्रा या मेरी जो वहां धोख देना या वहां साधना करना वहां जाना सफल है, नहीं तो फालतू ही गोता है और भगवान को धोखा देना, भगवान तो क्यों धोखा खाएंगे, धोखा तो खुद को ही मिलता है क्योंकि वो एक बिना मन के बिना कोई संकल्प के वहां जाके आता है तो तेल जलता है और खुद की एनर्जी वेस्ट होती है, मिलना कुछ नहीं है, भगवान तो आत्म अनुभूति है, अपने आप के अंदर विराजमान है, पहचानने की जरूरत है क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है, पर एक मैं एक छोटी सी बात करके आपको बताऊंगा कि जब भगवान एक बार क्या हुआ, सभी लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई और भगवान से पूछा कि हे भगवान हमें दो वो दो वो दो वो दो, अपनी अपनी, मेरे परिवार में मेरी वाइफ नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, सासू नहीं मानती रहो, तो भगवान परेशान हो गए कि जाऊं कहां, तो भगवान कहीं छिप गए, तो दूर पहाड़ में छिप गए, लेकिन मनुष्य एक जीव है वहां भी जाके ढूंढ लिया, यहाँ आके छिप गए और हम तो दुखी है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो हम मनुष्य के हृदय में आके बैठ गए। अब जिसको भी अगर भगवान को पहचानना है तो अपने हृदय के खुद को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर जब हम सोच अपने आप को अंदर झांकेंगे, अपने अंदर आत्मा को देखेंगे, तभी हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। बाहर कहीं किसी भवन, किसी बिल्डिंग या किसी मंदिर में भगवान नहीं विराजमान है, भगवान अपने अंदर ही। मनुष्य के अंदर दो लोग रहते हैं, एक राक्षस एक भगवान। राक्षस इट मीन्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एनर्जी, और भगवान इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी, देवत्व है, देवत्व और राक्षसत्व, ये दो चीज मनुष्य के अंदर रहती है। अगर मैं लगातार लगातार लगातार मैं अच्छे आदमियों के साथ रहूंगा, अच्छी संगति के साथ करूंगा, तो मेरे अंदर देवत्व का परसेंटेज बढ़ जाएगा और राक्षसी परसेंटेज कम हो जाएगा। और मैं अच्छे विचारों को इग्नोर करता जाऊंगा तो मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आएगी, हर एक से झगड़ा कर लूंगा, पुलिस केस हो जाएंगे, जेल में भी जाऊंगा, वापस पेरोल पे आके भी मैं उल्टा काम करूंगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति बन जाती है। तो दो प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, और दूसरी एक प्रवृत्ति से निर्माण होता है, दूसरी प्रवृत्ति से मनुष्य का क्या विनाश होता है। ये मेरे विचार है, व्यक्तिगत विचार है।
0: बिल्कुल, तो अगर हम पॉजिटिव विचारों के साथ रहेंगे तो हम पर्यावरण के लिए भी सही काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है, अगर हम प्रकृति का पेड़ है, पेड़ को काटेंगे फिर हमें छाया चाहिए, तो पेड़ को, जिस पेड़ को हमने काटा वहाँ छाया कैसी रहेगी, वो तो जगह खाली हो जाएगी। अगर छाया है चाहिए तो पेड़ लगाएं। अब आजकल क्या करते हैं, अपन पाश्चात्य संस्कृति का फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी शादियों में देखा होगा गरीब तो हाथ में कांदा रोटी लेके खा लेते हैं, बड़ी शादियों में चाउमीन के लिए अलग प्याला प्लास्टिक का, आइसक्रीम के भी अलग अलग फ्लेवर, वो और उसके अलग प्याले, कितने ही प्रकार के, वो गोलगप्पे के लिए अलग प्याला। एक आदमी शादी ब्याह में, बड़ी शादी ब्याह में, रईस की शादी में 100 बर्तन काम में लेता है एक टाइम के भोजन के लिए। हम जा किधर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो रईस होते हैं, वो देखा हमारा तो जन्म धरती को गंदा करने के लिए होता है, सफाई करने वाले तो कोई दूसरे हैं, हमारे लिए, हम कोई सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। और चाहते हैं, हर आदमी चाहता है हमें अच्छा व्यवहार मिले, लेकिन हम देवे नहीं देवे, ये हमारी बात, तो ये कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है? छोटा बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो रूठ जाएगा या वापस ऐसा जवाब देगा कि हमारी बोलती बंद हो जाएगी।
0: जी जी, तो सर आपने हजारों मेलों में और धार्मिक आयोजनों में सफाई अभियान चलाया है, कोई यादगार अनुभव साझा करें हमारे साथ।
1: बिल्कुल, मैं मेरे खुद के ही जो विष्णु समाज के मेले, वहाँ हम कचरा बीन रहा था, तो पेरिस से एक मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र आया फ्रैंक, वो जेल, तो उसने वो विष्णु समाज के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहा था, तो वो 2-3 मेलों में मुझे फॉलो किया और मेरे को कचरा बीनते हुए देखा, तो उन्होंने व्हाट आर यू डूइंग, मैं आई एम पिकअपिंग गार्बेज हियर टू मेक माई मदर प्लानेट नीट एंड क्लीन एंड आई वॉन्ट टू अवेयर द पीपल इन दिस रिगार्ड। तो उसने कहा आप इंग्लिश भी जानते हो, मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी ऐसे, मैंने कहा मैं इतनी जानता हूँ, तो कहा ठीक है इतनी, इट्स एनफ। उसने कहा इतनी बहुत है मेरे लिए, मैंने जो मुझे आदमी चाहिए था उसको मैंने सर्च कर लिया। फिर एक मेले में वो मिला, मुझे दूसरे मेले मिला, तीसरे मेले मिला, हर मेले में मैं वही काम करता हुआ उसको पाया गया, उसने फोटोग्राफ खींचे। फिर पेरिस फ्रांस का था, वो पेरिस में जाके आर्टिकल छापा। 2008 में उसने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही थी, तो उसमें मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैंने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल टू कम देयर, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करने में मैं असहज महसूस कर रहा था, मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा कमू, इट्स नॉट ईजी टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर, सो यू डोंट से मी नो आफ्टर हाफ एन आवर, वन पर्सन कॉल्ड यू और गेटिंग योर कंसेंट, सो डोंट से हिम आई डोंट वॉन्ट टू कम देयर, यू शुड से हिम आई हैव नो प्रॉब्लम टू कम देयर, आई वाना कम देयर टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई ऑफ यू। तो ठीक है, उसने बात की और मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ। आधे घंटे बाद मिस्टर फोन किया, आर यू मिस्टर खमुराम बिश्नोई, मैंने कहा यस आई एम खमुराम बिश्नोई, वुड यू लाइक टू कम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एज ए कीनोट स्पीकर। मैंने उसने मना किया हुआ था कि मना मत करना, मैंने कहा यस आई हैव नो प्रॉब्लम आई विल कम देयर कम बट मे। फिर उसने बुलाया, मैं 2008 में गया, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में मेरी फ्लाइट मिस हो गई, टाइम मिस रीड कर लिया, और 18-20 में भी मेरे को इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन वहाँ कोरोना काल आ गया तो उसमें वो मिस हो गई। अब 2028-27 का भी वो कह रहे हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू। देखो प्रभु क्या, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा टारगेट नहीं है, मेरा का टारगेट तो है मेरी धरती माँ को स्वच्छ रखूँ, लेकिन अगर वो बुला लेते हैं तो मैं उनके यहाँ भी मना नहीं कर पाता।
0: जी सर, तो कैसा अनुभव रहा आप फ्रांस स्विट्जरलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया और आपकी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी विदेश में प्रसारित हो चुकी
1: है। 2011 में 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने, फ्रेंच चैनल्स पे वो रिलीज हुई थी, और 2011 में ही पेरिस के मेट्रो रेलवे स्टेशन पे 100 फीट बाई 150 फीट की फोटो एग्जीबिशन भी मेरी रही। मैं उस समय 2011 में वहाँ गया था तो उस एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसके साथ में मेरे फोटोग्राफ्स भी उसने लिए। देखो कमो, यू आर वेरी बिग पर्सन हियर, यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत लंबी चौड़ी, जैसे बड़े बड़े होल्डिंग पे विज्ञापन होते हैं ना, वैसे वैसे मेरी फोटो लगी हुई थी। मैं अपने आप को भगवान को बार बार ही धन्यवाद दे रहा था, ये भगवान में एक छोटे से कचरा बीनने वाले आदमी को आपने इस प्रकार प्रेजेंटेशन देने के लिए फोटोग्राफ्स में शामिल किया है, मैं आपका ऋणी हूँ, और वो ऋण उतारने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में मैं धरती माँ का और प्रभु का ऋणी हूँ, क्योंकि एक मनुष्य हो जन्म लेना ही अपने आप में कितने ही कर्मों के बाद में, कितने ही अच्छे कर्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इस यू आर नेक्स्ट गॉड, यू आर सेंडर ऑफ द गॉड, भगवान के ही रूप हो, भगवान ने ही आपको भेजा है। लेकिन हम आके यहाँ भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हम तो सुई है। अरे तुम बहुत कुछ हो, कितने भी महान महान वैज्ञानिक हुए या नेता हुए, लोग हुए या स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, बहुत छोटी उम्र में गए लेकिन इतना कुछ दे के चले गए कि कितनी शताब्दियों तक वो अमर रहेंगे और उनका संदेश कोई मिटा नहीं सकता। वैसे ही जाम्बोजी महाराज, और भी घने ऐसे लोग हुए हैं, रामदेव जी हुए हैं, और भी ऐसे खूब लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन समाज को भी चाहिए कि वो स्वीकार करे।
0: जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का क्या रोल है पर्यावरण संरक्षण में सर, आप क्या कहना?
1: मैं इस समय हमेशा कहता रहता हूँ मैडम के द यूथ जनरेशन इज गार्जियन ऑफ द प्रेजेंट एरा, वर्तमान के युवा क्या है, संरक्षक है। जो सीनियर सिटीजन थे, जिनको अपन पूर्वज अपन बड़े रा कह दें या हमारे वरिष्ठ जन कह दें, जिन्होंने अपनी पारी खेल ली है, वो 70 के हो गए, 80 के हो गए या 60 से ऊपर हो गए, उन्होंने पारी खेली, जैसे उनका कर्तव्य था उन्होंने अपन को साफ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन धरती दी। वर्तमान समय युवाओं का है, बच्चों को अभी समझ में नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो अगर वर्तमान युवा जाग जाएंगे तो धरती को कोई गंदा नहीं कर सकता, युवा इग्नोर करेंगे तो धरती को कोई बचा नहीं सकता। और धरती पर इतना कचरा हो गया, बड़े बड़े शहरों में तो 500-500 फीट ऊंचे पहाड़ बन गए। मैंने दिल्ली में देखे, पहले देखा मैं इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा, फिर मैं पहाड़ी के पानीपत की ओर जा रहा था, पहाड़ी के नजदीक गया तो ऊपर आग दिखी, मैं वो पहाड़ी पे आग खींचने लगा, आग ये है कि पहाड़ी की आग नहीं है क्या, ये कचरे के ऊपर आग लगाई हुई है। और फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा वो डंपर होता ना, वो ऊपर खाली होता, देखा माचिस की डिब्बी जितना दिख रहा था, इतने इतने कचरे के ढेर लग गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समुद्र को, हमने सही नहीं छोड़ा समुद्र का। मैं अभी जू बीच पे गया था, वो तो ज्वार आता है ना, तब जो कचरा समुद्र का देता है ना, वो पूरा का पूरा वापस लुटा के और उनके घरों के आसपास किनारों पे लाके फेंक देता है। तो जब तक मनुष्य धरती को देना नहीं सीखेगा, तब तक धरती दे नहीं पाएगी, लंबे समय धरती नहीं दे पाएगी, धरती अब इग्नोर करना बंद कर देगी और हम मरेंगे। और अब हम वैसे दिल्ली में अपन बड़े शर्म, आपने भी कहीं सुना होगा देखा होगा, वहाँ वो जीना कोई जीना नहीं है, अमिताभ बच्चन वाला वो डायलॉग किसी एक फिल्म में था कि ये जीना भी कोई जीना है। तो इतनी गंदी बदबू आती है बड़े बड़े नालों के पास कि एक दिन भी हमारा बार, हम जो खुले एरिया में रहते हैं जैसलमेर बाड़मेर या मरुस्थल वाले उधर जाते हैं ना, तो मन नहीं होता कि घंटा आधा घंटा ही यहाँ रुके, लेकिन लगातार जब हम वहाँ रहते हैं तो हमारी भी नासिकाएं वो ऐसी स्वीकार कर लेती है गंदगी की और हम गंदगी में रहने में मजबूर हो जाते हैं।
0: जी सर। सर हर घर अगर कोई संकल्प ले या छोटा छोटा प्रयास करे तो क्या हम अपने देश को परिवर्तन कर सकते हैं? अगर
1: बिल्कुल बिल्कुल मदर टेरेसा ने कहा, बिल्कुल मदर टेरेसा ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धरती को हम, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि धरती को तो साफ रख नहीं पाए और चांद की तरफ दौड़ रहे हैं, और गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वो सब कुछ है जिससे हम अपन जीवन जी सकते हैं, लेकिन हमारी लालचा को पूरी कोई भी नहीं कर सकता। अब लालचा किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी और पुरानी साइकिल थी, मैंने नई साइकिल ले ली तो फिर उसका नया ब्रांड और नई वो उसकी और हाई वर्जन देख लिया, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल आई, कार आई, कार का नया ब्रांड। तो आदमी कभी भी संसाधन से, मेटेरियलिज्म से, मतलब भौतिक चीजों से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट आदमी होता है अपने विचारों से संतुष्ट होता है कि मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। संतुष्टि बाहर कहीं भी नहीं है, साधनों में संतुष्ट नहीं है, जोधपुर में मेरा मतलब मैं जहां भी जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरा पूरी पोस्ट कॉलोनी में सबसे अच्छा बंगला है, लेकिन साथ वाला मेरे खाली जमीन पड़ी, उसने डिजाइन थोड़ी बदल के मेरी वाले से 21 डिजाइन लाके बना दिया, तो मेरे रात को नींद आनी बंद हो गई। अब जबकि बहुत बड़ा मेरा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी उसने डिजाइन नहीं लिया तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, उसकी डिजाइन के सामने देखता हूँ तो मेरा पिछता होता है, यार क्या कर लिया ये, अपने पैसे तो खूब लगे लेकिन इस तरह सारे डिजाइन नहीं बना ली। तो कहने का मतलब है आदमी किसी भी चीज से, ऐश्वर्य से, धन से कभी संतुष्ट नहीं होता। और कुछ लोगों ने विकास की जो दौड़ में है वो कहते हैं आदमी को संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन विकास की अंधी दौड़ ऐसी हो गई है कि अब मनुष्य का जीवन ही निकलने लग गई है। छोटे बच्चे भी मोबाइल के अंदर इतने घुस रहे हैं कि मोबाइल उनकी माँ से भी प्यारे लगने लगे, माँ का दूध पीना छोड़ देंगे और मोबाइल की तरफ देखने लग जाएंगे। हम जा किधर रहे हैं ये हमें भी सूझ नहीं रहा है, और हम इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। स्कूल में सिर्फ एक बंद डब्बा में स्कूल में पहले मैदान होते थे, पढ़ाते थे, अब मैदान गायब हो गए बंद डब्बों में बच्चों को। और कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ, आपने भी देखा होगा मैडम, 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर से बच्चे को सुबह कलेक्ट करते हैं, स्कूल लाते हैं और 3-4 घंटे बैठाते हैं, वापस 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बस में और घुमाते हैं। हम शाम को चाहते हैं कि बच्चा का दिमाग तेज हो रही है, इसकी मानसिकता सुधरे, कैसे सुधरे, वो थकान से मरा मरा हो जाता है, कैसे पढ़ाई करे, कैसा राष्ट्र उत्थान करे, जब उसके है ही नहीं। और दूसरे ऐसी पहले हमें कविताएं और भजन और कीर्तन और राष्ट्रपति गीत गवाए जाते थे, जैसे हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है, बढ़ना है, आगे सबसे बढ़ना है, इस प्रकार के निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ने भूले इतने, जब नाव जल में छोटी, कितने प्रकार के राष्ट्रपति के और आत्म उत्थान के गीत और कविताएं सुनाई जाती थी, तो हमारे मन में रहता था नहीं ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ होना भी नहीं है।
0: जी सर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम आपसे बात कर रहे हैं, और आप इतने समय से ये कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी प्रेरणादायी कार्यक्रम है ये।
1: युवा आज नहीं जागा तो कल गंदगी में खड़ा रहेगा और पिछताएगा, और अगली पीढ़ी जैसे आज जवान है उसके बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जब जवान होंगे तो जिन्होंने जन्म दिया है उनको गालियां निकालेंगे 100% के, तो खुद ने तो जन्म दे के हमको छोड़ दिया और धरती को गंदगी करके चला गया, अब हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। मरे तो कैंसर होके मर रहे हैं या कोई और बीमारी लेके मर रहे हैं, हर चीज में जेर है। व्यापारी चाहता है मैं किसान को ठगूं, किसान चाहता है मैं केमिकल डाल के व्यापारी को ठगूं, और एक दूसरे से ठग रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि ठगा आदमी आदमी को रहा है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। जो किसान ठग रहा है वो व्यापारी को केमिकल दे रहा है, और व्यापारी मिलावट करके किसान को दे रहा है या अदर कंज्यूमर को दे के पैसे इकट्ठे कर वो ठग रहा है, तो वो भी देख रहा है मेरे पास पैसे हैं, अरे पैसे किसी के काम के नहीं, मरने वाला एक सांस भी पैसे से खरीद नहीं सकते।
0: जी जी सर, बिल्कुल, पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती, हमने देखा कोरोना काल में भी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को किस तरह से व्यवहारिक बनाया जाए, क्या कहना चाहिए?
1: बिल्कुल सही है, जब भी बच्चों का जन्मदिन हो टोपियां नहीं बांटी जाए, बच्चों के हाथ से पौधे लगाए जाए, पर्यावरण के संबंध में रैलियां, गीत और उनको चित्रकला आयोजित की जाए कि पर्यावरण के बारे में बच्चा क्या जानता है, तुम अपने अपना एक बैठ जाओ और आपकी भावनाओं को पर्यावरण के बारे में क्या जानते हो, वो भावना उन्हें चाहिए। शनिवार को जो नो बैग डे होना चाहिए, नो बैग डे में पर्यावरण के बारे में उनसे विचार लेने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहिए कि जीना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। उनको इस प्रकार की भावना ठूस ठूस के बढ़नी चाहिए, जैसे पहले हमें स्कूल में हम पढ़ाई करके नहीं आते थे, होमवर्क करके नहीं आते तो मुर्गा बनाते थे, छोटे बच्चों को कभी कभी बड़े बच्चों के ऊपर बैठा देते थे और इस प्रकार की हम देते थे ताकि हम लज्जित होते थे कि नहीं पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी और ऐसा हमें करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बर्थडे होता टॉफी बांटते हैं, वो बांटते हैं, ये चीजें टॉफी क्या होती है कुछ नहीं, एक मीठा जेर है, लेकिन हमारे परिवार में, और टिफिन में ही डालते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में टिफिन डालते हैं जो बदबू मारता है। एक तो पराठा बनाते हैं, पराठा खुद अपने आप में बच्चों, छोटे बच्चों के जो नर्वस सिस्टम है उसको खराब करता है, कि छोटे बच्चे बढ़ती वाले तो पराठे में तेल होता है, वो कैसा ही तेल होता है वो खिलाते हैं। कभी भी बच्चों को वो इस प्रकार के तेल में तली हुई छोटी उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार जब तक हम सात्विकता पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बर्थडे पे भी पौधे लगाने की केक काटते हैं, पौधे लगावे, अगर एक बर्थडे पे एक पौधा होगा तो बच्चा अगर बड़ा होगा और 25 साल का होगा, शादी होगा तो अपनी वाइफ को कह सकता है कि मैं देख 25 साल का हूँ, मैंने मेरे 25 साल में इतने पौधे लगाए हैं, आज अपनी शादी के दिन भी हम 2 पौधे लगाएंगे, एक तेरा होगा एक मेरा होगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और लोगों में भावना पैदा करेंगे कि हर फंक्शन को पौधे से जोड़ेंगे, हर फंक्शन को स्वच्छता से जोड़ेंगे, बाजार से कपड़े की थैली के ले जाएंगे, घर एक अलग ही अलमारी का कोना रखेंगे जहां कपड़े की थैली रखेगा, सामान लाने की थैली है, वहां मेरे बैग में मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कम से कम 5 कपड़े की थैलियां हर समय रखती है, मिसेज रखती है, नहीं रखती है तो मैं उनको थोड़ा रौद्र रूप बताता हूँ तो वो झट से रख देती है, एक दिन नहीं रखती है, दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं चलता है, मैं जाके देखता हूँ तो थैलियां पड़ी रहती है। तो जब हम सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम से सब होता है, हम इग्नोर करेंगे। ऐसी ऐसी महीने हैं कि आलू ले रहे हैं और टिंडी ले रहे हैं, आलू और टिंडी अगर हम साथ में ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो उसके लिए प्लास्टिक अलग थैली मांगती है, हर सब्जी और फिर एक बड़ी थैली, 5 तरह की सब्जी ली तो 5 प्लास्टिक छोटी थैली है, फिर एक बड़ी थैली है, घर से कपड़े की थैली ले जाते ही शर्म आती है। जब हम शर्म करेंगे तो फूटेंगे कर्म, ये तय है। हम प्रकृति बचाने में शर्म करेंगे तो मरेंगे, हमारे आंखों के सामने हम अपने पूर्वजों को, अपने बच्चों को, या कोई भी कैंसर हो गया, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, कोई किसी से मरेगा, और हमें सहन करना पड़ेगा। जो हम देंगे वो हमें मिलेगा,
0: जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। सर आपकी जो अभियान है कितने स्वयंसेवक जुड़े हुए? जी जी सर,
1: पहले बताया था कि हम छोटा फंक्शन होता ना, हम क्या है, वॉलंटियर है, हम किसी से कुछ लेते नहीं, तो जब हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको जो समय मिलता है उस हिसाब से वो समय निकाल के अपना भाड़ा किराया खुद दे के आता है। तो शादी ब्याह होते हैं हम 10-15 होते हैं, और मेले होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं, तो वहाँ संख्या थोड़ी हमें बढ़ानी पड़ती है, उस समय हम कभी 50 हो जाते हैं, कभी 100-150 हो जाते हैं, वो मेले की और उनके लोगों के आने की आह्वान पर उनकी रुचि के अनुसार, दबाव कहीं नहीं होता, दबाव वाला काम भी नहीं करता।
0: जी जी सर, ओके।
1: जो बिना दबाव वाला, एक आदमी 15 आदमी काम कर लेगा, और दबाव वाला 15 आदमी एक आदमी काम नहीं करेगा, कहीं पेड़ के नीचे जा बैठ जाएगा, या कहीं 2 मिनट में कहेगा मेरी मासी आई हुई है, 2 मिनट मिल के आता हूँ, मासी क्या आई हो, शाम तक ही वापस नहीं आएगा।
0: जी,
1: ये होता है
0: जी।
1: काम सब संकल्प काम करता है, शरीर काम नहीं करता है, जुनून काम करता है, बॉडी काम नहीं करती, जुनून काम करता है, संकल्प मजबूत होता है, हमें करना होता है, हमारी भावनाएं होती है, हमें कुछ देने की इच्छा होती है, तब काम होता है। काम आदमी, किसी आदमी का कोई शरीर काम नहीं करता, उसके अंदर संकल्प क्या है और क्या वो धरती को देना चाहता है और किस प्रकार का जीवन जी के दूसरों को देना चाहता है वो काम करता है। कभी ये मत सोचना कि बॉडी काम करती है, बॉडी काम तो सिर्फ भार उठाना, वो मेरे से एकदम, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे 10 किलो भार उठाए, लेकिन एक बहुत मुस्टंडा है वो हो सकता है 50 किलो है, 2 कुंटल ही उठा ले, पहलवान है तो 2 कुंटल ही उठा ले, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप किसी काम को अंजाम देने के लिए मेहनत करेंगे तो वो भावना से होगा। पहलवान ही बनेगा तो पहले उसकी भावना होगी शुरू से कि मैं बड़ा होकर पहलवान बनूंगा, तो वो बन पाता है। तो बच्चों के अंदर ये भावना हम पैदा करेंगे शुरू से, बच्चा अगर तू ऐसा काम कोई मत करना जिससे तेरी और तेरे खानदान की और हमारी इज्जत मिट्टिया मेट हो जाए, हम लज्जित हो जाए, ऐसा काम मत करना, ऐसा काम करना कि हमारा गांव भी नाज करे, शहर भी नाज करे, और हो सकता है तेरा नाम राष्ट्र स्तर पर भी पहुंच जाए और पूरा राष्ट्र तुझसे सुने, ऐसा बेटा बन, बनना है तो ऐसा बन बेटा, बाकी शरीर लिए तो जानवर घने घूमते हैं। द मैन इज द मोस्ट नोटोरियस एनिमल ऑफ द प्लानिट, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, धरती का सबसे गया बेटा जीव है तो मनुष्य है, धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जीव है तो मनुष्य है। किसी शेर ने अपना पेट भरने के बाद में दूसरे शेरों को या गंदगी को, प्लास्टिक का उत्पादन नहीं किया, या किसी प्रकार के दूसरा कोई चीज का उत्पादन नहीं किया, जो कर रहा है मनुष्य कर रहा है, और जो नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य कर रहा है। मनुष्य कहता मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन वो है बुद्धिहीन। एयर केस में बुद्धिमान है, परसेंटेज बुद्धिमानों का बहुत ही कम है, सिर्फ 2 पैरा वाला जानवर है, 2 पैरा वाला जानवर। मनुष्य ये मत समझना कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यता लाने के लिए बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सवेरे उठ के सोचना पड़ता है व्हाट इज माय टारगेट ऑफ माय डे, व्हाट इज टारगेट ऑफ माय होल लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रकार जीवन जी के आगे बढ़ना है, क्या हम सिर्फ एक जानवर बन के सुबह शाम भोजन करना और सो जाना, वो करना दाल रोटी लाना, बच्चों को जिमाना, सो जाना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यह है अपना परिवार पाल के और दूसरों को भी कुछ दें, प्रकृति को भी कुछ दें, तब तो है मनुष्यता। सिर्फ अपना अपना ही पेट भराई करें तो मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर भी करते हैं। एक जहरीला सांप भी करता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी करता है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा कि मनुष्य अपने अगर करते हुए को भूल जाए तो वो किसी जानवर के समान है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि
1: जानवर समान नहीं है मैडम, जानवर से गया बीता है, जानवर से डाउनफॉल है। जानवर तो मतलब कोई गाय ने किसी ने धरती में कोई इतना गंदगी नहीं कही। आज हम जानवरों की कंटीली बाड़ियां लगा के हिरणों को खत्म कर दिया। अब हमारे जोधपुर की तरफ हिरण खूब सारे थे हमारे खेतों में, हमारे घर के जब हम रात को बाहर घर के आगे खाट बिछा के सोते थे ना तो पास में हमारे चारों तरफ हिरण बैठे रहते। अब क्या हुआ, हर लोगों ने कंटीले तार लगा दिए तो हिरण को जो पालतू कुत्ते हैं और जो गलियों में घरों में होते हैं वो चार पांच का झुंड बना के हिरणों को मार देते। क्यों, वो जैसे वो हिरण दौड़ने की कोशिश करता सामने जाली आती थी, और कुछ लोग तो जाली भी इतनी बारीक लगाते हैं, सफेद जाली लगाते हैं वो प्लास्टिक वाली, उसमें और भी फंस जाता है, उसको दिखती भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, छलांग लगाता है लेकिन जाली फंस जाता है, कुत्ते आ जाते हैं। अब हिरणों की तो

0: जगह ही नहीं छोड़ी, तो अब जो गलियों में गंदगी में बैठे रहते हैं वो हमारी तरफ बढ़ने लगे।
1: बिल्कुल
0: वही
1: बिल्कुल
0: अपने साथ होता है, हम आगे अच्छे संस्कारों को इग्नोर करेंगे तो बुरे संस्कार तो स्वतः ही आ जाएंगे। वो तो
1: जी
0: कहीं
1: सर,
0: गाली तो बच्चा कहीं भी सीख जाएगा, लेकिन एक कीर्तन भजन सत्संग या एक अच्छी पोएम याद कराने में हमें कितने ही दिन लग जाएंगे। और गाली तो 1 मिनट में आके बोल देगा, 1.5-2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा इतनी भद्दी गाली बोलेगा आप अचंभित हो जाओगे, ये कहाँ से सीख के आगे। तो बुरी चीज तो हर एक सीखता है। आज मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना, मैं वायरल नहीं हूँ, और एक दिन मैं किसी से झगड़ लूँ तो 1 मिनट में मेरा वीडियो इतना वायरल होगा, इतना वायरल होगा, दुनिया देखती रह जाएगी, यार ये आदमी ऐसे क्यों झगड़ रहा है। और जगह जगह का देखो, ये पर्यावरणविद खमुराम विष्णु, देखो इसका एक रूप, ये देखो ये देखो, यूं कर करके वीडियो वीडियो आएंगे।
1: जी सर, नेगेटिव चीज जल्दी वायरल
0: हाँ
1: होता है,
0: बिल्कुल सही,
1: पॉजिटिव
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: थोड़ा
0: वायरल
1: सा
0: होता है।
1: कम। लेकिन आपने अपने हौसलों के साथ उड़ान आपने भरा है और अभी तक भी आप उड़ रहे हैं पर्यावरण के कार्य के क्षेत्र में, पॉजिटिविटी के साथ उड़ रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल मैडम, मैंने मेरा संकल्प ले रखा है, जब तक जिंदा रहूंगा धरती माँ को देता रहूंगा, और ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, क्यों धरती ने मुझे ऐसा जीवन दिया। मनुष्य, मैं अपने आप को मनुष्य नहीं मानता, भगवान का रूप ही मानता हूँ, क्योंकि भगवान में मुझ में कोई फर्क नहीं है। भगवान में इतनी है कि भगवान दूसरों को देने का प्रयास करता है, मैं कभी कभी चूक जाता हूँ, इतनी कमी है। भगवान हमेशा हर एक को देता है और मैं कभी कभी देने में चूक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँ। बाकी मनुष्य ही धरती का भगवान है। भगवान अपन कहते भी हैं कि एक मेरे को आज देवता मिला नहीं तो मैं आज पहुंच ही नहीं पाता, मैं बस चूक गया था, मैं फलन जगह ऐसे हो गया था, फंस गया था, लेकिन ये क्या मालूम देवता कहाँ से आया, मेरे को वहां से उसने बिठाया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। हम कभी कभी वर्तमान सुनाते ही रहते हैं, तो मनुष्य में ही भगवान विराजमान होते हैं, मनुष्य में ही भगवान और देवता रहते हैं।
1: जी सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि विदेशों से भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में क्या सीखना चाहिए भारत को? आप विदेश भी देखे हैं, भारत भी आपने देखा।
0: इसी बात है मैडम, विदेशों में अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा है और अपने आप इग्नोरेंस है, अपने आप इग्नोरेंस है, क्योंकि अपन इतनी इतनी अलग अलग जाति प्रथा में बंट गए हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और कुछ लोग दूसरे कम्युनिटी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो वो देखे हम यहाँ क्यों ऐसी क्यों हम भाव रख रहे हैं, हमें क्या करना वो क्या करना, समझाए तो समझे नहीं तो अपन समझाओ तो वो कहते क्या ठेका ले रखा है तुमने समझाने का। लेकिन वहाँ दूसरे विदेशों में ऐसा नहीं है, वो अपने देश के प्रति भावनाएं और अपने देश को साफ रखना चाहता है, और अपने यहाँ ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज्यादा है और एक अनपढ़ और इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है कि हाँ हमें हमारा क्या लेना, हमारा क्या करना, सरकार अपना आप करेगी, हम तो पैसा हम हमारे ऊपर टैक्स लेती है, वो लेती है वो लेती है, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं और दूसरा करे। आप दूसरा ऐसा कैसा, मेरा मुंह मैं ही नहीं धोऊं तो दूसरे को क्या पड़ी है, मेरा मुंह धो आए के धोएगा। हाँ छोटा हूँ मेरी माँ है, मैं छोटा हूँ मेरी माँ धो दी, लेकिन मैंने उम्र पा ली, मैं 25 का हूँ 15 का हूँ, माँ आके थोड़ी मेरा मुंह धोएगी। तो ये जब तक हम देश और अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, कर्तव्य को हम इग्नोर करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र गंदा होगा और भी ज्यादा बीमारी आएगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है अपने यहाँ गंदगी हुए या गंदगी सफाई रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर का आदमी आके जब बांग्लादेश को क्या मतलब कि भारत की स्वच्छता रहे या नहीं रहे, या पाकिस्तानी क्यों आके अपने बारे में सोचेगा भारत साफ रहे। हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वो अपने राष्ट्र को साफ रखे, अपने गांव को साफ रखे, घर को साफ रखे, और यही होगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है किसी कुछ फौज कॉलोनी में कोई विकास समिति बना दी और पर्टिकुलर एरिया आदर्श आदर्श एरिया बना के उस जगह विशेष को साफ रख लिया हो, लेकिन पूरे भारत को कोई साफ नहीं रख सकता जब तक प्रत्येक आदमी नहीं जागेगा, और प्रत्येक आदमी का कर्तव्य नहीं समझेगा जब तक। हम साफ रखने में बड़े ही मुश्किल है। जरूर हम अब मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत की जगह जगह वो कचरा टैक्सी चला दी, लेकिन कचरा टैक्सी में नहीं डालते हैं लोग, कचरा डालते नहीं टैक्सी में, वो देखे दो 50 रुपये लग जाएंगे, 100 रुपये लग जाएंगे या 80 रुपये लग जाएंगे। अब ऐसे लोगों से हम कैसे सफाई कराएं?
1: जी
0: 80 रुपए
1: जी
0: का गुटखा खा लेगा, जर्दा खा लेगा, पान खा लेगा, और कोई रात को ड्रिंक कर लेगा, लेकिन कचरा पात्र का महीने का 80 रुपए कचरा वाले गाड़ी को वो नहीं देगा और कचरा खुले में फेंक देगा, और खाता चलता जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लास्ट बात कह के मेरी बात पूरी करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है पहले थूकता है कोने में और फिर चाहता है कि मेरा इलाज बहुत बढ़िया हो जाए। अरे कैसे हो जाए, मतलब अब मैं एक बात लास्ट में और कहता हूँ, मेरे को याद आ जाती है क्या करूँ, आपने कहा ही कह दिया, आप कुछ याद आए जरूर बताना। अब
1: जी
0: एक गिरगिटों की मीटिंग चल रही थी, आप समझ गए
1: जी
0: गिरगिटों की, गिरगिटों में मीटिंग चल रही थी, वो नाराज हो गए, आपस में झगड़ने लगे। एक गिरगिट ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या कि ये मानव मनुष्य आदमी बदले जैसे कैसे रंग बदल रहे हो। गिरगिटों ने कहा आदमी बदले जैसे क्यों रंग बदल रहे हो, मतलब गिरगिटों ने हमें उपाधि दे दी कि मनुष्य बहुत ज्यादा रंग

0: चल रहा है। प्राइवेट हो तो हॉस्पिटल में जाता तो अलग तरह से बिहेव करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो अलग बिहेव करता है, और अगर वही एयरपोर्ट पे जाता है तो अलग बिहेव करता है। मतलब जगह जगह बदल रहा है, जगह जगह विचार अपनी एक रूपता रखता ही नहीं है, बदलता जा रहा है। और वही देख लो कि कहीं यहाँ बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, 100, 200, 300 रुपये लग जाएगी, तो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है तो इतना सीधा हो जाता है, गांव का गंवार होता है, भी वो कहीं नहीं थूकता है, बीड़ी भी नहीं सुलगाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पलंग के पास में मरीज बैठा सो रहा ऊपर, और नीचे बैठा बीड़ी पी रहा है। समझता सब है लेकिन करना नहीं चाहता, वो रंग बदल लेता है। सब समझते हैं, छोटा बच्चा भी समझता है, मैंने आपको कहा था, छोटा बच्चा भी समझता है कि क्या कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी कहाँ रखती है। अब ये जब तक हम राष्ट्रवाद को बच्चे बच्चे को नहीं समझाने में सफल नहीं होंगे, छोटे बच्चे परिवार के लोगों को मानेंगे नहीं, ये गंदगी ये सही है, बच्चा आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तभी होगा। जो बूढ़ों से हम कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आदत बना ली है। जो 25, 30, 40 साल से सिगरेट पी रहा है, उसको हम पैर पकड़े बैठे, तू सिगरेट छोड़ दे, मरे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो शुरू कर रहा है उसको रोक देंगे, कहाँ सिगरेट पी रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारी बात मान ले, उसको हम प्रोत्साहित करें तो मान ले, ऐसा हो सकता है।
1: कुछ अंतिम क्षण में हम पहुंच चुके हैं, अंतिम पड़ाव है ये इस प्रोग्राम का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी। तो एक शब्द में पर्यावरण आपके लिए क्या है, एक शब्द में?
0: एक शब्द में परिवर्तन यही है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो देना सीखना पड़ेगा, प्रकृति को हरा भरा और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम तो कुमोती मरेंगे, हम तो इसीलिए पैदा हुए हैं, तो फिर आप जैसा जियो वैसा जियो, मौत बहुत नजदीक आ रही है, मौत दौड़ती आपको झपट रही है, और मौत आपको कम उम्र में 25, 30, 35 और हमारी एज 85 नीचे हो जाएगी, वो जो जीने की उम्र है ना वो बहुत कम हो, हार्ट अटैक
1: मतलब
0: है, बीमारी
1: एक
0: है।
1: शब्द में पर्यावरण मतलब देना है,
0: हाँ,
1: देंगे
0: पर्यावरण का
1: तभी
0: मतलब
1: ठीक
0: देना है,
1: बनेंगे, देना है।
0: पर्यावरण का
1: ओके,
0: मतलब लेना नहीं है, पर्यावरण मतलब देना। अगर आप जो दोगे वो लौट के आएगी, जैसे इको है, इको आप वैसे ही इको सिस्टम बोलते हैं, इको है पर्यावरण, क्या इको, जैसे अपन बोलेंगे, जैसे कुएं बोलते हैं तो वापस आती आवाज आती है, वैसे ही ये पर्यावरण है, आप जो दोगे वो वापस मिलेगा। मैं घर के बाहर कचरा फेंकूंगा तो उड़ के घर के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो बाहर जाऊंगा तब दिखेगा, और मैं घर के अंदर बाहर साफ रखूंगा तो बाहर जाऊंगा तो सफेद दिखेगी, अंदर भी हरियाली दिखेगी, सफेद दिखेगी। वही मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा तो मैं सुंदर लगूंगा, अच्छा लगूंगा, मन में शांति होगी। मैं गंदा कपड़ा पहनूंगा तो लगेगा यार आज क्या पहन लिया, लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग तो दूसरों के लिए भी पहनते हैं। और दूसरी एक
1: सही बात।
0: पर्यावरण की वो बढ़ती हुई, मैं एक बार लास्ट बात कह देता हूँ, जो फैशन है ना ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनके, जैसे जयललिता जब वो सस्पेंड हुई थी, मुख्यमंत्री पद से हटी थी, तो अगर 1,000 जूतों की जोड़ी है, वो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से, वैसे हमारी बहनों की भी है, हर मिनट में नया कलर लेके आती है, पहनती है, हर शादी एक ड्रेस को दोबारा पहनने में शर्म महसूस करती है, जबकि हमारे पूर्वज उसकी राली बनाते थे, और धोती पुरानी होती थी, धोती का ऊपर कवर चढ़ा के और धोती के अंदर कपड़े भर के रालियां बनाते थे, वो तो हम भूल गए। अब बूढ़े बड़े जावे ना तो उनके, जैसे मेरे दादी जी चले गए या मेरे पास नानी जी चले गए, तो नानी जी के जितने भी कपड़े हैं ना बाहर चौराहे में या कहीं जैसे भी हो कहीं ले जाके फेंक देते हैं, उन कपड़ों को काम नहीं लेते, जबकि वो पुराने लोग थे, गर्व समझते थे, मेरे दादा की धोती है, मेरी नानी की साड़ी है, और राली बनाएंगे या बैठने की वो बनाएंगे। तो जब तक हम इस प्रकार का सिस्टम नहीं लाएंगे, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, देखा देखी करेंगे तो देखा देखी करे तो मरे नहीं तो हुए रोग।
1: तो मिनिमलिज्म की बात आप कर रहे हैं, और जो हमारी पुरानी संस्कृति
0: बिल्कुल
1: है
0: सही है,
1: उसके।
0: एक आदमी ने कहा कि धरती के सबसे सुखी आदमी या सभी, एक राजा बहुत था, वो बहुत ज्यादा दुखी था, कितने वेद बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने, एक ने तो चलता रहा चलता कहा मैं ठीक कर सकता हूँ, ये कैसा, ये जो सबसे संतुष्ट आदमी है उसका शर्ट ला के इसको राजा को पहना दियो। तो राजा ने दूते छोड़े तो कोई संतुष्ट था ही नहीं, कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई पति से दुखी थे, कोई माँ से, कोई भाई से, कोई पड़ोसी से, कोई सब लोग दुखी थे। एक आदमी नदी किनारे बैठा था, वो एकदम खुश था, एकदम मस्त था। उससे पूछा राजा के दूतों ने, भाई तुम कैसे हो गए, मैं एकदम मस्त हो गए, एकदम मस्त, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, चिंता कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम्हारा शर्ट दो मुझे, तुम्हारा बुशर्ट दो, तुम्हारा पहना हुआ कमीज दो, कि मेरे पास कमीज है कहाँ, बगैर कमीज बेटा मस्त मस्त मोला बैठा था। तो संसाधनों से, कपड़ों से और संपत्ति से आदमी कोई सुखी नहीं रह सकता,
1: जी बिल्कुल,
0: सुख
1: जी
0: है
1: सर,
0: विचारों में।
1: विचारों में और पर्यावरण के प्रति आपके समर्पण भाव आपको सुख देता है। तो आपका पसंदीदा वृक्ष क्या है सर?
0: मेरा पसंदीदा वृक्ष तो ये खेजड़ी है, जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है, जिसकी अब सोलर प्लांट की वजह से निरंतर कटाई हो रही है, तो हम तो यही कहेंगे भी खेजड़ी बढ़ाओ, क्योंकि खेजड़ी की लूंग होता है, तो वो भी खाद करता है, खेजड़ी के खोके होते हैं वो हिरणों के और पशुओं और जानवरों के लिए खाने और जहाँ ऊंट के लिए भी खाने के लिए काम आता है। और सांगरी से हम बहुत अच्छी तरह पंचकुटा की सब्जी बनाते हैं। वैसे वैसे जो अपने भारतीय संस्कृति में दूसरे जो पेड़ है, पीपल है, बरगद है, जो अपने अपने पेड़ है, वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं और नए नए पेड़ लगाए। कोनो कोर्पस नया पेड़ आया है जिसे सब जगह बैन कर रखा है, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह लगाए जा रहे हैं जो 12 मास है, लेकिन वो प्रकृति का इतना शोषण कर रहा है जैसे बबूल। बबूल पेड़ों का राक्षस है। पेड़ों में मनुष्य में जो राक्षस होता है ना, वैसे पेड़ों का राक्षस बबूल है। किसी को नहीं छोड़ा है, हर धरती पहाड़ को नहीं छोड़ा, नदी को नहीं छोड़ा, सड़क किनारे को नहीं छोड़ा और घास को नहीं छोड़ा। जानवर आज अगर गौशाला में है तो बबूल की वजह से है। बबूल उगने नहीं देता घास को।
1: जी ओके,
0: तो ये बातें हैं जो मैंने सुना
1: है। और बबूल को हमें जहाँ कम लगाना चाहिए, अगर देख रहे हैं तो उसे।
0: बबूल तो छोटे बदमाश है, वो राक्षस है। राक्षस तो अपने आप ही पनपते हैं मैडम, बबूल को लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप ही, कितनी ऊंची पहाड़ी हो, कैसे हो, कहीं हो, खेत हो, जमीन हो,
1: वहाँ पे लगा हुआ है, उसे हटा के हम दूसरे वृक्ष लगा सकते।
0: इतने इतने संसाधन अपने पास है ही नहीं, लोग रुचि भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं ले रही है, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे, अपने क्या करना। और बबूल फैलता जा रहा है, ऐसे फैलता जा रहा है कि पूरी सृष्टि को खत्म करेगा। अरे इतने बबूल हो गए, आपने देखा, आपसे क्या छिपा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हो सकता है पहाड़ी आया जो माउंट आबू में उस तरफ कम होंगे, लेकिन हमारे मरुस्थल में तो इधर बहुत है, सड़कों के किनारे और जहाँ खाली हो या नाडी के किनारे हो या तालाब के किनारे हो, बहुत सारे लगते जा रहे हैं और पूरी जमीन को, घास की जमीन को बबूलों ने घेर रखा है।
1: जी सर, जी सर। सर, जल, जमीन, आसमान, सबसे पहले किसको बचाना चाहेंगे आप?
0: मैं तो कहूँ पांच तत्वों को बचाना चाहिए। पांचों तत्व है, वही भगवान है। इन पांचों तत्वों जो जल, जमीन, आकाश, वायु, अग्नि,
1: लेकिन एक चूज करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले किसको बचाएंगे?
0: अब जल को बचाएंगे तो सब बच जाएंगे।
1: जल
0: नहीं होगा तो पूरी संपत्ति, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जल से ही सब जीव पैदा हुए हैं। जल बच जाएगा तो बाकी सब बच जाएंगे।
1: ओके सर, जी सर, बढ़िया सर। एक चीज जो हर भारतीय को आज ही छोड़ देना चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: प्रदूषण फैलाना।
1: प्रदूषण फैलाना
0: और क्या?
1: ओके,
0: एक आदत ज्यादा ज्यादा धरती को हरी भरी रखें। हरियाली में ही भगवान है, भगवान का दूसरा, हरियाली ही भगवान है। भगवान वही रहेंगे जहाँ हरियाली होगी, हरियाली का नाम ही भगवान है। भगवान, कोई भगवान गंदगी पर जाके नहीं खड़ा रहेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं रहेंगे भगवान। तो हरियाली मीन्स प्रभु है।
1: बिल्कुल,
0: हरी वहाँ जहाँ हरियाली,
1: हरी वहाँ है जहाँ हरियाली है। सर, बहुत सुंदर बात है ये। और भारत को हरित बनाने का एक उपाय क्या है आपको लगता है?
0: सभी संकल्प लेंगे तब होगा, बाकी अकेले आदमी सब संकल्प लेंगे कि हम हमारी धरती माँ को हरा भरा रखें, हो गया। बाकी कोई ऐसा उपाय नहीं है, किसी के पास कोई जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि भारत को हरा भरा बना दे। जब मनुष्य जागेंगे, सब जागेंगे, तभी होगा। ऐसा कोई ऐसा आदमी, एक देवदूत नहीं पैदा होगा या पहुंच भी नहीं पाएगा कि हरे को हरा बना दे। मोदी जी खूब कहते हैं पेड़ लगाओ, लेकिन अब कितनी सरकारी मशीनरी है, वन विभाग है, कितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अफसर है, जो IAS के कैडर वाले होते हैं, लेकिन हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन पेड़ों को बड़ा करने वाला कोई नहीं है। लगाने वाले खूब है, आत्मा पेड़ों को मारने वाले खूब है। नर्सरी से लगाते हैं और मर जाते हैं बस।
1: जी सर,
0: मेरे को कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कितने पेड़ बड़े किए, ये क्वेश्चन आपने गलत ही पूछा है। वो कहे ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं, आप ये बोलो कितने पेड़ लगा के बड़े कर दिए, ऐसे पूछो। मैंने अगर 50 पेड़ बड़े कर दिए तो अपने आप में बहुत, मैं अपने आप को यूं गर्व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने 5,000
1: लगाना नहीं, बट उनका देखभाल भी करना है सर, ऐसा बोल।
0: हाँ, लगा के देखभाल करके बड़ा करे और बड़ा दिखना चाहिए, लगना चाहिए। 25 साल तक आप हो तो भी आपको आपके लगाए हुआ पेड़ नजर आना चाहिए, तब तो है। आप लगाए पेड़ है ही नहीं, और आपके तो, मैंने तो मेरे जीवन में 50,000 पेड़ लगा दिए। अरे भाई, है कौन सी जिंदा, कितने है वो तो मालूम नहीं।
1: जी सर, आपके बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है एक और कार्यक्रम भी कम पड़ेगा, और इतने सारे उपलब्धियां हैं आपके पास, इतने सारे पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास।
0: बिल्कुल सही है, आपकी तरफ से मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, आई विल बी ऑनर्ड बाय गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुझे वहाँ का बहुत बड़ा पुरस्कार देने जा रही है। गुरु जम्बेश्वर,
1: बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन सर।
0: धन्यवाद मैडम। गुरु जम्बेश्वर प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा।
1: हिसार से। जी सर, जी सर, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, और फिर से आपको एक और पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
0: ये सब प्रभु का खेल है, प्रभु ही है, मैं उनको ही समर्पित करता हूँ। जो भी मुझे धन्यवाद देते हैं तो मैं धन्यवाद भगवान को दो कि मुझे मनुष्य बनाया है, इसे ऐसी समझ दी है। तो एक्चुअली में काम भगवान कर रहा है, नाम मेरा हो रहा है। तो मैं तो हमेशा ऋणी रहता हूँ, मैं परमात्मा भगवान के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। वो आपने कहीं सुना होगा, एक कोई शेख दान दे रहा था और आंखें नीचे हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि दान दे रहे हो इतना अच्छा करो, फिर नीचे क्यों आंखें कर रहे हो? क्या देने वाला कोई और है? मैं तो सिर्फ एक बीच की माध्यम हूँ, इसलिए लोग मेरा समझ रहे, तब मेरे को शर्म आ रही है, इसलिए आंखें नीचे कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने आप को, लोग मेरे को कहते हैं आप अच्छा करते हो, तो मेरे को लगता है कि करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ। मुझे समझ दी, अक्ल दी है तो भगवान ने दी है। मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। और आई एम डूइंग समथिंग ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जाम्बो जी एंड
1: बिल्कुल
0: ऑलमाइटी।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, और आपके समर्पण भाव को सलाम है, और आपके कार्य क्षमता को सलाम है, देशभक्ति को भी सलाम करते हैं आज हम रेडियो मधुबन के माध्यम से। और दोस्तों, वक्त हो गया है यहाँ से अलविदा कहने का, तो खम्बूराम जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अनुभवों को, संघर्षों को और प्रेरणादायक विचारों को भी हम सलाम करते हैं।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए संपर्क किया, मुझसे बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा मुझे शक्ति दे, समझ दे, ज्ञान दे, अकल दे, कि मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक धरती माँ को कुछ न कुछ न कुछ न कुछ ऐसा दूँ कि मेरी माँ मुझ पर गौरवान्वित तो हुए कि वाह बेटा, मैंने
1: बिल्कुल
0: कुछ जन्म दिया है तो कुछ समझ के दिया, तो उसके काबिल निकला।
1: जी, बिल्कुल आप सर काबिल हैं, और धरती माता आपके लिए गौरवान्वित है
0: मैं
1: ही।
0: कहता भी रहता हूँ कि
1: और
0: हम इतने मैं कभी कहता भी रहता हूँ कि हमारी तीन माँ, एक माँ जो हमें दूध पिला के मुझे बड़ा करती, दूसरी माँ गौ माता होती है, तीसरी सब माओं की बड़ी माँ, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट मदर, वो कौन होती है? वो धरती माँ होती है जो सब माओं को दूध पिलाती है, सब माओं को भोजन देती है, वो होती धरती माँ। हम बड़ी वाली माँ नाराज हो जाएगी, छोटी वाली माँ जिंदगी नहीं रह पाएगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अगर बड़ी वाले माँ को नाराज नहीं करना है हमको, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, थोड़ा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यहीं पर रुकना
0: और
1: चाहते
0: समय की
1: हैं।
0: मांग है, दिस इज द नीड ऑफ आर, ये समय की मांग है, और समय के हिसाब हम काम नहीं करेंगे तो फिर बेहाल होना ही है। तो पानी पीना है, पानी नहीं पी रहे हैं तो कह रहे हैं वो डॉक्टर कहेंगे भी पानी की कमी होगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा।
1: सही सही बात है, तो समय की मांग को देखते हुए हमें पर्यावरण के लिए कदम जरूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरणादायी बातों के लिए, और आपके बारे में जानकर के हमारे श्रोताओं को भी बहुत प्रेरणा मिली है, और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से।
0: मैं आपका ऋणी हूँ, और प्रभु ने चाहा तो आपने जो भी आशा की है उसका मैं पालन करूंगा मेरे जीवन में।
1: धन्यवाद सर, तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: sera dédaignée.
1: Namaskar, Ram Ram, good morning, Sasyakal, Assalam Alaikum, Ram Ram Sa, Asanivar ki suprabhatam, kaise hai, aur bhai kal raksha bandhan raha, sabhi manaye honge, hum bhi apne sabhi bhaiyon ko raksha bandhan ki bahut bahut dil se badhai dete hain, duaye dete hain unke prati, Parmatma ji se dua karte hain ki hamare bhai swasth rahe, mast rahe aur kushal mangal rahe. अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम. आप सबका स्वागत करते हुए दिल से मन का रथ और आत्मा की ध्वनि. महाभारत काल की बात है. कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला रहा. चारों ओर शंखनाद हो रहा था. युद्धों की रथ सज चुके थे और सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल रहे थे. वही समय पांडवों की सेना में एक युवा योद्धा था सत्यकेतु. हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार.

0: हमारे को हमने बाहर चला गया था थोड़ा। अच्छा आज मौका मिला है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं
1: आपको भी बहुत जी।
0: और आज की आवाज सुन करके हमारे को आनंद आ रहा है। आनंद के साथ में हम आपको याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहन के साथ में सारा माँ के करी थी और सारी कथा सुनाई थी। कृष्ण भगवान और अपने पिता के साथ में रहे हुए सारे संवाद बताए सुनाए हैं सुने हैं और सुन करके भी हमने भी आनंद लिया है। बाद में सुन करके और ज्यादा आनंद लेंगे, आनंद के बाद में खुशियाँ बनाएंगे
1: जी।
0: धन्यवाद आपको।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे बहुत अच्छा लगता है। तो हम आपको बता रहे थे महाभारत समय की बात कि सभी अपने अपने शस्त्र संभाल रहे थे। उसी समय पांडवों की सेना में एक युवा योद्धा था सत्यकेतु। वो वीर था, धनुष चलाने में निपुण था, लेकिन उनके मन में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। युद्ध भूमि में जाए से पहले वो अपना रथ से उतरकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सारथी उसके पास आया और बोला, वीर आज तुम्हारा शरीर युद्ध के लिए तैयार है, फिर तुम्हारा मन इतना विचलित काहे है। सत्यकेतु बोला, मेरा मन मुझे कभी भय की ओर दौड़ाता है, कभी क्रोध की ओर। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा, यदि मृत्यु सामने आ गई तो। सारथी मुस्कराया और बोला, यही मन की प्रकृति है, मन धावक है। वो एक पल में भूतकाल से भविष्य तक दौड़ सकता है, लेकिन क्यों का तुमने कभी अपने भीतर उठने वाली उस शांत आवाज को सुना है जो तुम्हें सही और गलत का अंतर बताती है? सत्यकेतु ने पूछा, वो कौन सी आवाज है? सारथी ने कहा, वो तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है। मन तुम्हें अनेक दिशाओं में खींचेगा, लेकिन आत्मा तुम्हें तुम्हारे धर्म की ओर बुलाएगी। फिर उसने सत्यकेतु के रथ की ओर संकेत करते हुए कहा, इस शरीर तुम्हारा रथ है। यदि रथ मजबूत है लेकिन सारथी दिशाहीन है तो रथ भटक जाएगा। यदि मन शक्तिशाली है लेकिन आत्मा की आवाज नहीं सुनता तो मनुष्य अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है। सत्यकेतु कुछ देर शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, भय को देखा, क्रोध को देखा और अपनी इच्छाओं को भी देखा। फिर उसने अपने भीतर से एक शांत आवाज सुनी, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य पर है, परिणाम पर नहीं। उसने आंखें खोली। अब उसके चेहरे पर भय नहीं था। वो रथ पर चढ़ा और बोला, आज मैं जीतने के लिए नहीं अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करूंगा। सारथी मुस्कराया, युद्ध समाप्त होने के बाद का भया? युद्ध समाप्त होने के बाद सत्यकेतु ने समझा कि सबसे कठिन युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलता है। मन हमें दौड़ाता है, आत्मा हमें दिशा देती है और शरीर उस दिशा में चलने का माध्यम बनता है। तो देखिए भाई, शिक्षा ये है, याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया, और जिसने मन आत्मा और शरीर में संतुलन बना लिया उसके लिए कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। आज इंसान न मन की सुनता है न आत्मा की सुनता है, वो तो बस दौड़े जाता है, ठहरता ही नहीं तो आवाज़ सुनेगा कैसे? न मन की न आत्मा की आवश्यकता है, शांति में बैठकर अपने मन की अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। ऊ का कह रहा है और वो जो कहेगा ना वो कभी गलत नहीं होगा। हमारी बात गांठ से बांध के रख लीजिए, काहे कि हमारे पास प्रश्न होते हैं, हमारे पास उत्तर होते हैं। ईर्ष्या की नहीं आशा की दीपक जगाओ। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो मन है जो अभाव में भी कृपा देख सके। जब हम दूसरे की कमियों के बजाय उसकी विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं तब रिश्ते मधुर और जीवन शांत बन जाता है। मुश्किलें आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत पहचानने आती है। दुआ हमेशा कुछ पाने के लिए ही मत करो, कभी जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कहने भी बैठो। दिव्य ऊर्जा ही अर्थ और उद्देश्य से भरा जीवन देने की शक्ति रखती है। इसे प्राप्त करने का मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। और भाई, कल सारे जहां की दौलत एक तरफ और कलाई पर बंधी बहन का ये प्यार एक तरफ, भाई बहन के अटूट विश्वास, असीम स्नेह एवं समर्पण के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एक महान जीवन का अनुभव करने के लिए हर दिन कुछ महान सीखें, महान परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य रखें। कर्मों की अदालत में कोई साथ नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा किया हुआ कर्म सामने आएगा। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हमेशा सोच समझ कर बोलो। आप पहले बोल देते हो, फिर समझते हो कि गलती हो गई, फिर सोचते रहते हो कि क्यों बोला। इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही सोचो तो बोल कभी गलत नहीं निकलेंगे। मुश्किलें सबके रास्ते में आती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रुक जाता है और कोई रास्ता बना लेता है। जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पकाकर खाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। आप सब समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं। जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है, जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है। जब पैसा नहीं होता तो नींद में जगाना पड़ता है, जब पैसा आ जाता है तो नींद ही गोलियां देकर सुलाना पड़ता है। बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ गए हैं। बाकी आगे की बात काहे हम कहेंगे भाई। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा की संपूर्ण मदद आपके साथ है। और ये के साथ चलिए गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनिएगा ये गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: एक माँ की महानता। पति पत्नी दोनों डॉक्टर रहे। बाहर से उनका जीवन सुखी और सम्मानित दिखाई देता था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं न रहा। पत्नी ने आखिरकार पति से तलाक लेकर निर्णय किया और पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। फैसले से एक दिन पहले जज साहब ने दोनों को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों से अलग अलग बातचीत की। जज साहब ने पति को समझाकर पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन पत्नी अपने निर्णय पर अडिग रही। आखिरकार तलाक हो गया। कुछ समय बाद संयोग से जज साहब की मुलाकात उसी महिला डॉक्टर से अस्पताल में हुई। औपचारिक बातचीत के बाद डॉक्टर ने उन्हें अपने कक्ष में चाय के लिए बुलाया। चाय पीते हुए जज साहब ने कहा, डॉक्टर साहिबा, आज ना मैं जज हूँ ना आप वादी। आपका तलाक हो चुका है, लेकिन एक बात आज भी मेरी समझ में नहीं आई। आपके तलाक का वास्तविक कारण वो नहीं था जो मुकदमे में सामने आया। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आज उस सच्चाई को जानना चाहता हूँ। महिला डॉक्टर कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जज साहब, मैं उस व्यक्ति से मुक्त होना चाहती थी। उसके साथ कल कुछ भी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण उसकी नौकरी, उसका सम्मान और उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। जज साहब ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसे आपने अदालत से भी छिपा लिया? महिला डॉक्टर की आंखें नम हो गई। हम दोनों डॉक्टर हैं। मैं 4 महीने की गर्भवती थी। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा 9 महीने तक मेरे गर्भ में शांति, प्रेम और खुशी के वातावरण में पले, लेकिन मेरे पति और परिवार की जिद थी कि बच्चा लड़का ही होना चाहिए। वो भ्रूण का परीक्षण करवाना चाहते थे। डॉक्टर होने के कारण हमारे लिए ये आसान था, लेकिन मेरे लिए ये केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का अपमान था। वो कुछ देर रुकी और फिर बोली, मैंने ये बात अदालत में इसलिए नहीं कही क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें सजा हो सकती थी। वो अपने पेशे से में मेहनती और ईमानदार हैं। मैं उनकी गलती की सजा उनके पूरे भविष्य को नहीं देना चाहती थी। तलाक मेरे लिए अपने जीवन को बचाने का रास्ता था, बदला लेने का हथियार नहीं। जज साहब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, इतना सब सहने के बाद भी आपने उन्हें बचा लिया? वो व्यक्ति भविष्य में किसी दूसरी स्त्री के लिए भी परेशानी बन सकता है। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, जज साहब, भविष्य का निर्णय मैं नहीं कर सकती। मैं अपने वर्तमान को जरूर बचा सकती हूँ। आज मेरे गर्भ में एक जीवन पल रहा है। मेरा पूरा ध्यान उसी पर है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित वातावरण में जन्म ले। बाकी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब ईश्वर पर छोड़ दिया है। फिर वो मुस्कुराई और बोली, कहा गया है कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, इसलिए मैं अपने वर्तमान को सुंदर बनाने में लगी हूँ। मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए ये फैसला लिया है। तभी अस्पताल से ऑपरेशन का बुलावा आ गया। डॉक्टर ने जज साहब से क्षमा मांगी और ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। जज साहब काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। उनके मन में एक ही विचार था, जिस स्त्री को दुनिया तलाकशुदा कहेगी वो वास्तव में कितनी महान माँ है। ये उसकी कहानी जानने वाला ही समझ सकता है। कभी कभी किसी रिश्ते का अंत नफरत से नहीं, बल्कि अपने और आने वाले बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए किया जाता है। किसी के निर्णय को जानने से पहले उसकी पूरी कहानी जरूर जानना चाहिए। आशा करते हैं आप भी बात की गहराई को समझ गए होंगे और समझ के ही कोई कदम उठाएंगे। चलिए एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। सुनिएगा मीठा सा गीतवा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: जब एक छोटी सी राखी ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करने के बाद लौट रहे थे। उही समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए, हेलो,
3: हाँ दीदी, नमस्ते।
2: नमस्ते, ओम शांति। कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ से।
2: अरे बाबा की दुआ से।
3: आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम घर का काम भी कर रहे हैं। देखो आपकी बातें सुन सुन के तो देखो हमको पॉजिटिव शक्ति मिलती है ऐसे।
2: अरे
3: अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ना
2: जी,
3: तो शक्ति मिलती है, जैसे नेगेटिव सब चला जाता है।
2: वो ही तो चाहिए है ना अपनी लाइफ में, वो ही तो चाहिए पॉजिटिव। तो घर भी सुखी रहता, हमारे संबंध भी सुखी रहते एक दूसरे के साथ। और कल रक्षाबंधन मनाया?
3: नहीं, हम तो नहीं मनाए, क्योंकि हमारी माँ जो गुजर गई थी, हमारी माँ को इस साल अभी हुआ नहीं दिवाली पे होगा।
2: अच्छा,
3: हमारे में क्या है गुजराती में तो पहला त्योहार है तो नहीं मनाते।
2: अच्छा अच्छा,
3: नहीं।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ।
3: लेकिन भाइयों को दुआ तो बाबा की प्रेरणा से दुआ भेजी है।
2: हाँ हाँ,
3: बाबा सुखी रखे हमारे भाइयों को।
2: बिल्कुल
3: पूरे बिल्कुल,
2: बहनों की दुआएं तो हमेशा रहती है अपने भाई के लिए।
3: हमारे जैसे भाई हैं।
2: हाँ,
3: ऐसे हम सभी भाइयों को मैं दिल से कहती हूँ कि बाबा उनको सदा सुखी रखे,
2: सुखी रखे,
3: पूरे विश्व की तमाम आत्माओं को परमात्मा सुखी रखे।
2: हाँ,
3: ऐसी हम दुआ मांगते हैं।
2: सही बात है, जब हम दूसरे के लिए दुआ मांगते तो भगवान हमारे लिए दुआ करता है।
3: और भगवान भी कहते हैं कि कर्म किए जा फल की
2: आशा मत कर, कर्मानी वैसे
3: हमारे खाते में जमाई होती है
2: जी,
3: चाहे जल्दी से होती है चाहे बुरी देर से होती है, लेकिन
2: होती जरूर है। बिल्कुल, आपने कर्म की फिलॉसफी भी समझ ली, भगवान के महावाक्य का सार भी समझ लिया। बहुत अच्छी बात।
3: आपका कार्यक्रम देखो जैसे चालू होता है, हम तो पहले भी हमारे ईशा दीदी का कार्यक्रम जो आता है, आज शनिवार हमारी अंताक्षरी चल रही थी।
2: हाँ,
3: उसमें भी हम जुड़े थे। देखो काम करते करते कार्यक्रम भी सुनते हैं।
2: हाथ से काम करें और कान से प्रोग्राम सुनते रहते हैं, दोनों हो जाता है।
3: अभी क्या करें, अभी इसमें भी जुड़ते हैं तो फिर ध्यान से जुड़ना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कुछ।
2: चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप जब भी फोन करती हैं तो, और ये सुन के कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही, सकारात्मकता आ रही, ये बहुत अच्छा।
3: दीदी हम क्या बताएं, देखो सही में आप नहीं मानते होंगे कि देखो हम थोड़ी कोई अभी संसार है, देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। हाँ, थोड़ा टेंशन आ जाता है, कुछ ऐसी बातें आ जाती है तो
2: वो अलग बात है, लेकिन जनरली जब हम व्यवहार में आते उस समय पॉजिटिविटी रहना चाहिए।
3: हाँ, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, लेकिन हो तो जाता है।
2: हाँ,
3: देखो हम खुद विचार हमारे नहीं बदलते, तो आप जैसे आके हमारे विचार बदल देते हैं।
2: हाँ, वो भी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। अभ्यास करते करते करते करते ना कहते हैं कि जड़मती भी सुजान हो जाता है, जो पत्थर बुद्धि है वो भी।
3: देखो आते हैं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है उनका भी, रोज अच्छा कार्यक्रम में हमको नई नई रेसिपी सिखाते हैं। फिर अभी कोई तकलीफ होती है, शरीर को बीमारी होती तो उसकी दवाइयाँ भी बताते हैं हमको, घरेलू नुस्खे जी। और बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं वो लोग तो, वंदे मातरम और पूरा कार्यक्रम। रेडियो मधुबन का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं जो हमें नहीं अच्छा लगता, पूरा
2: सभी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सभी का प्रयास यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी बातें बताएं। जी
3: हाँ, हम तो देखो अभी घर में हम तो ऐसे दो जने और हमारा बाबा है, परिवार ज्यादा नहीं है, हमारा बाबा है और हम दो जन।
2: अच्छा।
3: तो सुबह में वो तो चले जाते तो पूरा दिन में घर में अकेली रहती हूँ, तो मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं, उसको याद करती हूँ।
2: बहुत अच्छा,
3: बहुत अच्छा दिन जाता है हमारा।
2: बस ऐसे ही रहिए, बाबा को साथ रखिए, मैं और मेरा बाबा, है ना। तो सदा ऐसे ही खुश रहेंगे। आपको रक्षाबंधन की कोटि कोटि बधाई।
3: आपको भी, देखो मैं भूल गई बातों में, आपको भी और पूरे रेडियो मधुबन परिवार को भी।
2: जी जी,
3: बहुत शुभकामनाएं।
2: थैंक यू, ओम शांति। तो हम बता रहे थे द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करे के बाद लौट रहे थे। उही समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त बह लगा। वहाँ उपस्थित सभी लोग भगवान की सेवा में दौड़ पड़े, लेकिन तभी द्रौपदी की नज़र श्री कृष्ण की घायल उंगली पर पड़ी। वो अपने वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, सखी तुमने मेरे घाव पर ये कपड़ा बांधकर मुझे अपना ऋणी बना लिया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भैया इसमें उपकार कैसा, भाई की उंगली पर बहन पट्टी नहीं बांधेगी तो कौन बांधेगा। द्रौपदी के इन शब्दों ने श्री कृष्ण के हृदय को छू लिया। उन्होंने उसी क्षण ही मन अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लिया। समय बीतता गया। एक दिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का अपमान किया जाने लगा। कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर लाया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों से सहायता मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार उसने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण अब मेरी लाज आपके हाथ में है। द्रौपदी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी का वस्त्र इतना बढ़ता गया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। द्रौपदी समझ गई कि ये उसके उस छोटे से कपड़े का प्रतिफल था जो उसने कभी श्री कृष्ण की घायल उंगली पर बांधा था। श्री कृष्ण ने उस दिन अपना भाई होने का धर्म निभाया। इसी घटना को रक्षाबंधन की भावना से जोड़कर देखा जाता है। ये पर्व केवल भाई की कलाई पर धागा बांधने का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का पर्व है। राखी का धागा, हेलो, नहीं, राखी का धागा देखने में बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसमें भावनाओं की ऐसी शक्ति होती है जो भाई बहन के रिश्ते को जीवन भर मजबूत बनाए रखती है। कहते हैं राखी का धागा छोटा जरूर होता है, लेकिन उसमें बहन की दुआ और भाई की जिम्मेदारी बंधी होती है। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने बचपन। हेलो,
4: ओम शांति,
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग भैया। एकदम ठीक हूँ प्यारे भैया, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं
4: आपको और सभी हमारे दीदियों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। हमारे बुरी राजी भाई आ गए, हमारी बहना भी आ गए, प्रोग्राम हम सुन रहे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है दीदी। और कल तो मन की बात है, कल आप आएंगे नहीं, मैं बोला चलो दीदी को रक्षाबंधन की बधाई भी दे देंगे, ओम शांति भी कर देंगे।
2: थैंक यू भैया, थैंक यू,
4: शुक्रिया,
2: सदा खुश रहो, सुखी रहो, ओम शांति। तो आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो केवल एक धागा नहीं थी, बल्कि अपने बचपन की यादें, अपना प्रेम, अपनी उम्मीदें और भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना भी बांध देती है। और भाई

दिन में यही बात रखिए कि स्त्री एक धागा नहीं है, लेकिन वो तो प्रेम का प्रतीक है अपने भाई के प्रति, और सदा पहने तो दुआएं करती ही हैं कि हमारे भाई खुश रहें, और उनके प्रति दुआएं करती हैं। आशा करते हैं आपने भी इसी अर्थ में कल राखी मनाई होगी, और आपको एक बार पुनः राखी की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो। चलिए एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे बहन जी कौन कौन गीत सुना दीजिए। तो

ये धागा ऐसा बांधा जो बंधनों से मुक्त करने वाला है, ये डोर ऐसी पक्की जो माया कितना भी जोर लगाए तो डोर नहीं टूटेगी।

0: सबसे सस्ती राखी और सबसे अनमोल रिश्ता। रक्षाबंधन के दिन एक बहन ने अपने भाई को सिर्फ 20 रुपए की राखी भेजी थी, लेकिन उस राखी के पीछे छिपी उसकी पीड़ा जब भाई को समझ आई तो उसने जो फैसला किया उसने भी। हेलो
1: दीदी, नमस्ते।
0: एकदम ठीक है, ओम शांति। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, दिल से दुआएं
1: आपको भी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सभी बहनों अच्छी रहे, अच्छे मस्त रहे और खुश में रहे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। हमारे सभी आगे भाई बहन है और हमारे जो लिखना में कई सारी हमारे बहन है, तो सबको हमारे तरफ से नमस्ते दीदी
0: जी।
1: और अच्छा कार्यक्रम भी चल रहा है दीदी। आपने जो डॉक्टर से बात बताई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई। आज हर कोई ऐसा समझ ले तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, लेकिन आज दीदी ऐसा है कि आज जो कोई समझता है कि जो गर्भ में जब बेटी है तो बेटियों को नाश कर देते हैं
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए दीदी। पर चाहे वो डॉक्टर भी उसने अपना जो नियम पहले रही और अच्छा एक सबको एक अच्छा बातें बताई दीदी। बहुत अच्छा लगा हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी बहनों को शुभकामनाएं आज के दिन की
0: जी। और आपकी सिस्टर आई,
1: सुन रहा था लेकिन मैंने सोचा चलो आपसे लास्ट में बात कर लूं।
0: हाँ। और आपकी सिस्टर है क्या, लौकिक सिस्टर?
1: हाँ, मेरे तो दीदी 5 बहने हैं, सभी बहने कल आके गई।
0: तो कल आके गई सभी?
1: हाँ, कल सभी बहने आई थी। एक बहन 2-3 दिन पहले आई थी, एक दिन एक
0: अच्छा बहन,
1: क्योंकि सबको जब मौका मिलता रहा तब आते।
0: घर के परिवार के वो देखते हुए,
1: क्योंकि परिवार में होता है उसको भी सामने कोई आता जाता है, तो बहने आते गई और बेटियां भी आई हैं।
0: अच्छा,
1: बेटियां भी अभी घर में बस हरा भरा चल रहा है, तो बेटियां हैं, बेटे के जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो वो भी सभी आज हो रहा है।
0: अच्छा लग रहा होगा ना घर भरा भरा?
1: हाँ, हरा भरा रहता है, इसीलिए तो जो कोई नहीं होता तो सुना सुना लगता है, लेकिन जब
0: आते हैं तो घर भरा भरा अच्छा लगता है। सही बात है,
1: अच्छा लगता है दीदी
0: जी जी।
1: नमस्ते,
0: ओम शांति भैया। तो भाई को समझ आई तो उसने जो फैसला लिया उसने पूरे परिवार को रिश्तों की असली कीमत समझा दी। सतारा के पास एक छोटे से गांव में पुराने घर की ओसरी पर मंदा चुपचाप बैठी थी। तन पर पुरानी और कई जगह से घिस चुकी साड़ी थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, इस बार तो मेरा भाई मुझे नहीं भूलेगा ना। रक्षाबंधन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मंदा ने घर की पुरानी पेटी खोली और उसमें से 3 रेशमी राखियाँ निकाली, साथ में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और 20 रुपए की एक पुरानी नोट रखी। सब कुछ एक साधारण सफ़ेद लिफाफे में रखकर उसने बंद किया। लिफाफा बंद करते समय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरे भाई की कलाई पर मेरी राखी पहुंच जाए बस इतना ही काफ़ी है। उसे पता था कि उसके भाई के घर में अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास भाई को देने के लिए न महंगी घड़ी थी न महंगी मिठाई, उसके पास था तो सिर्फ प्यार से बंधा एक रेशमी धागा और 20 रुपए का आशीर्वाद। उधर पुणे में मंदा का बड़ा भाई माधव अपने बड़े से घर में रक्षाबंधन की तैयारी कर रहा था। टेबल पर कई बड़े बड़े पार्सल रखे थे। नागपुर में रहने वाली बहन वंदना ने महंगी मिठाई और सुंदर घड़ी भेजी थी। कोल्हापुर में रहने वाली सविता ने सुंदर साड़ी और महंगी राखी भेजी थी। तभी माधव की पत्नी स्नेहा चाय लेकर आई और सहजता से बोली, माधव बाकी दोनों बहनों की कितनी सुंदर चीजें आई है, लेकिन मंदा ताई का हमेशा की तरह साधारण सा लिफाफा आया है, उसमें सिर्फ राखी और 20 रुपए हैं। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने वो लिफाफा धीरे से हाथ में लिया। लिफाफे पर बहन की जानी पहचानी लिखावट देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति, नमस्कार, कैसे हैं भैया?
2: बस एकदम मस्ते हैं।
0: हाँ जी,
2: और सभी रेडियो मधुबन परिवार को जो कल रक्षाबंधन गया, सबको ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मालिक इनकी सभी तमन्नाएं पूरी करे।
0: आपको भी
2: मालिक से मेरी प्रार्थना है।
0: जी आपको भी हम दिल से दुआएं देते हैं पूरे रेडियो मधुबन की तरफ से, सदा सुखी रहे, खुशी रहे।
2: बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने अभी।
0: जी जी जी, ओम शांति, ओम शांति। तो उन 20 रुपयों की कीमत बाकी सभी महंगी चीजों से कहीं ज्यादा थी। मंदा की शादी 10 साल पहले सांगली के पास एक परिवार में हुई थी। शुरुआत में उसका संसार ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसके ससुर के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। फिर संपत्ति को लेकर भाइयों में झगड़े हुए और मंदा के पति को घर छोड़ना पड़ा। इन सब परेशानियों के कारण उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। वो एक छोटी सी किराने की दुकान पर जो काम मिलता करने लगे, पर मंदा ने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे ओंकार को पढ़ाया, पड़ोसियों के घरों में काम किया, कभी खेतों में मजदूरी की तो कभी दूसरे के घर बर्तन साफ किए। लेकिन उसने अपने मायके वालों को अपनी परेशानी कभी नहीं बताई। उसे डर था मेरी वजह से मेरे भाई पर बोझ न पड़ जाए। माधव को ये सब पता चला था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से काम ही व्यस्तता के कारण वो भी अपनी बहन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया था। आज उन 20 रुपये की नोट ने उसे अपनी गलती का एहसास करा दिया। उसने स्नेह की ओर देखा। स्नेहा, इस बार रक्षाबंधन हम यहाँ नहीं मनाएंगे। तो फिर माधव बोला, इस बार हम सब मंदा के घर जाएंगे और उसे बिना बताए जाएंगे। स्नेहा कुछ पल रुकी, लेकिन अचानक पहुँचेंगे तो वो हमारी खातिरदारी की चिंता करने लगेगी। माधव मुस्कराया। वो हमारे लिए व्यवस्था नहीं करेगी, इस बार हम उसके लिए कुछ करेंगे। रक्षाबंधन की सुबह माधव, स्नेहा और उनका बेटा आर्थव सतारा के उस गांव में पहुंचे। घर के सामने पहुंचकर माधव कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मंदा आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तन पर वही पुरानी साड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। भाई को सामने देखते ही उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। दादा आप? उसकी आवाज़ में खुशी से ज़्यादा आश्चर्य था। जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में उसके दरवाजे पर खड़ा था। माधव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, इस बार मुझे तेरे हाथ में राखी बंधवानी थी। माधव ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, हाँ गवेड़ा, इस बार मुझे तेरे हाथ से राखी बंधवानी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दादा, पहले बताया होता तो घर थोड़ा ठीक कर लिया होता। माधव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, मुझे तेरा घर देखने नहीं बहना, तुझे देखने आना था। नेहा मंदा को बाजार ले गई, उसके लिए नई साड़ी खरीदी, ओंकार के लिए नए कपड़े लिए, घर के लिए महीने भर का राशन, दवाइयाँ, चादरें, पर्दे और ज़रूरी सामान खरीदा। मंदा बार बार कहती रही, भाभी इतना सब क्यों? स्नेहा हंसकर बोली, चुप रह, आज तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। कई वर्षों बाद उस घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। मंदा की आंखों में खुशी थी, लेकिन माधव ने एक बात नोटिस की। मंदा बार बार अपने सीने पर हाथ रखती और कुछ देर चुप हो जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं दादा, थोड़ी थकान है, वो मुस्करा दी। माधव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई, मंदा ने राखी की थाली सजाई। उसने माधव के माथे पर कुमकुम लगाया और राखी उठाई। तभी माधव बोला, रुको जरा। मंदा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों? माधव मुस्कराया, तेरी दोनों बहनें अभी आई नहीं हैं। मंदा को कुछ समझ नहीं आया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला। सामने वंदना और सविता अपने परिवार के साथ खड़ी थी। मंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर दोनों बहनों से लिपट गई। कुछ दिन पहले माधव ने दोनों बहनों से कहा था, हम हर साल घूमने जाते हैं, इस बार कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। फिर वो मुस्कुराकर बोला था, इस बार हमारी चार धाम की यात्रा हमारी मंदा का घर होगा। दोनों बहनों ने उसी समय हाँ कर दी थी। उन्होंने तय किया था कि मंदा की आर्थिक मदद तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले उसे ये एहसास कराएंगे कि तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। उस रात सभी पास के होटल में खाना खाने गए। मंदा बहुत कम बोल रही थी, वो बस सबको देख रही थी, कभी भाई को, कभी बहनों को, कभी अपने बेटे को, और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, वे आंसू थे इस एहसास के कि मेरे अपने आज भी मेरे अपने हैं। रात को सभी घर के आंगन में गद्दे बिछा कर सो गए। बचपन की पुरानी बातें निकल आई, सब हंस रहे थे। मंदा चुपचाप माधव के कंधे पर सिर रख कर लेटी थी। दादा, क्या आज बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा माधव, मेरा मायका वापस मिल गया। माधव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मायका कभी ख़त्म नहीं होता, बस हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मंदा ने आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर संतोष था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक माधव को महसूस हुआ कि मंदा का हाथ बहुत ठंडा हो गया है। मंदा, उसने उसे हिलाया, मंदा उठना। कोई जवाब नहीं आया। सब घबरा कर उठ बैठे। दिया जलाया गया, लेकिन मंदा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत संतोष भरी मुस्कान थी। तभी सबको एहसास हुआ कि वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शायद उसे दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लोगों की, और शायद इसलिए वो उस दिन इंतज़ार करती रही। देखिए भाई, कितनी दुख की बात है ना, आज के ज़माने में क्या हो रहा है। यही चीज़ नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिवार बहुत सयाने होते हैं जो अपने परिवार की एकता के बहुत मानते हैं। मंदा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत और संतोष भरी मुस्कान थी। तभी सबको एहसास हुआ कि वो कई महीनों से बीमार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। शायद उसे दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लोगों की, और शायद इसलिए वो उस दिन तक इंतज़ार करती रही थी। जिस दिन उसके भाई की कलाई पर उसकी राखी बनने वाली थी, जिस दिन उसके आंगन में फिर से बहनों की हंसी गूंजने वाली थी, जिस दिन उसे एक बार फिर महसूस होना था, मेरा मायका आज भी मेरे साथ है। मंदा इस दुनिया से चली गई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई। उसके आखिरी पलों में उसके अपने लोग उसके आसपास थे। उसके सिर पर भाई का हाथ था और उसके चेहरे पर संतोष था। कभी कभी महंगे भेंट वस्तुओं से ज़्यादा किसी इंसान का समय, उसका साथ और उसके चार शब्द अनमोल होते, मैं हूँ ना। इसलिए रिश्तों को सिर्फ त्योहारों पर याद मत कीजिए। किसी अपने से मिलने के लिए बहुत देर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी एक मुलाकात का इंतज़ार कर रहा हो और आपको इसकी खबर भी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, कहे कि कल आप मन की बात सुनेंगे और हम दादी जी से मिलेंगे। चलिए नमस्कार।
3: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन। अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में जब गांव और अंचल का नाम सुनते हैं, अपना गांव अपना अंचल, कितना खुशी लगता है, क्योंकि उस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उसका जो शुद्धता गांव का भोलापन हमें और प्रकृति का गोद जब देखने को मिलता है तो हमें बहुत महसूस होता है। और शहर में थोड़ा डिफरेंस है, गांव का डिफरेंस, माहौल अलग होता है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालयों के सहयोग से बच्चों का विकास के लिए, विद्यार्थी विकास में उनका अंदर में जो भाव और भावना है, जो भक्ति है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच दे रही है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन आज पहुंचा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियाबा में पहुंचे, और बच्चे बच्चों को हिस्सा लेंगे। एक का बाद एक प्रस्तुति आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, सिर्फ सियाबा तक क्यों सीमित रहे, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक स्टेज आज दे रही, जिस स्टेज का माध्यम से अपना बात को रखेंगे। मन का बात हो, चाहे भावना हो, चाहे यहाँ का संस्कृति हो, सब चीज आपका पास रहेगा, क्योंकि हमारा बच्चे सच्चे होते हैं और बच्चे मासूम होते हैं और अपना भाव को लेकर पहुंचेंगे। हमारा इस कार्यक्रम को सर जी कोऑपरेशन कर रहे थे, अपना परिचय देंगे, कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं?
1: मेरा नाम विक्रम कुमार राव है, मेरी पोस्टिंग सियावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मैं L2 अंग्रेजी से हूँ।
0: जी सर। सर आप भी कभी बच्चे थे, आज अब तो शिक्षक बन गए, तो बचपन में आप कैसे पढ़ाई करते थे और ऐसे शरारत करते थे ना, थोड़ा अटेंशन कर पढ़ते थे, तब तो आज सर बने, तो कुत्ता राव से बताइए बच्चों को, जो आप कैसे मेहनत करते थे बच्चों का समय में।
1: डेफिनेटली ये बात सही है, जब मैं खुद एक बच्चा था तो स्वाभाविक है, बच्चा है तो बच्चे जैसी प्रवृत्ति का होना भी स्वाभाविक है।
0: जी सर।
1: उछल कूद, खेल कूद, है ना, ये सारी बातें बचपन में होती है, जो मेरे भी जी चुकी है, मतलब हुआ करती थी। लेकिन मैंने अपने जीवन का मोटो टारगेट एक ही रखा कि पढ़ाई से कभी मैंने अपना लिंक नहीं छोड़ा।
0: वेरी गुड।
1: बाय द वे, यदि स्कूल में कभी किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाता था, या सब्जेक्ट टीचर अगर नहीं होते थे, या कोई गेम्स वगैरह होते थे, या अन्य एक्टिविटी होती थी, तो उस पीरियड में जो मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो मैं स्वयं घर पे जा करके उसको रिकवर करता था। और आप यकीन मानिए, मैं हकीकत कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई इस पे बोल रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी तीसरी क्लास से, आज भी मेरे पास में रिकॉर्ड है, तीसरी क्लास से लेकर के मतलब ग्रेजुएशन तक हर जगह 64 मतलब फर्स्ट क्लास बना हुआ है। और मेरी 10th बोर्ड में, क्योंकि उस समय 10th बोर्ड में मैंने 1995 में 10th किया है, 1997 में 12th किया है।
0: जी सर।
1: ठीक है ना, उस समय है ना, अभी तो स्कूल से 20 नंबर जाते हैं, पहले हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय फर्स्ट क्लास बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, पूरे गांव में मेरे 10th में 63% बने थे, तो पूरे गांव और आसपास के लोग मुझे जानने लग गए कि उनका लड़का, और मैं भी आपकी तरह आपके परिवार से ही हूँ, मैं कोई हाईफाई या मतलब ऐसा, मेरे फादर तीसरी पास भी नहीं थे, मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, मैं अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ।
0: जी सर।
1: मैंने कभी ऐसा, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं एक गरीब परिवार से था, मुझे पता था कि मुझे मेरे परिवार को मैनेज करना है, और जितना मैं कर सका था मैं आज उस जगह पे पहुंच गया हूँ। और यहाँ तक कि मेरे फादर, मैं थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, मेरे फादर पियोन थे, चपरासी थे, प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करते थे, और उनको इत्तफाक से अस्थमा के मरीज थे। तो मेरे 11th और 12th में पहली बार हमारी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, तो उस समय आर्ट थी, तो उस समय ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये मेरे मेन सब्जेक्ट थे 11th और 12th में। 12th में भी मेरे 63 point something है। उसके बाद में मैं जानता था कि मेरे फादर सर्विस नहीं कर पाएंगे, ज्योग्राफी हमेशा रेगुलर होती है, मैंने आबरोड कॉलेज में लिया एडमिशन, तो मैंने यहाँ देखो एक जीवन में मैंने चेंजेस किया।
0: जी सर।
1: मैंने तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उनको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ज्योग्राफी रेगुलर होती है, मुझे पता था कि मेरे फादर अस्थमा के मरीज है, वो जॉब नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता मुझे कॉलेज प्राइवेट करना पड़े, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट को ड्रॉप किया। और यहाँ आते ही मैंने इंग्लिश लिटरेचर, जो एक गांव के लोगों के लिए अंग्रेजी बहुत बड़ा मतलब वो तोप समझी जाती थी, उसके बावजूद मैंने इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लिए, और उसी अंग्रेजी ने, क्योंकि यहाँ कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होती थी, लोग जब होटलों में बैठ करके चाय पीते थे, मैं उस समय एक पीरियड अटेंड करके वापस अपने रूम पे आता था और लिख लिख के याद करता था, स्पेलिंग याद नहीं होती थी, लिख लिख के याद करता था। और 55% से अबव के साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके तुरंत बाद में 2000 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद में मैंने दो दिन भी वेस्ट नहीं किया और प्राइवेट स्कूल में मैं लग गया। और कहां आब रोड शिवाजी कॉलोनी और कहां हीरो होंडा शोरूम, मतलब पैदल जाकर के ट्यूशन पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में काम करना, तब जाकर के मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं तो आपको भी बोलता हूँ, जीवन में जितनी मेहनत करोगे उतना ही मीठा फल मिलेगा।
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर और वार्म अप करा दिया। और उनका जो जीवन कहानी, बच्चों को एक मोटिवेशन मैंने सीख मिलेगा जरूर। और जब उनका कदम पर कदम चलेंगे और मेहनत, विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे, 5 साल 6 साल जो समय है ग्रेजुएशन तक, मेहनत मेहनत करेंगे तो अगला जो 90 साल 50 साल आएगा ना, फल मिलेगा आपको, पैसा पैसा सम्मान सब चीज मिला, पोस्ट पोजीशन बंगला गाड़ी सब मिलेगा, क्योंकि आप नौकरी करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे। लेकिन 5 साल मात्र 5 साल इतना मेहनत, 20 नाखून लगाकर पेट से सिर तक इतना मेहनत करेंगे, जरूर हमारा कदम चूमेगा, माने हमारा कदम में चरण में स्पर्श करेगा नौकरी। एक सर का अनुभव से, सर कैसे मेहनत किए प्राइवेट हो, लेकिन परिस्थिति कितने भी बड़ा परिस्थिति हुई, लेकिन अपना स्वस्थिति आत्मा को मजबूत किया और दृढ़ता से किया तो सक्सेस हुआ। तो आप भी करेंगे ना बच्चे, तो सर इसलिए बताए, सर को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक का बाद एक प्रार्थना होगा, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए रेडी, सभी को धन्यवाद। नाम का साथ अपना नाम बताएंगे।
1: मेरा नाम नीला है, मैं मालियाबाद से आती हूँ।
2: मेरा नाम आरती है।
3: मेरा नाम निकिता राव है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, मैं सियावास में रहती हूँ।
4: मेरा नाम खुशबू है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियावास से पढ़ती हूँ, मैं मालियाबाद से आती हूँ।
5: मेरा नाम अनिता है, मैं 12th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं सियावास से आती हूँ।
7: मेरा नाम सीमा कुमारी है।
8: मेरा नाम करीना कुमारी है, मैं सियावास से आती हूँ।
9: मेरा नाम ज्योति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सियावा कक्षा 12th की छात्रा हूँ, मैं मालियाबाद USB कॉलेज से।
0: वेरी गुड, चलिए डन, प्रार्थना करें।

0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद के लिए, धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और खास कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा का नन्हे मुन्ने बच्चों का आवाज, ये हमें बहुत खुशी। एक साथ सभी ने अपना प्रस्तुतियां दी है, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक गीत सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रहते मधुबन 107.8 FM पर।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं तो आज हमें खुशी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय के मिलित सहयोग से विद्यार्थी विकास में विद्यार्थियों का टैलेंट को प्रतिभा को भाव को हृदय का साथ संगीत में जो रुचि रखते हैं उसको उजागर करने के लिए एक मंच आज मिलेगा और हमें खुशी है बच्चों को जब इस तरह मंच आवश्यकता होता है तो उनको मिलता है क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं बच्चे महान होते हैं और इस कार्यक्रम को सजाएंगे। बहुत खुशी लगता है हर विद्यालय में जाते हैं तो विद्यार्थी विकास में बच्चों का भाव और भावना को आप तक पहुंचेंगे। आज हम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा में पहुंचे क्योंकि क्यारा भी एक ग्राम पंचायत बड़ा स्कूल है लेकिन ये क्यारा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा का आवाज को बारी बारी सुनने को मिलेगा क्योंकि हमें खुशी है क्यारा तो हमारा आस पास ही रहता है क्योंकि अब रोड और तलेटी का पास है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बगल में ही है मोदल्ला क्यारा मोडू एक ही पास का बाद नागपुरा अचपुरा सब आता है लेकिन बच्चों को सुनेंगे बारी बारी और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए हमारा सभी बच्चे तो है ही है और बच्चे सभी को नाम लेकर आए मुझे जितना मालूम नहीं है मैम को अधिक मालूम है सर को अधिक मालूम है। मैम को स्वागत करेंगे मैम अपना परिचय पहले देंगे।
1: ओम शांति, मेरा नाम अनीता कंवर है। मैं गवर्नमेंट स्कूल क्यारा के अंदर SST सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मेरे बच्चे आज एक सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं।
0: जी हाँ, बहुत अच्छा वार्म अप करा दिए बच्चों को क्योंकि मैम का आवाज को सुनकर बच्चे भी अपना आवाज जो जितना था उसे और थोड़ा तेज करके सुनाएंगे क्योंकि बच्चे तो सच्चे होते हैं और बच्चे हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सभी को बारी बारी चांस मिलेगा एक गुलदस्ता बनेगा आवाज का मैम का आवाज का साथ अभी बच्चों का आवाज प्रार्थना सत्र में जैसे प्रार्थना करते हैं माँ शारदा को आह्वान करते हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में अपना भाव और भावना का साथ गीत संगीत प्रस्तुत करते तो एक प्रार्थना के रूप में हमारा साथ पांच छात्र है तो अपना अपना परिचय देंगे और कहां से आते हैं और स्कूल का पूरा नाम।
2: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूं, मैं नागपुरा से आती हूं और मैं क्यारा विद्यालय में पढ़ती हूं।
0: गुड, नेक्स्ट।
3: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूं, मैं नागपुरा से आती हूं।
0: क्या बात।
4: मेरा नाम राखी कुमारी है, कक्षा 8 में पढ़ती हूं, मैं क्यारा गांव से आती हूं।
5: मेरा नाम भावना कुमारी है, कक्षा 8 में पढ़ती हूं, मैं क्यारा से आती हूं।
0: क्या बात, कितना बुलंद आवाज है हमारा भावना और सुनीता और सुगुना सब क्योंकि जब भी विद्यालय में जाते हैं सुगुना सुरेश ये सब मिल जाते हैं हर स्कूल में तो आज विद्यालय का एक आवाज सुनेंगे जो कि प्रार्थना सत्र में सभी प्रार्थना शुरू करेंगे। बच्चे रेडी? ओके शुरू।

0: मना मत।
1: क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति, और प्रस्तुति जो दी है, प्रस्तुत नहीं थे लेकिन अचानक में एवर रेडी रहते हैं बच्चे, कहीं भी जाते हैं तो अचानक में और हेल्दी वेल्दी हैप्पी करा देते हमारा प्रोग्राम को, क्योंकि ये रेडियो प्रोग्राम आपका रेडियो है, आपके द्वारा ही प्रसारण होता है, तो बहुत खुशी लग रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे सुगुना एंड पार्टी से, और भावना भी हमारे साथ है, सुगुना भावना और सुनीता राखी। अभी तो राखी बंधन तो रक्षाबंधन होता है, राखी का महत्व है। तुम्हारा नाम क्या था? बीना जी। और बा बीना बजेगी तो सरस्वती का बीना को कौन याद नहीं करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा का आवाज।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ब्रेक का पहले आप सुन रहे थे मैम को और बच्चों को, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और इस कार्यक्रम को संभालने के लिए हमारा संस्था प्रधान को भी कौन याद नहीं करेंगे। कमल किशोर जी हमेशा हमें सहयोग देते और सभी स्टाफ को धन्यवाद देते, सभी जानते हैं रेडियो मधुबन को। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ सर जी है, सर अपना इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं और सभी बच्चों को जानते हैं और बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, तो सर आप अपना परिचय देंगे हमारा बच्चों को और जो श्रोता को भी पता चलेगा सर का जब नाम सुनेंगे। अरे तो मेरा दोस्त है, ये मेरा सहपाठी थे और हमारा प्रिंसिपल भी सुनेंगे, तो आप अपना परिचय दीजिए और बच्चों का अंदर में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका ऊपर में थोड़ा बताइए अपना परिचय प्लीज।
1: मैं सुरेश चंद गर्ग शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा में हूँ।
0: जी सर, और खासकर आप शारीरिक शिक्षक जब बता दिए तो शरीर बिना हमारा मन बुद्धि ठीक रहे, शरीर कितना तंदुरुस्त रखने के लिए बच्चों को क्या क्या कराते हैं स्कूल में?
1: रोज व्यायाम कराते हैं प्रार्थना के अंदर और योग वगैरह की शिक्षा भी देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और तंदुरुस्त रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों तंदुरुस्त रहेगा तो विद्यार्थी को पूरा लॉटरी एक चांस मिल जाएगा सब चीज में ग्रहण करने में, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो मन बुद्धि भी ठीक रहेगा और मन बुद्धि ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, दोनों का आवश्यकता है। इसलिए आत्मा और शरीर का बैलेंस रखना जरूरी है और हमारा शारीरिक शिक्षक इस कार्यक्रम को हेल्दी करा दिए और बच्चों को थोड़ा वार्म अप करा दिए और स्वास्थ्यवान रहना कितना आवश्यकता है। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य ही संपदा, पैसा रहे कि नहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अगला प्रस्तुति के लिए हमारा एकल गान के लिए चलते हैं। सुनीता एकल गान करेगी शुरू।
2: मैं तो

दो, प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है। सब अपने हैं, कौन यहाँ बेगाना है। हर पल अपना अर्थवान।

हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उड़ती है, संबंधों की सांस उगड़ने लगती है। भेदभाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, सल्लाटों में सरगम हम बन जाएंगे, मरुदरा को मिल करके हम सरगम बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूँ तुम

समय उसे क्या रोना है, लो हाथों में हाथ दो, जन जन को विश्वास दो, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, मरुदरा को मिलकर के हम स्वर्ग बनाएंगे।

0: विश्वास दो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे, ताली बजाओ, अच्छा से गीत गाई हमारा सुगना,
2: ताली बजा, ताली बजाओ।
1: क्या बात, जो ताली को जब सुनते हैं पूरा ताल का साथ, हमें यहाँ का जो संस्था प्रधान कमल किशोर को याद आता है, क्योंकि वो स्काउट में हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाते, स्काउट का स्टूडेंट भी है, तो वो भी क्या सीखते, वो भी उनसे भी लेंगे इंटरव्यू, लेकिन क्लैपिंग में भी कुछ विशेषता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुनीता तुम ये सब गीत कहाँ से सीखी, कैसे प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा से स्वर लय के साथ गाए, तो कहाँ से सीखती तुम?
0: मोबाइल से सीखा था।
1: मोबाइल से? यार मोबाइल कौन बोलता अच्छा नहीं है, मोबाइल सब कुछ हम अच्छा चीज भी ग्रहण कर सकते हैं, मोबाइल से उसका ट्रैक कोरक सब चीज सीखते हैं, और मोबाइल से सुनीता अच्छा से कर पा रहे, और बड़ो कर क्या बनेगी सुनीता?
0: IAS बनेगी।
1: हाँ देखो, सिंगर नहीं बोला मैं, IAS ऑफिसर कलेक्टर बनेंगे, उसलिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में, और 2-4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, और 4-5 साल अभी 8th क्लास होंगे है ना, और 5-6 साल आप मेहनत करेंगे तो जरूर आपका आगे

चलिए चलिए, बोलते बोलते और एक गीत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय का मिली सहयोग से बच्चों का आवाज को आज एक मंच दे रहे हैं। जो बच्चे आज बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, उनका दिल का भावना, हृदय का जो संगीत है, सब तक पहुंच रहा है और हमें खुशी है। रेखा, भावना और सुनीता को धन्यवाद देते हैं, उनको स्वागत करते हैं। इस तरह बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपना भाव को रखते हैं। तो और एक प्रस्तुति सुनेंगे।

0: और साथ छोटा सा परी भी आई है और उनका आवाज कभी सुने होंगे, वो अपना नाम बताएगी हीना। आज शर्मा रात जब उनका घर में जाते हैं अनुष्का का घर में, तो अनुष्का छोटा सा बच्ची है लेकिन खबरा का घर में रहता है, लेकिन आज देखकर ये भी पढ़ाई कर रही, बहुत अच्छा लग रहा। तो अनुष्का को कौन जानते है, सो जानते उनको कहाँ से आती है?
1: केरा से।
0: हाँ, केरा से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रस्तुति

0: तुम्ही हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए सुनीता। आईएएस ऑफिसर बनने के इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। और उसका दोस्त कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है?
0: भावना कुमारी।
1: कौन सा क्लास भावना?
0: आठवीं क्लास में।
1: वाह, बहुत अच्छा दोस्त मिला है। और हमारा अनुष्का को जानते हैं ना? अनुष्का, हाँ, अनुष्का जी छोटा बच्ची है, वो भी पहले गीत गाती थी, आज नहीं गा पा रही। कोई बात नहीं, उनका घर में हम गीत गाए ना सुनाएंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय केरा का आवाज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति वंस मोर कहते कहते हमारा बच्चे को भूल नहीं पा रहे हैं। और पुनः सुनीता सुगुना और रेखा और भावना सबको धन्यवाद देते हैं, उनको पुनः स्वागत करते हैं। चलिए एक प्रस्तुति हो जाए।

बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चा बच्चा राम है, क्योंकि हर बालक और बालिका छोकरा छोकरी पूरा देव समान देवी समान है, हर बाला और बालिका एक देव समान है। तो सभी को धन्यवाद देते हैं और इस तरह चरित्रवान बनते हैं, विद्यालय में आते हैं, पढ़ाई का साथ साथ इस तरह मनोरंजन भी करते हैं और प्रार्थना सत्र में हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ये विद्यालय के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए नाम रोशन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक प्रस्तुति एकल गान के लिए हम प्रस्तुत रहेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खास कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्यारा का आवाज।

0: हाँ
1: नहीं अच्छो लागे।
0: अच्छो लागे। और देखो भाई, आपा बच्चा नहीं हो के वा अरे वाह के धोग लाग, वाह के धोग लाग, पर वे बच्चा जी प्रैक्टिकल में देखे माना माँ बाप ही लाग रहा
1: हाँ
0: तो
1: तो वही
0: बच्चे
1: सीखे।
0: हाँ वे सीखे और वे लागे ही पच्चे माने केवा की जरूरत नहीं पड़े।
1: सही बात है।
0: आने वास्ते मंदिर, महादेव, सत्संग, कीर्तन में बच्चा ने भी ले जानो छावा,
1: सही है।
0: तो वे बच्चा में संस्कार उतरेगा। अच्छा सत्संग अचान वे यू करनो, पच्चे माने केणो नहीं पड़ी तू मंदिर जा, अरे तू सत्संग में जा,
1: मैं देखी तो अपने आप करी।
0: अपने आप सीखी। पर कंचन चलो सत्संग भी कह रहा सब कह रहा, पर मैं गर्मा गर्म नाश्तो बना रखे वो तो खाला ठंडो वे जाए।
1: हाँ चल चल खा
0: हाँ
1: लेता है।
0: तो एक आछू गीत भी सुना था अपना श्रोता बंधु ने,
1: हाँ सुना दे।
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, सावण सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, तीजरड़ी मन लू भायो बादरड़ी बरसो बरसो, पिया जीरा देश बिजरड़ी चमको चमको, पिया जीरा देश आ तो आ भाई कंचन पाछा आपा गावरी बातें कार्यक्रम में सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा हाँ। और देख भाई सावण महीना में एड़ा एड़ा गीत बोले के मन तो अपने आप ही याद आवे, एड़ा एड़ा गीत भी गावे।
1: जरिस मुई हो सो रही हूँ के रतन हर बार कठाती गीत एक ती एक लेन आवे।
0: पर सावण में एड़ा गीत गावे तो याद हो जावे, क्योंकि तीज त्योहार तो आवी है। तीज त्योहार पे अपने जमाई भाई है, बेटिया की शादी कराया बाद पहली तीज वे वे, तो जमाई भाई ने भी बुलाना पड़े, बेटिया अपना घरे हुए
1: हाँ।
0: तो अपने आप ही बचे वहां के लिए कई बोला तो गीत याद आई जावे। आपने भी देखो भाई राजस्थान रा मायने एडी एडी परंपरा है कंचन कि आपने जमाई भाई आवे पहली बार त्योहार पे तो कतरो सम्मान करा।
1: हाँ, पहली बार तो खूब सम्मान हुई है।
0: मन तो परंपरा अच्छी लागे,
1: अच्छी लागे हाँ। सही बात है।
0: और आपने सावन महीना की बात चल रही, सावन में त्योहार भी खूब आवे तो सावन महीना में सत्संग भी खूब आवे। आप सत्संग की भी बात कर रहे हैं, देख भाई ठंठाए आपने ये 16 सोमवार जो करा ना मनसा महादेव का, वे भी चतुर्थी चालू हो जावे हाँ, जो ठेठ कार्तिक महीना तक रहे, दीपावली का बाद जो चौथ आवे ने, पर चार महीना को चौमासो के वहाँ चौमासा का स्टार्टिंग में या चतुर्थी आवे जदि मनसा महादेव के व्रत चालू हुए वो पाछे चौमासो खत्म वेवा आवे जदि चौथ आवे ने, जदि पाछे संपन्न वेवे। अवैणी में भी देखो भक्ति कड़क है हो, सुबह वेगा उठ नाप स्नान ध्यान करो, ठेठ माता का केस लगा नेड़ी तक कहीं भी आपको धुलिया बगैर बाकी नहीं रहना छावे, माथो धोनो पड़े
1: रोज हर सोमवार
0: हर सोमवार। पहली चतुर्थी आपा चालू कर दा ठीक है, तो चौथ का दिन आपने सब पूजा की सामग्री ले जानी पड़े, चूरमा बनावे ही में हर सोमवार चूरमा बनावे, चौथ का दिन आपा स्टार्ट करा तो चौथ का दिन नु ये चालू हो जावे चूरमा। तो अब इमें अलग अलग भाई मान्यता है, 2.5 किलो बनावे चूरमा जी का चार भाग करे, एक भाग पहली तो ठाकुर जी के सारो भोग लगाई, पचे भी को चार भाग करी, एक भाग गाय के एक भाग बेन बेटी के एक भाग खुद व्रत करा जो खावा को और एक प्रसाद वितरण करवा को
1: हाँ।
0: चार भाग करे तो कोई 1.25 शेर को करे तो कोई 2.5 किलो को करे और असान चार भाग करन बाटे। और सुबह पहले स्नान ध्यान करन स्वच्छ कपड़ा, जो कपड़ा धुले सका वेना छावे के पचे कोरा कपड़ा
1: औद कपड़ा
0: हाँ। पर इमें यू है के आपके कोरा कपड़ा तो कोई भारी वे संग ये पेरवा की जरूरत नहीं है,
1: सिंपल
0: हाँ सिंपल अनिवार्य से धुलुड़ा होना चाहिए। और सुबह पहले आप स्नान ध्यान करते हैं तुरंत ही आप पूजा के लिए निकल जाओ, कहवे भाई अठिनो अठिने बैठा पाचे कपड़ा पे दाग लागे, पाचे अपन नाया ने घने घेप पे जाओ तो वॉशरूम भी जानो पड़े
1: हाँ।
0: तो कहवे की पूरी स्वच्छता का साथ में पूजा हुए तो आप नाते ही बस पचे कपड़ा पेरता ही माँ तो पूछता ही आप निकल जाओ पूजा करवा का लिए, ताकि बनी टाइम पे तो पाचो न तो बाथरूम को प्रेशर बने न आप अटीन उठीने बैठा थाल अपने सजाई पूजा की रवाना हो जाओ
1: सही है।
0: और चूरमो तो बनानो ही पड़े तो चूरमो पहली बना दो, पचे इमें 2 बार स्नान वे वे पहली नहा लो पचे आप चूरमो बनाओ पचे पाचो नहाओ। पर हाँ ये चतुर्थी शुरू हुए जो चतुर्थी का दिन खत्म हुए पहले और लास्ट में, बीच में सोमवार ने तो आप पूजा पाठ करो और पूजा करें आप कई भी प्रसाद चढ़ाओ, फ्रूट भी मिले केला लाओ आप इच्छा वे जो फ्रूट लान चढ़ाओ तो चाले। पर चौथ शुरू हुए चौथ का दिन ही समाप्ति हुए दो ही चौथ पे चूरमो छाई जाए।
1: अच्छा तो थे का की दौड़ा है सोमवार
0: हाँ, मैं की दरे
1: इस तन पूरो ध्यान है चलो तो, जन्ने करना भी बनो नहीं ठाबो पड़ी के वो सोमवार की गण करना है
0: हाँ,
1: सही बात है ने?
0: सही बात है। तो ये मनसा महादेव के वे जमे 16 सोमवार वे वे 16 सोमवार जैसे 16 शुक्रवार करा ना वैसे 16 सोमवार
1: सही
0: हाँ। गुजरात में भी खूब करे तो राजस्थान में भी खूब करे और भी अन्य राज्य में भी करता भी भाई बहन, क्योंकि शिव जी की पूजा ही सब ज्यादा हो सावन महीना, और झटी ने भी देखो सब शिवमय शिवमय हो जावे।
1: शिव जी रा तो सब भक्त है बोले बाबा, सब भगत भगत सबरा मोबाइल माते स्टेटस ही देखो तो सबरा शिव जी रा इस लागोड़ावे,
0: शिव जी का इस लागोड़ावे। मैं एक बच्चा हूँ बात वेरी ही, तो बच्चा भगवान का सामने भोलेनाथ की मंदिर में भोलेनाथ का सामने कह रहे आख्या बंद कर भगवान प्रार्थना कर रहे, हे भगवान अनी बार तो मारे 90% तो मनाना ही पड़ी हो, अगर 90% मन जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊ। मैं कह अच्छा मैं सुन रही ही, मैंने हंसी आई छोटो बच्चो 7-8 साल को, वो हसान कह रहे पछे दी वो भक्ति कर काढ़ी निकलो लागे, तो मैं कह लाला हटाओ, तो क्या हाँ कही के वो आप, तो मैं कहूँ अच्छा ये प्रार्थना की क्यों कर रहे हो, कि भगवान ने कह रहे हो ठाकुर जी ने मारे 90% छावे, क्योंकि भोलेनाथ का लिए सुनियो सको भोलेनाथ हर प्रार्थना पूरी करे। मैं क्यों कठे सुनियो तू, तो क्या हमारे दादाजी कहानी सुनावे ना, तो भोलेनाथ की सुनावे, भोलेनाथ वरदान देवे, पछे मुश्किल पड़ जावे तो वहां में श्री विष्णु जी मदद करे। तो मैं भोलेनाथ ने कह दी तो 90% बना दीजो, अब वहां को नहीं बनानी आई तो वे विष्णु जी बात करी।
1: देखो बच्चा ही केड़ी केड़ी बात करे है।
0: तो मन अतरी हंसी आई, वे क्या देखो बच्चा भी बुद्धि में बिठा रह गयो।
1: देखो बच्चों नहीं पर वो दादाजी बताई, दादाजी माते विश्वास, तो दादाजी झूठ नहीं बोले तो सही में, तो बच्चों तो यूज भी
0: हाँ, क्यों दादाजी कहानी क्यों जदि तो सही है
1: सही है।
0: वे बच्चा भगवान तो अपना साथ में है, पर मेहनत तो कर जाए तो 90% भी बन जाए, पर मेहनत छाई जाए,
1: मेहनत तो करनी पड़ी।
0: हाँ यू है कि देखो कतरा भाव शुद्ध हो जावे, बच्चा का भी भाव केड़ा शुद्ध हो गया आने वास्ते, वो कहे कि अपने अध्यात्म का प्रति तो रुझान वेणु ही छाई जाए, अपना भले छोटा वो बड़ा वो बच्चा ने ले जाओ आप, तो यहाँ का मैं संस्कार आई
1: बच्चों तो देखी फेस सीखी बच्चों हाँ। ने मंदिर ले जाइयो, सुबह ओपे अगरबत्ती दिया धूप करे यो, सबरा आदर करे यो, भगवान ने मंदिर जाओ तो बच्चा ही सीखे
0: सही है,
1: नहीं तो बच्चों ने कोई अनुभव नहीं रहता
0: बिल्कुल। और सावन महीना को देखो खाली जरूरी नहीं कि कोई 4 महीना व्रत करे, घना जना चौमासो नावे तो 4 महीना का व्रत करे, और झाको नी नानी आवे तो वे सावन महीना का व्रत करे,
1: सही है
0: आको सावन महीना का, तो कोई नियम करे तो हरी सब्जियां नहीं खावे,
1: नहीं खावे
0: हाँ, पचे दाल भाजी बेसन सूखी सागा चना कठोरी ऐसी चीजा खावे, पर हरी सब्जी नहीं खावे,
1: नहीं खावे तो सब अलग अलग तरह की करे
0: हाँ। और घना जना आजकल मैं तो देखियो हूँ कंचन के महिला सब ग्रुप बना बना अनभी स्नान पे जावे
1: हाँ।
0: कोई पुष्कर का स्नान लेवे
1: हाँ।
0: कोई हरिद्वार का स्नान लेवे
1: हाँ।
0: हरिद्वार हर पूनम के हर अमावस्या,
1: तू बोले रही है तो मने धीरे धीरे याद आवे रही हाँ, मैं दे मैं अड़ू देखी हुए
0: मारे फोन आयो मारी एक और सहेली है जी को हर अमावस्या पे स्नान करवा जहाँ तू आवे गई, मैं कहूँ यार हर अमावस्या में बंधु नहीं मैंने टाइम मिली तो मैं आऊ नहीं तो नहीं आऊ, अगर हाँ कर दू मैं बंद जाऊँ तो हर अमावस्या जरूरी नहीं है मारो आनी आवे, बोले ठीक है जत्रा करने आप उतरे कर जाए, मैं क्यों हाँ ठीक है, मैं पचे मैंने पूछो भाई तू डिटेल बता था क्यान करो, तो बोले कि मैं तो 4 महीना चौमासा का मतलब हर अमावस्या पूरा साल भर का हर अमावस्या पे स्नान करवा जानो,
1: अच्छा
0: कोई कह माँ पूनम पे जावा हर पूनम, और कोई पुष्कर जी जावे कोई कोई तो हरिद्वार जावे, तो क्या हरिद्वार, और अच्छा मतलब पूरा ग्रुप पे जावे तो आराम हो आप जाओ आओ एंजॉय भी, चलो अनी बहाने एक नारी शक्ति बहाने तो निकले घर का बहाने,
1: सही बात है
0: नहीं तो आखो दन घर का काम कर का नन वाणी कमटाना ऊंची नहीं आवे,
1: कमटालो तो ऊंची नहीं आवे सही बात है, अन बहाने बाहर जावन मले
0: हां बहाने जावा पचार जने मिला माइंड भी फ्रेश पे वे तो घर में भी वा पाछा आवा तो आराम आपनो एक चेंज वे ना आवे तो एक अच्छो मूड वे जावे,
1: सबरे सबरे साथ घूमे सबरे साथ मिले बारे मलवाती एक माइंड फ्रेश वे वे
0: माइंड फ्रेश वे वे माहौल चेंज वे जावे कि चलो, और छूट भी देने चाहिए परिवार वाला ने, और क्योंकि घना परिवार वाला बांधन रखे हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं था चले जाओ घर को काम कौन करी, अरे भाई घर को काम आकी जिंदगी करी सर ने, अरे 2-4 दिन की छुट्टी लेने जा रहे तो आपको परमिशन लेने जा रहे बहुत बढ़िया बात है, तो वहां छूट देनी चाहिए क्योंकि अपन भाई लोग आके जाना हो तो फोन कर दे भाई मैं आज नहीं आऊ, અચ્છી બાત મને ભી બઢિયા લાગ્યો પર મેં હર અમાવસ્યા નહીં બંધુ આવ જરૂર
1: કદી કદાર જાઓ મહિલા યુ બારે નહીં જતી એડા મોકા માતી બારે જાય
0: ઓર એ દેખો એક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કઈ મહિલાઓને લાગે કે હરિદ્વાર જાવા હર અમાવસ્યા અમાવસ્યા યા પુનમ ઉપનમ તો પરમાત્મા માણી ઈચ્છા પૂરી કરી ઘર પરિવાર મેં સુખ શાંતિ રહી ભાઈ મહિલા સોચે તો પૂરા પરિવાર કે લીએ
1: પરિવાર કે લીએ વા મન્નત માંગી તો પૂરા પરિવાર કે લીએ
0: પૂરા પરિવાર કે લીએ ટાબર કે લીએ માંગે તો ચાલો ભાઈ કંચન ટાઈમ ભી હો ગયો આપણે જાવા કો મન્નત તો માંગ લેવા પર પાછો ટાઈમ પે તું જાય તો જીજા સાથે પાછા આવા દે
1: હા સહી વાત કે રહી મન તો ધ્યાન ની પડ્યો સમય વેગ્યો હે ચલ બાય હું જાઉં હા આવજે

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आइए, कार्यक्रम सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है, और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में उन्होंने सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया था। तो आज हम लोग चाहेंगे कि हम सफलता क्यों चाहते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो आप सभी को भी लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसा विषय है ना, हम सफलता क्यों चाहते हैं, सभी सफल बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चाहत है, क्या रीजन है कि हम सफल होना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे। और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक नया जो है आयाम आपको मिलने वाला है आज के इस विषय को सुनने के बाद। तो आइए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया।
0: चलिए, मेरा सवाल वही रहेगा कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, इस विषय पे क्यों बोलना चाहते हैं आप?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, चाहना ही क्यों है।
0: हाँ,
1: ये इच्छा ही क्यों है कि हम सफल ही हों।
0: हाँ।
1: तो इसके पीछे पहले हम थोड़ा, जैसे हमने हमारा जो पहला एपिसोड हुआ
0: जी जी जी जी,
1: उसमें हमने चर्चा की थी, तो आज भी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं।
0: हाँ।
1: ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ लग सके और उसको हमारे पिछले एपिसोड के साथ वो लिंक कर सके।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं।
0: जी जी जी।
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल, सफलता क्यों चाहते हैं लोग, वैसे दुनिया में देखते हैं कि लोग सफल हैं। एक बहुत बड़ा जो ड्रीम हमारे आजकल के यूथ्स के मन में है, या जो मीडिया में दिखाया जाता है, नॉर्मली एड्स में दिखाते हैं, कोई सफल व्यक्ति होता है तो दिखाते हैं उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती, कोट पैंट पहना होता है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ा घर होता है, बंगला होता है, वो ऐसे चलता है जैसे पता नहीं उसको दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही हो। तो बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में, यूथ्स के मन में ये होता है कि सफलता माना कि बहुत सारा मेरे पास धन हो जाए, पैसा हो जाए, मैं पैसा कमा लूंगा, या कोई मैं जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो मैं बन जाऊंगा। या फिर तीसरा एक तरह का हम कहें, जब हमने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर के पूछा तो कहते हैं हम इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, मान होगा, शान होगा, या हमारा भी मान शान होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास धन होगा तो क्या होगा, आप कहते हैं बहुत बड़ा पैसा होगा तो बहुत बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा उससे क्या होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो फिर हम आराम से रहेंगे, घर होगा तो आराम से रहेंगे, बहुत बड़ा घर होगा तो अच्छा आराम से रहेंगे तो उससे क्या होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा उससे हमें शांति रहेगी, खुशी रहेगी और संतुष्टता रहेगी, अच्छा खुशी रहेगी, शांति रहेगी, संतुष्टता रहेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अल्टीमेटली उनसे हम जब ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो तो इंजीनियर बन जाओगे तो फिर क्या, सपोज वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी मेरे को, मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगा, बहुत अच्छी से क्या मतलब है, जिसमें ज्यादा पैसे हो, ज्यादा पैकेज मिले, 40 लाख 50 लाख, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही बात कि बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, माँ बाप आराम से रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम आराम से रहेंगे, आराम से क्या मतलब है, खुशी होगी, शांति होगी, संतुष्टता होगी। तो ऐसे ही जब उनको पूछते हैं, माँ बाप को इज्जत मिलेगी तो फिर क्या होगा, हमें भी इज्जत मिलेगी ना, अच्छा इज्जत मिलेगी तो क्या होगा, स्वाभिमान होगा, स्वाभिमान से क्या मिलता है, स्वाभिमान से अपने आप को संतुष्टता मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली सफलता क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम खुशी चाहते हैं,
0: शांति चाहते,
1: प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि हम बाहर से चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम दूसरों से चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे से हमको खुशी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें प्रोफेशन से खुशी मिल जाए,
0: बिल्कुल,
1: हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा या मेरा बड़ा घर होगा, जैसे कई बच्चों ने स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिया कॉलेज में कि अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट दे हैव ए ड्रीम फॉर द पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। तो वो इज्जत चाहते हैं।
0: आई थिंक मुझे लगता है राजेश जी आपने जो बात छेड़ी है और इस पर लग रहा है कि हम लोग अगर अल्टीमेटली हम खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन बात हो जाती है उसको, उसका जो मेन सोर्स है उसको ना जानकर हम आधारित हो रहे हैं, डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। पैसा होगा तो ये होगा, फिर ये करने से ये होगा, माना ऑलवेज हम लोग डिपेंड कर रहे हैं बाहर की चीजों से।
1: राइट
0: और हमेशा हमारी जो चाहना है वो अंदर की है, शांति प्रेम की,
1: राइट,
0: जो कहीं बिकती नहीं है और मिलती नहीं है बाहर में।
1: राइट राइट।
0: तो शायद यहां ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग जो है सफल होने का सही अर्थ को समझ सकते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये जो विषय है मैंने कहा था कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिल जाएगा, एक इनसाइट की तरफ आपका जो है फोकस राजेश जी आपको करना चाहते हैं, तो शायद आप उस फोकस की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप अपना टारगेट क्या है, आपको क्या चाहिए, अगर इस पर आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीजें तो बाहर से मिलनी ही नहीं है। फिर इसका मतलब हमारा जो हम जो सफल होना चाहते हैं, चाहे पैसा कमा लिया, गाड़ी बंगलो वगैरह सब कुछ आ गया, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी हमारा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा।
1: राइट
0: तो उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें जो है कुछ और चीजें करनी है जो राजेश जी ही शायद बताने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अब सफलता क्यों चाहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का जो मोटो है वो आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, राजेश जी सुनाइए।
1: तो हमने सफलता को जैसे हमने अभी जाना कि खुशी है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, संतुष्टता है, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से चाहते हैं और हमने इसको कंडीशन्ड कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कंडीशन माना ये होगा तो ये होगा, जैसे हमने कल माइंड सेट की बात की थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि मैं अगर 1000 रुपया कमाऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन हमने देखा था कि एक 210 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी जिसने 800 रुपये कमाया उससे क्या है, वो खुश है। तो हमने कंडीशन्ड कर दिया है अपने आप को।
0: बिल्कुल।
1: कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं खुश हो सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। कंडीशन कर दी, शर्त रख दी हमने कि ये होगा तो ही ये होगा, लेकिन ये भी माइंडसेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो फिर सच्ची शांति खुशी आनंद है कहां? बाहर तो हम भटकते ही रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आज ये है तो कल ये है, परसों ये, हमारी नई नई कंडीशंस बनती रहती हैं। अगर आज आपने जैसे मान लिया 12th के स्टूडेंट है, आपने डिसाइड किया 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं आए तो आप दुखी, आ गए तो आप खुशी। उसके बाद आपने नई एक माइंड सेट कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को यही IIT में एडमिशन चाहिए
0: और यही जगह पे चाहिए
1: और यही, और उस जगह पे नहीं मिला मेरे को किसी छोटे से कॉलेज में मिल गया तो मैं दुखी। हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अरे मेरा तो लाइफ का ड्रीम ये था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि ड्रीम मेरा क्या है। क्या मुझे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या अंदर जो मुझे चाहिए, क्योंकि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो भी क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन अगर छोटे में भी मिल गया तो खुशी शांति वो कहां है? प्रश्न यही आता है ना? क्या बड़े कॉलेज में, ज्यादा पैसे में, बड़े घर में खुशी शांति आनंद है या कहीं और है? तो आजकल के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को असफल समझते हैं, असफल इन द सेंस के मान लीजिए इंजीनियर नहीं बना, वो तो उसका मीन्स है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: खुशी शांति आनंद प्राप्त करने का जो आपने माइंड सेट कर लिया था वो तो उसका मीन्स है, लेकिन अल्टीमेट हमारा एम नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा एम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अगर मैंने वो नहीं प्राप्त किया तो मैं क्या हूं, असफल हो गया। लेकिन सफलता वो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज लोग पैसे को मीन्स मान रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मीन्स मान रहे हैं, दूसरों से प्राप्त हुई इज्जत को मीन्स मान रहे हैं, तो यहां बहुत बड़ी गलती हो रही। इस चीज को हमें लिए समझना जो है वो बहुत बहुत बहुत जो है वो
0: जरूरी है।
1: जरूरी है।
0: राजेश जी काफी अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है कि यहां पर एक आत्मचिंतन की बात मेरे समझ में आ रही है कि हम लोग जो ड्रीम्स देख रहे हैं, हम लोग जो सपने सजाए हैं और जो छोटी छोटी हमारी गोल्स आते जाते हैं और हम लोग एक के बाद एक गोल्स हमारा नया बनता जाता है और उसमें कहीं ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो मेन जो पर्पस है उससे भटक कर और फिजिकल चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड केस जैसे आपने बताया ये सारी चीजें कर रहे हैं। कई बार माता पिता की भी अपेक्षा बच्चों से रहती है कि डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, मेरा बच्चा बना सबसे हाई अच्छा एजुकेटर, तो अब वो बच्चा अगर हाई नहीं कर पाता है, डिस्टिंक्शन में उसका नंबर नहीं आता, तो माता पिता के डर से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं।
1: उसका भी कारण ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से और एक्सपेक्टेशंस बचपन से डाल देगी। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा कंपटीशन का जमाना,
0: बिल्कुल
1: तो कंपटीशन बच्चों में आया कहां से, कंपटीशन आया बचपन से। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में गया, वहां पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी, एक फर्स्ट ग्रेड का छोटा सा बच्चा होगा, तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है बच्चा बाहर निकलता है अपनी मम्मी के साथ, और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर निकलती है उसको मारना शुरू कर देती कि तू तो फेल हो गया मैथ्स में, मैंने तुझे इतने बढ़िया स्कूल में डाला, हम तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, तू फेल हो गया। तो बच्चे को ये लग गया कि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे
0: तब
1: मेरे को
0: माँ
1: बाप प्यार नहीं मिलेगा, मेरे को चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को खुशी नहीं मिलेगी,
0: तो ये रॉन्ग प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया उसके साथ।
1: ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग जो अभी आपने भी बात की कि जो हमने कंडीशनिंग कर दी है
0: जी जी जी
1: कि खुशी कहीं और है और हमारे समाज ने ही, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे सिस्टम ने उसको जो एक अनकंडीशन चीज है जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस पहलू को क्लियर करें, जैसे आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया
0: जी, जी,
1: कि व्हाट आर द रीजंस, ये कंडीशनिंग के रीजंस क्या हैं, ये बचपन से हम में जो है वो
0: ये ऐसे लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई, फ्री में आपको ये मिलेगा और छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड, और वो हम पढ़ते नहीं, हम तो ऊपर की चीजों को देख रहे हैं और जंप कर दिया, जब वो कंडीशन अप्लाइड में हमको सारी चीजें पता चल जाती है, अरे ये तो गड़बड़ है। तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में माता पिता हो या बच्चे हो, सभी लोग जो है ना एक टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने मूल्यों को, माता पिता को अपना बच्चों से प्यार है वो जताना है, जब एग्जाम में पास हो गए तो मेरा बच्चा होगा, ऐसा थोड़ी अपन ने कंडीशन करके प्यार किया था इस बच्चे को जन्म देने का, ये थोड़ी तुमने एप्लीकेशन डाला था।
1: इसीलिए तो कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने रखी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और उनको ये लगता है कि बच्चा मेरा आईआईटी में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, एम्स में जाएगा तो बहुत सारा धन कमाएगा, तो धन कमाएगा तो बहुत सारा पैसा होगा। हमने जो पेरेंट्स के मन में ये हमने जो मुश्किलें झेली हैं, दुख झेले, इनको ना झेलने पड़े, लेकिन वो दुख सुख जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पाया
0: जी, जी, जी,
1: वो कहीं और है और उनके मन में भी ये गलत फहमी है, उन बेचारों को भी समझ नहीं है, इसलिए ना समझ होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज, माना खुद का नॉलेज नहीं है और
1: रियल ट्रू नॉलेज है वो नहीं है, सत्य नॉलेज नहीं है,
0: नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है एक दौड़ की तरह रन कर रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही।
1: राइट और एक जो दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, एक साइकोलॉजिकल रीजंस है, हम सफलता क्यों चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रीजंस है। जैसे एक शब्द सफलता है, जैसे सफलता शब्द हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में आता है, तो वो सफलता शब्द जुड़ा है एक खुशी के साथ, एक शांति के साथ, एक संतुष्टता, नेचुरल है। और ब्रेन हमारा जो है, जिसको न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो अच्छे शब्द हैं, जब हम सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए सफलता शब्द है, वो एक पॉजिटिव शब्द है, किसी की हम प्रेज करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, है ना, तुमने आज बहुत अच्छा भाषण किया है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम किसी की भी किस तरह प्रशंसा करते हैं, पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं, तो वो पॉजिटिव वर्ड जो है ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उन चेंजेस को हम न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, जब ब्रेन की एमआरआई की जाती है तो पता लगता है हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एग्जीक्यूटिव स्किल्स बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन और उसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव शब्द। जैसे सफलता का जो नेगेटिव शब्द है वो असफलता है। जैसे ही हमारे मन में असफलता शब्द आता है, या तो हमें वो दिखता है, मन में सोचते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको रियलाइज कराते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे समाज हमको रियलाइज कराते हैं कि ये व्यक्ति असफल हो गया है, इसको इज्जत नहीं मिलेगी, वो हमें इज्जत नहीं देते, वो हमें खुशी नहीं देते। कई बार हम अपने अंदर अपने आप से नहीं डरते लेकिन दूसरों से डरते हैं। दूसरों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कि वो हमें इज्जत नहीं देंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमको बड़ा नहीं समझेंगे, हमें अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे। तो उनके डर के कारण ही भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, सफलता ही चाहिए। क्योंकि ये जो असफलता वाला शब्द है, ये जो नेगेटिव वर्ड है, जब हमारे अंदर जाएगा, या तो हम उसको सोचेंगे, क्योंकि तीन कारण है, या तो आप सोचते हैं, या तो आप बोलते हैं, या आप सुनते हैं। दूसरे माना आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं, आपको समाज वाले आपको बोलते हैं, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट बोला पॉजिटिव वर्ड्स का, ऐसे उल्टा होता है नेगेटिव। तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जाते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे जब नेगेटिव शब्द जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं, जो कि हमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं। और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बन जाती है, टेंशन बन जाती है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हमें चिंता हो जाती है, या कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहेंगे वो उदास हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम असफलता शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, काफी अच्छी बातचीत आपने की आज, और मुझे लगता है कि सफलता क्यों चाहते हैं, ये आपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। इनसाइट मना हमारी अंतर्दृष्टि को आपने जगाने की कोशिश की इसके साथ में, और बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है कि आगे हम लोग अनेक पहलुओं पर बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते राजेश जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
1: मैसेज, जैसे हम चाहते क्या, खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों से या जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो करें। हम चाहते हैं खुशी, लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कंडीशन कर दी, लेकिन वो अनकंडीशनड होनी चाहिए, उसका निराधार होनी चाहिए, उसका कोई आधार नहीं चाहिए
0: होना चाहिए।
1: तो उसको हम बताने से पहले हमारे श्रोतागण, हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर प्रयोग करें, और खुद ही खुद हम चाहते हैं कि वो समझें इसको, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करें, वो इसको खुद ही समझे और जान लें, और हम जो बातें बताएं वो हमारे साथ रिलेट कर सके कि हाँ ये जो बात करी हमने अनुभव कर लिया। तो उसके लिए एक उनको संकल्प देंगे कि आई एम ए हैप्पी बींग, मैं एक खुशी का सितारा हूं।
0: क्या बात,
1: आई एम ए हैप्पी स्टार। अपने आप को ये संकल्प भी देंगे और देखेंगे भी अपने मस्तिष्क के मध्य में, जैसे सितारे चमकते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी देते हैं, तो मैं भी खुशी का सितारा हूं। आई एम ए स्टार ऑफ हैप्पीनेस। दिन में 10 बार इसको सोचें, और समय मिले तो बैठ करके देखें अपने मस्तिष्क के मध्य में ये सितारा चमक रहा है, और बार बार उसका अनुभव करने की कोशिश करें, रियलाइज करने की कोशिश करें, न केवल स्वयं को लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आता है घर में, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, जैसे वो सामने आए, जैसे मैं खुशी का सितारा हूं, सामने वाला भी खुशी का सितारा है। और दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें, और सुबह भी 10 बार लिखें, उठते ही रात को सोने से पहले 10 बार लिखें, और मैं समझता हूं नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अजब सी खुशी, एक अजब सी सफुर्ती, एक अजब सा उमंग और उत्साह पाएंगे।
0: चलिए राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, और जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा जो सफलता क्यों चाहिए उसके पीछे का रीजन उनको समझ में आ गया। और आखिरी में जो संदेश में आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, निराधार है खुशी, प्रेम, शांति, आनंद पाने के लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को थॉट दीजिए, जिस तरह के थॉट राजेश जी ने बताया, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूं, इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते रहें, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ। जुड़ेंगे। और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को अपने निराधार खुशी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेरों खुशियां। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो,

also in bodies of matter. But I see the light from their eyes.

world of light to the world of matter. But I keep the light.

ओम शांति। आज है 30 अगस्त 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 अप्रैल 2011 को सुनाए थे। बाबा के सीजन के अंत के बाद जब एनुअल मीटिंग होती है, जिसमें विशेष सभी सेंटर्स के मुख्य निमित्त बहने एवं भाई पधारे होते हैं, तथा मधुबन निवासी हर डिपार्टमेंट के हर विंग्स के भाई बहने बैठे होते हैं सेवा के प्लान्स बनाने के लिए, ऐसे समय पर बाप दादा की अचानक पधरामणी हुई और उन सबको देखते हुए बाप दादा के मधुर महावाक्य उच्चारण हुए। उसमें बाप दादा विशेष कहते हैं कि बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को भी अपने पास बुला लिया और इसी प्यार के आधार से बाप समान बन ही जाएंगे। बाबा कहते प्यार की निशानी है कि सदा हर एक के दिल में दिलाराम साथ रहे, कोई भी बच्चा अकेला ना हो, सदा कंबाइंड हो। बाबा कहते अकेले में ही तो माया अपना चांस ले लेती है, इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि दिलाराम को सदा दिल में बसा लो। बाबा कहते बाप चाहते हैं हर बच्चा महारथी निमित्त बच्चे तो औरों को भी क्या करे, अपने चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हैं। उनके चेहरे और चलन से बाप का प्रकाशमय चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन, बाप समान प्रकाशमय चेहरा और बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा कहते ब्रह्मा बाप को देखा तो ब्रह्मा बाप ने अंत तक बाप की श्रीमत प्रमाण हर मुरली में कितनी बार बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बाबा बाबा कहा और अपनी सूरत से मूरत से वचन से विशेष नैन और मस्तक से बाप को प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा बाप को देखते क्या अनुभव होता था, बाप दादा दोनों साथ है, बाप दादा इकट्ठा निकलता और अनुभव होता। ऐसे ही बाबा कहे फॉलो फादर, आपके विशेष नयन मुख चलन बाप दादा को समाया हुआ प्रत्यक्ष करें। लोग यही सोचे कि हाँ इसमें भी परमात्मा बाप समाया हुआ है, इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिवान बाप है, भगवान है, ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, ये अनुभव करें। बाबा कहते अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हालातें बदल रही है, हालातें ही सबको भगवान की याद दिलाती है। तो बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी आने वाले बच्चों के दिल में उमंग उत्साह है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही। सेवा के प्लान्स की मीटिंग चल रही थी तो हर एक के अंदर उमंग उत्साह था कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। जो बाप दादा ने मनसा सेवा का कार्य दिया है उसमें भी देखा कि जो योग्युक्त होकर मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं तो अभी यह वाइब्रेशन चारों ओर किसी न किसी को पहुंच रहा है कि हमें कहां से तो लाइट की किरणें सुख शांति की लहर आ रही है, ये फील करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं स्पष्ट नहीं है कहां से आ रही, तो अभी और शक्तिशाली किरणें ऐसी आत्माओं पर डालो जो उन्हों को स्पष्ट हो जाए। उसके लिए विघन जो पड़ता है, किस बात का विघन है, तो बाबा कहते
कमी है तो ज्वालामुखी योग की कमी है। ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति न होने में या कमी होने में बीच बीच में संस्कार विघ्न डालते हैं, खुद के संस्कार ही विघ्न डालते हैं, क्योंकि वह संस्कार भी समाप्त नहीं होते हैं। बाबा देखते हैं कि अमृत वेले याद में बैठते हैं, लेकिन योग अग्नि रूप में ज्वाला रूप में कम है। योग अग्नि रूप हो, संस्कार को मारते जरूर है, वो मरता है लेकिन बीच बीच में उठ जाता है, जल जाएगा तो नाम रूप समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाप दादा आज सभी स्पेशल महावीर बच्चे जो मीटिंग में आए हैं और मधुबन निवासी, उन सबको इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? विशेष अटेंशन रखना चाहिए कि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को देखते हुए खास कहा कि हर मधुबन निवासी के सूरत और सीरत से बाबा बाबा ही दिखाई दे, क्योंकि मधुबन में यज्ञ सेवा का बल और फल बहुत मिलता है। संस्कार को देखने या संस्कार मिलाने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाप के स्थापन किए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। बाबा का मधुबन के बच्चों से विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि बाप का स्थापन किया हुआ यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। मधुबन निवासी को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है, दूसरा जो मधुबन में आने वाले हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं चाहे नई आत्माएं, उन्हों की सेवा का चांस मिलता है, और तीसरा यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य भी मिलता है। तो तीन रूप से फल मिलता है, अपने पुरुषार्थ का फल, सेवा का फल और यज्ञ सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा मिल जाता है। मधुबन वाले खुद जाने न जाने, लेकिन बाबा कहे मधुबन का सेवा का पुण्य जरूर मिलता है। ऐसे साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि बाप का रचा हुआ यज्ञ है जिसमें सेवा करने का भाग्य मिला है। तो हर एक मधुबन वाले अपने पुण्य के खाते को जानो, पहचानो और उस महान प्राप्ति स्वरूप बनो। बाबा कहते मधुबन निवासी के ऊपर सभी को भावना है, तो ऐसे भावना वालों को भावना का फल दिखाओ। मधुबन वालों में बाप दादा जानते हैं कि कोई कोई बच्चे बहुत मर्यादा पूर्वक स्वपुरुषार्थी, बाप से स्नेही बन सहयोग देने वाले भी बच्चे हैं। मधुबन निवासी हर बाप का बच्चा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन अपने चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दे कि हम मधुबन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य को प्रसिद्ध करो क्योंकि यज्ञ निवासी हो। फिर बाप दादा ने निमित्त बने हुए सेंटर्स के आए हुए अनन्य भाई बहनों को देखकर कहा कि बाप दादा उन्हों को देख करके भी खुश होते हैं। आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसा कोई कार्य हो जो आने से ही अनुभव हो कुछ है, देखने से ही अनुभव हो कुछ है, सुनने का अनुभव होता है, योग का अनुभव होता है, लेकिन वायुमंडल का भी अनुभव हो। ये अटेंशन निमित्त बने हुए आत्माओं को रखना है जो विशेष सेंटर के निमित्त और अनन्य है, उनकी विशेष सेवा है। स्वयं अगर योगयुक्त बन वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहते हैं तो उसका प्रभाव सेवा स्थान पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। बाबा कहते अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तो संसार का वायुमंडल भी बदलेगा। अभी बाप दादा सभी की रिजल्ट देखना चाहते हैं, मधुबन वालों की और मीटिंग वालों की, सेंटर्स वालों की। पांडव
पांडव पति की श्रीमत से विजयी बने और विजयी का नाम बाला किया। बाप दादा, आज आपके स्नेह को देख आप सबको स्नेह का हार पहनाते हैं। बाबा कहते हैं, अपनी जेब में हमेशा सहयोग के नोट से जेब भरा हुआ होना चाहिए। कहां भी देखो सहयोग चाहिए तो सहयोग का नोट दे दो। आप सहयोग का नोट दो और वह आपको दुआओं का हार पहनाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसे स्नेही सहयोगी बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं और विशेष खुशी होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो। अपने चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। आज बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को भी अपने पास बुला लिया। ये मधुर महावाक्य बाप दादा ने एनुअल मीटिंग में आए हुए भाई बहनों के सामने उच्चारण किए थे और इसीलिए विशेष बाबा का आने का टर्न नहीं था, लेकिन फिर भी दादियों की रिक्वेस्ट से बाप दादा पधारे थे। तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को भी अपने पास बुला लिया। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों का बाप से दिल का प्यार अच्छा है। बाबा भी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि बच्चों का बाप से दिल का प्यार अच्छा है और सदा ही इस प्यार के आधार से बाप समान बन ही जाएंगे। कितना बाबा की उम्मीदें हैं हम बच्चों में कि इसी प्यार के आधार से बाप समान बन ही जाएंगे। वैसे भी बाप दादा ने प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों को आगे रखा है, तो आज बच्चों ने अपने प्यार की तार में बांध प्यार के सागर को मधुबन में विशेष बुला लिया। अपने प्यार के तार में बांध प्यार के सागर को मधुबन में विशेष बुला लिया। ऐसा प्यार सदा इमर्ज रहे, बाबा कहते ऐसा ही प्यार सदा इमर्ज रहे। दिलाराम बाप को भी बच्चों के दिल का प्यार सदा पहुंचता रहता है। बच्चों का दिल का प्यार बाबा के पास भी पहुंचता रहता है, लेकिन नंबरवार जरूर है। जितना दिल से बच्चे बाबा को याद करते हैं बाबा के पास वो प्यार पहुंचता है, लेकिन बाबा कहे नंबरवार जरूर है। बाप यह चाहता है कि प्यार की निशानी है कि सदा हर एक के दिल में दिलाराम साथ रहे। प्यार की निशानी है कि हर एक के दिल में दिलाराम साथ रहे। कोई भी बच्चा अकेला ना हो, कंबाइंड हो। तो चेक करना, सदा कंबाइंड रहते हो व कब कब अकेले भी बन जाते हो? बाबा कहे चेक करना, अकेले में माया अपना चांस ले लेती है। जैसे ही बाप से अलग हुए, अकेले हुए, तो बाबा सावधान करते कि माया अपना चांस ले लेती है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं, दिलाराम को सदा दिल में बसा लो। इसको कहा जाता है सच्चा और सदा प्यार। बाप दादा को या दिलाराम को सदा दिल में बसा लो, इसको कहा जाता है सच्चा और सदा प्यार। तो कभी अकेले बनते हो कि सदा साथ रहते हो? पूछते बाबा, हर बच्चे का वायदा क्या है? खास मधुबन निवासियों का नशा है
के साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। एनुअल मीटिंग में मधुबन के विशेष हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं, तो इसीलिए बाबा देखते हैं कि जो अनन्य भाई बहने हर सेंटर से भी आए हैं और मधुबन वाले भी बैठे हैं, तो इसीलिए बाबा कहते खास मधुबन निवासियों का नशा है कि साथ है, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। ऐसे ही जो विशेष बहुत बहुत मीठे निमित्त बच्चे बैठे हैं, उन्हों का तो बाप से दिल का वायदा है। क्या वायदा है? और मेजॉरिटी का प्रैक्टिकल भी है, जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, लेकिन नंबरवार है। प्रैक्टिकल में बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं, लेकिन बाबा कहे नंबरवार है। बाप चाहते हैं हर बच्चा महारथी निमित्त बच्चे तो औरों को भी अपने चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, उन्हों के चेहरे और चलन से बाप का प्रकाशमय चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा कहते हैं जो विशेष निमित्त महारथी बच्चे हैं, उनके चेहरे से बाप का साक्षात्कार होता है और उनके चेहरे और चलन से बाप का प्रकाशमय चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहता है। तो चेहरा और चलन दोनों का साक्षात्कार होता रहता है। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अंत तक बाप की श्रीमत प्रमाण हर मुरली में कितना बारी बाबा बाबा कहा। ब्रह्मा बाबा ने मुरलियों में कितना बारी बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहा, गिनती करना हर मुरली में बाबा बाबा कितना बारी कहते हैं। और अपनी सूरत से, मूरत से, वचन से, विशेष नैन और मस्तक से बाप को प्रत्यक्ष किया। आप बच्चे तो अनुभवी हो, बाबा के यज्ञ के पुराने बच्चे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो बाबा कहते हैं आप बच्चे तो अनुभवी हो कि ब्रह्मा बाप को देखते क्या अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप को देखते ही अनुभव होता है बाप दादा। सिर्फ बाप शब्द कोई नहीं कहता, सदा हर एक के मुख से बाप दादा, बाप दादा इकट्ठा निकलता और अनुभव होता है। ऐसे फॉलो फादर, बाबा कहते ऐसे आप सबके भी चेहरे चलन से ये सबको अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे फॉलो फादर, आपके चेहरे से, बोल से, चलन से, दृष्टि से बाप की याद स्वतः ही देखने वाले को आवे। अभी बाप ने देखा कि मेजॉरिटी आप सबका यही संकल्प है कि हम अपने चेहरे या बोल या कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। तो फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने चलन, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से सदा बाप को प्रत्यक्ष किया, आप सबको तो अनुभव है ना। अकेला ब्रह्मा बाप नहीं देखते थे, बाप दादा ही देखते थे, जैसे कंबाइंड है, इकट्ठे हैं, तो बाप दादा ही देखते थे। कारण ब्रह्मा बाप ने सदा अपने नैनों में, मस्तक में बाप को समाया। तो आपके विशेष नैन, मुख, चलन बाप दादा को समाया हुआ प्रत्यक्ष करें। ऐसे ही बाबा कहे आपके नैन, मुख और चलन बाप दादा को जैसे आप में समाया हुआ
प्रत्यक्ष करें। हर बोल में सिखाने वाला अनुभव हो या जो भी बोल रही है बोल रहा है इसको सिखाने वाला, इसमें शक्ति भरने वाला कौन? इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिमान बाप है। ऐसा लोगों को अनुभव हो। इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिमान बाप है, भगवान है, ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं लेकिन कदम में पदम बनाने वाले, ऐसा लोगों को अनुभव होना चाहिए। अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। क्यों? बाबा कहते हालातें बदल रही है, जो हालातें न चाहते भी भगवान की याद दिलाती है। तो एक समय और दूसरा आप निमित्त बने हुए, दोनों ग्रुप की विशेषता है। एक विशेष निमित्त बने हुए मधुबन निवासी है, दूसरा बना बनाया निमित्त ग्रुप मीटिंग में आए हो। तो एक तो समय सहयोगी है और दूसरे बाबा कहे आप निमित्त बने हुए, दोनों ग्रुप की विशेषता, दोनों ग्रुप में एक मधुबन निवासी और दूसरा जो अनन्य सेंटर से आए हुए भाई बहने, तो दोनों की विशेषता है। तो इसीलिए बाबा कहे प्रत्यक्ष करना सहज है। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी आने वाले बच्चों के दिल में उमंग उत्साह है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। मीटिंग में सेवा के प्लान्स बनते हैं और प्लान्स बनने के कारण हरेक के अंदर ये उमंग उत्साह होता है कि हमें इस साल बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, चाहे अपनी सूरत की सीरत से, चाहे वाणी से, चाहे कोई भी आत्मय संबंध संपर्क में है। आजकल आपकी मनसा आत्माओं के कल्याण की भावना से आपके कनेक्शन में आ रही है और आने भी चाहती है। बाबा कहते क्योंकि मनसा सेवा करते हैं और कल्याण की भावना है तो आपके कनेक्शन में आ रही है और आने भी चाहते हैं। और जो बाप दादा ने मनसा सेवा का कार्य दिया है उसमें भी देखा कि जो योगयुक्त होकर मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं तो अभी ये वाइब्रेशन चारों ओर किसी न किसी को पहुंच रहा है। मनसा सेवा का कार्य जो करते हैं तो बाबा कहते जो योगयुक्त होकर के मनसा सेवा करते हैं तो उनके वाइब्रेशन चारों ओर किसी न किसी को पहुंच रहा है कि हमें कहां से लाइट की किरणें, सुख शांति की लहर आ रही है, ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन कहां से आ रही है अभी वह स्पष्ट नहीं हुआ है। आ रही है लेकिन भारत के बाप दादा के बच्चों से आ रही है वह स्पष्ट नहीं हुआ है, नहीं तो भागेंगे। अगर स्पष्ट हो जाए तो बाबा कहे भागेंगे। अभी और शक्तिशाली किरणें ऐसी आत्माओं पर डालो जो उन्हों को स्पष्ट हो जाए पहुंच रही है, शुरू हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई कोई की किरणें पहुंचने लगी है। बाबा कहते हैं अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए बाबा कहते और शक्तिशाली किरणें उन आत्माओं पर डालो जो उन्हें स्पष्ट हो जाए। पहुंच रही है, शुरू हुआ है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई कोई की किरणें पहुंचने लगी है। अभी इसको और शक्तिशाली बनाओ। इसके लिए जो विघ्न पड़ता है, जो नहीं पहुंच रहा है उसमें जो विघ्न पड़ता है, पहुंचने में स्पष्ट होने में कारण बनता है, योग लगाते हो, अमृत वेले बैठते हो लेकिन ज्वालामुखी योग उसकी कमी है।
ज्वालामुखी योग नहीं। इसके कारण एक तो जिन भक्तों को या आत्माओं को आप किरणें भेजते हो वह इतनी स्पष्ट नहीं होती है, और दूसरा बाबा कहते हैं जिनको भेजते हो वह ज्वालामुखी योग की कमी होने कारण इतनी स्पष्ट नहीं होती, और दूसरा ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति न होने में या कमी होने में संस्कार जो बीच में विघ्न डालते हैं वह संस्कार भी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये किरणें क्यों नहीं पहुंच रहे हैं या स्पष्ट अनुभव क्यों नहीं कराते हैं, उसमें विघ्न रूप होता है अपने ही संस्कार, जिस कारण ज्वालामुखी योग की कमी हो जाती है। और ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप योग की शक्ति न होने कारण या कमी होने में संस्कार बीच में विघ्न डालते हैं, वह संस्कार भी समाप्त नहीं होते हैं। पुरुषार्थ करते हो संस्कार परिवर्तन हो जाए, लेकिन मरते हैं जलते नहीं। संस्कार मरते हैं लेकिन जलते नहीं, इसलिए वापस खड़े हो जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं हैं, मारने के बाद जलाते हैं, क्योंकि मारने के बाद शरीर तो रह जाता है ना। तो ऐसे ही आप अमृत वेले याद में बैठते हो लेकिन योग अग्नि रूप में ज्वाला रूप में कम है। मिलन मनाते हो, रूरिहान करते हो, अपने जीवन की बातें भी करते हो लगातार, योग अग्नि रूप हो, संस्कार को मारते जरूर हो, वो मरता है लेकिन बीच बीच में उठ जाता है, मरता है फिर उठ जाता है क्योंकि जलाया नहीं है। जल जाएगा तो नाम रूप खत्म हो जाएगा। अभी सभी बच्चे रूरिहान में भी कहते हैं जितना चाहते हैं उतना नहीं है। तो बाप दादा आज ये इशारा दे रहे हैं क्योंकि स्पेशल महावीर बच्चे मीटिंग में आए हैं और मधुबन निवासी, अर्थात मधुबन में है क्या, मधुबन अर्थात बाबा मधुबन निवासी है तो मधुबन में है क्या, मधुबन अर्थात बाबा। मधुबन कहने से सबको क्या याद आता है, मधुबन का बाबा वही याद आता है। तो मधुबन वालों को विशेष अटेंशन रखना चाहिए कि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। सबको मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन में रहने वाले को किस दृष्टि से देखते हैं, मधुबन वाले हाथ उठाओ तो देखा बाबा ने बहुत है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, लेकिन आज की सभा में सबसे ज्यादा मधुबन निवासी है। बाप दादा खुश है कि मधुबन निवासी ये कमाल अवश्य दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे, कि हर मधुबन निवासी के सूरत और सीरत से बाबा बाबा ही दिखाई दे, हर मधुबन निवासी के सूरत से और सीरत से बाबा बाबा ही दिखाई दे, बात से बाप।